नमस्कार, सुप्रभात। FM 103 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। आज गुरुवार है। शक संवत 1948 के श्रावण मास के 8वें तिथि, तदनुसार 30 जुलाई सन 2026। स्टूडियो की घड़ी में इस समय सुबह के 5:59:03 हो चुके हैं। इसी के साथ ही आरंभ होती है हमारी आज की प्रातःकालीन सभा।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। लोकसभा ने लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक में 10 वर्ष तक के कारावास, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और अपराधियों की संपत्ति जब्त करने का प्रावधान है। मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए प्रत्येक राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश को दैनिक सुनवाई के लिए विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करने का आदेश दिया गया है। विधेयक के अनुसार अपराधों की जांच पुलिस थाने में सूचना दर्ज होने की तारीख से 2 महीने के भीतर पूरी की जानी चाहिए और मुकदमे की सुनवाई आरोप पत्र दाखिल होने की तारीख से 3 महीने के भीतर पूरी होनी चाहिए। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा है कि ये संशोधन कानून को और अधिक सख्त बनाने तथा त्वरित न्याय दिलाने के लिए किया गया है। डॉ. सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री ने टास्क फोर्स का भी गठन किया है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस विधेयक के पारित होने पर विद्यार्थियों और युवा अभ्यर्थियों को बधाई दी है। श्री वैष्णव ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि ये विधेयक परीक्षा में होने वाली गड़बड़ियों और अनुचित गतिविधियों पर अंकुश लगाएगा। राज्यसभा ने राष्ट्रीय सम्मान की रक्षा के लिए राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक वंदे मातरम को राष्ट्रीय गान के समान वैधानिक संरक्षण प्रदान करेगा। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि वंदे मातरम के अपमान के लिए अब 3 वर्ष तक की कैद, जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के माध्यम से प्रोजेक्ट कंसर्न इंटरनेशनल इंडिया के साथ एक गैर वित्तीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते का उद्देश्य सार्वजनिक खरीद और बाजार से जुड़े उद्यम विकास के माध्यम से महिला नेतृत्व वाले उद्यमों, विशेष रूप से स्वयं सहायता समूह के नेतृत्व वाले उद्यमियों को सशक्त बनाना है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि नवाचार, उन्नत प्रौद्योगिकियां, स्टार्टअप, लघु और मध्यम उद्यम भारत के आर्थिक विकास के अगले चरण को गति प्रदान करेंगे। नई दिल्ली में आयोजित 22वें जेआरडी टाटा स्मृति व्याख्यान में श्री गोयल ने नवाचार को बढ़ावा देने के लिए कई पहलों का उल्लेख किया, जिनमें 1,00,000 करोड़ रुपए का अनुसंधान, विकास और नवाचार कोष, इंडिया एआई मिशन और दूसरे चरण के सेमीकंडक्टर मिशन शामिल हैं। उन्होंने कहा कि ये पहल देश के नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र को और मजबूत करेंगी और उभरती प्रौद्योगिकियों के विकास में तेजी लाएंगी। नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू ने सतत विमानन ईंधन का उपयोग करने

0: और अंतर्राष्ट्रीय विमानन के लिए कार्बन ऑफसेटिंग और न्यूनीकरण योजना के कार्यान्वयन के लिए देश की तैयारियों की समीक्षा की। कल नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्री नायडू ने अगले वर्ष 1 जनवरी से इस योजना के अनिवार्य चरण से पहले सतत विमानन ईंधन के उत्पादन, मिश्रण, कार्बन अकाउंटिंग और आपूर्ति श्रृंखला विकास के लिए देश की कार्य योजना की समीक्षा की। इस अवसर पर श्री नायडू ने कहा कि सतत विमानन ईंधन नीति का मसौदा अपने अंतिम चरण में है और हितधारकों के साथ परामर्श के माध्यम से इसे अंतिम रूप दिया जा रहा है। बिहार सरकार ने दरभंगा के रायम और मधुबनी के सकरी में बंद चीनी मिलों को फिर चालू करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में कल पटना में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई। अपर मुख्य सचिव अरविंद कुमार चौधरी ने मंत्रिमंडल के फैसलों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि एक अन्य महत्वपूर्ण फैसले में मंत्रिमंडल ने बिहार खेल नीति 2026 को भी मंजूरी दी है। बैठक में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 97 करोड़ रुपए से अधिक की योजनाओं को लागू करने की भी स्वीकृति दी गई है। वहीं शहरी विकास क्षेत्र में अमृत योजना के दूसरे चरण के अंतर्गत किशनगंज जलापूर्ति परियोजना के लिए 53 करोड़ 71 लाख रुपए और लखीसराय जलापूर्ति परियोजना के लिए 1 अरब 50 करोड़ 96 लाख रुपए से अधिक की राशि स्वीकृत की गई। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में अशांति लगातार बढ़ रही है। अब तक 40 प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय ने प्रदर्शनकारियों की मौत पर चिंता व्यक्त की है। उच्चायुक्त के प्रवक्ता जेरेमी लॉरेंस ने कहा कि एक नागरिक समाज संगठन को अपराधी घोषित करना और सभाओं पर कड़े प्रतिबंध लगाना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण सभा और संगठन के अधिकारों के उल्लंघन के बारे में गंभीर चिंताएं पैदा करता है। राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने पैरा एथलेटिक्स के पुरुषों की 100 मीटर T47 स्पर्धा के फाइनल में स्वर्ण और रजत पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से। कृषि संबंधी कुछ बातें, खेती की बातें कार्यक्रम के तहत जलवायु परिवर्तन का कृषि पर प्रभाव। वाचन स्वर है सुनीता अग्रवाल का, पूर्व प्रसारित जानकारी है।
2: खेती की बातें कार्यक्रम में श्रोताओं, आज की कड़ी में हम बातें करेंगे जलवायु परिवर्तन का कृषि पर पड़ने वाले प्रभाव पर। श्रोताओं, हमारा देश भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारतीय अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषि पर आधारित है। कृषि भारत के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह खाद्यान्न, पोषण एवं आजीविका संबंधी सुरक्षा प्रदान करती है। हमारे देश में 60% से भी अधिक लोग अपने आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर हैं। कृषि कुल सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 17% योगदान देती है। विभिन्न प्रकार के उद्योग कच्चे माल की आपूर्ति के लिए कृषि पर निर्भर होते हैं। पिछले कुछ दशकों में भारतीय कृषि ने अभूतपूर्व प्रगति की है। सन 1950-51 में खाद्यान्न का उत्पादन 51 मिलियन टन था, जो कि 2011-12 में बढ़कर 250 मिलियन टन हो गया था। इसी प्रकार से तिलहनों का उत्पादन भी 5 मिलियन टन से बढ़कर 28 मिलियन टन हो गया था। विभिन्न प्रकार की खाद्यान्न पदार्थों जैसे कि चावल, गेहूं, दाल, सब्जी, फल, चाय, कपास, गन्ना इत्यादि के उत्पादन के संदर्भ में भारतीय 3 शीर्ष स्थानों पर जगह बनाने में कामयाब रहा। लेकिन आज वही भारत विश्व जलवायु परिवर्तन की समस्या से जूझ रहा है। जलवायु परिवर्तन के कारण पर्यावरण में अनेक प्रकार के परिवर्तन जैसे तापमान में वृद्धि, वर्षा का कम या ज़्यादा होना, पवनों की दिशा में परिवर्तन आदि लक्षण दिखाई दे रहे हैं, जिस कारण कृषि पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण ग्लोबल वार्मिंग है एवं ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण पर्यावरण में ग्रीन हाउस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि होना है। ये ग्रीन हाउस गैसें धरातल से निकलने वाली अपरक्त विकिरणों यानी कि इंफ्रारेड रेडिएशन को वायुमंडल से बाहर नहीं जाने देती, जिसके परिणाम स्वरूप समुद्रों तथा नदियों के जलस्तर में वृद्धि होती जा रही है और इससे बाढ़ एवं चक्रवातों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। भारतीय कृषि पर अनावृष्टि का संकट सबसे ज़्यादा है क्योंकि आज भी सिंचाई से संबंधित व्यवस्था मानसून पर ही आधारित है। पूर्वोत्तर भारत में बाढ़ का पूर्वी तटीय क्षेत्रों में चक्रवात तथा उत्तर पश्चिम भारत में पाले तथा मध्य और उत्तरी क्षेत्रों में गर्म लहरों का खतरा बढ़ता ही जा रहा है। ये जलवायु आपदाएं, कृषि

0: उत्पादन पर भारी मात्रा में नुकसान पहुंचा रही हैं। जलवायु परिवर्तन प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से फसलों, मृदा, मवेशी, कीट पतंगों पर प्रभाव देखा जा रहा है और इससे कृषि पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। मानसून के दौरान वर्षा अवधि में कमी आई है। शीतलहर एवं पाला तिलहनों तथा सब्जियों के उत्पादन में भी कमी आई है। वर्ष 2003 में जनवरी माह में शीतलहर के कारण विभिन्न खाद्य पदार्थों में जैसे आम, पपीता, केला, टमाटर, आलू, मक्का, चावल आदि के उपयोग पर अधिक प्रभाव पड़ा था, उत्पादन पर अधिक प्रभाव पड़ा था। वर्ष 2004 में मार्च माह में तापमान में वृद्धि के फलस्वरूप गेहूं की फसलें अपने निर्धारित समय से 10-20 दिन पहले ही तैयार हो गई थी, जिससे पूरे भारतवर्ष में गेहूं के उत्पादन में 4 मिलियन टन से भी ज़्यादा कमी आई थी। इसी प्रकार से वर्ष 2009 में अनियमित मानसून के कारण चावल के उत्पादन में महत्वपूर्ण गिरावट आई थी। पिछले कुछ वर्षों में भारत की जलवायु चरम सीमा तक परिवर्तित हुई है। जलवायु परिवर्तन विभिन्न प्रकार से कृषि को प्रभावित करता है। कृषि की उत्पादकता बढ़ाने में उपजाऊ मृदा, जल, अनुकूल वातावरण, कीट पतंगों से बचाव आदि का महत्वपूर्ण योगदान होता है। प्रत्येक फसल को विकसित होने के लिए एक उचित तापमान, उचित प्रकार की मृदा, वर्षा तथा आर्द्रता की आवश्यकता होती है और इनमें से किसी भी मानक में परिवर्तन होने से फसलों की पैदावार भी प्रभावित होता है। जलवायु परिवर्तन के जलीय चक्रण को प्रभावित करने के परिणाम स्वरूप कहीं अकाल तो कहीं बाढ़ का खतरा बढ़ जाता है, जिससे फसलों को भारी तादाद में नुकसान पहुंचता है। बागवानी फसलें अन्य फसलों की अपेक्षा जलवायु परिवर्तन के प्रति अति संवेदनशील होते हैं। उच्च तापमान सब्जियों की पैदावार को भी प्रभावित करता है। जलवायु परिवर्तन अप्रत्यक्ष रूप से कृषि को प्रभावित करता है, जैसे खरपतवार को बढ़ाकर फसलों और खरपतवार के बीच स्पर्धा को तीव्र करता है। कीट पतंगों तथा रोग जनकों की श्रेणी का विस्तार करता है। कृषि जलवायु परिवर्तन को कम करने के लिए कुछ कदम उठाए जाने चाहिए, जैसे कि फसलों की ऐसी प्रजातियों को विकसित करना चाहिए जिनमें शुष्कता एवं लवणता का दबाव सहने की क्षमता हो और जो बाढ़ एवं अकाल के प्रभाव से शून्य हो तथा सिंचाई एवं जल संबंधी व्यवस्था में भी सुधार लाना चाहिए। नई कृषि तकनीकियों जैसे कि संसाधन संरक्षण, प्रौद्योगिकी, फसल विविधीकरण, कीट प्रबंधन को सुधारना, मौसम पूर्वानुमान व्यवस्था में सुधार लाना इत्यादि को अपनाना होगा, तभी कृषि उत्पादन सही ढंग से हो पाएगा। और आज की जानकारी यहीं तक।
1: खेती की बातें कार्यक्रम में सुन रहे थे आप जलवायु परिवर्तन का कृषि पर क्या प्रभाव पड़ता है, वाचन स्वर था सुनीता अग्रवाल का। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। आइए अब आपको सुनवाते हैं गोस्वामी तुलसीदास कृत रामचरित मानस गान।

चित्रकूट आए हुए सभी व्यक्तियों की एक ही कामना है कि गुरु, समाज तथा भाइयों सहित श्री राम का राजतिलक अवधपुरी में हो और उनके राज्यकाल में ही सबकी जीवन लीला वहीं समाप्त हो। अयोध्या वासियों की इस प्रेमाभिव्यक्ति पर ऋषि मुनि अपने योग वैराग्य को हे मानते हैं। श्री राम के प्रति प्रजाजन की इस निष्ठा और समर्पण की भावना से किसे ईर्ष्या नहीं होगी। मिथिला नरेश के आगमन का समाचार सुनकर श्री राम सभा समेत आदरपूर्वक उठ खड़े हुए और लक्ष्मण, गुरु तथा पुरवासियों को साथ लेकर उनकी अगवानी करने चले। राजा जनक ने वशिष्ठ तथा अन्य मुनियों के चरणों की वंदना की। श्री राम ने जनकपुर वासियों तथा राजपुरोहित शतानंद को प्रणाम किया और आदरपूर्वक उन्हें आश्रम ले चले।

0: अभी आप सुन रहे थे संत गोस्वामी तुलसीदास कृत रामचरित मानस गान। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है आज का चिंतन।
1: संगति शब्द दो शब्दों के मेल से बना है, सत और संगति, अर्थात सच्चे या अच्छे मनुष्यों की संगति। इसमें यह तो सत्य है कि मनुष्य समाज में अच्छी और बुरी दोनों प्रकार की संगति प्राप्त करता है। यदि वह अच्छी संगति में रहता है तो उसे लाभ होता है, उसका कल्याण होता है, अन्यथा बुरी संगति के कारण वह जीवन में असफल होकर दर दर की ठोकरें खाता है। अच्छी संगति वाला दुर्जन भी वैसा ही अच्छा जीवन जीते हैं जैसे पारस पत्थर को छूने से लोहा भी सोना बन जाता है। शठ सुधरही सतसंगति पाई, पारस परसी कुधात सुहाई। सत्संगति के द्वारा मनुष्य न केवल अपना भला करता है अपितु वह अपनी जाति, समाज और राष्ट्र को भी पूरी तरह से लाभान्वित करता है। इसीलिए तुलसीदास जी ने भी इसकी महिमा गाई है, सुनी आचरज करे जने कोई, सत्संगति महिमा नहीं कोई। सत्संगति साधुओं की संगति होती है जो सब प्रकार से वंदनीय और प्रार्थनीय होती है। साधुओं की संगति तो सभी गुणों की खान है जो अवगुणों को भी सद्गुणों में बदल डालती है। सत्संगति दो प्रकार की होती है, प्रथम साधु और सज्जन पुरुषों के साथ रहने से और दूसरी हमें पुस्तकों से प्राप्त होती है। ये दोनों ही प्रकार की संगति हमें विवेक और सद्ज्ञान प्रदान करके जीवन मुक्ति के साधनों का पथ प्रदर्शन करती हुई संसार की अज्ञानता में डूबे हुए व्यक्ति को उपकार के मार्ग पर चलाती है। इसीलिए सत्संगति के लिए कहा गया है कि वह अज्ञानी से अज्ञानी और जड़ से जड़ पदार्थों को भी ज्ञानवान और चेतनशील बनाती है। संगति से मनुष्य को केवल लाभ ही लाभ है। हमारे नीति के श्लोक से भी यह बात समझ में आती है, जाइये धियो हरिति सिंचति वाचि सत्यम, मनोनति दिशति पापम पाकरोति, चेतः प्रसादयति दिक्षु तनोति कीर्तिम, सत्संगति कथम किम न करोति पुंसाम। अर्थात सत्संगति अज्ञानता का हरण करके मनुष्य की वाणी में सत्यता को प्रविष्ट कराती है, मन की उन्नति करके चारों दिशाओं में उसकी कीर्ति पताका फहराती है, चेतना को बढ़ाती है। कहने का तात्पर्य है कि सत्संगति मनुष्य के लिए क्या क्या नहीं करती, अर्थात सब कुछ करती है। जो अच्छी संगति में रहता है उसके ऊपर फिर कोई भी किसी भी तरह की कोई बुराई असर नहीं करती। जैसे रहीम जी कहते हैं, जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन विश्व

0: ताकत नहीं, लपटक रहत भुजंग। श्रेष्ठ पुरुषों के साथ बातचीत करने से एवं उन्हें सुनने मात्र से सहज ही दुर्बुद्धि का नाश होता है और ज्ञान की वृद्धि होती है। अच्छी संगति से व्यक्ति में कदाचार, कर्तव्य पालन, धर्मनिष्ठा, व्यवहार कुशलता तथा मन, वचन और कर्म की पवित्रता आदि सद्गुणों का विकास होता है। सज्जनों की संगति से मूर्ख भी चतुर बन जाते हैं। अच्छी संगति के प्रभाव से मनुष्य दयावान, विनम्र, परोपकारी और ज्ञानी बनकर समाज में सम्मान प्राप्त करता है। जैसे वाल्मीकि लुटेरे और डाकू थे, लेकिन नारद मुनि के सत्संग के प्रभाव से उच्च कोटि के संत, भक्त और आत्मज्ञानी हुए। अंगुलीमाल भी एक डाकू था, लेकिन भगवान बुद्ध के सत्संग के प्रभाव से उसके सारे दुर्गुण नष्ट हो गए, दूर हो गए। इसीलिए दुष्टों से दूर रहकर सत्संगति में रहना हमारा ध्येय होना चाहिए।
1: सत्संगति का प्रभाव। अभी आप सुन रहे थे आज का चिंतन, वाचन स्वर था अनुपमा तिवारी का। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। भक्ति संगीत के कार्यक्रम आराधना में आइए सुनवाते हैं आपको कुछ भजन।

0: भक्ति संगीत के कार्यक्रम आराधना में सुन रहे थे आप अनुराधा पौडवाल के गाए हुए कुछ श्री राम जी के भजन। इसी के साथ ही भक्ति संगीत का यह कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये डाल्टनगंज केंद्र है। स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में आइए सुनवाते हैं भेंट वार्ता, फैटी लीवर कारण और निदान। भेंट वार्ताकार हैं डॉक्टर ऋषि और बातचीत कर रहे हैं श्री संजीव कुमार लाल।
1: मित्रों, बदलती जीवन शैली में बहुत सारी बीमारियां निकलकर सामने आ रही है और हमारी जीवन शैली को बहुत ही प्रभावित कर दे रही है। एक ऐसी ही बीमारी है फैटी लीवर की। 10 में से लगभग 7-8 लोग फैटी लीवर की बीमारी से ग्रसित हो जा रहे हैं। हमारे खान पान में काफ़ी बदलाव आ गया है, रहन सहन में काफ़ी बदलाव आ गया है और ख़ासकर जो व्यक्ति नशे का सेवन करता है, अल्कोहल लेता है, उसे ये बीमारी ज़्यादा पकड़ रही है। और ऐसे भी लोग हैं जो कुछ भी गलत चीज़ों का सेवन नहीं करते हैं, वो भी फैटी लीवर की बीमारी से ग्रसित होते जा रहे हैं। क्या कारण है, क्यों इस तरह की बीमारी आजकल हो जा रही है और समय रहते हैं इसका हम उपचार कैसे करें और सबसे अच्छी बात कि हम सावधानियाँ क्या क्या रखें, इस विषय पर बातचीत करने के लिए आमंत्रित हैं आयुर्वेद एवं पंचकर्म विशेषज्ञ डॉक्टर ऋषि। डॉक्टर साहब स्वागत है।
2: जी नमस्ते।
1: डॉक्टर साहब, ये फैटी लीवर क्या है और ये कॉमन क्यों होता जा रहा है?
2: जी, ऐसा है कि आज के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम लोग बात करते हैं तो फैटी लीवर बहुत कॉमन हो गया है। मतलब अगर आप अपने प्रैक्टिस में 10 लोगों को अल्ट्रासाउंड्स कराते हैं तो उसमें 7 पेशेंट्स ऐसे आते हैं जिसको ग्रेड 1, ग्रेड 2 या ग्रेड 3 फैटी लीवर आ रहा है। तो ये आम चिकित्सकों के लिए एक बहुत पैनिक सा कंडीशन हो गया कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो अगर हम इस पे गहन अध्ययन करते हैं और इस पे अगर आयुर्वेद के दृष्टिकोण से इसे देखते हैं तो ये पता चलता है कि मुख्यतः जो लीवर की समस्या होती है वो पहले अल्कोहल के कंजप्शन से होती थी। अल्कोहल लेने से लीवर में सूजन आ जाता था जिसे हम लोग फैटी लीवर बोलते थे, जिसको बोलते थे अल्कोहल इंड्यूस्ड फैटी लीवर। लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में उससे ज़्यादा जो हम लोग बोलते हैं नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर, मतलब कि जो अल्कोहल नहीं लेते हैं उन्हें भी फैटी लीवर हो रहा है। तो इसका मुख्य कारण है और वो है आपकी दिनचर्या, आपका आहार विहार, आपका रहन सहन, आपका फूड हैबिट्स। तो जब हम ये देखते हैं कि आज के डेट में लोग फास्ट फूड पे, जंक फूड पे, प्रिजर्वेटिव फूड पे आश्रित हो गए हैं, सीजनल फूड नहीं लेते हैं, बाहर की चीज़ों पे ज़्यादा आश्रित होते हैं, तो इस वजह से आपका जो फैटी लीवर है वो धीरे धीरे आमजनों में बहुत बढ़ता जा रहा है। और अगर आप ऐसा देखते हैं कि आप अगर ऐसे कंपेयर करेंगे कि आने वाले 5 से 10 सालों में, ये काफ़ी बड़ा है, तो 5 से 10 सालों में लोगों का जो लाइफस्टाइल है वो काफ़ी चेंज हो गया है। आप रात को सोते नहीं हैं, दिन में सोते हैं, रात को जागते हैं, फिर दिन में आप फास्ट फूड पे डिपेंड करते हैं, उसके बाद फिर आप अगर अल्कोहल भी लेते हैं तो वो कंडीशन और पैनिक हो जाता है। तो फिलहाल हम ये कह सकते हैं कि हम अपने मेटाबॉलिक को अगर ठीक करेंगे, अपने दिनचर्या को ठीक करेंगे, अपने आहार विहार को ठीक करेंगे तो हम फैटी लीवर से काफ़ी हद तक बच सकते हैं।
1: मतलब हमारी जो बदलती जीवन शैली है या यूं कहें बिगड़ती जीवन शैली है वो बहुत हद तक इस फैटी लीवर की बीमारी के लिए जिम्मेदार है।
2: जी बिल्कुल।
1: हमारे खाने पीने, उठने बैठने का कोई समय निर्धारित नहीं है, हम रात तक जगे रहते हैं जैसा आपने बताया, जब मन किया सो लिया, जब मन कर लिया खा लिया, और खाना भी कैसा, वो तैलीय पदार्थ, और ये हमारे लीवर को रोगग्रस्त कर रहा है।

0: साहब, इसका पहचान क्या है और समय रहते हम इसका उपचार शुरू कर दें?
1: ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि इसकी पहचान क्या है। तो जैसे ही फैटी लीवर स्टार्ट होता है तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि स्टार्टिंग में आपको कोई सिम्टम्स दिखते ही नहीं है तो लोग को लगता ही नहीं है कि मुझे कोई परेशानी है, और जब सिम्टम्स आते हैं तब तक स्टेज बहुत आगे बढ़ गया होता है। तो ये एक दिक्कत सी कंडीशन है। अगर स्टार्टिंग में ही डायग्नोस हो जाता है कि आपको फैटी लीवर है, ग्रेड वन ही है, तो अगर आप किसी भी आयुर्वेदिक चिकित्सक से जाते हैं तो वो 10 से 15 दिन की दवाइयों में आपकी फैटी लीवर ठीक हो जाती है। लेकिन स्टार्टिंग में इसके कोई साइन एंड सिम्टम्स नहीं आते हैं तो ये एक बहुत चिंता का विषय है। तो इसलिए हम लोगों को ऐसा करना चाहिए कि हमें रूटीन चेकअप करते रहना चाहिए, जैसे LFT हो गया, लीवर फंक्शन टेस्ट, तो उससे पता चलता है कि आपकी लीवर का साइज वगैरह क्या है। साथ में अगर हम CBC करा लेते हैं या फिर लिपिड प्रोफाइल करा लेते हैं तो ये कुछ छोटा सा टेस्ट है, इससे अगर आप चाहें तो निरंतर करने रहने से हम लोग फैटी लीवर को बहुत ही स्टार्टिंग में ही पता कर सकते हैं। और अगर आप अल्ट्रासाउंड या फाइब्रो स्कैन करा लेते हैं तो बहुत आसानी से ये पता चल जाता है।
0: और यदि लक्षण दिखने लग जाते हैं, यदि हम इग्नोर करने लग जाते हैं, ये सारी जो रूटीन टेस्ट है नहीं कराते हैं, तो फिर लक्षण क्या दिखने लग जाते हैं इसके?
1: हाँ, लक्षण में क्या है कि आपको पेट में दर्द स्टार्ट हो जाएगा, सांस लेने में प्रॉब्लम आएगी, पैर में सूजन आ जाएगा, और सबसे इम्पॉर्टेंट जो लीवर का फंक्शन होता है वो है मेटाबॉलिज्म, मतलब आपकी पाचन शक्ति वो कमज़ोर होने लगेगी। और लीवर का एक जो सबसे महत्वपूर्ण काम है वो न्यूट्रिशनल प्रोवाइड करना, मतलब जो हम खाना खाते हैं उससे जो सार भाग है, जो न्यूट्रिशन है, वो हमारे बॉडीज़ को मिलता है। और एक लीवर का फंक्शन है डिटॉक्सिफिकेशन करना, जो हमारे बॉडी में जो टॉक्सिन्स है उसको वो बाहर निकालता है। तो अगर हमारा लीवर फैटी लीवर की तरफ बढ़ रहा है तो ये सारी चीज़ों में प्रॉब्लम आ जाएगा कि आपका डिटॉक्सिफिकेशन प्रॉपर नहीं होगा, आपका जो डाइजेशंस है वो प्रॉपर नहीं होगा, आपका जो मेटाबॉलिज्म है वो प्रॉपर नहीं होगा, फिर आपको सांस लेने में दिक्कत होगा, आपको आलसीपन आने लगेगा, फिर आपके पैर में सूजन होने लगेगा, आपका खाना अच्छे से नहीं पचने लगेगा। तो ये सारी समस्या आपके फैटी लीवर्स की आती है।
0: डॉक्टर साहब, यदि शुरुआती लक्षण हमें दिखने लग जाते हैं या हमने रूटीन टेस्ट कराया और मालूम पड़ता है कि हमें फैटी लीवर है, तो फिर इसका उपचार किस प्रकार किया जाता है?
1: देखिए, आज के इस सेशन में मैं यह बहुत गर्व से कह सकते हैं कि लीवर की समस्या इज इक्वल टू आयुर्वेद। अगर आप आयुर्वेद चिकित्सा लेते हैं तो बहुत ही सरल तरीके से और आयुर्वेदिक कुछ औषधियों से 100% ठीक होता है। तो इसमें एक आयुर्वेद का प्रयोजन बताया गया है। अगर हम विरेचन लेते हैं जो कि एक पंचकर्म का प्रोसेस है, तो विरेचन से आपका लीवर खुद डिटॉक्स हो जाता है, मतलब वो शुद्धिकरण हो गया लीवर का, और उससे आपकी लीवर की सारी समस्याएँ ठीक हो जाती है। और उसके बाद कुछ अगर आप आयुर्वेदिक मेडिसिन लेते हैं जो मार्केट्स में अवेलेबल हैं, और कुछ अगर अपने वैद्य से या चिकित्सक की सलाह से जो भी वो आपको दवा प्रिस्क्राइब करते हैं, जैसे पुनर्नमा से बनी हुई चीज़ें हो गई, भुई आंवला से बनी हुई चीज़ें हो गई, भृंगराज से बनी हुई चीज़ें हो गई, तो ये जो चीज़ें जो हमारे आसपास ये मिलती भी हैं, ये चीज़ें, तो इसका सेवन करते हैं। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो ऋतु शोधन, कि हर शरद ऋतु में अगर हम एक विरेचन ले लेते हैं तो हमसे लीवर से जुड़ी हुई सारी समस्याएँ वो ख़त्म हो जाएगी और हम एकदम स्वस्थ रहेंगे
0: जी। और यदि फैटी लीवर की समस्याएं ज़्यादा हो गई है तो फिर उपचार किस प्रकार किया जाता है और कितना वक्त इसमें लग जाता है?
1: हाँ, अगर आप लीवर की समस्या से ग्रसित हो गए तो आप अपने आयुर्वेदिक चिकित्सक से मिलें, वो एक आपको एक प्लान बना के देंगे कि कैसे 2 से 3 महीने में आप अपने फूड हैबिट्स को ठीक करेंगे, आहार विहार को ठीक करेंगे, आयुर्वेदिक औषधि लेंगे और साथ में पंचकर्म की जो प्रोसेस है वो चालू रखेंगे। तो आने वाले 3 महीने में अगर आपका लीवर बहुत डैमेज हो गया, मतलब आप ऐसे 3 स्टेज हम लोग देखते हैं, पहले फैटी लीवर, और फैटी लीवर को अगर छोड़ा जाए तो वो धीरे धीरे फाइब्रोसिस में कन्वर्ट होता है, फाइब्रोसिस से वो लीवर सिरोसिस में कन्वर्ट होता है, और लीवर सिरोसिस से फाइनली वो लीवर कैंसर में, मतलब वो कन्वर्ट हो जाता है,
0: मतलब समस्याएं विकराल रूप धारण कर लेती है।
1: हाँ, क्योंकि अगर हम फैटी लीवर्स में ही कंट्रोल नहीं किया जाए तो लीवर का एक अपना ऐसा गुण होता है कि वो लीवर के सूजन्स को कम करने के लिए लीवर उसमें एक स्कार बनाता है, मतलब कि उसके चारों तरफ एक छाया, मतलब उस पर एक दाग आता है, और दाग आने से लीवर जो होता है वो स्ट्रॉन्ग, मतलब टफ होते जाता है, हार्ड होते जाता है, और उसका जो सिक्रीशन है, लीवर का जो फंक्शन है, वो धीरे धीरे धीरे डैमेज होता जाता है, और वो धीरे धीरे लीवर फेल्यूर की तरफ अगर हम लोग बढ़ जाते हैं, अगर वो हम लोग लीवर फैटी लीवर को एक सही समय पे कंट्रोल नहीं किया जाए तो।
0: डॉक्टर साहब, हमारा खान पान काफ़ी बिगड़ गया है,
1: बिल्कुल,
0: तो शुरुआत से ही हम अपने खान पान को सुधार कर रखें, अच्छी खाद्य पदार्थों का हम सेवन करें, बुरी आदतों से हम दूरियां बनाएं, अपने जीवन शैली को हम व्यवस्थित रखें, तो किस प्रकार

0: कौन कौन चीज़ों का सेवन किया जाए और किन किन चीज़ों से दूरियां बनाई जाए।
1: बिल्कुल, देखिए ये बहुत अच्छा प्रश्न है। इसके लिए हमको क्या करना चाहिए कि हमें होल ग्रेन्स पे डिपेंड होगा। आजकल मल्टी ग्रेन्स हम लोग खाते हैं तो ग्रेन्स पे डिपेंडेंट होना होगा, हमें सीजनल फ्रूट्स पे डिपेंडेंट होना होगा, हमें सीजनल सब्जी पे डिपेंडेंट होना होगा, हमें वैसे आर्टिफिशियल जो चीनी है या आर्टिफिशियल शुगर है, आर्टिफिशियल ड्रिंक्स मिलते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स मिलते हैं, तो जितने भी आर्टिफिशियल चीज़ें हैं, जितने भी सिंथेटिक चीज़ें हैं, उनसे हमको अपने आप को दूर रखना होगा और जितनी भी घर से बनी हुई पदार्थें हैं उस पर डिपेंड होना होगा। और आज हमारे जो पंत प्रधान हैं उन्होंने कहा है कि जो ओबेसिटी है, जो मोटापा है, वो फैटी लीवर का एक बहुत बड़ा कारण है। तो इसके लिए हमें अपने खान पान में तेल और घी की मात्रा थोड़ी कम करनी होगी। आप उसको धीरे धीरे कम करेंगे तो ऑब्वियसली है कि आने वाले समय में जो फैटी लीवर से लोग पैनिक हो रहे हैं वो धीरे धीरे धीरे कम हो जाएगा। तो हमें मुख्यतः अपने घर की चीज़ों पर आश्रित होना होगा, मल्टी ग्रेन्स पर आश्रित होना होगा, तेल कम करना होगा, प्रोटीन से बनी हुई चीज़ें कम लेनी होगी, जो स्टार्च रिच फूड है उसे कम करना होगा। तो अगर हम इन सब चीज़ों पर ध्यान देते हैं तो ऑब्वियसली हमारा लीवर काफी अच्छा रहेगा।
2: फैटी लीवर, कारण और निदान। अभी आप सुन रहे थे पूर्व प्रसारित ली गई भेंट वार्ता, डॉक्टर ऋषि से बातचीत कर रहे थे श्री संजीव कुमार लाल। आइए अब समाचारों के लिए चलते हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र।

0: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः जतिन शर्मा। अथ वार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी रविवासरे इत्युक्ते अगस्त मासस्य द्वितीय दिनांके मादक मुक्त युव विकसित भारत संकल्पाभियानस्य शुभारंभो विधास्यति। वस्तुतस्तु एतत् मादक पदार्थान् विरुध्य शत सप्ताहात्मकः राष्ट्रव्यापी जनसहभागितान्दोलनं वर्तते। एतस्य अभियानस्य नेतृत्वं माई भारत मञ्चः करिष्यति, यश्च यूनां नेतृत्व क्षमतायाः अथ च सामाजिक सहभागितायाः संवर्धनाय कार्यं करोति। अस्य पदक्षेपस्य उद्देश्यं जागरूकतायाः, सामाजिक सहभागितायाः, सतत जनसहयोगस्य च माध्यमेन यूनां संघटनं कृत्वा मादक मुक्त भारतस्य निर्माणम् इत्यस्ति। लोकसभायां लोकपरीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयकः 26-2000 पारितः। अस्योद्देश्यं तावत् परीक्षा प्रकरणेषु वञ्चनायाः निरोधाय कठोर दण्डविधानं सहैव द्रुतगति न्यायालयानां स्थापनम् इत्यस्ति। अनेन लोकपरीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियमे 24-2000 संशोधनं विधीयते। अस्मिन् विधेयके दशवर्षात्मकः कारावासः, 10 कोटि रूप्यकाणां दण्डः, सहैव सिद्धापराधिनां सम्पत्तेः अधिग्रहणम् इत्यादीनि प्रावधानानि सन्ति। विधेयकानुसारं प्रत्येकं राज्यम् अथ च केन्द्रशासितप्रदेशः दैनन्दिनवादश्रवणाय विशेष द्रुतगतिन्यायालयानां स्थापनं करिष्यति। चर्चायाः उत्तरं प्रददन् कार्मिकराज्यमन्त्री डॉ. जितेन्द्रसिंहः न्यगादीत् यत् नियमस्य सुदृढीकरणाय सहैव पत्रगोप्यताभङ्गप्रकरणेषु शीघ्रन्यायार्थम् एतत् संशोधनम् आनीतम्।
1: सरकार की प्रतिबद्धता का आप इसी बात से अनुमान लगा सकते हैं कि इसी विधेयक के लाने के साथ ही साथ हमारे लॉ मिनिस्टर्स की ओर से भी एक प्रस्ताव जारी कर दिया गया। स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट्स है, इनको स्थापित करने का भी क्रम प्रारंभ किया जाए। उसमें दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड में पहले ही इन्होंने गठित कर दिया है और आने वाले दिनों में बाकी स्थानों पर भी।
0: राज्यसभायां 26-2000 राष्ट्रिय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयकं पारितम्। एतत् विधेयकं राष्ट्रिय गौरव अपमान निवारण अधिनियमे 171 संशोधनं करोति। अस्य विधेयकस्य उद्देश्यं वन्दे मातरम् इत्यस्मै राष्ट्रगीताय अपि राष्ट्रगानेन समं वैधानिक सुरक्षा प्रदानम् इत्यस्ति।

0: एतादृशेषु अपराधेषु त्रिवर्षात्मकः कारावासः द्रव्यदण्डः उत वा उभयमपि भवितुमर्हतः। उत्तरप्रदानकाले गृहराज्यमन्त्री नित्यानन्दरायः प्रावोचत् यत् एतत् संशोधनं भारतस्य आत्मने राष्ट्रियचेतनायै सांस्कृतिकन्यासाय सहैव स्वतन्त्रतासङ्ग्रामस्य आदर्शेभ्यश्च सामूहिकप्रतिबद्धतां दर्शयति।
1: राष्ट्रीय गीत अपमान पर इस विधेयक के माध्यम से दंडनीय प्रावधान करने का विचार हुआ है। वर्तमान संशोधन का उद्देश्य राष्ट्र गीत वंदे मातरम के जानबूझकर किए गए अपमान को भी उसी प्रकार के दंडनीय बनाया जाए जैसा कि वर्तमान कानून में है। हर भारतवासी के राष्ट्र प्रेम का उद्घोष है वंदे मातरम, विकसित भारत का संकल्प है वंदे मातरम।
0: ओडिशा राज्ये अतिवृष्ट्या उच्छ्वसित नदीभिश्च विकट जलौघस्थितिः दुरापद्यते। अस्माद् हेतोः चत्वारः जनाः मृत्युमुपगताः, सहैव चतुर्लक्षाधिकाः जनाः प्रभाविताः अभवन्। श्रावणमासस्य वार्षिकी कावडयात्रा अद्यारभ्य प्रवर्तते। अस्यां यात्रायां भक्ताः गङ्गाजलमानेतुम् उत्तराखण्डस्य हरिद्वार गोमुख गङ्गोत्री इत्यादिषु तीर्थस्थलेषु गच्छन्ति। अस्याः विशालयात्रायाः सुव्यवस्थायै उत्तराखण्ड उत्तरप्रदेश सर्वकाराभ्यां व्यापकप्रबन्धाः प्रकल्पिताः इति वार्ताः।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। लोकसभा ने लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक में 10 वर्ष तक के कारावास, 10 करोड़ रुपए तक के जुर्माने और अपराधियों की संपत्ति जब्त किए जाने का प्रावधान है। मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए प्रत्येक राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश को दैनिक सुनवाई के लिए विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करने का आदेश दिया गया है। विधेयक के अनुसार अपराधों की जांच पुलिस थाने में सूचना दर्ज होने की तारीख से 2 महीने के भीतर और मुकदमे की सुनवाई आरोप पत्र दाखिल होने की तारीख से 3 महीने के भीतर पूरी होनी चाहिए। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि ये संशोधन कानून को और अधिक सख्त बनाने तथा त्वरित न्याय दिलाने के लिए किया गया है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस विधेयक के पारित होने पर विद्यार्थियों और युवा अभ्यर्थियों को बधाई दी है। श्री वैष्णव ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये विधेयक परीक्षा में होने वाली गड़बड़ियों और अनुचित गतिविधियों पर अंकुश लगाएगा। राज्यसभा ने राष्ट्रीय सम्मान की रक्षा के लिए राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक वंदे मातरम को राष्ट्रीय गान के समान वैधानिक संरक्षण प्रदान करेगा। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि वंदे मातरम के अपमान के लिए अब 3 वर्ष तक की कैद, जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के माध्यम से प्रोजेक्ट कंसर्न इंटरनेशनल इंडिया के साथ एक गैर वित्तीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते का उद्देश्य सार्वजनिक खरीद और बाजार से जुड़े उद्यम विकास के माध्यम से महिला नेतृत्व वाले उद्यमों, विशेष रूप से स्वयं सहायता समूह के नेतृत्व वाले उद्यमों को और सशक्त बनाना है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि नवाचार, उन्नत प्रौद्योगिकियां, स्टार्टअप, लघु और मध्यम उद्यम भारत के आर्थिक विकास के अगले चरण को गति प्रदान करेंगे। नई दिल्ली में आयोजित 22वें जीआरडी टाटा स्मृति व्याख्यान में श्री गोयल ने कहा कि देश को उत्कृष्टता के लिए प्रयासरत रहना चाहिए और ये सुनिश्चित करना चाहिए कि मेड इन इंडिया उत्पाद गुणवत्ता और प्रतिस्पर्धा के माध्यम से वैश्विक स्तर पर महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त करें। श्री गोयल ने नवाचार को बढ़ावा देने के लिए कई पहलों का उल्लेख किया, जिनमें 1,00,000 करोड़ रुपए का अनुसंधान विकास और नवाचार कोष, इंडिया एआई मिशन और दूसरे चरण के सेमीकंडक्टर मिशन शामिल हैं। नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने सतत विमानन ईंधन का उपयोग करने और अंतर्राष्ट्रीय विमानन के लिए कार्बन ऑफसेटिंग और न्यूनीकरण योजना के कार्यान्वयन के लिए देश की तैयारियों की समीक्षा की। यह योजना अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों से होने वाले कार्बन उत्सर्जन को नियंत्रित करने में मदद करता है। कल नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक में श्री नायडू ने बताया कि सतत विमानन ईंधन नीति का मसौदा अपने अंतिम चरण में है और हितधारकों के साथ परामर्श के माध्यम से इसे अंतिम रूप दिया जा रहा है। बिहार सरकार ने दरभंगा के रायम और मधुबनी के सकरी में बंद चीनी मिलों को फिर चालू करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में कल पटना में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई। एक अन्य महत्वपूर्ण फैसले में मंत्रिमंडल ने बिहार खेल नीति 2026 को मंजूरी दी। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में अशांति लगातार बढ़ रही है। अब तक 40 प्रदर्शनकारियों की मौत हुई है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय ने प्रदर्शनकारियों की मौत पर चिंता व्यक्त की है। उच्चायुक्त के प्रवक्ता जेरेमी लॉरेंस ने कहा कि एक नागरिक समाज संगठन को अपराधी घोषित करना और सभाओं पर कड़े प्रतिबंध लगाना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के उल्लंघन के बारे में गंभीर चिंताएं पैदा करता है। श्रावण महीने की वार्षिक कांवड़ यात्रा आज से शुरू हो रही है। इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु गंगा नदी का पवित्र जल लेने के लिए उत्तराखंड के हरिद्वार, गोमुख और गंगोत्री जैसे तीर्थ स्थलों की यात्रा करते हैं। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय सुनील वर्मा। The Lok Sabha has passed the anti-paper leak bill, proposing tougher penalties and fast-track courts to curb exam malpractices. The bill seeks to amend the Public Examinations Prevention of Unfair Means Act 2024. The Public Examinations Prevention of Unfair Means Amendment Bill 2026 incorporates several significant provisions, including stringent penalties such as imprisonment for up to 10 years, fines of up to 10 crore rupees, and the seizure of the properties of convicted offenders. The legislation mandates that every state government and union territory administration establish special fast-track courts for day-to-day trial. Replying to the discussion on the bill, Minister of State for Personnel, Public Grievances and Pensions, Dr. Jitendra Singh said, the amendment in the bill has been brought to make the law more stringent and ensure speedy justice in paper leak cases.
4: The earlier bill and the amendment are reaffirmation of this government's deep commitment to safeguard the welfare of the students and the youth of this country. And therefore, this bill can be described as a milestone legislation in the history of Indian Parliament.
3: After the passage of the bill, the lower house was adjourned till 11 a.m. today. The Rajya Sabha has passed the Prevention of Insults to National Honour Amendment Bill 2026. The bill will further amend the Prevention of Insults to National Honour Act 1971. The proposed legislation seeks to give Vande Mataram the same statutory protection as the national anthem Jana Gana Mana. These offences are punishable with imprisonment up to 3 years, a fine or both. After the passage of the bill, the upper house was adjourned till 11 a.m. today. Bihar government has decided to reopen the closed sugar mills at Rayam in Darbhanga and Sakri in Madhubani. A proposal to this effect was approved at a cabinet meeting chaired by Chief Minister Samrat Chaudhary yesterday. Briefing the media, Additional Chief Secretary Arvind Kumar Chaudhary said that the cabinet also approved the Bihar Sports Policy 2026. The meeting also approved the implementation of schemes worth more than 97 crore rupees under the Pradhan Mantri Krishi Sinchai Yojana for the financial year 2026-27. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal held a meeting with Export Promotion Councils and Industry Associations in New Delhi to review measures aimed at strengthening India's export ecosystem. In a social media post, Mr. Goyal said the meeting followed discussions on enhancing the country's global competitiveness. During the meeting, the minister reaffirmed the government's commitment to build a stronger, more competitive and future-ready export ecosystem to support India's economic growth and realize the vision of Viksit Bharat. Prime Minister Narendra Modi will launch Nasha Mukt Yuva for Viksit Bharat Sankalp Abhiyan, a nationwide 100-week Jan Bhagidari movement against substance abuse on Sunday, the 2nd of August. The campaign will be led by My Bharat Platform, an online youth leadership and social engagement platform that aims to empower and engage youth to become leaders. The initiative seeks to unite young citizens in a collective national mission to build a drug-free India by promoting awareness, community engagement, and sustained public participation. In the United States, a man was convicted of federal terrorism charges in the 2022 stabbing of Salman Rushdie, the author who has faced a decades-old death threat over his novel The Satanic Verses. A jury found Hadi Matar guilty of all charges against him, including engaging in an act of transnational terrorism. Orange alert indicating isolated very heavy rainfall has been issued for three districts of Kerala. Kozhikode, Wayanad and Kannur districts in northern Kerala are under orange alert today, indicating the possibility of isolated very heavy rainfall. A holiday has been declared for educational institutions in Wayanad district today. India scripted history in para-athletics at the Commonwealth Games, securing a historic 1-2 finish in the men's 100-meter T47 final as Dilip Mahadugavit won the gold and Mohammad Basil Morsinganakat claimed the silver. And that is the end of this news bulletin.
5: समाचारों के बाद आप सभी का स्वागत है आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र में। आइए अब आपको जानकारी दे देते हैं शेष कार्यक्रमों की।

अभी से थोड़ी देर बाद यानी कि 7:15 पर राग रंग के तहत आपको सुनवाएंगे हम गायन राग अहिर भैरव। कलाकार होंगी परवीन सुल्ताना। सुगम संगीत के कार्यक्रम स्वर सरता में आप सुनेंगे चंदन दास को 7:45 पर। सुबह 8 बजे शामिल होंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र में समाचारों के लिए। हिंदी अंग्रेजी समाचार सुनेंगे आप आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से और प्रादेशिक समाचार 8:30 आकाशवाणी के रांची केंद्र से। 8:45 पर अपने स्टूडियो से हम प्रस्तुत करेंगे प्रायोजित कार्यक्रम डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस की कड़ी संख्या 3 जोहार पलामू। हमारा यह कार्यक्रम सुबह 9 बजे प्रस्तुत किया जाएगा। प्रस्तुति स्वर होगा निर्मला तिवारी का, संयोजनकर्ता होंगे प्रशांत गौरव। प्रायोजित कार्यक्रम उमंग की कड़ी संख्या 1339 आप सुनेंगे सुबह 9:30। 10 बजे शामिल होंगे एक बार फिर से हम समाचारों के लिए आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र में। हिंदी अंग्रेजी समाचार सुनेंगे आप आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से और 10:10 से आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से विविध भारती के विभिन्न कार्यक्रमों का आप आनंद लेंगे शाम के 5:29 तक। शाम 5:30 पर हम अपने स्टूडियो में हाजिर होंगे कार्यक्रम विवरण के साथ।

युवा साथियों को संबोधित कार्यक्रम युववाणी का समय होगा शाम 5:35। चर्चा होगी इस कार्यक्रम में मानव तस्करी एक जघन्य अपराध पर, मानव तस्करी के विरुद्ध विश्व दिवस पर और इंटरनेट का दुरुपयोग, इस पर भी चर्चा की जाएगी। आकृति उत्तम की वार्ता सुनेंगे आप, अल्पसंख्यक मेधावी छात्र छात्रों के लिए केंद्र सरकार के कार्यक्रम। प्रादेशिक समाचार शाम 6:02 से खेतीबाड़ी कार्यक्रम, इसके तहत चर्चा होगी उड़द फसल में प्रबंधन और नए बागानों की देखभाल पर। एक किसान से भेंट वार्ता आप सुनेंगे, अजय कुमार मेहता हिसरा बरवड़ी पाटन पलामू, इनसे बातचीत करेंगे संतोष कुमार। कृषकों को संबोधित प्रायोजित कार्यक्रम किसानवाणी का समय शाम 6:30। चर्चा होगी इस कार्यक्रम में अरहर एवं तिल में रोग प्रबंधन पर। आज की बात होगी समसामयिक कृषि कार्य पर और डॉक्टर प्रमोद कुमार, इनसे आप

ली गई भेंटवार्ता सुनेंगे आप, गोवर्धन योजना पर बातचीत करेंगे संतोष कुमार, आदर्श ग्राम पदाधिकारी पलामू डॉक्टर प्रमोद कुमार से भेंटवार्ता। आज की नसीहत जल संरक्षण, मौसम विभाग से प्राप्त मौसम और पलामू की मंडी से प्राप्त आज का बाजार भाव भी जानेंगे आप इसी कार्यक्रम में। शाम 6:55 पर शामिल होंगे हम आकाशवाणी के रांची केंद्र में। प्रादेशिक समाचार सुन पाएंगे आप 7:00 और 7:10 पर जिले में आजकल।

एक रंग फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम में सुनवाएंगे हम कुछ फिल्मी गाने शाम 7:15 पर। 7:45 पर सुनेंगे आप उजाले की ओर के तहत वार्ता, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना का उद्देश्य। वार्ताकार होंगे आनंद कुमार, पूर्व प्रसारित वार्ता होगी। 8:00 ले चलेंगे आपको आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र। 8:15 से सुनेंगे आप फिल्म संगीत के तहत कुछ गाने। 8:30 सुनवाएंगे आपको क्षेत्रीय फिल्म संगीत सरहदें, इसके तहत सुनेंगे आप क्षेत्रीय फिल्म संगीत। और 8:45 पर एक बार पुनः हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र चलेंगे हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू समाचारों के लिए। 9:30 आपको ले चलेंगे आकाशवाणी के मुंबई केंद्र, जहां से सुनेंगे आप विविध भारती के तहत आज के फनकार। 10:00 शामिल होंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र में। 11:10 पर करेंगे हम सभा समापन। तो यह थी जानकारी कार्यक्रमों से संबंधित। अभी से लेकर रात्रि के 11:10 तक हमारे केंद्र से प्रसारित और अनुप्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों की। आकाशवाणी का ये डाल्टनगंज केंद्र है। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम राग रंग के तहत आइए सुनवाते हैं आपको गायन। कलाकार हैं परवीन सुल्ताना, राग अहिर भैरव आप सुनिए।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम राग रंग में अभी आप सुन रहे थे परवीन सुल्ताना को। हारमोनियम पर संगत कर रही थी वसंती महापसेकर और तबला पर उस्ताद निजामुद्दीन खान। इसी के साथ ही शास्त्रीय संगीत का राग रंग कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है।

हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। आइए अब आपको सुनवाते हैं चंद गज़लें चंदन दास की गाई हुई।

चंदन दास की गाई इस गज़ल के साथ ही सुगम संगीत का सरसरता कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये डाल्टनगंज केंद्र है। आई शामिल होते हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र में समाचारों के लिए।

0: बेटा मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहां आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं हैं, मदद बस एक कॉल दूर है।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीष शर्मा। मुख्य समाचार। लोकसभा ने लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पारित किया। विधेयक में प्रश्न पत्र लीक मामले में दोषी पाए जाने पर 10 साल तक कारावास का प्रावधान।

0: गुजरात और मध्य प्रदेश की 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए मतदान जारी। बिहार सरकार ने दरभंगा के रायम और मधुबनी के सकरी में बंद चीनी मिलों को फिर से खोलने का निर्णय लिया। लाल सागर संकट और वैश्विक उथल पुथल के बावजूद भारत के व्यापारिक निर्यात में 15% की वृद्धि। श्रावण महीने की वार्षिक कांवड़ यात्रा आज से शुरू और राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने पैरा एथलेटिक्स में पुरुषों की 100 मीटर T47 स्पर्धा का स्वर्ण और रजत पदक जीतकर रचा इतिहास। और अब समाचार विस्तार से। लोकसभा ने लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक में प्रश्नपत्र लीक मामले में दोषियों को 10 वर्ष तक के कारावास और 10 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त अपराधियों की संपत्ति भी जब्त कर ली जाएगी। मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए प्रत्येक राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश को दैनिक सुनवाई के लिए विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करने का आदेश दिया गया है। विधेयक के अनुसार अपराधों की जांच पुलिस थाने में सूचना दर्ज होने की तारीख से 2 महीने के भीतर और मुकदमे की सुनवाई आरोप पत्र दाखिल होने की तारीख से 3 महीने के भीतर पूरी होनी चाहिए। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि ये संशोधन कानून को और अधिक सख्त बनाने और त्वरित न्याय दिलाने के लिए किया गया है।
1: इसी विधेयक के लाने के साथ ही साथ हमारे लॉ मिनिस्टर्स की ओर से भी एक प्रस्ताव जारी कर दिया गया। स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट्स है, इनको स्थापित करने का भी क्रम प्रारंभ किया जाए। उसमें दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड में पहले ही इन्होंने गठित कर दिया और आने वाले दिनों में बाकी स्थानों पर।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने यह विधेयक पारित होने पर देश के प्रत्येक विद्यार्थी को बधाई दी है। श्री शाह ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यह विधेयक लोक परीक्षाओं की शुचिता भंग करने वालों को कड़ी सजा देने वाले पुख्ता प्रावधानों के माध्यम से देश के युवाओं के सपनों और आकांक्षाओं की रक्षा करता है। उन्होंने आश्वासन दिया कि नरेंद्र मोदी सरकार विद्यार्थियों के भविष्य को खतरे में डालने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शेगी नहीं और उन्हें कानून के पूर्ण दंड का सामना कराने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। अपने संदेश में शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि इस विधेयक से परीक्षा में होने वाली धांधली से निपटने के लिए सख्त कानूनी ढांचा तैयार हो गया है। उन्होंने कहा कि इस विधेयक का उद्देश्य पेपर लीक के तंत्र को खत्म करना और परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता, विश्वसनीयता और निष्पक्षता को बढ़ाना है। राज्यसभा ने राष्ट्रीय सम्मान की रक्षा के लिए राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक वंदे मातरम को राष्ट्रीय गान के समान वैधानिक संरक्षण प्रदान करेगा। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद रॉय ने कहा कि वंदे मातरम के अपमान के लिए अब 3 साल तक की कैद, जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है। बिहार सरकार ने दरभंगा के रायम और मधुबनी के सकरी में बंद चीनी मिलों को फिर से चालू करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में कल पटना में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई।
2: अपर मुख्य सचिव अरविंद कुमार चौधरी ने मंत्रिमंडल के फैसलों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि एक अन्य महत्वपूर्ण फैसले में मंत्रिमंडल ने बिहार खेल नीति 2026 को मंजूरी दी है। बैठक में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 97 करोड़ रुपए से अधिक की योजनाओं को लागू करने की भी स्वीकृति दी गई। शहरी विकास क्षेत्र में अमृत योजना के दूसरे चरण के अंतर्गत किशनगंज जलापूर्ति परियोजना के लिए 53 करोड़ 71 लाख रुपए और लखीसराय जलापूर्ति परियोजना के लिए 1 अरब 50 करोड़ 96 लाख रुपए से अधिक की राशि स्वीकृत की गई। मंत्रिमंडल ने राज्य के सभी जिलों में पक्का वर्मी कंपोस्ट, गोबर बायोगैस और वाणिज्यिक वर्मी कंपोस्ट इकाइयां स्थापित करने का भी निर्णय लिया है। समाचार कक्ष से जया भारती।
0: बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश में विधानसभा के 3 निर्वाचन क्षेत्रों में उपचुनाव के लिए मतदान जारी है। बिहार में बांकीपुर, गुजरात में मंजलापुर और मध्य प्रदेश में दतिया निर्वाचन क्षेत्रों के लिए वोट डाले जा रहे हैं। मतदान आज सवेरे 7 बजे शुरू हुआ और शाम 6 बजे तक चलेगा। गुजरात में मंजलापुर विधानसभा सीट के लिए भारतीय जनता पार्टी ने सतीश पटेल को उम्मीदवार बनाया है, जबकि कांग्रेस ने भीखा भाई रवारी को खड़ा किया है। मध्य प्रदेश में दतिया सीट राजेंद्र भारती का योग

0: घोषित होने के कारण रिक्त हुई है। वहीं बिहार के बांकीपुर में उपचुनाव भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन के राज्यसभा के लिए चुने जाने और ये सीट छोड़ने के बाद कराया जा रहा है। एक रिपोर्ट।
1: बांकीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए सभी 164 मतदान केंद्रों के 422 बूथों पर सुबह 7 बजे से शांतिपूर्वक मतदान चल रहा है। मतदान शाम 5 बजे तक चलेगा। लंबे समय से भाजपा का गढ़ रही बांकीपुर सीट पर इस बार कुल 25 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं, जहां कुल 379,616 मतदाता सभी उम्मीदवारों की चुनावी किस्मत का फैसला करेंगे। हालांकि मुख्य मुकाबला भाजपा के नीरज कुमार, जन स्वराज के प्रशांत किशोर और राष्ट्रीय जनता दल की रेखा कुमारी के बीच माना जा रहा है। उपचुनाव में एक तरफ जहां भाजपा ने अपनी परंपरागत सीट पर करार रखने के लिए पूरी ताकत लगाई है, वहीं जनसुराज भी इस चुनाव में जीत के जरिए शहरी मतदाताओं के बीच अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश में है। राजद भी अपने पारंपरिक जनाधार के सहारे मुकाबले को दिलचस्प बना रहा है। सविता पारेख, आकाशवाणी समाचार, पटना।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
2: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि लाल सागर संकट और वैश्विक उथल पुथल के बावजूद चालू वित्त वर्ष में अब तक भारत के माल निर्यात में 15% की वृद्धि दर्ज की गई है। श्री गोयल ने जेआरडी टाटा स्मारक व्याख्यान देते हुए कहा कि बढ़ते भू राजनैतिक तनाव और वैश्विक व्यापार मार्गों में व्यवधान के बावजूद देश का माल निर्यात मजबूत बना हुआ है। उन्होंने कहा कि भारत का निर्यात देश की आर्थिक बुनियाद की मजबूती को दर्शाता है, जबकि दुनिया भर के व्यवसाय पश्चिम एशिया में संघर्ष और प्रमुख शिपिंग गलियारों में व्यवधान से पैदा अनिश्चितता से जूझ रहे हैं। श्री गोयल ने कहा कि चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में लगातार वैश्विक चुनौतियां बनी हुई हैं, जिनमें कच्चे तेल, पेट्रोल, डीजल और गैस बाजारों में अस्थिरता, साथ ही होर्मुज जलडमरू मध्य के आसपास की अनिश्चितता और लाल सागर संकट शामिल हैं। मध्य प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार के दूर संचार विभाग के बीच आज नई दिल्ली में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए जाएंगे, जिसके अंतर्गत भारत का पहला दूर संचार विनिर्माण क्षेत्र मध्य प्रदेश के ग्वालियर में स्थापित किया जाएगा। अमेरिका में 2022 में सलमान रुश्दी पर हुए चाकू हमले के मामले में एक व्यक्ति को संघीय आतंकवाद के आरोपों में दोषी ठहराया गया है। रुश्दी को उनके उपन्यास द सैटेनिक वर्सेस को लेकर दशकों से जान से मारने की धमकियां मिल रही थी। जूरी ने हादी मटार को अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद समेत सभी आरोपों में दोषी पाया। 28 वर्षीय मटार पहले से ही अगस्त 2022 में एक एम्फी थिएटर के मंच पर हुए हमले में हत्या के प्रयास के लिए आरोप में न्यूयॉर्क की जेल में 25 साल के लिए कैद में है। संघीय दोष सिद्धि में आजीवन कारावास की सजा भी शामिल है। लेखकों की सुरक्षा पर बात करने वाले रुश्दी पर दर्शकों के सामने 15 बार चाकू से हमला किया गया। वे गंभीर रूप से घायल हो गए थे और उनकी दाहिनी आंख की रोशनी चली गई थी। अमेरिका ने कुछ समय के युद्ध विराम के बाद ईरान पर हवाई हमले फिर से शुरू कर दिए हैं। ये हमले उस समय किए गए हैं जब ईरान ने सप्ताह के शुरुआत में जॉर्डन में एक अमरीकी सैन्य अड्डे पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी थीं। श्रावण महीने की वार्षिक कांवड़ यात्रा आज से शुरू हो रही है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: कांवड़ यात्रा को लेकर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में यात्रियों की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए एनसीआरटीसी ने नमो भारत ट्रेनों के फेरे बढ़ाने का फैसला किया है। देवघर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए रेलवे प्रशासन ने गोरखपुर से 2

0: श्रावणी मेला स्पेशल ट्रेनों की घोषणा की है। अयोध्या में प्रशासनिक अधिकारियों ने राम की पैड़ी और नया घाट क्षेत्र का निरीक्षण किया। वहीं वाराणसी में श्री काशी विश्वनाथ धाम मंदिर ट्रस्ट के CEO विश्वभूषण मिश्र ने बताया कि यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा के लिए विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने पैरा एथलेटिक्स में पुरुषों की 100 मीटर T47 स्पर्धा के फाइनल में स्वर्ण और रजत पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। भारत के दिलीप महादू गावित ने 10.71 सेकंड का समय लेकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया, जबकि मोहम्मद बासिल मोर सिंगानखत ने 10.83 सेकंड के साथ रजत पदक हासिल किया। भारत 3 स्वर्ण, 9 रजत और 3 कांस्य पदकों सहित कुल 15 पदकों के साथ 8वें स्थान पर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में पुरुषों की 100 मीटर T47 स्पर्धा में दिलीप महादू गावित को स्वर्ण पदक और मोहम्मद बैसिल मोर सिंह नाकाटी को रजत पदक जीतने पर बधाई दी है। मौसम विभाग ने आज मध्य महाराष्ट्र और पश्चिमी मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वोत्तर भारत, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, केरलम और माहे, कोंकण और गोवा, कर्नाटक, पंजाब, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, उत्तराखंड और विदर्भ के कुछ हिस्सों में भी आज मूसलाधार बारिश की संभावना है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
2: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित सभी हिंदी समाचार पत्रों के मुख्य पृष्ठ पर संसद में पारित और प्रस्तुत विधेयकों की चर्चा सुर्खियों में है। अमर उजाला ने अपनी पहली खबर को शीर्षक दिया है, परीक्षा में गड़बड़ी पर 10 साल तक जेल, विधेयक लोकसभा में पास। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, लोकसभा राज्यसभा में एक एक बिल पास, जन्म मृत्यु पंजीकरण में संशोधन बिल पेश। लोकसत्ते ने लोकसभा में सरकार और विपक्ष के बीच तीखी बहस को पहले पन्ने पर सबसे ऊपर शीर्षक दिया है। गृहमंत्री पर राहुल की टिप्पणी से लोकसभा में जमकर हंगामा। दैनिक ट्रिब्यून ने राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय खिलाड़ियों के चित्र सहित उनकी उपलब्धियों को सबसे ऊपर प्रकाशित किया है, जबकि पंजाब केसरी ने शेयर बाजार में आई तेजी को मुख्य पृष्ठ पर दिया है। राजस्थान पत्रिका ने सड़क सुरक्षा को लेकर संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित किया है, शीर्षक है सिर्फ तेज रफ्तार नहीं, हमें सुरक्षित सड़कें भी चाहिए। लेख में कहा गया है कि आधुनिक राष्ट्र की असली परीक्षा ये नहीं कि उसकी सड़कें लोगों को कितनी तेजी से गंतव्य तक पहुंचाती हैं, परीक्षा ये है कि क्या उन सड़कों पर निकलने वाला हर व्यक्ति जीवित अपने घर लौट सकता है।
1: और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा ने लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पारित किया। बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश की 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए मतदान जारी। बिहार सरकार ने दरभंगा के रायम और मधुबनी के सकरी में बंद चीनी मिलों को फिर से खोलने का निर्णय लिया। लाल सागर संकट और वैश्विक उथल पुथल के बावजूद भारत के व्यापारिक निर्यात में 15% की वृद्धि। श्रावण महीने की वार्षिक कांवड़ यात्रा आज से शुरू। और राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने पैरा एथलेटिक्स के पुरुषों की 100 मीटर T47 स्पर्धा का स्वर्ण और रजत पदक जीतकर रचा है इतिहास। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम सुनील वर्मा। द हेडलाइंस। लोकसभा पासेस एंटी पेपर लीक अमेंडमेंट बिल विथ स्ट्रिक्टर पनिशमेंट ऑफ अप टू 10 इयर्स इन जेल। पोलिंग बिगिंस फॉर बाय इलेक्शंस टू 3 असेंबली कंस्टिट्यूएंसीज इन बिहार, गुजरात एंड मध्य प्रदेश। Bihar government decides to reopen closed sugar mills at Rayam in Darbhanga and Sakri in Madhubani. India's merchandise exports rise 15% despite Red Sea crisis and global turmoil. Annual Kanwad Yatra for Shravana month to begin today. And para-athlete Dilip Kavit wins gold while Mohammed Basil bags silver in men's 100-meter race at Commonwealth Games. The Lok Sabha has passed the anti-paper leak bill proposing tougher penalties and fast-track courts to curb exam malpractices. The bill seeks to amend the Public Examinations Prevention of Unfair Means Act 2024. the Public Examinations Prevention of Unfair Means Amendment

0: Dilip Kavit wins gold, while Mohammad Basil bags silver in men's 100-meter race at Commonwealth Games. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
1: मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
2: जन जन तक पहुंचे पैगाम, डेंगू में रखें इन बातों का ध्यान।
3: यदि किसी को तेज बुखार, सिर दर्द, आंखों के पिछले हिस्से में दर्द, नाक बहना, उल्टी होना, भूख न लगना जैसे लक्षण दिखें, तो तुरंत अपने चिकित्सक से संपर्क करें। साथ ही प्रत्येक रविवार दिन में 10 बजे 20 मिनट अपने घर के आसपास मच्छरों के प्रजनन को रोकने के लिए आवश्यक उपाय करें। मच्छरों से बचें, घर के आसपास सफाई रखें, पानी की टंकी, गमले, कूलर इत्यादि को साफ रखें, हमेशा मच्छरदानी लगाकर सोएं।
4: तो सुन लो भाई, सुन लो बहना, डेंगू से तुम बच के रहना।
3: वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
5: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। राज्य में बिजली व्यवस्था सुदृढ़ करने पर मुख्यमंत्री का जोर। 200 यूनिट निःशुल्क बिजली योजना का लाभ समय पर देने के निर्देश। झारखंड में मतदाता पुनरीक्षण अभियान ने पूरा किया पहला चरण। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा 5 अगस्त को प्रकाशित होगी प्रारूप मतदाता सूची। 14वीं जेपीएससी परीक्षा की जांच तेज। सीआईडी ने अभ्यर्थियों से मांगी ओएमआर शीट की कार्बन कॉपी। अभ्यर्थी व्हाट्सएप और ईमेल से भेज सकेंगे ओएमआर कॉपी। श्रावण मास का हुआ शुभारंभ। बाबा बैद्यनाथ धाम में जलाभिषेक के लिए लगी लंबी कतारें। कांवड़ियों का उत्साह चरम पर। और रांची समेत कई जिलों में भारी बारिश के आसार। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। तेज हवा और वज्रपात की चेतावनी। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ऊर्जा विभाग की समीक्षा बैठक में राज्य में 24 घंटे गुणवत्तापूर्ण बिजली आपूर्ति और सभी पात्र उपभोक्ताओं को 200 यूनिट निःशुल्क बिजली योजना का लाभ समय पर उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। उन्होंने बिजली उत्पादन क्षमता बढ़ाने, स्मार्ट ग्रिड, सौर परियोजनाओं और एआई आधारित मॉनिटरिंग प्रणाली को तेजी से लागू करने, जले ट्रांसफार्मर 24 घंटे में बदलने तथा शिकायत निवारण व्यवस्था को सुदृढ़ करने पर जोर दिया। झारखंड में विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के पहले चरण का इन्यूमरेशन कार्य 100% पूरा हो गया है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने बताया कि 5 अगस्त को प्रारूप मतदाता सूची और एएसडीडी सूची प्रकाशित कर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि सभी इन्यूमरेशन फॉर्म का डिजिटाइजेशन पूरा हो चुका है तथा 5 अगस्त से दावा और आपत्ति की प्रक्रिया शुरू होगी।
6: एसएआर का इनमरेशन फेज का सभी डेटा डिजिटाइज कर दिया गया। 5 अगस्त को सभी बूथों पर ड्राफ्ट लिस्ट भी पब्लिश होगा। 6 कैटेगरी का व्यक्ति है, उनका जनगणना प्रपत्र नहीं आया, उसी का भी हम लोग सूचीवेश हम लोग पब्लिश करेंगे। किसी का नाम अभी वो इनमरेशन फॉर्म नहीं दे पाया, वो 5 अगस्त के बाद अपने फॉर्म 6 के साथ डिक्लेरेशन के साथ में देखने के बाद उनका भी नाम छूट जाती है।
5: 14वीं जेपीएससी सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा में कथित अनियमितताओं की जांच कर रही सीआईडी ने सफल अभ्यर्थियों से ओएमआर शीट की कार्बन कॉपी उपलब्ध कराने की अपील की है। एजेंसी ने कहा है कि अभ्यर्थी कार्बन कॉपी व्हाट्सएप या ईमेल के जरिए भेज सकते हैं। सीआईडी का कहना है कि इससे जांच को निष्पक्ष और प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने में सहायता मिलेगी। इसी जांच के क्रम में जेपीएससी के पूर्व अध्यक्ष एल ख्यांगते से लगातार 2 दिनों तक पूछताछ की गई। भारतीय जनता पार्टी की सांसद कंगना रनौत के कथित विवादित बयान के विरोध में झारखंड प्रदेश महिला कांग्रेस ने प्रदेश अध्यक्ष रमा खलखो के नेतृत्व में रांची में प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने पुतला दहन कर बयान की निंदा की और इसे महिलाओं की गरिमा तथा सामाजिक सौहार्द के विरुद्ध बताया।
7: छात्र का जो हित की बात हम लोग कर रहे हैं, पूरा देश देख रहा है। विगत 1 महीने से जंतर मंतर में भी आंदोलन हुआ और बहुत ही मजबूरन होकर के शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा था। और उसके बाद अभी संसद चल रहा है, एक महिला सांसद होकर के अब शब्द का यूज कर रही है। बच्चियां जो रात दिन पढ़ाई करते हैं अपने करियर को बनाने के लिए, देश की छात्राओं को वो अपमानित करने का काम कर रही है।
5: राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने गुरु पूर्णिमा के अवसर पर सरस्वती शिशु विद्या मंदिर धुरवा में विद्यालय की वार्षिक पत्रिका अरुणोदय का लोकार्पण किया और आचार्य सम्मान समारोह को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि गुरु समाज और राष्ट्र निर्माण के आधार हैं तथा शिक्षा का उद्देश्य केवल रोजगार नहीं बल्कि संस्कारी, संवेदनशील और उत्तरदायी नागरिक तैयार करना है। राज्यपाल ने विद्यार्थियों से अनुशासन, परिश्रम और नैतिक मूल्यों को अपनाने तथा शिक्षकों से नई पीढ़ी के मार्गदर्शन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का आह्वान किया। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIRNews Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। राज्यसभा ने राष्ट्रीय सम्मान की रक्षा के लिए राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक वंदे मातरम को राष्ट्रीय गान के समान वैधानिक संरक्षण प्रदान करेगा। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि वंदे मातरम के अपमान के लिए अब 3 वर्ष तक की कैद, जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है।
8: राष्ट्रीय गीत अपमान पर इस विधेयक के माध्यम से दंडनीय प्रावधान करने का विचार हुआ है। वर्तमान संशोधन का उद्देश्य राष्ट्र गीत वंदे मातरम के जानबूझकर किए गए अपमान को भी उसी प्रकार के दंडनीय बनाया जाए जैसा कि वर्तमान कानून में है। हर भारतवासी के राष्ट्र प्रेम का उद्घोष है वंदे मातरम, विकसित भारत का संकल्प है वंदे मातरम।
5: दक्षिण पूर्व रेलवे के रांची मंडल ने बताया है कि कर्रा गोविंदपुर रोड स्टेशन के बीच स्थित संपार फाटक संख्या HB17 पर ट्रैक मरम्मत कार्य के कारण 31 जुलाई की रात 10 बजे से 1 अगस्त की सुबह 6 बजे तक सड़क यातायात पूरी तरह बंद रहेगा। रेलवे ने लोगों से असुविधा से बचने के लिए निर्धारित वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करने की सलाह दी है। श्रावण मास के पहले दिन आज देवघर स्थित बाबा बैद्यनाथ धाम में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। हर हर महादेव और बोल बम के जय घोष से पूरी बाबा नगरी भक्तिमय माहौल में डूबी रही। श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा के लिए जिला प्रशासन ने व्यापक प्रबंध किए हैं।
9: सावन के पहले दिन से ही आस्था की नगरी देवघर हर हर महादेव और बोलबम के गगनभेदी नारों से गुंजमान हो उठी है। सुबह से ही बाबा बैद्यनाथ धाम में श्रद्धालुओं की लंबी कतार लगी है। पूरी भक्ति और उत्साह के साथ बाबा का जलाभिषेक कर रहे हैं। श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। उपायुक्त सौरभ कुमार भुमानिया और पुलिस अधीक्षक प्रवीण पुष्कर खुद अपनी टीम के साथ लगातार निरीक्षण कर रहे हैं। पूरे शहर में पर्याप्त संख्या में दंडाधिकारी और पुलिस बल तैनात किए गए हैं। श्रद्धालुओं को बेहतर व्यवस्था मिले इस दिशा में हर व्यक्ति यहां लगा हुआ है। आशीष कुमार अम्बस्ट, आकाशवाणी समाचार, देवघर।
5: उधर दुमका के विश्व प्रसिद्ध बासुकीनाथ धाम में भी राजकीय श्रावणी मेला महोत्सव का पारंपरिक और विधि विधान से शुभारंभ हो गया। जरमुंडी विधायक देवेंद्र कुमार, आयुक्त संजय कुमार और उपायुक्त अभिजीत सिन्हा ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर मेले का उद्घाटन किया। मौसम। झारखंड में मॉनसून फिर पूरी तरह सक्रिय हो गया है। मौसम विभाग ने रांची समेत 22 जिलों में बारिश, गरज चमक, तेज हवाओं और वज्रपात का अलर्ट जारी किया है। रांची, बोकारो और जमशेदपुर में कहीं कहीं भारी बारिश की संभावना है। पिछले 24 घंटों के दौरान बारिश के कारण अधिकतम तापमान में लगभग 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई। रांची में खेले जा रहे 135वें डोरंड कप के ग्रुप सी मुकाबले में भारतीय वायुसेना फुटबॉल टीम ने श्रीलंका के डिफेंडर्स FC को 2-1 से हराकर महत्वपूर्ण 3 अंक हासिल किए। नौरेम सोमनंदा सिंह ने 1 गोल किया जबकि डिफेंडर्स की ओर से 1 आत्मघाती गोल भी हुआ। और अब अखबारों की सुर्खियां। राज्य से प्रकाशित होने वाले लगभग सभी अखबारों ने नक्सली मिसर बेसरा की गिरफ्तारी की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। प्रभात खबर ने लिखा है, 2 माह तक 3,000 जवानों ने की घेराबंदी, गिरिडीह में गुप्त अभियान।

चला पकड़ा। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, राहुल के बयान पर सदन में हंगामा। हिंदुस्तान की लीड है, मुख्यमंत्री ने दिया निर्देश, 24 घंटे निर्बाध बिजली सुनिश्चित करें अधिकारी। दैनिक जागरण ने लिखा है, शराब घोटाला मामले में 3 अधिकारियों को एसीबी का समन। और अब अंत में मुख्य समाचार। राज्य में बिजली व्यवस्था सुदृढ़ करने पर मुख्यमंत्री का जोर, 200 यूनिट निःशुल्क बिजली योजना का लाभ समय पर देने के निर्देश। झारखंड में मतदाता पुनरीक्षण अभियान ने पूरा किया पहला चरण। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा, 5 अगस्त को प्रकाशित होगी प्रारूप मतदाता सूची। 14वीं जेपीएससी परीक्षा की जांच तेज। सीआईडी ने अभ्यर्थियों से मांगी ओएमआर शीट की कार्बन कॉपी। अभ्यर्थी व्हाट्सएप और ईमेल से भेज सकेंगे ओएमआर कॉपी। श्रावण मास का हुआ शुभारंभ। बाबा बैद्यनाथ धाम में जलाभिषेक के लिए लगी लंबी कतारें। कांवड़ियों का उत्साह चरम पर। और रांची समेत कई जिलों में भारी बारिश के आसार। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट, तेज हवा और वज्रपात की चेतावनी। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत पात्र नागरिक निशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-toj.in से प्राप्त कर सकते हैं।
1: You had been listening to a talk on India's new labor codes by Dr. Pradeep Kumar Jena, Director, Ministry of Labor and Employment. This talk was part of a webinar conducted by the Department of Justice.
2: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस।

0: आकाशवाणी का ये डाल्टनगंज केंद्र है। बस कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हमारा विशेष कार्यक्रम जोहार पलामू।
1: कम ब्याज पे लोन चाहिए, वो भी ऐप से। वाह,
2: अनजान ऐप से बचें।
3: RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। डीजे अब शुरू कर रहे हैं जोहार पलामू कार्यक्रम। स्वागत है आप तमाम साथियों का इस कार्यक्रम में।
2: जोहार पलामू।
1: प्रस्तुति स्वर है निर्मला तिवारी का और संयोजन करता है प्रशांत गौरव।

जोहार नमस्कार, आप सभी को कांवड़ यात्रा की हार्दिक शुभकामनाएं। महानता कभी न गिरने में नहीं, बल्कि हर बार गिरकर उठ जाने में है। जी हाँ, इसी सुविचार के साथ कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए आप सभी को एक बार फिर से कांवड़ यात्रा की बधाई। शिव ही सत्य है, सत्य ही सुंदर है, सत्यम शिवम सुंदरम। सत्य वह शाश्वत और अविनाशकारी सच्चाई है जो सत्य है। शिवम जो सबका कल्याण करते हैं, मंगल शुभकारी हैं। सुंदरम जो परम आनंद और दिव्य सौंदर्य से परिपूर्ण है और वही उस परम सत्ता के सत्य हैं। तो शिव भक्त अपने आराध्य के दर्शन हेतु और जल अर्पित करने के लिए कठिन यात्रा कर उन तक पहुंचते हैं, कांवड़ में जल भरकर, और यह उनके धैर्य संयम तप को दर्शाता है। वैसे तो मित्रों शिव भोलेनाथ हैं, उन्हें मन से याद कर लेने भर से उनकी कृपा मिल जाती है, लेकिन भक्ति अपने अपने तरीके से की जाती है। और कहते हैं ना कि जो जितना तपता है उतना ही वह शांतचित संयमित धैर्यवान बनता है। तो आइए मिलकर भक्तों का हौसला बढ़ाएं इस भक्ति गीत के साथ।

आइए अब मौसम की भी जानकारी आपको दे देते हैं। यदि हम मौसम की बातें करें तो हमारे ज़िले में मौसम मिला जुला रहने वाला है, यानी कि धूप के साथ वर्षा की भी संभावना बनी हुई है और बादल आते जाते रहने का अनुमान है, यानी कि धूप छाँव की स्थिति बनी रह सकती है। तापमान की यदि हम बातें करें तो अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस तक रह सकता है। आर्द्रता 78% रह सकती है।

0: कल यानी 31 जुलाई को अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस तक रह सकता है और वर्षा की संभावना भी बनी हुई है। तो ऐसा कुछ रहने वाला है मौसम। और दोस्तों, हम आपको बता दें कि आज है विश्व मानव तस्करी विरोधी दिवस। जी हाँ, और मानव तस्करी के ख़िलाफ़ विश्व दिवस हर साल 30 जुलाई को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र ने इस दिन की शुरुआत वर्ष 2013 में मानव तस्करी के पीड़ितों के अधिकारों की रक्षा करने और इसके बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए की थी। संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा इसकी शुरुआत 18 दिसंबर सन 2013 को इस दिवस को मनाने का प्रस्ताव पास किया गया था। तो इसका उद्देश्य यही है कि लोगों को जागरूक करना, पीड़ितों की मदद करना और तस्करों के संगठित आपराधिक नेटवर्क को खत्म करना। तो आइए, इससे संबंधित अब हम आपको सुनवाते हैं वार्ता। जी, वार्ता है मानव तस्करी एक जघन्य अपराध। वार्ताकार हैं निकिता सोनी।
1: एपिसोड नंबर 223, 223।
2: भारत में मानव तस्करी मुख्यतः भारतीय दंड संहिता 1860 के अंतर्गत एक अपराध है। मानव संहिता के अनुसार तस्करी का अर्थ है बलपूर्वक तरीकों से शोषण करना। इसके अनुसार किसी भी व्यक्ति को बलपूर्वक डराकर, धोखा देकर, हिंसा जैसे तरीकों से भर्ती करना, तस्करी या बंधक बनाकर रखना मानव तस्करी के अंतर्गत आता है। इसमें पीड़ित व्यक्ति से देह व्यापार, घरेलू काम, गुलामी इत्यादि कार्य पीड़ित व्यक्तियों की इच्छा के विरुद्ध कराए जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानव तस्करी सबसे न्यूनतम प्रकार का अपराध है, जो देश के लगभग हर हिस्सों में बहुत तेजी से फैल रही है। कुछ लोगों का मानना है कि गैर कानूनी तरीकों से लोगों को किसी और देशों में सीमा पार करना भी मानव तस्करी होती है, लेकिन इसे परिभाषित करते हुए एक मानव तस्करी के अंतर्गत बाल तस्करी के मामले में किसी भी तरह की हिंसा या जबरदस्ती शामिल है। बच्चों को बलपूर्वक किसी घृणित काम में शामिल करना भी मानव तस्करी कहलाता है। पहला, जबरन वेश्यावृत्ति करना। दूसरा, बंधक मजदूर बनाना। तीसरा, जबरदस्ती भीख मांगना। चौथा, जबरन अपराधिता में शामिल करना। पांचवा, घरेलू गुलामी करना। छठा, जबरन शादी करना। सातवा, जबरन अंग निकालना जैसे किडनी, आंख, खून इत्यादि। जबरन नशीली दवाओं की तस्करी इत्यादि आ रहा है। मानव तस्करी होने के पीछे कई कारण हैं और दबंग इसका फायदा उठाते हैं। गरीबी से बचने के लिए, जीवन को बेहतर बनाने के लिए, अपने परिवारों को भरण पोषण करने के लिए, नौकरी पाने के लिए। कुछ लोग नौकरी, यात्रा और आवास की व्यवस्था करने और अन्य प्रकार के जेब खर्च के लिए उधार लेते हैं, लेकिन जब उन्हें नौकरी नहीं मिलती है तो ये अपना उधार लेन देन करने के लिए आसानी से अपना शिकार बना लेते हैं। कुछ मामले में तो तस्कर लोगों के अन जरूरी कागजात भी रख लेते हैं और जब तक उसका कार्य नहीं चुकता तब तक ये लोग उसका शोषण करते हैं। मानव तस्करी, शोषण, वेश्यावृत्ति आदि जैसे कार्यों के लिए व्यक्ति का मूवमेंट होता है। तस्करी के शिकार लोगों में 51% महिलाओं में, 28% बच्चों में, 21% पुरुषों में होता है। सेक्स उद्योग में शोषित 72% महिलाएं ही होती है। भारत उन देशों में एक है जहां मानव तस्करी के शिकार लोगों की बड़ी संख्या है। इन तथ्यों से पता चलता है कि मानव तस्करी एक वैश्विक समस्या है। इसके फैलने का मूल कारण गरीबी है। यदि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इस अपराध को रोकना चाहता है तो सभी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को वैश्विक स्तर पर प्रभावित देशों के साथ सामूहिक रूप से मिलकर काम करने की आवश्यकता है। गृह मंत्रालय परीक्षण और क्षमता निर्माण के माध्यम व्यक्ति के अवैध व्यापार के विरुद्ध भारत में कानूनी प्रक्रिया के सुदृढ़ करने के लिए गृह मंत्रालय ने देश के 270 जिलों में मानव तस्करी विरोधी यूनिटों की संख्या के लिए निधि प्रदान की। भारत में विभिन्न कार्यों से पुरुषों, महिलाओं और बच्चों की तस्करी अधिकार

0: अधिक की जाती है। यौन शोषण और जबरन विवाह के उद्देश्य से देश के भीतर महिलाओं और लड़कियों की तस्करी की जाती है, खासकर उन देशों में से जहां लिंग अनुपात पुरुषों की अधिक है। श्रम के उद्देश्य से भी पुरुषों और लड़कों के तस्करी की जाती है और अवैध व्यापार करने वाले के द्वारा उसका यौन शोषण भी किया जाता है। सर्कस शो में भी जबरन मजदूरी के लिए बच्चों को प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि मानव तस्करी पूरे विश्व भर में गंभीर एवं संवेदनशील समस्या है। मादक पदार्थों व हथियारों की तस्करी के बाद मानव तस्करी दुनिया में सबसे बड़ा संगठित अपराध है। वैश्विक रिपोर्ट के अनुसार मानव तस्करी का सबसे बड़ा रूप यौन शोषण है। राष्ट्रीय रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार वर्ष 2016 में भारत में मानव तस्करी के 8000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। वर्ष 2019 में 1000 केस तथा 95% महिलाओं को वेश्यावृत्ति में पाया गया है। वर्तमान में 6616 मुकदमे रिपोर्ट भी हुए हैं। यह भी रिपोर्ट में कहा गया है कि प्रतिवर्ष 44,000 बच्चों को अपहरण कर लिया जाता है। इस अपराध को रोकने के लिए भारत सरकार ने समय समय पर कई कदम भी उठाए हैं तथा कई प्रकार के कानून भी लागू किए हैं। वर्ष 2018 में मानव तस्करी निर्वाहन संरक्षण और पुनर्वास विधेयक बनाया गया, जिसके अंतर्गत जिला स्तर पर एंटी ट्रैफिकिंग यूनिट बनाए जाने का प्रावधान रखा गया। ऐसे मामलों में अपराधी को बिना वारंट भी गिरफ्तार किया जा सकता है तथा उसकी संपत्ति की कुर्की और जब्ती भी की जा सकती है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ऐसे मामलों का भी मानवाधिकार समय समय पर संज्ञान लेता रहा तथा राष्ट्रीय आयोग व अंतर्राष्ट्रीय आयोग महिलाओं का भी इस मामलों में अपनी पैन नजर रखी है। मानव तस्करी को रोकने के लिए विभिन्न उपाय किए जा सकते हैं, जैसे मानव तस्करी को रोकने के लिए अति संवेदनशील समुदायों के लिए शैक्षिक कार्यक्रम चलाना, मानव तस्करी को रोकने के लिए विभिन्न सरकारी कार्यक्रमों और योजनाओं के कार्यरत आसान बनाना, तस्करी के निवारण को सुनिश्चित करने के लिए कानूनी और व्यवस्थाई संबंधी फ्रेमवर्क बनाना, राज्य तथा केंद्र मानव तस्करी को बंद करने के लिए तस्करी के शिकार लोगों को छुड़ाएं और अपराधों की जांच के लिए जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न ऑर्थरिक की स्थापना करना, जिला पुलिस नोडल अधिकारी जिला प्रशासन के कार्यों का निरीक्षण करेगी जिसे सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है।
1: अभी आपने जाना निकिता सोनी की वार्ता से कि मानव तस्करी एक जघन्य अपराध है और इसके लिए क्या कानून है, इसकी जानकारी अभी आपने प्राप्त की इस वार्ता के माध्यम से।

निकिता सोनी की वार्ता से कि मानव तस्करी एक जघन्य अपराध है और इसके लिए क्या कानून है, इसकी जानकारी अभी आपने प्राप्त की इस वार्ता के माध्यम से। आइए, क्या कानून है, इसकी जानकारी अभी आपने प्राप्त की इस वार्ता के माध्यम से।

इन बार लगातार फ्रांस का भ्रमण करने वाले लॉन्स और मिस्ट्रांग पहले अमेरिकी बने थे आज ही की तारीख को। 2012 में आज ही की तारीख को दिल्ली सहित 7 राज्यों में बिजली गुल हो गई थी और लगभग 36 करोड़ लोग प्रभावित हुए।

और टोक्यो ओलंपिक में भारत की मीराबाई चानू ने भारोत्तोलन में रजत जीता आज की तारीख को। तो ये कुछ प्रमुख घटनाएं हैं जो इतिहास के पन्नों में दर्ज हैं। और चलिए अब लिए चलते हैं आपको गीत संगीत की ओर।

0: दोस्तों अब इस कार्यक्रम का समय समाप्त हो चला है, अपनी दोस्त निर्मला को दीजिए इस कार्यक्रम से विदा। नमस्कार, जोहार।
1: जोहार पलामू।
0: अभी आप सुन रहे थे जोहार पलामू कार्यक्रम, प्रस्तुत स्वर निर्मला तिवारी का था, संयोजनकर्ता थे श्री प्रशांत गौरव। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं, लीजिए अब सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: दंग।
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
3: और अजीत का भी नमस्कार। आइए सुनते हैं एक सुंदर विचार हमेशा की तरह, जिसे हमें भेजा है मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर और रतन माला जी ने।
2: वो लिखते हैं, जो दूसरों के चेहरे पर मुस्कान और जीवन में खुशियां लाता है वही सबसे सफल इंसान है।
3: बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका इतने सुंदर विचार के लिए। आइए सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले हमारे श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है कोका भिलाई से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल जी का।
2: धमदा ग्राम सुखरी कला से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि, ओशिका, आदित्य जंघेल और अंजलि जंघेल।
3: और भटीपारा महुआ उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता, कमला देवी गुप्ता, सुधा, कविता, पंकज, आयुषि और मीहू लिखते हैं,
2: नमस्कार। खनिज पदार्थों पर केंद्रित ये भी जानिए श्रृंखला बेहद रोचक, दिलचस्प और अद्भुत रही। ऐसी जानकारी जरूर प्रसारित करते रहें।
3: आपका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। अगला संदेश हमें मिला है जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर जी का।
2: छत्तीसगढ़ पथरिया भरेवा से चंदूलाल सिंगरौल, नारायणी सिंगरौल, नोमेश सिंगरौल, नेहा और वान्या सिंगरौल।
3: आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं लगातार संदेश भेजने के लिए। निवेदन है इसी प्रकार से जुड़े रहिए हमारे उमंग कार्यक्रम से। अब एक बार फिर से लघु प्रेरक कथाओं की श्रृंखला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक और रोचक प्रेरक प्रसंग लेकर हम प्रस्तुत हैं।
2: आज हम बात करेंगे भारत के उस महान देशभक्त और स्वतंत्रता सेनानी की, जिन्होंने नारा दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। और उनका एक अन्य प्रसिद्ध नारा था, जय हिंद।
3: श्रोताओं आप समझ गए होंगे हम बात कर रहे हैं सुभाष चंद्र बोस की, जिन्हें हम नेताजी के नाम से भी जानते हैं।
2: बचपन से ही वे अत्यंत मेधावी थे। आपको बता दें कि उन दिनों में अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवा को इंडियन सिविल सर्विसेज या ICS कहते थे। आज इसी सेवा को भारतीय प्रशासनिक सेवा या IAS कहते हैं।
3: श्रोता उन्होंने इंग्लैंड जाकर भारतीय सिविल सेवा यानी ICS की परीक्षा दी। उस समय ICS को ब्रिटिश शासन की सबसे प्रतिष्ठित और कठिन सेवाओं में से एक माना जाता था।
2: उन्होंने परीक्षा में उच्च स्थान यानी चौथा स्थान प्राप्त किया। उनके सामने एक सुरक्षित, सम्मानित और समृद्ध सरकारी जीवन का अवसर था।
3: ये उपलब्धि इसलिए भी विशेष मानी जाती है क्योंकि उस समय ICS परीक्षा दुनिया की सबसे कठिन और लब्ध प्रतिष्ठ परीक्षाओं में गिनी जाती थी और अधिकांश भारतीयों के लिए इसे पास करना बहुत कठिन हुआ करता था।
2: लेकिन उनके मन में एक प्रश्न बार बार उठता था, क्या मैं उस सरकार की सेवा कर सकता हूँ जिसके अधीन मेरा अपना भारत देश गुलाम है।
3: बहुत विचार विमर्श करने के बाद सन 1921 में उन्होंने स्वेच्छा से ICS से इस्तीफा दे दिया और त्यागपत्र पर लिखा कि वे विदेशी शासन की सेवा नहीं बल्कि भारत की सेवा करना चाहते हैं।
2: जब ये समाचार भारत पहुंचा तो अनेक युवाओं को देश के लिए काम करने की नई प्रेरणा मिली। शुरुआत में उनके परिवार के सभी सदस्य इस निर्णय से सहमत नहीं थे,
3: लेकिन धीरे धीरे समय के साथ परिवार ने उनके निर्णय का सम्मान किया और जब वे स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख नेता बने तो उनके परिवार को उन पर बड़ा गर्व हुआ।
2: ये प्रसंग उनके जीवन का एक प्रेरक उदाहरण है जो बताता है कि व्यक्तिगत सफलता से अधिक देश की सेवा महत्वपूर्ण है।
3: श्रोताओं आज भी उनके जीवन का ये प्रसंग हजारों युवाओं और सबको प्रेरणा देता है। ये घटना बताती है कि महान व्यक्तित्व केवल सफलता से ही नहीं बल्कि अपने आदर्शों के प्रति अटल रहने से बनते हैं।
2: जी
3: श्रोताओं आज के प्रसंग में आपने एक शब्द सुना, शब्द था
2: लब्ध प्रतिष्ठ।
3: इसका अर्थ है
2: अत्यंत प्रतिष्ठित या सम्मानित।
3: तो श्रोताओं अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। तो हमारा प्रश्न है, अंग्रेजी शासन काल के दिनों की इंडियन सिविल सर्विस को आज किस नाम से जाना जाता है और साथ ही साथ आपको अर्थ बताना है लब्ध प्रतिष्ठ शब्द का। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
2: अंग्रेजी शासनकाल के दिनों की इंडियन सिविल सर्विस को आज किस नाम से जाना जाता है और साथ ही साथ आपको बताना है लब्ध प्रतिष्ठ का अर्थ।
3: श्रोताओ आप हमारे IBRS नंबर यानी 8800440559 पर और हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर अपने संदेश भेज सकते हैं। और अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो आइए

0: सुनते हैं एक खूबसूरत गीत संगीत से भरा कार्यक्रम, शीर्षक है पहली बूंद।
1: ये कार्यक्रम NCERT की कक्षा 6 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक की एक कविता पर आधारित है, जिसमें बताया गया है कि जब वर्षा ऋतु आती है तो किस तरह धरती पर आनंद और उल्लास का वातावरण रच जाता है और लोगों को बहुत राहत मिलती है।

0: अभी आपने सुना कार्यक्रम पहली बूंद। जरा सोचिए मित्रों, क्या होता यदि हम बीमारियों और संक्रमणों का इलाज नहीं खोज पाते। पहले बहुत सी महामारियों से हजारों लोग मरते थे। इतिहास बताता है कि गांव के गांव खत्म हो जाते थे, लेकिन अब इलाज या रोग निरोधक टीके खोज लिए गए हैं।
1: जी हाँ, रोगाणु विज्ञान में एक महान चिकित्सक लुई पाश्चर का नाम बड़े आदर से लिया जाता है। उन्होंने बहुत सी बीमारियों के टीकों की खोज की और दुनिया को महामारियों से बचाया।
0: तो आज का कार्यक्रम लुई पाश्चर के जीवन पर आधारित है। आइए सुनते हैं कार्यक्रम लुई पाश्चर।
2: आज हम आपको एक बहुत ही प्रतिभाशाली वैज्ञानिक की कहानी सुनाने जा रहे हैं। उस वैज्ञानिक का नाम है लुई पाश्चर, जो दुनिया के महान और श्रेष्ठ वैज्ञानिकों में से एक हैं।
3: 19वीं शताब्दी में अपने सार्थक और बेजोड़ योगदान के लिए वे सदैव याद किए जाएंगे। पेंसिलिन

0: आविष्कारक सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने भी इस जीनियस के गुणों को पहचान लिया था। इसीलिए उन्होंने कहा था, विदाउट पाश्चर आई वुड बी नथिंग।
1: 27 दिसंबर सन 1892 सॉर्बोन विश्वविद्यालय का एम्फीथिएटर।
2: लेडीज एंड जेंटलमैन, आज इस सुप्रभात में हमारे साथ विज्ञान की दुनिया के जाने माने लोग हैं। आज के दिन लुई पाश्चर जी को उनके 70वें जन्मदिन पर उनके मानव कल्याणकारी कार्यों के लिए उन्हें सम्मान देते हुए हमें बहुत ही खुशी हो रही है। और अब साइंस एकेडमी के प्रेसिडेंट मॉन्सिनर द अवेडी उन्हें यह मेडल प्रदान करेंगे।

0: लोगों ने मुझे बहुत बड़ी खुशी दी है। इसे मुझ जैसा व्यक्ति ही महसूस कर सकता है। हाँ, मुझे पूरा विश्वास है कि विज्ञान और शांति अज्ञान और अशांति पर विजय पाएंगे।
1: आज भी कई झकझोरने वाले सच लुई पाश्चर के नाम से जुड़े हैं। उनका नाम केवल कुछ आविष्कारों के लिए ही नहीं लिया जाता है। उनकी प्रत्येक खोज एक बाधा रहित श्रृंखला की कड़ी है। उन्होंने अपने शिष्यों को सिखाया,
2: रिमेंबर, कोई भी ऐसी बात मत कहो जिसे प्रयोगों द्वारा तुम सिद्ध ना कर सको।
3: लुई पाश्चर का जन्म 27 दिसंबर सन 1822 को फ्रांस में स्विस बॉर्डर के नजदीकी शहर जूरा के एक छोटे से गांव डोले में हुआ था।
1: वे एक किसान परिवार से थे। उनके पिता जीन जोसेफ पाश्चर नेपोलियन ग्रैंड आर्मी में नॉन कमीशन ऑफिसर थे।
3: लुई पाश्चर का बचपन अपनी तीन बहनों के साथ बहुत ही खुशहाल रहा।
1: स्कूल में वे एक सामान्य पर गंभीर छात्र थे। आगे जिंदगी में क्या करना है, इन्हीं विचारों में वे खोए रहते थे। उनकी रुचि या तो मछली पकड़ने में या फिर चित्रकारी में थी। उनमें पोर्ट्रेट बनाने की गजब की प्रतिभा थी। ये देखकर किसी ने उन्हें एक बार कहा भी था कि एक दिन वे महान पेंटर बनेंगे। लुई पाश्चर के पिता उनके भविष्य को लेकर चिंतित रहते थे। एक दिन,
4: देखो, मुझे पाश्चर की बहुत चिंता है, लेकिन फिर भी मुझे पूरा यकीन है कि पाश्चर इस गांव की मामूली जिंदगी को पीछे छोड़कर दूसरी जगह किसी अच्छे स्कूल में एक दिन टीचर बनेगा। वो काबिल तो है, पर उसमें विद्वान बनने के लक्षण मुझे जरा कम ही नजर आते हैं।
5: हाँ, ठीक कहते हो, वो मेहनती है, चित्रकारी में भी अच्छा है। उसने मेरे और आपके जो स्केच बनाए हैं वो देखे हैं आपने?
4: लेकिन क्या सिर्फ चित्रकारी से ही वो अपनी जिंदगी चला लेगा?
5: हाँ, मुझे भी उसकी चिंता होती है, पर मुझे लगता है वो सिर्फ हाथों से ही नहीं बल्कि दिमाग से भी काम लेता है।
4: तुम शायद

0: ठीक कह रही हो, लेकिन
1: सन 1831 में जब लुई पाश्चर केवल 8 साल के थे, तभी एक महत्वपूर्ण घटना घटी। पहाड़ियों से एक भयानक भेड़िया नीचे तलहटी में आकर लोगों पर हमला करने लगा, जिसके कारण 8 लोग रेबीज नामक भयंकर बीमारी के शिकार हुए और फिर मर गए।
2: चलो
3: अरे भेड़िया, अरे भेड़िया।
1: लुई पाश्चर के गांव के भी कुछ लोग इस भयानक बीमारी का शिकार हुए।
4: वे लोग रेबीज का सिर्फ एक ही इलाज जानते थे। वे लुहार के पास जाते थे और वो घावों को गर्म लोहे की छड़ से दाग देता था।
5: चलो चलो चलो चलो,
6: अरे पकड़ो, चलो चलो, मुझे
7: ठहरो, लोहा गर्म हो रहा है।
8: ये लीजिए, बिल्कुल लाल हो गया।
1: जले हुए मांस की बदबू और रोगियों की दर्दनाक चीखों से लुई पाश्चर घबरा गए।
4: जब वे 15 वर्ष के हुए तो उन्हें शिक्षा के लिए पेरिस भेज दिया गया। घर से दूर रहने के कारण वे निरुत्साहित रहते थे।
1: 21 वर्ष की आयु में लुई पाश्चर ने पेरिस के मशहूर नॉर्मल साइंस स्कूल इकोल में प्रतियोगी परीक्षा में 4th स्थान प्राप्त किया।
4: ये उथल पुथल और हलचल से भरा समय था। सन 1848 की क्रांति ने पेरिस को हिला दिया था और दूसरे कई लोगों की तरह लुई पाश्चर के मंसूबे भी इस दौर की उठापटक में कहीं दब के रह गए थे।
1: 26 वर्ष की आयु में टार्टरिक एसिड, जो प्राकृतिक रूप से इमली व अंगूरों में पाया जाता है, उसके क्रिस्टल पर शोध के अपने डॉक्टरल थीसिस के बाद लुई पाश्चर स्ट्रासबर्ग कॉलेज में प्रोफेसर के पद पर नियुक्त हुए।
4: केमिस्ट्री प्रोफेसर के पद पर 2 साल काम करने के बाद वे लिली विश्वविद्यालय की साइंस फैकल्टी के डीन बने।
1: उसी समय उत्तरी फ्रांस के शराब उद्योग में एक समस्या उठ खड़ी हुई, जिसके समाधान के लिए फ्रांस के तत्कालीन शासक नेपोलियन बोनापार्ट ने लुई पाश्चर को बुलाया और कहा,
9: लुई पाश्चर
10: सर,
9: हम तुमसे एक मदद चाहते हैं।
10: कहिए सर।
9: पता लगाकर हमें बताओ कि वो कौन से जीवाणु हैं जिनसे हमारे यहाँ बनने वाली शराब प्रदूषित हो रही है और हमें बहुत ही आर्थिक हानि उठानी पड़ रही है।
10: यस सर, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि इस समस्या का हल ढूंढ सकूं।
9: ठीक है।
4: कुछ ही वर्षों बाद सन 1864 में पाश्चर इस समस्या का हल खोजने के लिए अरबोइस नामक एक जगह पर अंगूरों के बाग में गए। उन्होंने साबित कर दिखाया कि सूक्ष्म जीवों के कारण ही शराब प्रदूषित हो रही है, और अगर शराब को कुछ मिनटों तक 55 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाए तो इन जीवाणुओं को नष्ट किया जा सकता है। 8 साल तक लुई पाश्चर ने फर्मेंटेशन पर काम किया और अपनी कड़ी मेहनत से उन्होंने एक नई तकनीक विकसित की जो दुनिया भर में पाश्चरीकरण के नाम से जानी जाती है।
1: तभी से दूध और अन्य पेय पदार्थों पर सफल प्रयोग के बाद ये प्रक्रिया पूरे विश्व में काम में लाई जाने लगी। इस प्रक्रिया में जल्दी खराब होने वाली खाने पीने की चीजों को गर्म करके उनमें मौजूद नुकसानदायक बैक्टीरिया और मोल्ड्स को नष्ट किया जाता है। और अच्छी बात यह है, इस प्रक्रिया से खाद्य पदार्थों को कोई नुकसान भी नहीं पहुंचता है। आज दूर दूर से खाद्य पदार्थ और दवाइयां आ पाती हैं, वे इसी प्रक्रिया की देन है।
4: पाश्चर वास्तव में धन्यवाद के पात्र हैं, क्योंकि उन्होंने ऐसी तकनीक ढूंढ निकाली जिससे रोगाणुओं को नष्ट करना और उनसे होने वाले प्रदूषण पर नियंत्रण रख पाना संभव हो पाया।
1: इस जानकारी के साथ ही पाश्चर ने स्टेरिलाइजेशन के आधारभूत नियमों को भी विकसित किया। इसके साथ साथ उन्होंने रोगाणुओं द्वारा फैलने वाली बीमारियों को कम करने के लिए अस्पताल प्रणाली में बहुत ही गौरवशाली बदलाव किए।
4: इससे पहले जोसेफ लिस्टर ने एंटीसेप्टिक विधि विकसित की थी, जिसमें कार्बोलिक एसिड का प्रयोग एंटीसेप्टिक के रूप में किया जाता था। शल्य चिकित्सा में शरीर में सूक्ष्म जीवों का प्रवेश रोकने के लिए ये विधि काफी सफल रही।
1: सन 1874 में लिस्टर ने पाश्चर को पत्र लिखकर अपने शोधों के बारे में बताया, जिससे पाश्चर को आगे बढ़ने और नए तरीके से सोचने में सहायता मिली।
4: लेकिन 1786 में एक ब्रिटिश डॉक्टर एडवर्ड जेनर ने, जिन्हें प्रतिरक्षण प्रणाली यानी इम्यून सिस्टम की कोई जानकारी नहीं थी, सबसे कारगर दवाई का उन्होंने पता लगाया, जिसे उन्होंने नाम दिया वैक्सीन।
1: प्रतिरक्षण विज्ञान के जनक के नाम से मशहूर लुई पाश्चर ने रोगों से बचाने वाली वैक्सीन के वैज्ञानिक सिद्धांत को स्थापित किया।
4: एक बार फिर समय ने अपना खेल दिखाया और ये खोज बड़ी ही सफल रही।
1: सन 1881 में भेड़ों पर शोध करते हुए पाश्चर ने एंथ्रेक्स बीमारी को रोकने के लिए वैक्सीन बनाई।
4: तो फिर उन्होंने क्या किया?
1: 5 और 17 मई को 25 भेड़ों के एक समूह को पाश्चर के इसी साल बनाए गए एंथ्रेक्स के बैक्टीरिया वाला द्रव दिया गया और दूसरे नियंत्रित समूह की 25 भेड़ों को ये द्रव नहीं दिया गया। इस प्रकार ये बिना टीके वाली भेड़ें थीं। 2 सप्ताह बाद यानी 31 मई को सभी 50 भेड़ों को एंथ्रेक्स के बैक्टीरिया वाला टीका दिया गया।
0: अरे आजा आजा आजा आज, ए, ए, हाँ इंजेक्शन लगा दूं?
10: आई एम श्योर 100% सारी की सारी भेड़ें बच जाएंगी और यही बात मेरे सिद्धांत को सही साबित करेगी।
4: रिजल्ट के इंतजार में उन्होंने कई रातें जाग जाग कर बिताई।
11: सर सर ये टेलीग्राम।
10: अच्छा लाओ दिखाओ। अरे आश्चर्यजनक कामयाबी चार्ल्स, वंडरफुल सक्सेस।
11: क्या हुआ सर?
10: देखो टीके वाली सभी भेड़ें बिल्कुल ठीक और स्वस्थ हैं।
11: कांग्रेचुलेशंस, बधाई हो सर।
10: थैंक यू। और बिना टीके वाली सारी भेड़ें मर रही हैं या फिर मर चुकी हैं?
11: यानी आपका प्रयोग सफल रहा?
10: हाँ चार्ल्स।
4: उनकी प्रसिद्धि आसमान को छूने लगी।
1: इस समय तक भी पाश्चर ने मानव जाति पर प्रयोग करने की बात सोची तक नहीं थी। 6 जुलाई सन 1885 का ऐतिहासिक दिन, उन्होंने पहली बार एक व्यक्ति का इलाज रेबीज वैक्सीन से किया।
12: सर देखिए, एक पागल कुत्ते ने मेरे बेटे के हाथ पैरों और जांग पर काट लिया है। मेहरबानी करके मेरी मदद कीजिए।
10: लेकिन इंसानों पर और खासकर बच्चों पर परीक्षण करने के लिए मैं अभी पूरी तरह तैयार नहीं हूँ।
12: डॉक्टर साहब कुछ तो करिए, वरना मेरा बेटा।
10: आप
12: जोसेफ मास्टर की उम्र ही क्या है, 9 साल का है, लगता है मर जाएगा।

0: पर ये काम जोखिम भरा है, इससे जान को भी खतरा हो सकता है। हाँ
1: मेरा
0: अच्छा,
1: बेटा।
0: अच्छा ठीक है ठीक है, मैं ये परीक्षण करूंगा।
2: और आखिरकार उन्होंने ये परीक्षण करने की ठान ली।
3: उनके सहयोगी जोसेफ ग्रांचर एक डॉक्टर थे। उन्होंने रेबीज से मरे हुए खरगोश की हड्डी में थमे द्रव का आधा सिरिंज जितना डोज लिया और उस सहमे हुए बच्चे के शरीर में इंजेक्शन लगा दिया।
2: 10 दिनों तक रहस्य की स्थिति बनी रही, जिस दौरान उस बच्चे को एक के बाद एक 13 इंजेक्शन लगाए गए। 3 हफ्तों के परीक्षणों के बाद उन्हें महसूस हुआ कि अब वे अपनी सफलता संसार के सामने घोषित कर सकते हैं।
3: पास्चर को खुद यकीन नहीं था कि वैक्सीन काम करेगी, लेकिन माइस्टर चंगा हो गया। वो इतिहास का प्रथम व्यक्ति बन गया जिस पर रेबीज की दवाई का पहला प्रयोग किया गया। उसने बड़े होकर वर्षों तक पास्चर इंस्टीट्यूट में गेटकीपर के रूप में कार्य किया।
2: सन 1940 के दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जब नाजियों ने पास्चर के इंस्टीट्यूट पर आक्रमण किया, तो यही माइस्टर था जिसने जर्मन्स को पास्चर की कब्र तक पहुंचाने के बजाय अपनी जान देना बेहतर समझा। सन 1868 में अपने शानदार करियर के बीच में ही पास्चर पर अपंगता का प्रहार हुआ, जिसका परिणाम आंशिक रूप से लकवे के रूप में सामने आया। उनके बाएं हाथ को लकवा मार गया था और उनकी जबान पर भी इसका बुरा असर पड़ा था। तब वे 46 वर्ष के थे और तभी से उन्हें अपने प्रयोगों को करने के लिए दूसरों की सहायता लेनी पड़ती थी।
3: इतना सब होने के बावजूद उनके महान मस्तिष्क पर इसका कोई असर नहीं पड़ा और जो जो प्रयोग और नए विचार पास्चर के दिमाग में थे, वे दूसरों की मदद से दुनिया के सामने आए। पास्चर के समय विज्ञान या चिकित्सा के क्षेत्र में कोई नोबेल पुरस्कार नहीं था, अगर होता तो उन्हें जरूर मिल ही जाता।
2: और फिर 27 सितंबर सन 1895 को उनकी पत्नी ने उन्हें ये कहते हुए सुना।
0: इस तरह मैं और ज्यादा नहीं जी सकता।
2: और 24 घंटे बाद दोपहर को 4:40 पर लुई पास्चर ने अपनी समर्पित पत्नी की बाहों में दम तोड़ दिया। पूरी जिंदगी एकनिष्ठ और उत्साह से भरे पास्चर का अंतिम संस्कार भी एक नायक की तरह किया गया और उन्हें पेरिस के नोट्रेडम कैथेड्रल में दफना दिया गया। अपने दादा को याद करते हुए उनके पोते वैलोरी रेडॉट ने अपनी डायरी में लिखा, माय ग्रैंडफादर वाज द जेंटलेस्ट विद द गुडनेस ऑफ हिज हार्ट मोस्ट अफेक्शनेट एंड सेंसिटिव इंडिविजुअल ही वाज अ ह्यूमनिस्ट ऑलवेज वर्किंग टुवर्ड्स द इंप्रूवमेंट ऑफ द ह्यूमन कंडीशन।
4: और इसी के साथ अब हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत को उमंग की तकनीकी टीम के साथ यानी कुसुमलता,
5: जगबंधु,
4: चेतना,
5: अर्शद और फैजान के साथ विमलेश को आज्ञा दीजिए।
4: नमस्कार।
6: सुन रहे थे आप प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, आइए अब शामिल होते हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र में।
7: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। लोकसभा

0: लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक में प्रश्न पत्र लीक मामले में दोषियों पर 10 वर्ष तक के कारावास और 10 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त अपराधियों की संपत्ति भी जब्त कर ली जाएगी। मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए प्रत्येक राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश को दैनिक सुनवाई के लिए विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करने का आदेश दिया गया है। विधेयक के अनुसार अपराधों की जाँच पुलिस थाने में सूचना दर्ज होने की तारीख से 2 महीने के भीतर और मुकदमे की सुनवाई आरोप पत्र दाखिल होने की तारीख से 3 महीने के भीतर पूरी होनी चाहिए।
1: इसी विधेयक के लाने के साथ ही साथ हमारे लॉ मिनिस्टर्स की ओर से भी एक प्रस्ताव जारी कर दिया गया। स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट्स है, इनको स्थापित करने का भी क्रम प्रारंभ किया जाए। उसमें दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड में पहले ही इन्होंने गठित कर दिया और आने वाले दिनों में बाकी स्थानों पर।
0: डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इस बारे में जानकारी दी। गृहमंत्री अमित शाह ने ये विधेयक पारित होने पर देश के प्रत्येक विद्यार्थियों को बधाई दी है। श्री शाह ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि ये विधेयक लोक परीक्षाओं की शुचिता भंग करने वालों को कड़ी सजा देने वाले पुख्ता प्रावधानों के माध्यम से देश के युवाओं के सपनों और आकांक्षाओं की रक्षा करता है। उन्होंने आश्वासन दिया कि नरेंद्र मोदी सरकार विद्यार्थियों के भविष्य को खतरे में डालने वाले किसी भी व्यक्ति को नहीं बख्शेगी और उन्हें कानून के पूर्ण दंड का सामना कराने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। राज्यसभा ने राष्ट्रीय सम्मान की रक्षा के लिए राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक वंदे मातरम को राष्ट्रीय गान के समान वैधानिक संरक्षण प्रदान करेगा। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि वंदे मातरम के अपमान के लिए अब 3 वर्ष तक की कैद, जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है। बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश में विधानसभा के 3 निर्वाचन क्षेत्रों में उपचुनाव के लिए मतदान जारी है। बिहार में बांकीपुर, गुजरात में मंझलापुर और मध्य प्रदेश में दतिया निर्वाचन क्षेत्रों के लिए वोट डाले जा रहे हैं। मध्य प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार के दूरसंचार विभाग के बीच आज नई दिल्ली में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए जाएंगे, जिसके अंतर्गत भारत का पहला दूरसंचार विनिर्माण क्षेत्र मध्य प्रदेश के ग्वालियर में स्थापित किया जाएगा। केंद्र सरकार ने लोकसभा को बताया कि जम्मू कश्मीर में प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत लगभग 39,000 परिवारों को छत पर सौर पैनल लगाया गया है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने लिखित जवाब में बताया कि 24 जुलाई 2026 तक प्रदेश में 38,955 सौर पैनल लगाए गए हैं। इनमें से 38,318 पैनल 3 किलोवाट 1 से अधिक क्षमता वाले, जबकि 387 पैनल 2-3 किलोवाट 1 श्रेणी में और 103 पैनल 2 किलोवाट 1 तक की क्षमता वाले हैं। अमेरिका ने कुछ समय के युद्ध विराम के बाद ईरान पर हवाई हमले फिर से शुरू कर दिए हैं। ये हमले उस समय किए गए जब ईरान ने इस सप्ताह के शुरुआत में जॉर्डन में एक अमरीकी सैन्य अड्डे पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी थीं। उत्तराखंड के हरिद्वार में कांवड़ यात्रा आज से शुरू हो गई है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि राज्य सरकार ने लाखों शिव भक्तों की सुरक्षा, सुविधा और सुचारू आवागमन सुनिश्चित करने के लिए व्यापक प्रबंध किए हैं।
2: कांवड़ पटरी मार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग, प्रमुख घाटों, मंदिरों और संवेदनशील स्थानों पर राज्य पुलिस के साथ अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई है। ड्रोन कैमरों, सीसीटीवी और अत्याधुनिक कंट्रोल रूम के माध्यम से हर गतिविधि पर 24 घंटे नजर रखी जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि
3: हम कोशिश कर रहे हैं कि हर बार की तरह सभी शिव भक्त कांवड़ियों का हम यहाँ स्वागत करेंगे। बस सभी से हमारा यही अनुरोध है कि उनकी यात्रा अच्छी हो, सुखद हो, सरल हो, सुरक्षित हो।
2: कांवड़ यात्रा के दौरान यातायात को सुचारू बनाए रखने के लिए विशेष डायवर्जन योजना लागू की गई है। सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
0: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज देशवासियों को श्रावण का पवित्र महीना शुरू होने पर शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने आशा व्यक्त की कि आस्था, संयम और भक्ति का ये पवित्र महीना सभी के जीवन में सकारात्मक ऊर्जा, आध्यात्मिक विकास और असीम शांति का संचार करेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी इस पवित्र महीने में सभी के जीवन में खुशी, शांति, अच्छे स्वास्थ्य और समृद्धि की कामना की। मौसम विभाग ने आज मध्य महाराष्ट्र और पश्चिमी मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, केरल और माहे, कोंकण और गोवा, कर्नाटक, पंजाब और दिल्ली में भी आज मूसलाधार बारिश हो सकती है। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: क्या बात, क्या बात है। देखिए आज हम मुकेश जी को याद कर रहे हैं और उन्हें याद करते हुए न केवल उनके गानों की, उनकी शख्सियत की बात कर रहे हैं और अभी उनके क्लासिकल टच वाले गानों की बातों से बात करते हुए हम यहां तक आ गए। मुझे पंडित रविशंकर के म्यूजिक डायरेक्शन वाली एक फिल्म याद आ गई, गोदान।
1: गोदान राजकुमार,
0: हाँ। और इस गाने की कितनी कम चर्चा होती है,
1: सही बात,
0: जो भोजपुरी शैली का गाना है।

0: क्लासिकल मुकेश जो है ना, ये एक पूरा अध्याय है जहां पर एक से बढ़ के एक गाने आते हैं, और बल्कि मजाहिया गानों का भी एक पूरा मामला है ना, जैसे मुझे कहते हैं कल्लू का बाल जैसा गाना भी उन्होंने गाया है। मैं हूं ठुमरी तू है ख्याल, मतलब ये कमाल है ना। ये देखिए राजेंद्र किशन क्या लिखते हैं इस गाने का मुखड़ा।
1: मुझे कहते हैं

0: रहेगा।
1: क्या बात है, मुकेश को याद करते हुए ये जो शुरुआत में हमने कहा था ना कि उनको केवल सैड सॉन्ग्स के बादशाह नहीं कहा जा सकता, एक तरफ उनके गानों में रूमानियत है, दर्शन है, दूसरी तरफ जो है बहुत खिलंदड़ किस्म के, बहुत शरारती किस्म के गाने भी उनकी पूरी फिल्मोग्राफी में, उनकी डिस्कोग्राफी में बाकायदा आते हैं। लेकिन शोज में अमूमन बहुत पॉपुलर गाने ही चलते हैं, तो मुझे तौबा ये मतवाली चाल जैसा गाना याद आता है।
2: हाँ,
1: मजरू साहब का ये गाना,
2: तौबा ये मतवाली चाल झुक जाए फूलों की डाल, तौबा ये मतवाली चाल झुक जाए फूलों की डाल, चांद और सूरज आकर मांगे

0: ट्यून देकर चला गया, लिरिक्स देकर चला गया, मैं खाली गा लिया, रिकॉर्डिंग बोला मैं मिक्सिंग कर लूंगा। तो आज जैसा चल रहा है उस हिसाब से वो सोल जो होता है ना वो कनेक्ट नहीं हो रहा है। शायद यही रीजन है कि गाने आज जो है वो आ रहे और जा रहे, लोगों के मन में नहीं बैठ रहे।
1: आपका क्या कहना है मुख्तार भाई?
2: बिल्कुल गोविंद भाई ने जो बात कही वो बिल्कुल सही बात है। और ये पुराने गानों पे एक तो लिरिसिस्ट ने इतने खूबसूरत अल्फाज लिखे
1: जी, जी।
2: और म्यूजिक डायरेक्टर्स ने उतनी खूबसूरत ट्यून बनाई, गाने वालों ने गुलकारों ने इतनी सहजता के साथ इतनी खूबसूरती के साथ उनको अदायगी की और स्टोरी के साथ फिल्म की स्टोरी के साथ कहीं ना कहीं रिलेटेड रहते थे। और वो फिल्मों का जो दौर था वो एक आम इंसान की ज़िंदगी से कहीं ना कहीं रिलेट करता था, तो इसलिए वो सारे गाने इतने मीनिंगफुल थे कि आज भी अगर खुशी के गाने सुनो तो आपको खुशी महसूस होती है, गम के गाने सुनो तो गम महसूस होता है
1: जी।
2: और आजकल के सच बात है कि फिल्मों में अमूमन ज़्यादातर गाने ऐसे होते हैं कि जिसको शायद वो इस तरीके से काम नहीं किया जाता। गोविंद भाई ने बताया कि अगर सिंगर आ रहे हैं तो उनको एक लाइन बताई और उसने एक लाइन गाया और उसके बाद दूसरी लाइन उसको बताया, पूरा गाना भी शायद उनको नहीं पता हो क्या होना, एक एक लाइन पंच कर करके। और डिजिटल टाइम में सब शायद हो सकता है उनके वक्त की रिक्वायरमेंट ऐसी हो
1: जी, और इसीलिए आज के संगीत में उस तरह से
2: ठहराव
1: ज्यादातर गानों में आत्मा नहीं है।
2: नहीं,
1: अब मैं आप लोगों को एक मुश्किल चैलेंज देने जा रहा हूं और वो चैलेंज ये है कि कोई एक फीमेल गाना चुनिए जिसको आपको मुकेश की आवाज में गाना है।
2: अच्छा,
1: लेकिन उसका मुकेश वर्जन नहीं होना चाहिए।
2: मुझे स्ट्रेट यही याद आ गया कि चलो मुझको इस रात की तन्हाई में यहाँ लौट के आ
1: जाए।
2: मजेदार बात तो है ये कि अगर मुकेश जी गाते तो कैसे गाते हैं ना।
1: ये सुनने वालों को भी एक अंदाजा लगेगा।
2: देखिए, एक मुझे लता मंगेशकर जी का गाना बहुत पसंद है, लग जा गले के फिर यहाँ सीधा,
1: तो ये यही सुनते हैं। लेकिन एक मजेदार बात बताऊं, जैसे मैं आपसे कोई सवाल पूछता हूँ ना तो गोविंद ऐसे बैठ जाते हैं, मेरी बारी आने वाली है।
0: मैं सीरियस जाता हूँ, एक्चुअली मुख्तार भाई जो सोच रहे थे ना वही मैं भी सोच रहा था,
1: तब तक ये
0: उनको ये गाना है
1: ये। लेकिन मजेदार होगा, लग जा गले मुकेश की आवाज में।
2: लग जा गले के फिर ये हंसी रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो। लग जा गले से हे।
1: क्या बात है, कितना अच्छा लग रहा है इसको मुकेश जी की आवाज में सुनना।

0: समझा सकते हैं।
1: वाह वाह वाह, ये बहुत मजेदार बात थी। आपके परिवार की नई पीढ़ी नए गानों को सुनती है या पुराने गानों को सुनती है?
2: मेरी बेटी जो है वो पुराने गाने सुनती है और बेटा जो है वो नए गाने।
0: मैं देखिए, मेरी रोजी रोटी मुकेश से चलती है।
1: हाँ।
0: लेकिन मेरे घर में मेरी वाइफ मुकेश जी को छोड़कर सबको सुनती है।
1: तो आपको जबरदस्ती
0: और एकदम रेयर नंबर सुनती है। मतलब वो जो हम रेगुलर गाते हैं ना।
1: हाँ, हाँ, हाँ।
0: वो नहीं सुनती वो, इसलिए शोज में भी नहीं आती। बोलती तुम भाई तो गाओगे, कुछ नया तो गाओगे नहीं। इसलिए वो आती भी नहीं है और एकदम रेयर सुनेगी वो।
1: अच्छा।
0: अनरिकॉर्डेड किशोर जी का, आशा जी का, लता जी का एकदम वो सुनेगी, क्योंकि बंगाली है तो वो अलग सुनेगी और मुझे भी सुनाती है।
1: अच्छा।
0: भी सुनो सुनो सुनो
1: बिठा के
0: सुनना पड़ता। हाँ, घर में खाना मिलेगा तो सुनना ही पड़ता है।
1: ये मजेदार है। अच्छा, कभी ऐसा लगता है कि जिस गाने की चलित ट्यून, जो बनी हुई ट्यून है, उससे इतर किसी और ट्यून पर उसको गाया जाना चाहिए, मुकेश जी का गाना हो कोई?
2: ये सोचने के लिए तो हम बहुत छोटे हैं। हमको तो वो जो गाने जैसे बने हुए हैं ऐसा लगता है कि ये बिल्कुल परफेक्ट बने हुए, अगर इसको अगर गा लें तो वही बहुत बड़ी बात है।
1: लेकिन आजकल बहुत रीमिक्सेस हो रहे हैं तमाम तरह के गानों के, और मुखड़े उठा के कई बार ये होता है कि पूरे गाने को वैसा का वैसा रीमिक्स कर दिया। कई बार ये होता है कि सिर्फ मुखड़ा उठा लिया और आगे के अंतरे नए तरीके से लिख लिए और गाने डाल दिए। इधर के सालों में ये प्रयोग बहुत ज्यादा हो रहा है।
2: एग्जैक्टली,
1: आप लोगों की क्या राय है इस बारे में?
2: मैं समझता हूं कि जो अभी ये कंटेम्प्रेरी जो सिंगर्स प्रोग्राम या वो करने लगे हैं, या थोड़ा बहुत अगर फिल्मों में कर रहे हैं, तो वो रिमिक्स का जो बीच में थोड़ा सा एक दौर आया जिसमें कुछ एक एडिशनल रिदम उन लोगों ने ऐड करके थोड़ा उसको डांसिंग मोड बनाने की कोशिश की कोई भी गानों के अंदर। मैं जैसे नेदरलैंड भी जाता हूं तो शो के बाद वो लोग एक सक्सेस पार्टी करते हैं। शो खत्म हो गया, पूरा ये पुराने गानों का जैसा था वैसा, फिर वहां के वो गोरे म्यूजिशियन हमारे साथ ये पुराने गाने गा रहे हैं। अब अगर वो तेरे प्यार का गम, तो अब उसमें वो लोगों को डांस करना है, तो वो उसके अंदर वो थोड़ा सा बेस गिटार वो ऐड करके तो उसको वो रिदम दे दिया जाता है कि उन लोगों को वैसे उसमें मजा आ रहा हो डांस कर रहे।
1: क्या मजेदार बात है। मतलब ये सोचना ही मजेदार है कि वो तेरे प्यार का गम जो है वो जैज हो जाए, रॉक हो जाए, उसमें वायलिंस आ जाए, उसमें बेस गिटार आ जाए। ये तो अलग ही बात हो गई पूरी तरह से।
2: तो शायद ये नए लोगों ने इस वजह से, यंगस्टर्स की वजह से शायद ये किया हो, थोड़ा लोगों को लिरिक्स से उनको मतलब नहीं, जो शायद ये नई पीढ़ी है ज्यादातर लोगों को, और डांसिंग बीट अगर चल रहा है तो वो दे एंजॉय है।
1: गोविंद, आपका क्या कहना है रिमिक्सेस के बारे में, गानों को नई शक्ल देने के बारे में?
0: मैं तो इसके खिलाफ हूं। मैं मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि पुराने जमाने में जो गाने बने हैं वो कुछ सोच के ही बने होंगे। आपके पास उनसे कुछ बेहतर है तो आप लेकर आइए, उनसे कुछ बेहतर नहीं है तो आप मत कीजिए, छेड़खानी मत कीजिए। और आप अभी का जनरेशन की बात करूँ तो मतलब मेरा ऐसा मानना है, या मैंने देखा भी है बहुत जगहों पर, कि आजकल छोटे बच्चे भी जो हैं, जो 10 12 15 साल के, जो जनरेशन आजकल जो चल रही है, वो पुराने गानों की ही ट्यून सीख रहे हैं।
1: बिल्कुल।
0: और वो गा भी रहे हैं। मैंने कई जगह पर बहुत से लोग मेरे साथ गाते भी हैं पुराने गानों को, जैसे भाई अजीब दास्ता मैंने गाया, इन्होंने लग जा गले गाया, वो सब गाते हैं, किसी की मुस्कुराहटों पे गाते हैं, जीना यहाँ गाते हैं, जाने कहाँ गए, ये सब गाते हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है सुन के।
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: भाई,
1: आज इतने बरस बाद भी, और हम तो विविध भारती में बैठे हैं जिसने संगीत को, पुराने संगीत को बाकायदा बचा कर रखा है, और दिन रात हम वही गाने तो प्ले करते हैं।
2: बिल्कुल। और शायद यही वजह क्या, अभी जितने ये बड़े सिंगर्स जो स्टेज प्रोग्राम भी करते हैं, तो मैंने इनको लाइव शोज में भी देखा है कि वो अपने गाने या डांसिंग और उसके बाद भी एक अपना एक पार्ट तो ऐसा रखते हैं जिसमें वो पुराने गाने गाते हैं, और वो लोगों को वो भी बहुत अच्छे लगते हैं।
0: बहुत अच्छे।
1: बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, मुकेश के गाने गाते हुए लाइव शोज में आपने देखा कि लोग जज्बाती हो रहे हैं, आंखों से आंसू आ रहे हैं?
2: यस यस,
1: है ना?
2: यस,
1: ये जो है कहीं ना कहीं वो गाने कनेक्ट करते हैं।
2: Exactly.
1: किसकी जिंदगी में क्या चल रहा है, तो जाने कौन सा दर्द उभर के आ जाता है।
2: एग्जैक्टली Exactly. सही बात है।
1: अब आप दोनों से ये रिक्वेस्ट है कि एक एक दर्द भरा गाना आप लोग गाइए।
2: मैंने अक्सर ये देखा है कि जैसे जाने कहाँ गए वो दिन ये गाना हुआ, या दोस्त दोस्त ना रहा, या एक दिन बिक जाएगा, ये गानों में कभी शो खत्म होने के बाद कोई ऐसा ऑडियंस में से कोई आता है और वो बोलता है कि आप वो गा रहे थे तो मेरे आंख में आंसू आ गए। क्योंकि ये गानों का फील इतना जबरदस्त है।
1: बिल्कुल।
2: इसको बनाया गया है ऐसे, ट्यून इतनी खूबसूरत है, तो शायद कहीं ना कहीं अगर इंसान की अपनी जिंदगी के साथ कोई ऐसा हादसा हुआ या रिलेट कर रहा है वो
1: जी जी
2: तो जज्बात उसके उभर आते हैं।

0: क्या बात है, बिल्कुल मन में वायलिन बजने लगा इस गाने को सुनकर। गोविंद, आप कौन सा दर्द भरा गाना गाएंगे?
1: मुझे तो एक गाना बहुत पसंद है और बहुत कम गाने को मौका मिला, जाऊं कहां बताए दिल दुनिया।

0: इस जहां से निकल, कहती है जिंदगी इस जहां से निकल। जाऊं कहां बताए दिल, दुनिया बड़ी है संग दिल। चांदनी आई घर जलाने, सूझे न कोई मंजिल।
1: क्या बात है, ये वो गाने हैं जो जिंदगी के तनावों और दबावों में हमें थामते हैं।
0: Exactly.
1: अब एक बात बताइए कि अगर फिल्म इंडस्ट्री में बाकी तमाम गायक होते और मुकेश न होते तो कितनी सुनी होती ये दुनिया।
0: मतलब अब हमारे हिसाब से अगर आप देखें तो हमको तो बहुत सारा वैक्यूम दिखाई देता अगर जी। मुकेश जी नहीं होते तो
1: जी
0: क्योंकि मुकेश जी ने गाने कम गाए हैं बनिस्बत और प्लेबैक सिंगर्स के, लेकिन आप भी जानते हैं कि उनका जो पॉपुलैरिटी का रेट है, ग्राफ है, वो अगर कंपैरिजन किया जाए जितने नंबर ऑफ सॉन्ग्स दूसरों ने गाए हैं वो सबसे ज्यादा है।
1: आम जनता की बहुत चहेते गायक
0: थे। यस यस
1: गोविंद, आप क्या कहेंगे?
2: बिल्कुल ये बात तो सही है मुख्तार भाई, से मैं एकदम वो सहमत हूँ कि एकदम अगर वो नहीं होते तो एक खालीपन होता। और गाने भले बहुत कम गाए हैं और हाँ। मैंने बहुत लोगों के मुँह से सुना है कि नंबर ऑफ सोलोज जितने हुए, डुएट्स सब ज़्यादा हिट्स उनके पास ही हैं। और गुजरात के तो बाप रे बादशाह ही माने जाते हैं वो। गुजरात में तो हर घर में, हर गली गली में उनके गाने बजते हैं।
1: तो दामाद थे वो गुजरात,
0: गुजरात ना, दामाद थे।
1: उनकी जो पत्नी है उनका नाम था सरल वेन, है ना, उनसे उनकी शादी हुई थी। और ये शादी जो है ये कांदीवली के एक मंदिर में की गई थी। उन्होंने घर वालों की मर्जी के खिलाफ ये शादी की थी सरल बेन के साथ।
0: जी जी जी जी,
2: देखिए ना क्या रंग आ गया था, गुजराती बोलने लगे थे,
1: गुजराती गाने भी गाए,
2: गुजराती गाने भी।
0: और आज इनफेक्ट जो 22 जुलाई है जिस दिन जो उनका जन्मदिन है वही उनकी शादी का दिन।
1: हाँ बिल्कुल, ये भी बहुत दिलचस्प बात है
0: और शायद पर्पसली उन्होंने उसी दिन किया होगा।
1: हाँ मेरा ख्याल शायद कितनी
0: 46 में।
1: हाँ और तब उनकी उम्र थी 23 साल।
0: 23 साल
1: कुछ गुजराती गाने गाए उन्होंने,
0: 49 सॉन्ग्स है मुकेश जी के।
1: तो फिर हम कुछ सुनना चाहेंगे आपसे क्योंकि आप अहमदाबाद से आते हैं तो गुजराती तो गाएंगे।
0: बहुत मशहूर गाना जो कल्याण जी आनंद जी के म्यूजिक में है, नजर ना जाम छलकावी ने चाल्या क्या तमे,

0: क्या तमें,
1: क्या बात है, क्या बात है, कितनी मिठास है इस गाने में। बल्कि वो जाया भी करते थे गुजरात रेगुलर, है ना, वहां शोज भी उन्होंने काफी सारे किए। कई लोग किशोर वर्सेस मुकेश करते हैं और कहते हैं कि एक कॉम्पिटिशन थी, जबकि ऐसा नहीं था। किशोर, मुकेश, रफी एक दूसरे को बहुत ज्यादा पसंद किया करते थे। इन तीनों महान गायकों की अपनी अपनी जगह है।
2: बिल्कुल, यस।
1: अब कौन सा गाना सुनाने वाले हो गोविंद आप?
3: मुख्तार भाई ने गुजराती गाना गाया, मैं भी गुजराती गा लेता हूँ।
1: अरे बाबा, क्या बात है, जरूर।

0: वाह वाह वाह, एक बिल्कुल अलग रंग आ गया। गुजराती गाने हमने सुने। ये जो आखिरी दौर था मुकेश जी की गायकी का, उसमें उन्होंने बहुत अलग अलग तरह के गाने गाए, चाहे वो धर्मात्मा हो, धर्म कर्म हो, कभी कभी हो, ये बाद के दौर के जो गाने हैं उनके, उनमें से कुछ गानों को याद कीजिए।
1: जैसे मुक्ति।
0: हाँ हाँ, अरे वाह वाह वाह वाह, क्या बात है।
1: आर डी बर्मन जी,
0: आर डी बर्मन के साथ बहुत कम गाने हैं ना।
1: हाँ, 16 गाने हैं।
0: हाँ, एक फिर कब मिलोगी भी है।
1: हाँ, लेकिन आमतौर से लोगों को जो पता है वैसे 5 ही गाने हैं।
0: अच्छा,
1: जो 16 गाने कुल गाए उनके साथ वैसे उन्होंने।
0: हाँ, हाँ, हाँ,
1: लेकिन
0: मुक्ति, सुहानी चांदनी रातें।

0: क्या बात है, क्या प्यारा आलाप है इस गाने में लता जी का, और क्या रंग आता है। मुख्तार भाई मेला और अंदाज जैसी फिल्मों में मुकेश नौशाद के लिए गाते हैं, फिर एक बहुत लंबा गैप आता है,
1: गैप आ गया, हाँ।
0: और उसके बाद कहां वापस आते हैं, साथी में,
1: साथी
0: साथी की तरफ मैं आना चाहता हूं। क्या प्यारे गाने हैं, हालांकि एक दो गाने हैं जिनकी चर्चा होती है, आप मेरा इशारा समझ रहे हैं कि मैं किस गाने का जिक्र करने जा रहा हूं।
1: हाँ, हुस्न जाना है,
0: एग्जैक्टली इसी गाने की बात करनी है।

0: क्या बात है, क्या बात है। यहाँ कुछ बातें जो ये जो गानों के बीच में जो जानकारी की पुड़ियाएं मैं छोड़ता रहता हूँ वो जरूरी है बताना कि मजरू साहब अंदाज में लिखते हैं नौशाद साहब के लिए, और उसके बाद एक पूरा लंबा गैप आता है कई दशक के बाद। साथी में फिर से नौशाद और मजरू आते हैं, मुकेश और नौशाद आते हैं, और ये पूरा वेस्टर्न नोटेशन वाला मामला था जो कि नौशाद की फितरत नहीं थी। तो ये एक बड़ी बात है। केरसी लॉर्ड जो है उन्होंने सारा अरेंजमेंट इन गानों का किया था। बारिश का मौसम है और मुकेश जी की याद जो है जुलाई और अगस्त ये वो महीने हैं जो जब पानी जम के बरसता है, और मुकेश जी का जन्मदिन आता है और उनकी याद का दिन 27 अगस्त भी आता है। बारिश के कुछ गानों की बात करते हैं। पहले शोर नहीं बाबा, शोर
1: सावन।

0: और अब बारिश का दूसरा गाना।
1: उषा खन्ना जी,
0: बिल्कुल बिल्कुल,
2: मैं कहने वाला था
0: इशारों में बात हो रही है सबक
3: बरक।

0: वाह, जिस तरह से इस साल गर्मी पड़ी है, हाँ। मुझे लगता है ये गाना बिल्कुल मुफीद है कि बरखा रानी जरा जम के बरसो, उतना ज्यादा जम के ना बरसो,
1: आना जाना ही मुश्किल हो जाए
0: लेकिन फिर भी बरसो, है ना। बारिश के दिनों में या कभी भी ऐसा हुआ है कि कभी किसी शो के लिए बहुत लेट हो गए हो और एकदम से सीधे स्टेज पर जाना पड़ा हो?
1: हाँ, ऐसा कई मरतबा ऐसा मौके आए हैं कि बारिश के दिनों में, क्योंकि आमतौर से अपने का थोड़ा सा सिस्टम जो है, रोड पे पानी भर जाना, या हाँ, हाँ। कभी गाड़ी अगर जा रही और गाड़ी खराब हो गई, कहीं ट्रैफिक जैम है, तो कभी थोड़ी सी देरी हो गई है। एक दो मरतबा ऐसा मेरे साथ भी हुआ है
0: और सीधे स्टेज पर जाना पड़ा।
1: सीधे स्टेज पर जाना पड़ा है
0: तो कैसी कैफियत होती है उस वक्त?
1: थोड़ा सा वो होता है अनकंफर्ट, लेकिन ठीक है, वो थोड़ा सा एक एक्सपीरियंस और वो रहता है तो प्रैक्टिकली इसको निभा लेते हैं।
0: अब गोविंद, आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि एकदम से डिलेज हो गए और भागते दौड़ते हाँफते हुए?
2: मैं तो एक बार प्रबोधन ठाकरे में ऐसा हो गया था, एकदम अटक गया था और ब्लेजर पहनने का मौका नहीं मिला था ऐसे ही जाके पहला गाना गाया, उसके बाद आके चींचिया
0: क्या बात है,
2: कर्टन ओपन हो चुका था, एंकर ने अनाउंस कर दिया सब, अब इंस्ट्रूमेंट दो दो बार बज गए।
0: अरे बाप रे बाप।

0: सिंगर आया ना, माइक भी चेक नहीं किया, जैसे मिला वैसे गाया।
1: और उसमें ये है कि आपको अपना एक तो बैलेंस प्रॉपर रखना है ना, और उसके बाद गाने को पूरी तरह से निभाना है, क्योंकि लोग सीधे मुकेश जी से तुलना कर रहे हैं।
0: आप कितने भी टेंशन रहे बैक स्टेज, आपको टेंशन छोड़ के स्टेज पे रिलैक्स होके जाना है।
1: बिल्कुल, ये बहुत
0: लोग
1: जरूरी
0: सुनने
1: बात
0: के लिए आए हैं, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमको बेस्ट देना है।
1: बिल्कुल बिल्कुल। तो कभी ऐसा होता है कि सफर करते हुए लोगों ने पहचान लिया और कहा कि भाई आपके गाने बहुत अच्छे लगते हैं, हमने आपके फला शो में आपको देखा था।
0: हाँ, ऐसा तो बहुत मरतबा होता है।
1: और लोग गाने वाने की फरमाइश भी कर देते हैं
0: कभी, कुछ लोग होते हैं ऐसे कि हाँ के बोल देते, कह रहे यार दो लाइन गा ही दो।
1: हाँ, मतलब मूड है कि नहीं?
0: वो नहीं, वो लोगों का तो, लोग इतने वो स्पॉन्टेनियस होते हैं, तो शायद वो एक जज्बात में आ जाते हैं शायद।
1: हाँ,
0: देखने
1: हाँ,
0: के बाद के उनको ऐसा लगता है कि शायद ये हर जगह यही काम करते रहे।
1: मतलब स्विच ऑन स्विच ऑफ मामला। गोविंद, आपके साथ भी होता है?
0: बहुत बार हुआ है, अभी तो एक रिसेंट में भी हुआ था। मैं आरसीटी गया था वाइफ के साथ से कुछ कपड़े लेने के लिए।
1: हाँ।
0: तो वाइफ तो लेडीज सेक्शन चली गई, मैं जेंट्स में, तो मेरे पीछे पीछे एक आदमी घूम रहा है।
1: अच्छा,
0: मुझे समझ नहीं आ रहा है क्यों घूम क्यों रहा है मेरे पीछे पीछे। मैं मेरी वाइफ को इशारा किया, देखो कोई घूम रहा है। तो फिर पीछे से किया, मैं कहा मिश्रा भाई तमें सिंगर छो? हाँ। अरे वाह, मैं आपको सुनता हूँ, बड़ा मजा आता है ऐसा वैसा। एक सेल्फी ले ली, फोटो ठीक, कुछ गा दीजिए, किसी की मुस्कुराहटों पे गा दीजिए।
1: अरे बाप रे बाप, मतलब आप
0: यहाँ पे
1: कर
0: कैसे
1: रहे?
0: हाँ, यहाँ पे कैसे गाओ? फिर गाया दो लाइन धीरे से उसके लिए मैंने।
1: देखिए ये होता है,
0: क्या
1: फैंस
0: करें, किसी को नाराज नहीं कर सकते।
1: ये जो संगीत के दीवाने, उनको खुश करने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। अच्छा ये बताइए, आज की इस बहुत शोर भरे, भाग दौड़ भरे, व्यस्तताओं से भरे जमाने में मुकेश को सच्ची श्रद्धांजलि क्या हो सकती है?
0: थोड़ा सा वैसे तो मुश्किल सवाल है ये, लेकिन यही है कि मैं पर्टिकुलरली मानता हूँ कि इंसान अपनी भाग दौड़ भरी जिंदगी के अंदर, खासतौर से पुराने गाने, चाहे वो मुकेश जी के हैं और सेंटिमेंटल सॉन्ग्स, चाहे वो किशोर कुमार साहब के आप सुन लो या रफ़ी साहब के, अगर ये पुराने गानों के अंदर इतना ठहराव और सुकून है कि अगर आप वो सुन लो तो दिमाग डेफिनेटली आपका खुश हो जाता है या शांत हो जाता है। और इसी वजह से मैं हमेशा स्टेज पर कहता हूँ कि ये पुराने गानों के अंदर जो बात है, जो मेलेडीज़ हैं, अगर ये पुराने गाने आपने 2.5-3 घंटे सुन लिए, तो अगले 1 साल तक यकीन मानिए कि नो कार्डियोग्राम, नो ECG, नो ब्लड टेस्ट।
1: बड़ी प्यारी बात बोली गोविंद, आप बताइए।
0: बिल्कुल बिल्कुल। और मैं तो बहुत लोगों के मुँह से सुन भी लिया हूँ कि बोलते हैं कि म्यूजिक से अच्छा मेडिसिन कुछ नहीं है। और आज के टाइम पे इतना दौड़ भाग वाली जिंदगी में सबको रिलैक्स चाहिए, और जो 2.5-3 घंटे का, 4 घंटे का समय लोग निकाल के आते हैं हमें सुनने के लिए, वो उस समय, मतलब मैं तो कितने लोगों को सुनते हुए ऐसा बोलते हैं मुझे कि ये 3-4 घंटे ममूस एरा में चले जाते हैं, अब एकदम भूल जाते हैं सब कुछ, सारी दिमागी टेंशन एकदम खत्म हो जाती है। वो 3 घंटे का रिलैक्स हमको अगले 1 हफ्ते तक का एनर्जी देता है।
1: एग्जैक्टली। अच्छा ये जो आजकल इंस्टाग्राम का और ये जो 60 सेकंड की और 30 सेकंड की रीलों का जमाना आ गया है, क्या उससे लोगों का फोकस खत्म हुआ है? क्या आपको ये लगता है कि ऑडियंस में कोई बंदा फोन पे लगा हुआ है या हम गा रहे हैं?
0: हाँ, कुछ कुछ लोग होते हैं ऑडियंस में डेफिनेटली, ऐसे इस दौर में भी मैंने देखा कि हमारे पुराने गानों का प्रोग्राम चल रहा है, कुछ लोग ऐसे होते हैं, शायद हो सकता है कि वो लोग हों जो किसी के बुलाने की वजह से शर्म में आए हों या ज़बरदस्ती, या शायद वो चीज़ को लाइक नहीं करते हों, क्योंकि जिसको खुदा ने संगीत दिया ही नहीं है दिल में, और उसको अगर वो जगह पर ला के बिठा दो तो शायद उसके लिए टाइम पास कैसे करके और यहाँ से मैं अपना ख़त्म करके जाएँ, ऐसे शायद वो लोग होते होंगे। बाकी आम तौर से अमूमन मैंने देखा है कि जो लोग हमारे पुराने गीतों को सुनने आते हैं प्रोग्राम में, वो फुल्ली इंजॉय करते हैं। और मेरा बिल्कुल मानना ये है कि जो दिल से जुड़ा हुआ पुराने गीतों के साथ, मेलेडीज़ के साथ है, अगर वो दिल से इसको इंजॉय करेगा तो उसकी डेफिनेटली पॉजिटिव इफेक्ट वो इंसान के दिल और जहन पे होगी।
1: बिल्कुल, बहुत ही प्यारी बात है। गोविंद, आप क्या कहेंगे कि जो भी लोग लाइव म्यूजिक सुनने आते हैं, चाहे वो फिल्म म्यूजिक हो या इंस्ट्रूमेंटल हो या क्लासिकल म्यूजिक हो, मोबाइल एटिकेट क्या होने चाहिए, लोग किस तरह का न्यूसेंस करते हैं?
0: इसका जवाब तो मैं मुख्तार भाई से ही चाहूंगा, वो भी दें, क्योंकि सीनियर यही है, ये ज्यादा देखते हैं।
1: सबसे पहले तो अपना मोबाइल म्यूट
0: रखना चाहिए
1: डेफिनेटली,
0: वो तो जरूरी।
2: और अगर आपका एटलीस्ट कभी कोई इंसान ऐसा है कि प्रोग्राम में आया और उसको कोई ऐसा इमरजेंसी कॉल वो एक्सपेक्ट कर रहा है, तो एटलीस्ट वो वाइब्रेशन पे रख दे ताकि उसको इसको पता चल जाए। लेकिन आप जो जिसको एंजॉय करना है उसको दिल से एंजॉय करना चाहिए,
1: बाकी लोगों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए।
2: एग्जैक्टली।
1: मुझे लगता है कि हम अपनी इस बातचीत की लगभग आखिरी दौर में आ गए हैं, और अब अपनी अपनी पसंद के कुछ गाने आप लोग जो हैं उनका जिक्र करेंगे और उनमें से कुछ गाएंगे।

0: और उसके बाद फिर हम अपने श्रोताओं से इजाजत लेंगे।
1: जहां तक ताल्लुक यूनुस भाई हमारे पसंद का है, तो हमको तो मुकेश जी के सारे गाने पसंद हैं, लेकिन आप पर्टिकुलरली, जैसा मैंने बताया कि कलाकार होता है तो वो इमोशंस के साथ जुड़ा हुआ होता है, तो हमको थोड़े वैसे गाने अच्छे लगते हैं। कोई जब तुम्हारा हृदय तोड़ दे हुआ है, जिस गली में तेरा घर ना हो, बालमा हुआ।

0: अब मैं आपको ऐसे फंसाने वाला हूँ जैसा किसी ने नहीं फंसाया होगा।
1: ऑलरेडी आप कर चुके हो।
2: कब से सोच रहा हूँ मैं।
0: अब मैं चाहता हूँ कि आप लोग अंताक्षरी खेलें। आप एक गाना गाएं और अब जाहिर है कि इनको जवाब देना पड़ेगा, तो ये करते हैं 5 मिनट तक।
1: एक चलिए मेरा पसंदीदा गाना।
0: हाँ।
1: मैं

0: लो भाई
1: एच,
0: गोविंद।
1: हाँ एच है, हाँ।
2: हरी हरी वसुंधरा पे नीला नीला ये गगन,
0: के जी
2: कि जिसके बाद

0: रंग भरी चमक रही उमंग भरी, ये किसने फूल फूल पे, ये किसने फूल फूल पे किया सिंगार है, ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार, ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार।
1: राव पर लाकर छोड़ा है इन्होंने।
0: राव

0: बहुत प्यारे शानदार गीतकार, कितना प्यारा गाना उन्होंने ये लिखा है। और देखिए मुकेश के गानों से भी अंताक्षरी खेली जा सकती है, ये हमने अपने सुनने वालों को बताया कि केवल मुकेश के गानों की अंताक्षरी हुई। एक आइडिया हमने लिसनर्स को दिया है कि वो मुकेश को सच्ची श्रद्धांजलि ये होगी कि उनकी अंताक्षरी भी खेले अपने घरों की महफिलों में, अपने आयोजनों में, तो कितना मजा आएगा। अब बस श्रोताओं से इजाजत लेने की बारी है, तो मुकेश को श्रद्धांजलि देते हुए आप दोनों मिलकर कौन सा गाना पेश करेंगे?
1: जीना है मरना है कल खे

0: क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया मुख्तार शाह और गोविंद मिश्र भाई, आप दोनों ने वक्त निकाला मुकेश जी की याद के लिए, ये महफिल विविध भारती में सजाई, बहुत बहुत शुक्रिया।
1: बहुत बहुत शुक्रिया यूनुस भाई, आपका भी, विविध भारती का भी, और उम्मीद करते हैं कि सुनने वालों को बहुत मजा आएगा इसको सुनकर, और बहुत दिल से हम सभी सुनने वालों का आपका शुक्रिया अदा करते हैं।
2: हाँ बिल्कुल, विविध भारती का और यूनुस भाई आपका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, और उम्मीद करते हैं कि मुकेश जी के गानों को और घर घरों में गुनगुनाया जाएगा और गाया जाएगा।
0: बहुत शुक्रिया,
2: थैंक यू।
0: ये था पार्श्व गायक मुकेश की याद में एक विशेष कार्यक्रम। आज आपने इस कार्यक्रम की दूसरी कड़ी सुनी। इस कार्यक्रम में हमारे मेहमान थे गायक मुख्तार शाह और उनके साथ गोविंद मिश्र। इन दोनों से बातचीत की आपके इस दोस्त यूनुस खान ने। रिकॉर्डिंग इंजीनियर किरण बंग, प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। आज पिटारा लाया था आज के मेहमान। आप और हम अब मिलेंगे अगले हफ्ते आज ही के दिन, मगर पिटारा तो भाई हर रोज खोला जाता है। कल भी खोलिए, रोज खोलिए और सुनिए पिटारा पिटारा पिटारा।

अशुभोसले के स्वर में जयशंकर प्रसाद की ये रचना संगीत जयदेव का था। रंगतरंग कार्यक्रम में अगली प्रस्तुति है महादेवी वर्मा की रचना स्वर छाया गांगुली।

0: डैडी फिल्म का ये गीत था। तलत अजीज की आवाज थी, सूरज सनीम के बोल राजेश रोशन की तर्ज थी। विविध भारती रंग तरंग, एक आवाज जो आप सभी के जहन में ताजा है और जिससे जुड़ी हैं आपकी ढेर सारी रेडियो की यादें।
1: मैंने ये सोचा कि भारत में तो बहुत ज्यादा भावुक हैं लोग, करोड़ों की संख्या में सुन रहे हैं रेडियो से कान लगाए, तो मैंने तब अपनी आवाज में कंपन लाते हुए कहा था कि ये मैच अब कमजोर दिल के इंसानों के लिए नहीं रह गया है।
0: जानी माने क्रिकेट कमेंटेटर सुशील दोषी की जिंदगी की कहानी, मैटिनी शो 1 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

गुलजार के बोल थे। वादा एल्बम से ये गीत था, संगीत उस्ताद अमजद अली खान साहब का था। अब भूपिंदर की आवाज गूंज रही है गुलजार के बोल।

0: एल्बम का नाम था मैं और मेरा साया, डॉक्टर भूपेन हजारिका की आवाज थी। विविध भारती, एक आवाज जो आप सभी के जहन में ताजा है और जिससे जुड़ी हैं आपकी ढेर सारी रेडियो की यादें।
1: मैंने ये सोचा कि भारत में तो बहुत ज्यादा भावुक हैं लोग, करोड़ों की संख्या में सुन रहे हैं रेडियो से कान लगाए, तो मैंने तब अपनी आवाज में कंपन लाते हुए कहा था कि ये मैच अब कमजोर दिल के इंसानों के लिए नहीं रह गया है।
0: जानी माने क्रिकेट कमेंटेटर सुशील दोषी की जिंदगी की कहानी, मैटिनी शो 1 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: आए हाय।
0: और अब जाने माने गायक सोनू निगम को जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए पेश कर रहे हैं ये गाना।

मोहब्बत पलकों पे कितने हसीन ख्वाब सजाती है, फूलों से महकते ख्वाब, सितारों से जगमगाते ख्वाब, शबनम से बरसते ख्वाब। फिर कभी यूं भी होता है कि पलकों की डालियों से ख्वाबों के सारे परिंदे हो जाते हैं और आँखें हैरान सी

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। लोकसभा की कार्यवाही नीट परीक्षा मुद्दे को लेकर विद्यार्थियों के प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई पर विपक्ष के हंगामे के कारण दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। आज सुबह 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होने पर विपक्षी सदस्यों ने विद्यार्थियों के प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई के विरोध में नारेबाजी शुरू कर दी। विपक्षी सांसद इस मुद्दे पर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह से सदन में बयान देने की मांग कर रहे थे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि प्रश्नकाल सदस्यों का अधिकार है। उन्होंने कहा कि सदन की कार्यवाही में व्यवधान डालना संसदीय परंपराओं के अनुरूप नहीं है।
1: आप सबसे आग्रह किया है कि सदन में प्रश्नकाल के अंदर सदन को बाधित नहीं करें। प्रश्नकाल महत्वपूर्ण समय होता है, सदस्यों को सवाल उठाते हैं, सरकार की जवाबदेही होती है। आप प्रश्नकाल नहीं चलाना चाहते, सदन की कार्रवाई आज 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।
0: लोकसभा ने लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक में प्रश्न पत्र लीक मामले में दोषियों को 10 वर्ष तक के कारावास और 10 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त अपराधियों की संपत्ति भी जब्त कर ली जाएगी। मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए प्रत्येक राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश को दैनिक सुनवाई के लिए विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करने का आदेश दिया गया है। गृहमंत्री अमित शाह ने विधेयक पारित होने पर देश के प्रत्येक विद्यार्थी को बधाई दी है। श्री शाह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये विधेयक लोक परीक्षाओं की शुचिता भंग करने वालों को कड़ी सजा देने वाले पुख्ता प्रावधानों के माध्यम से देश के युवाओं के सपनों और आकांक्षाओं की रक्षा करता है। राज्यसभा आज लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पर विचार और पारित करने के लिए चर्चा करेगी। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह आज दोपहर इस विधेयक को सदन में प्रस्तुत करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में IASV त्रिवेणी पर समुद्री अभियान में गई महिलाओं की टीम से बातचीत की और उनकी असाधारण उपलब्धि तथा दृढ़ संकल्प की सराहना की। इस अवसर पर श्री सिंह ने कहा कि उनका सफल अभियान राष्ट्र के लिए बहुत गर्व का विषय है।
2: आपने इस अभियान से मैं कह सकता हूं कि केवल आपने समुद्र को ही नहीं जीता है, आपने उस सारी रूढ़ियों को भी पराजित किया है जो कभी कहती थी हमारी बेटियां ऐसे कठिन सैन्य अभियानों का हिस्सा नहीं बन सकती। आपने सिद्ध किया है फिजिकल कैपेबिलिटी, मेंटल टफनेस और लीडरशिप क्वालिटी किसी जेंडर की मोहताज नहीं होती।
0: बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश में 3 निर्वाचन क्षेत्रों में विधानसभा उपचुनाव के लिए मतदान जारी है। बिहार में बांकेपुर, गुजरात में मंजलपुर और मध्य प्रदेश में दतिया निर्वाचन क्षेत्रों के लिए वोट डाले जा रहे हैं। दिन में 11 बजे तक पटना के बांकेपुर विधानसभा सीट पर 11.5%, गुजरात के मंजलपुर सीट पर 14.27% और मध्य प्रदेश की दतिया सीट पर 32.53% मतदान की खबर है। रूस के मिसाइल और ड्रोन हमले में 2 बच्चों सहित 8 लोगों की मौत हो गई। यूक्रेन की सेना के अनुसार कीव और यूक्रेन के अन्य शहरों सहित देश के विभिन्न हिस्सों में कई हमले किए गए। कीव के मेयर विताली क्लट्सको ने लोगों से सुरक्षित स्थानों पर शरण लेने की अपील की। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने एक दिन पहले ही चेतावनी दी थी कि रूस यूक्रेन पर बड़े पैमाने पर हमला कर सकता है। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने कल व्हाइट हाउस में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की थी। राष्ट्रमंडल खेलों में पैरा एथलेटिक्स के पुरुषों की 100 मीटर T47 स्पर्धा के फाइनल में भारत के दिलीप महादू गावित ने स्वर्ण और मोहम्मद बासिल मोरसिंगा नाकाथ ने रजत पदक जीतकर इतिहास रच दिया। पुरुषों की लंबी कूद स्पर्धा में मुरली श्रीशंकर ने रजत पदक जीता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने पदक जीतने पर खिलाड़ियों को बधाई दी है। भारत विश्व स्क्वाश जूनियर टीम चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंच गया है। सेमीफाइनल में भारत का सामना अमेरिका से होगा। भारत के वरिष्ठ बल्लेबाज अजिंक्य रहाणे ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। रहाणे ने भारत के लिए अपना आखिरी मैच वर्ष 2023 में वेस्टइंडीज दौरे के दौरान टेस्ट टीम में खेला था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: विविध भारती से बोल रहे हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे यादों की महफिल।

आइए सुनिए यादों की महफिल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, मैं हूं आपका दोस्त यूनुस खान और आज सोनू निगम को हम दे रहे हैं जन्मदिन की बधाइयां। तो कुछ ऐसे गाने जो सोनू निगम के बड़े सुहाने से गाने हैं जो हमारे सफर को बनाएंगे सुनहरा।

0: दिल से फिल्म का ये गीत आपने सुना, एक आवाज जो आप सभी के जहन में ताजा है और जिससे जुड़ी हैं आपकी ढेर सारी रेडियो की यादें।
1: मैंने ये सोचा कि भारत में तो बहुत ज्यादा भावुक हैं लोग, करोड़ों की संख्या में सुन रहे हैं रेडियो से कान लगाए, तो मैंने तब अपनी आवाज में कंपन लाते हुए कहा था कि ये मैच अब कमजोर दिल के इंसानों के लिए नहीं रह गया है।
0: जानी माने क्रिकेट कमेंटेटर सुशील दोषी की जिंदगी की कहानी, मैटिनी शो 1 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: बॉर्डर फिल्म का ये गीत जावेद अख्तर के बोल थे, अनु मलिक की तर्ज थी, रूप कुमार राठौड़, सोनू निगम और साथियों की आवाजें थी। आज है सोनू निगम का जन्मदिन और विविध भारती पर यादों की महफिल कार्यक्रम में उनके गाने हम आपको सुनवा रहे हैं।
1: जाने माने फिल्मी संगीतकार दिलीप सेन हमसे साझा करेंगे अपनी फिल्मी संगीत यात्रा।

परदेश फिल्म का गाना सोनू निगम, हेमा सरदेसाई और शंकर महादेवन। आनंद बख्शी, नदीम श्रवण।

परदेश के बाद अब थ्री इडियट्स फिल्म का गाना सुनो निगम शान और स्वानंद किरकिरे। गीत स्वानंद किरकिरे, संगीत शांतनु मोहित्रा। दिन के 12:39 और विविध भारती पर ऑल इज वेल।

0: हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, दिशा और चश्मे बदूर।
1: उन्होंने कहा कि देखो, अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला, वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे, वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये एक
2: और आ गया।
1: एक और आ गया।
3: कहा जल्दी है बुलबुल, कोई और कर्जदार लग गया तेरे पीछे क्या?
4: अरे ललन मियां आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
0: दास्तान सई परांजपे की, उजाले उनकी यादों के, 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: सुनिए
0: एक आवाज जो आप सभी के जहन में ताजा है और जिससे जुड़ी हैं आपकी ढेर सारी रेडियो की यादें।
6: मैंने ये सोचा कि भारत में तो बहुत ज्यादा भावुक हैं लोग, करोड़ों की संख्या में सुन रहे हैं रेडियो से कान लगाए, तो मैंने तब अपनी आवाज में कंपन लाते हुए कहा था कि ये मैच अब कमजोर दिल के इंसानों के लिए नहीं रह गया है।
0: जानी माने क्रिकेट कमेंटेटर सुशील दोषी की जिंदगी की कहानी, मैटिनी शो 1 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: आए हाय
0: सुनो निगम और अनुराधा पौडवाल, फिल्म का नाम है तुम बिन।

0: आँखें ऊपर वाले की नियामत हैं, जिनके जरिए हम इस दुनिया को देखते हैं।
1: जीवन से भरी तेरी आँखें।
0: आँखों से जुड़ी बीमारियों को लेकर हमारी चिंता बड़ी गहरी होती है, इसीलिए विविध भारती के स्टूडियो में आ रहे हैं जाने माने नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अनूप राजाध्यक्ष।
2: देखिए, जब अब बच्चा आता है हमारे पास 7-8 साल का है और हमने उसको सपोज -3 दे दिया, देख के ऐसे हड़बड़ा जाते हैं जैसे कि हमने कहा है बच्चे को कोई बड़ी बीमारी हो गई। कैसे कह सकते इसको नंबर है, हम दोनों को नहीं।
0: सेहतनामा 3 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: दिल जाता है फिल्म का ये गीत आपने सुना, और इसी के साथ अब आज का ये कार्यक्रम यहीं खत्म होता है।
1: इंजीनियरिंग और मेडिकल एंट्रेंस परीक्षा की पढ़ाई को कैसे बनाया जाए आसान, प्रभावी और तनाव मुक्त, इसके कुछ फॉर्मूले बताएंगे फिजिक्स के प्रोफेसर नयन वर्मा।
2: अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रही है, आप अपना स्टडी टाइम डिवाइड कर लीजिए, 6 घंटा आप जो भी कोचिंग में जाते हैं, 7-8 घंटे की नींद, 1 घंटे का आपका स्पोर्ट्स, उसके बाद में आपके पास 6-7 घंटे जो बचते हैं वो टाइम डिवीजन आपके ऊपर डिपेंड करता है, बिकॉज दैट टाइम डिवीजन डिफर्स फ्रॉम स्टूडेंट टू स्टूडेंट। लेकिन आप MCQs रोज प्रैक्टिस करें, बिकॉज आपका जो भी एडमिशन आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम के रैंक के ऊपर डिसाइड होता है।
1: काउंसलर डॉक्टर सुमति ओझा साझा करेंगी तनाव और दबाव से कैसे निपटें,
3: हम किस तरह से पेरेंटिंग करते हैं जैसे हमारे माँ बाप ने हमारे साथ किया। अब जमाना बदल गया है, वी आर इन डिजिटल ईरा और इन्फॉर्मेशन फ्री फ्लोटिंग अवेलेबल है, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि बार बार वर्कशॉप्स रखना, रोल प्ले बताना, उन्हें कैसे कम्युनिकेट करना, ये सब बताना बहुत जरूरी है।
1: फिल्म लेखिका विभा सिंह करेंगी इस कार्यक्रम का विचार मंथन।
4: आजकल हम बहुत बातें सुनते हैं कि कितनी मेहनत सही है और कितनी नहीं सही है, वो एक अलग डिस्कशन है, पर हार्ड वर्क का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, ये बच्चों को जानना बहुत जरूरी है।
1: तो सुनिए विविधा में सृजन भारती 2 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: कनकलता। राज्यसभा में आज लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पर विचार और पारित करने के लिए चर्चा होगी। कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह आज दोपहर इस विधेयक को सदन में प्रस्तुत करेंगे। दिन में 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होने पर सभापति सीपी राधाकृष्णन ने शून्यकाल शुरू किया। सभापति ने बताया कि उन्होंने डॉ. जितेंद्र सिंह की लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 को विचार और पारित करने संबंधी सूचना स्वीकार कर ली है। उन्होंने कहा कि विधेयक की प्रतियां सदस्यों को वितरित कर दी गई हैं, जिससे वे इसमें संशोधन प्रस्तुत कर सकें। लोकसभा ने कल ये विधेयक पारित कर दिया है। शून्यकाल के दौरान कांग्रेस के प्रमोद तिवारी ने नीट परीक्षा पेपर लीक के विरोध में प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर कथित पुलिस कार्रवाई का मुद्दा उठाया। उन्होंने गृहमंत्री अमित शाह से इस पर बयान देने की मांग की। इसके जवाब में केंद्रीय मंत्री और सदन के नेता जेपी नड्डा ने कहा कि विपक्ष का पूरा ध्यान सदन की कार्यवाही को बाधित करने पर है।
1: इस संसद के माध्यम से देश को इस बात का संदेश देना चाहता हूं कि मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार हर विषय पर चर्चा करने के लिए तैयार है। विपक्ष जो है वो गैर जिम्मेदाराना व्यवहार कर रही है, यह ध्यान में रहे।
0: लोकसभा की कार्यवाही नीट परीक्षा मुद्दे को लेकर विद्यार्थियों के प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई पर विपक्ष के हंगामे के कारण दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। आज दिन में 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होने पर विपक्षी सदस्यों ने विद्यार्थियों के प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई के विरोध में नारेबाजी शुरू कर दी। विपक्षी सांसद इस मुद्दे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से सदन में बयान देने की मांग कर रहे थे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि प्रश्नकाल सदस्यों का अधिकार है। उन्होंने कहा कि सदन की कार्यवाही में व्यवधान डालना संसदीय परंपराओं के अनुरूप नहीं है।
2: आप सबसे आग्रह किया है कि सदन में प्रश्नकाल के अंदर सदन को बाधित नहीं करें। प्रश्नकाल महत्वपूर्ण समय होता है, सदस्यों को सवाल उठाते हैं, सरकार की जवाबदेह होती है। आप प्रश्नकाल नहीं चलाना चाहते, सदन की कार्यवाही आज 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को नीट पेपर लीक मामले को लेकर जंतर मंतर पर विद्यार्थियों के प्रदर्शन के दौरान तैनात रैपिड एक्शन फोर्स के गोला बारूद के उपयोग का रिकॉर्ड सुरक्षित रखने का निर्देश दिया है। सर्वोच्च न्यायालय ने कानून व्यवस्था की स्थिति से निपटने के लिए पैलेट गन के इस्तेमाल पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि पुलिस को असाधारण परिस्थितियों में पैलेट गन का इस्तेमाल करने का अधिकार है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची और वी मोहन की पीठ ने दिल्ली सरकार को प्रदर्शन के दौरान पैलेट गन से घायल हुए लोगों को बेहतर से बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने का भी निर्देश दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में IASV त्रिवेणी पर समुद्री अभियान में गई महिलाओं की टीम से बातचीत की और उनकी असाधारण उपलब्धि तथा दृढ़ संकल्प की सराहना की। इस अवसर पर श्री सिंह ने कहा कि उनका सफल अभियान राष्ट्र के लिए बहुत गर्व का विषय है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने पंजाब के बरनाला में अनुसूचित जाति समुदाय से जुड़े सफाई कर्मचारियों के साथ कथित पुलिस ज्यादती के मामले में पंजाब के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को नोटिस जारी किया है। आयोग ने दोनों अधिकारियों से इस मामले में 7 दिन के भीतर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है। बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश में 3 निर्वाचन क्षेत्रों में विधानसभा उपचुनाव के लिए मतदान जारी है। बिहार में बांकीपुर, गुजरात में मंजलपुर और मध्य प्रदेश में दतिया निर्वाचन क्षेत्रों के लिए वोट डाले जा रहे हैं। अमरीकी सेना ने कल रात भर ईरान के खिलाफ व्यापक हवाई हमले किए। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने बताया कि ईरान द्वारा जॉर्डन में स्थित अमरीकी सैन्य ठिकानों और होर्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों पर किए गए इसके जवाब में इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर के दर्जनों ठिकानों को निशाना बनाया गया। इस बीच ईरान के खुजिस्तान प्रांत के 4 शहरों अहवाज और बंदर अब्बास में कई विस्फोटों की खबरें सामने आई हैं। भारत विश्व स्क्वाश जूनियर टीम चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंच गया है। सेमीफाइनल में भारत का सामना अमेरिका से होगा। उधर भारतीय महिला टीम क्वार्टर फाइनल में अमेरिका से 1-2 से हार गई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: p.m. The National Commission for Scheduled Castes has issued notices to the Punjab Chief Secretary and Director General of Police over the alleged police excesses against sanitation workers belonging to the Scheduled Caste community in Barnala, Punjab. The Commission has asked to submit action taken report within 7 days. Prime Minister Narendra Modi has said that respect for nature, environment and the entire creation forms the very foundation of human existence. Sharing a Sanskrit quote in a social media post, Mr. Modi called upon people to nurture a spirit of gratitude and service towards nature and work together to build a healthy, prosperous and strong nation. The Indian Meteorological Department, IMD, has forecast very to extremely heavy rainfall at places over Madhya Maharashtra and West Madhya Pradesh today. Heavy to very heavy rainfall is also expected today over parts of northeast India, East Madhya Pradesh, East Rajasthan, Gujarat region, Himachal Pradesh, Kerala and Mahe, Konkan in Goa and coastal Karnataka. The United States military has launched heavy strikes against Iran overnight. The United States Central Command, CENTCOM, said it hit dozens of Islamic Revolutionary Guard Corps targets in response to firing by Iran on U.S. bases in Jordan and at ships in the Strait of Hormuz. The CENTCOM said the strikes aimed to diminish threats posed by Iran and its proxies to American forces, commercial shipping and neighboring Gulf countries. Senior India batter Ajinkya Rahane has announced his retirement from international cricket with immediate effect. In a social media post, Rahane said the time is right for him to move on from international cricket in all formats. Rahane last played for India in 2023 when he was called up to the test team for the tour of West Indies. The Indian men's team has stormed into the semi-finals of the Squash Junior Team Championships in Ontario, Canada. The fifth-seeded Indian men's team defeated England 2-1 to reach the semi-finals. They will next face the United States. And with that, we end this news bulletin.
1: हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, अब से कुछ ही क्षण पश्चात आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
2: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम करकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मिले खूंटी भाजपा जिला अध्यक्ष, खूंटी बाईपास निर्माण शुरू कराने का किया आग्रह। जेपीएससी जेएसएससी विवाद में बाबूलाल मरांडी ने किया सरकार पर हमला, सीआईडी जांच पर उठाए सवाल। कृषि मंत्री ने दिया जवाब, कांग्रेस निष्पक्ष जांच के लिए प्रतिबद्ध। हजारीबाग में पुलिस और प्रिंस खान गैंग के बीच मुठभेड़, एक अपराधी घायल, कई संदिग्ध गिरफ्तार। सुरक्षित और सुगम दर्शन के लिए सरकार ने खत्म की वीआईपी व्यवस्था, बाबा बैद्यनाथ और बासुकीनाथ धाम में समान दर्शन व्यवस्था लागू। और ईस्ट जोन टीम की कप्तानी संभालेंगे ईशान किशन, दलीप ट्रॉफी टीम में झारखंड के 5 खिलाड़ियों को मिला स्थान। और अब समाचार विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी के खूंटी जिलाध्यक्ष आनंद कुमार और वार्ड पार्षद अनूप साहू ने नई दिल्ली में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात कर तुपदाना कुंदेबार टोली राष्ट्रीय राजमार्ग 20 के फोरलेन निर्माण और खूंटी बाईपास परियोजना का कार्य शीघ्र शुरू कराने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया में विलंब के कारण लगभग 1907 करोड़ रुपए की इस परियोजना का काम शुरू नहीं हो सका है। उन्होंने केंद्र से आवश्यक कार्रवाई कर निर्माण कार्य जल्द शुरू कराने की मांग की। हजारीबाग में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर राज्य सरकार पर निशाना साधा। श्री मरांडी ने मामले की सीबीआई जांच कराने, संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने और उन्हें पदमुक्त करने की मांग की।
3: सीआईडी जिस प्रकार से जांच कर रही है, उनकी जांच ही संदेह के घेरे में, जेसीसी में जिस प्रकार से उन्होंने जांच किया है और जांच के बाद जब अफसर बदले तो पूरी कुछ बदल दिया और कोर्ट को भी उन्होंने गलत इन्फॉर्मेशन दिया और इसलिए सीआईडी जांच लीपापोती कर रही है और इसलिए हमने कहा सीबीआई से जांच करानी चाहिए पूरे मामले।
2: जेपीएससी परीक्षा में धांधली मामले में कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा है कि कांग्रेस इस मामले में चुप नहीं है। उन्होंने कहा

0: कि इस मामले को गंभीरता से लेते हुए मुख्यमंत्री ने सीआईडी को जांच का आदेश दिया।
1: जेपीएससी का चीजें उजागर हुई हैं, बहुत ही शर्मसार करने वाली बात है, पूरे राज्य के लिए, राज्य के लोगों के लिए, सरकार के लिए। मैं क्रेडिट भी देना चाहती हूं माननीय मुख्यमंत्री जी को, किसी भी सरकार के लिए अपने ही शासन में अपने संस्थाओं के ऊपर जांच कराना कोई आसान चीज नहीं है। मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में जैसे ही बात आई, उन्होंने सीआईडी को सौंपने का काम किया है और मुझे लगता है बहुत कम समय में चीजें निकल के आ रही हैं, काफी चीजें क्लियर होते हुए जल्द ही दिखेगी।
0: राज्य सरकार ने सेवानिवृत्त और दिवंगत शिक्षकों को बड़ी राहत दी है। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने निर्देश जारी कर नियुक्ति तिथि से ग्रेड वन में प्रोन्नति का वित्तीय लाभ देने का फैसला किया है। इससे राज्य के लगभग 8 से 10 हजार शिक्षक या उनके आश्रित लाभान्वित होंगे। विभाग के अनुसार वर्ष 1982 से 2012 के बीच नियुक्त अप्रशिक्षित शिक्षकों को सेवाकालीन प्रशिक्षण के बाद यह लाभ मिलेगा। हजारीबाग के बड़कागांव थाना क्षेत्र में पुलिस और प्रिंस खान गैंग से जुड़े संदिग्ध अपराधियों के बीच मुठभेड़ हुई। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक संदिग्ध अपराधी के पैर में गोली लगी, जबकि कुछ अन्य संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस के अनुसार गुप्त सूचना के आधार पर विशेष अभियान चलाया गया था। पुलिस अधीक्षक अमन कुमार ने बताया कि मामले में आगे की कार्रवाई और फरार अपराधियों की तलाश जारी है।
2: पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि कुछ लोग हथियार के साथ आने वाले, उसी सूचना पर घेराबंदी की थी। अपराधियों के द्वारा एस्केप करने का प्रयास किया गया, पुलिस के ऊपर फायरिंग की गई। आत्मरक्षा में पुलिस के द्वारा भी फायरिंग की गई, एक अपराधी को गोली लगा है। कई लोग हथियार के ट्रांजेक्शन में, रेकी करने में, सूचना उपलब्ध कराने में और अन्य चीजों में इन्वॉल्व रहे हैं, जिसके बारे में फर्दर जानकारी हम लोग लेंगे।
0: रांची के भगवान बिरसा जैविक उद्यान और मांझी में पहली बार आर्टिफिशियल इंक्यूबेशन से 18 स्वस्थ मोर के चूजों की सफल हैचिंग कराई गई है। उद्यान प्रबंधन के अनुसार वैज्ञानिक निगरानी में पूरी हुई इस प्रक्रिया से अंडों के सुरक्षित विकास और चूजों के जीवित रहने की संभावना बढ़ी है। सभी चूजों को वैज्ञानिक मानकों के अनुरूप विकसित नर्सरी में रखा गया है, जहां उनके स्वास्थ्य और विकास की लगातार निगरानी की जा रही है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIRNews Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। ऑपरेशन दौरा पहाड़ के तहत गिरफ्तार भाकपा माओवादी के इनामी नक्सली मिसर बेसरा समेत पांचों आरोपियों को कड़ी सुरक्षा के बीच रांची से धनबाद लाया गया। सदर अस्पताल में मेडिकल जांच के बाद सभी को न्यायिक हिरासत में धनबाद जेल भेज दिया गया। पुलिस ने बताया कि पूरे अभियान के दौरान सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे। अस्पताल परिसर को छावनी में तब्दील कर दिया गया था और वरिष्ठ पुलिस अधिकारी लगातार सुरक्षा व्यवस्था की निगरानी करते रहे। पलामू के मेदिनी नगर स्थित कोयल नदी के शिवाला घाट के पास हुई गोलीबारी में 3 युवक घायल हुए। पुलिस के अनुसार आपसी रंजिश में हुई इस घटना में घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं चैनपुर थाना क्षेत्र में चाकूबाजी में घायल मकबूल मियां की इलाज के दौरान मौत हो गई। राज्य सरकार ने श्रावणी मेला 2026 के दौरान देवघर स्थित बाबा बैद्यनाथ धाम और दुमका के बाबा बासुकीनाथ धाम में वीआईपी तथा आउट ऑफ टर्न दर्शन की व्यवस्था समाप्त कर दी है। सरकार ने सभी श्रद्धालुओं के लिए समान दर्शन व्यवस्था लागू करते हुए विभिन्न राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और अन्य संस्थानों से वीआईपी

स्थित बाबा बैद्यनाथ धाम और दुमका के बाबा बासुकीनाथ धाम में वीआईपी तथा आउट ऑफ टर्न दर्शन की व्यवस्था समाप्त कर दी है। सरकार ने सभी श्रद्धालुओं के लिए समान दर्शन व्यवस्था लागू करते हुए विभिन्न राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और अन्य संस्थानों से वीआईपी

0: 63 पर और निफ्टी 6 अंक बढ़कर 24,257 पर पहुंच गया। इधर राजधानी रांची के सराफा बाजार में आज 22 कैरेट सोने की कीमत 1,33,600 रुपए प्रति 10 ग्राम है, जबकि चांदी की कीमत 2,28,000 रुपए प्रति किलो है। रांची के जेवीएम श्यामली में सीबीएसई क्लस्टर 3 टेबल टेनिस खेल प्रतियोगिता आज से शुरू हो रही है। इसमें झारखंड और बिहार की लगभग 60 बालक और बालिका टीमें भाग ले रही हैं। आयोजन समिति के अनुसार प्रतियोगिता का उद्देश्य विद्यार्थियों में खेल भावना, अनुशासन और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना है।
1: सीबीएसई ने हम लोग को ये ऑनर दिया है जेवीएम शामली को कि ये हम लोग होस्ट करें टेबल टेनिस टूर्नामेंट बिहार एंड झारखंड के स्कूल सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल्स के लिए। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी प्रेस्टीज है। स्कूल्स से 60 टीम्स हैं, 350 पार्टिसिपेंट्स हैं और ये 3 दिन चलेगा।
0: विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन को दलीप ट्रॉफी 2026-27 के लिए ईस्ट जोन टीम का कप्तान बनाया गया है। 15 सदस्य टीम में झारखंड के 5 खिलाड़ियों को स्थान मिला है। किशन के अलावा कुमार कुशाग्र, अनुकूल रॉय, विराट सिंह और शिखर मोहन टीम में शामिल हैं। और अब अंत में मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मिले खूंटी भाजपा जिला अध्यक्ष। खूंटी बाईपास निर्माण शुरू कराने का किया आग्रह। जेपीएससी जेएसएससी विवाद में बाबूलाल मरांडी ने किया सरकार पर हमला। सीआईडी जांच पर उठाए सवाल। कृषि मंत्री ने दिया जवाब, कांग्रेस निष्पक्ष जांच के लिए प्रतिबद्ध। हजारीबाग में पुलिस और प्रिंस खान गैंग के बीच मुठभेड़, एक अपराधी घायल, कई संदिग्ध गिरफ्तार। सुरक्षित और सुगम दर्शन के लिए सरकार ने खत्म की वीआईपी व्यवस्था। बाबा बैद्यनाथ और बासुकीनाथ धाम में समान दर्शन व्यवस्था लागू। और ईस्ट जोन टीम की कप्तानी संभालेंगे ईशान किशन। दलीप ट्रॉफी टीम में झारखंड के 5 खिलाड़ियों को मिला स्थान। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे प्रादेशिक समाचार मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, प्रस्तुत है कार्यक्रम अनुरंजनी। उपशास्त्रीय संगीत के अंतर्गत ये कार्यक्रम आप सुनेंगे अनुरंजनी। आज के कार्यक्रम के कलाकार हैं शोभा गुर्टू।

मरहूम सुरों के साधक मोहम्मद रफी ही थे जो अब तक दिल में बसे हैं। मन तड़पत हरि दर्शन को आज मेरा पसंदीदा गाना है और मैं बरबस गुनगुनाता हूं। एक और श्रोताएं जो लिखते हैं कि चित्ररेखा फिल्म का ये गीत साहिर लुधियानवी, रोशन, प्रदीप कुमार, केदार शर्मा, क्या बात है, पूरे डिटेल्स आपने लिख लिए हैं। राग यमन पर आधारित गाना, सितार, सरोद और बांसुरी का बेहतरीन इस्तेमाल, ये भी एक श्रोता ने लिखा है। और एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि रफी साहब की आवाज रूह को छू लेने वाली आवाज है। और इसके अलावा एक और श्रोता का कहना है कि बहुत ही सुंदर गीत है, मन रे तू काहे ना धीर धरे, बचपन से सुनती आ रही हूं, कितना सुकून है इन बोलों में। एक और श्रोता, मेरे लखनऊ के घर में जिसमें मैं खेली पढ़ी, सबके शादी ब्याह हुए, भाई बहन का प्यार, सब यादें रह गई, वो घर बेच दिया गया, भाई लोग फ्लैट में चले गए, बहुत रोना आ रहा है। एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि बहुत ही सुंदर बोल चित्रलेखा फिल्म का ये गाना। एक और श्रोता का कहना है कि रफी साहब की आवाज का तिलस्म कभी खत्म नहीं हुआ, इस तिलस्म का असर और ज्यादा गाढ़ा होता चला जा रहा है। एक और श्रोता का कमेंट है, सुमधुर गानों की बौछार जैसे बारिश की पहली बूंदें। और इसके अलावा एक श्रोता है जो कह रहे हैं कि मुकेश साहब पर आधारित दोनों कार्यक्रम बहुत अच्छे थे, दो दो बार सुना पर प्यास नहीं बुझी। इस तरह के कमेंट्स हैं। और अब चलिए आगे बढ़ते हैं और वो गाना सुनवा रहे हैं जो इबारत में शामिल था लेकिन मुखड़े के रूप में नहीं, बल्कि गाने की बीच की पंक्तियों को शामिल किया था। फिर भी फिल्म संगीत के दीवाने हमारे श्रोता, विविध भारती परिवार के हमारे सदस्य, आप सभी ने इस गाने को पहचान लिया था। और ये गाना आपको सुनवा रहे हैं, बताइएगा फिल्म का नाम और ये भी कि इस फिल्म का कौन सा गाना आपका सबसे ज्यादा पसंदीदा रहा, या कौन से गाने हैं जो सबसे ज्यादा पसंदीदा रहे हैं। और इसके अलावा ये भी बताइए कि आज सुबह से वो कौन सा गाना है जो आपके होंठों पर सजा है।

0: भाई ये गाना कितने जल्दी खत्म हो गया ऐसा लगता है। एक और श्रोता है जो लिख रहे हैं कि मेरे होंठों पर एक ही गीत जहन में आ रहा है, न फनकार कोई तुझसा तेरे बाद आया। और इसके अलावा एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि संगीत के प्रति मेरे लगाव की शुरुआत मोहम्मद रफी से हुई है। मोहम्मद रफी सिर्फ गायक नहीं बल्कि भारतीय संगीत की वो रूह है जिसने करोड़ों दिलों को धड़कना सिखाया। और इसके अलावा एक श्रोता है जिन्होंने लिखा कि उपकार का जो गाना है, सारे गाने बड़े अच्छे लगते हैं और आज सुबह से बारिश का लुत्फ हम ले रहे हैं। और एक श्रोता का कहना है कि लता जी का तार सप्तक स्वर अंतरे में बहुत भाता है इस गाने में। गुलशन बावरा का लिखा गीत, कल्याण जानी जी का संगीत, ये भी एक श्रोता ने लिखा। एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि मेरे देश की धरती टाइमलेस गाना है और इस फिल्म का सबसे अच्छा गाना यही है। और उसके अलावा कस्मे वादे प्यार वफा। एक और श्रोता है कहते हैं कि आज से सावन शुरू हो गया है, कई दिनों से बहुत उमस वाली गर्मी थी और इस समय तेज बारिश हो रही है। और इसके अलावा एक श्रोता कहती हैं कि किसी अपने के लिए की गई वो पवित्र दुआ है जहां खुद को पीछे छोड़कर केवल सामने वाले के जीवन में कोई उजाला और मुस्कान देखना चाहता है। और इसके अलावा एक श्रोता है जो कहते हैं कि शायद इबारत देखने के बाद यही गीत पूरा हमारे जहन में चल रहा था और इस गाने का इंतजार वो कर रही थी। इंतजार एक और कार्यक्रम का कीजिएगा जिसकी सूचना आप देते हैं, फिर कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। एक आवाज जो आप सभी के जहन में ताजा है और जिससे जुड़ी हैं आपकी ढेर सारी रेडियो की यादें।
1: मैंने ये सोचा कि भारत में तो बहुत ज्यादा भावुक हैं लोग, करोड़ों की संख्या में सुन रहे हैं रेडियो से कान लगाए, तो मैंने तब अपनी आवाज में कंपन लाते हुए कहा था कि ये मैच अब कमजोर दिल के इंसानों के लिए नहीं रह गया है।
0: जानी माने क्रिकेट कमेंटेटर सुशील दोषी की जिंदगी की कहानी, मैटिनी शो 1 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: आए हाय
0: भाई, विविध भारती पर सुरीला सफर चल रहा है और हमारे श्रोता किस तरह से अपनी बातें कह रहे हैं। एक श्रोता कहते हैं कि आज सोनू निगम का जन्मदिन है, उन्हें जन्मदिन की बधाइयां देना चाहते हैं। बिल्कुल दीजिए भाई, और हमने तो इससे पहले वाले यादों की महफिल वाले कार्यक्रम में बाकायदा उन्हें बधाइयां दी हैं और फनकार आज के फनकार कार्यक्रम का जिक्र भी उन्होंने किया है। और बहुत सारे श्रोता मोहम्मद रफी साहब के बारे में अपनी बातें कह रहे हैं। एक श्रोता है जो कह रही है कि बिल्कुल सुबह से एक गाना जहन पर चढ़ा हुआ है, वो है स्वप्न झरे फूल से मीत चुभे शूल से। और इसके अलावा एक और श्रोता है जो ये कह रहे हैं कि सुबह से हमारे जहन पर छाया हुआ है वो गाना चांद आहें भरेगा फूल दिल थाम लेंगे। एक और श्रोता है जो कह रही है कि टेलीपैथी हो गई हर खुशी हो वहां हमारे जबान पर सुबह से चढ़ा हुआ है। एक और श्रोता कहते हैं कि ये दिल दीवाना है ये हमारे जहन पर चढ़ा हुआ है। एक श्रोता के जहन पर चढ़ा हुआ है मेघा छाए आधी रात बैरन बन गई निंदिया। और इस तरह से सभी अपने अपने गाने बता रहे हैं और आज की इबारत का अगला गाना ये, फिल्म का नाम बताइएगा और साथ में ये भी बताइएगा कि आज की शाम सुनहरी बनाने के लिए आप क्या करने वाले हैं, कहां जाने वाले हैं।

इस गाने को सुनकर एक आह निकल जाती है, आह फिल्म का गाना जिसको सुनकर आह निकल जाती है। एक श्रोता कहते हैं कि भाई कजिन को पढ़ाना है, शाम को मैं कहीं नहीं जाने वाला। इसके अलावा एक और श्रोता है जो कह रहे हैं कि अपने परिवार और अपने दोस्तों के साथ शाम का आनंद लेंगे। एक और श्रोता का कहना है कि शाम की तन्हाई को और गहरा बनाने के लिए समुन्दर का किनारा ही बढ़िया होता है। और शैलेंद्र के इस गाने पर एक श्रोता जो है बहुत भावुक हो रहे हैं। एक और श्रोता है कहते हैं कि मैंने 6 गाने आज अंदाजा लगाया था, इन 6 गानों का गेस किए थे, 6 गाने शामिल हो चुके हैं। और इसके अलावा एक और श्रोता है जो कहते हैं कि 7 गानों की लिस्ट में ये 3रा गाना है जो शामिल हुआ है। एक और श्रोता है जिनके शहर में बारिश की सूचना है, इसलिए वो कहीं बाहर नहीं जाने वाली, और जब बारिश होती है और जब कहीं जाने को नहीं होता तो किचन में एक बहुत हल्की चीज बनती है जो तेल के ऊपर तैर जाती है। वो हल्की चीज कौन सी है भाई, जो बारिश के मौसम में हमें जरूर खाना पसंद होता है? जरा बताइएगा, वो हल्की चीजें जो हैं जीवन में बनी रहें, उनकी महक बनी रहे। इसके अलावा एक और श्रोता है जो कहते हैं कि सावन का महीना आज से शुरू हो गया है और सुबह से ही हम सावन के गाने गुनगुना रहे हैं। एक और श्रोता है जो जबलपुर में, और कहते हैं कि आज हमारे शहर में मोहम्मद रफी साहब की याद में एक कार्यक्रम है और आज शाम को वो वहां जाने वाले हैं। और एक और श्रोता है जो कहते हैं कि मैंने जैसे ही सोचा मेरी मम्मी का ये फेवरेट गाना बजने लगा और मैं साथ में गुनगुनाने लगी। आज शाम को सभी दोस्त मिल रहे हैं और तालाब में बोटिंग करने जा रहे हैं, मौसम बहुत अच्छा है और बाकायदा बोटिंग का मौसम है। देखिए भाई कितने सारे श्रोताओं के जो शाम के प्लान्स हैं वो हमने उजागर कर दिए आज के इस कार्यक्रम के जरिए। तो बताइएगा कि आपका आज की शाम का क्या प्लान है। तब तक ये गाना जो जिंदगी दुनिया और रिश्तों की हकीकत को उजागर करता है, बताइएगा ऐसा कौन सा दोस्त है जिससे आज आपकी बात नहीं हो रही है?

बहुत श्रोताओं के कमेंट तना दन चले आ रहे हैं। एक श्रोता लिखती हैं कि उदासी गहरी होती है तो दोस्तों से बात करते हैं। एक व्हाट्सएप ग्रुप है जो बस उस दिन एक्टिव होता है जब किसी का जन्मदिन हो। मैंने ऐसे ही एक दिन कहा कि सब कहाँ रहते हो, तो बड़ा ही रूखा सा जवाब आया कि हम सब अपनी अपनी जिंदगी में बिजी रहते हैं। एक और श्रोता है जो कहते हैं कि आपकी आवाज बहुत अच्छी है और आप मेरे फेवरेट एंकर बन गए हैं। रफी साहब के बारे में क्या कहूं, वो मेरे फेवरेट थे, फेवरेट हैं और फेवरेट रहेंगे। बहुत ही सही, उन्होंने कहा कि अगर एक भी दिन रफी साहब की आवाज ना सुने तो बहुत खाली सा लगता है। और इसके अलावा एक और श्रोता है जो कहती है कि जरीना वहाब पर फिल्माया गया ये गाना है सितारा फिल्म का। एक और श्रोता है कहते हैं कि दोस्त होने का क्या फायदा, जिससे बात ना हो दोस्त तो वो होता है जो झगड़ा करने के बाद आकर बोले कि भाई क्या हाल चाल है, चलो बड़े तालाब में घूम कर आते हैं। क्या बात है, प्यारी बात कही है। एक और श्रोता है जिनका कहना है कि सितारा फिल्म का ये गाना बहुत कम सुनाई देता है, आज आपने सुनवाया, शुक्रिया। इसके अलावा एक और श्रोता है जिन्होंने कहा कि आज आपने वो बातें छोड़ दी हैं जो दोस्ती की अनगिनत यादें लेकर आती हैं और अंत में आंखें भिगो देती हैं। एक और श्रोता है जिन्होंने कहा कि आपने जो बहुत ही हल्की सी चीज का जिक्र किया है वो पकौड़ी है जो कढ़ाई में तेल के ऊपर तैर जाती है। इसके अलावा बहुत सारे श्रोता हैं जिनका आज पकौड़ी खाने का प्लान है, तो जरा ये बताइए बहुत सारी महिलाएं के भाई पकौड़ी आप ही बनाती हैं या अपने पति से भी बनवाती हैं? किन किन घरों में पति पकौड़ी बनाते हैं जब मौसम बहुत अच्छा होता है? और अब वो गाना आ रहा है जो उदास कर देने वाला है। मुकेश की आवाज में उदास गाने आपको पसंद होते हैं या फिर रोमांटिक?

कार्यक्रम के तकरीबन आखिरी दौर में हम आ पहुंचे हैं। हिमालय की गोद में फिल्म का ये गाना बजा। बहुत सारे श्रोता हैं जो अपनी बात कह रहे हैं। एक श्रोता कहते हैं कि कढ़ी बनने से पहले ही सारे घर वाले पकौड़े खा लेते हैं और मैं कढ़ी कैंसिल कर देती हूं। आपके घर में भी क्या ऐसा होता है? एक और श्रोता लिखते हैं, बनारस और बारिश पकौड़े का सवाल ही नहीं। इसके अलावा एक और श्रोता है जो कहते हैं कि मुकेश की दर्द भरी आवाज उन्हें ज्यादा पसंद है। एक और श्रोता है जो कहते हैं कि बरसात में पकौड़ी मैं बनाती हूं, मेरे पति चाय भी नहीं बनाते तो पकौड़ी क्या खाक बनाएंगे। अरे रे रे रे रे, ये तो बड़ी बुरी बात है। एक और श्रोता है जो कहते हैं कि पकौड़े कढ़ाई में तो हल्के होते हैं लेकिन खाने के बाद सेहत के लिए भारी हो जाते हैं। इसके अलावा एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि कुछ चीजें तो हम अपनी श्रीमती जी से ही बनवाते हैं क्योंकि उनके हाथ की स्वादिष्ट होती है। तैयारी भले मुझे

करनी पड़ती है। और इसके अलावा भाई आज तो पूरा पकौड़ी पुराण शुरू हो गया है। बहुत सारे श्रोता ये, बहुत सारी महिलाएं ये बता रही हैं कि उनके पति को पकौड़े बनाने नहीं आते। अब जरा सोचिए कि ये कितनी गलत बात है। और सीख लीजिए, आज ही की आज सीख लीजिए, आप लोग जिम्मेदारी लीजिए कि आज ही आप सिखाएंगी। और अगला गाना आ रहा है, फिल्म का नाम तो कश्मीर की कली है, पर इस गाने के गीतकार कौन है और आप कश्मीर कब गए थे और कश्मीर जाने की सुनहरी याद क्या है, बताइए।

एक श्रोता लिखती है कि कश्मीर से याद आया कि हिमाचल प्रदेश में एक गांव का नाम कश्मीर है। अभी कुछ दिन पहले वहां गए थे। ऑस्ट्रेलिया के टूरिस्ट कश्मीर घूमने के इरादे से गूगल मैप के जरिए हिमाचल से इस कश्मीर के गांव में पहुंच गए थे। एक और श्रोता है जिन्होंने लिखा कि वो 2015 में कश्मीर गए थे और बहुत ही सुनहरी यादें हैं। और इसके अलावा एक और श्रोता हैं जिन्होंने कहा कि कल्पना से भरी हुई अच्छी मसालेदार पकौड़ी विविध भारती पर सुनने को मिली। और एक और श्रोता हैं जो कहते हैं कि जब भी कश्मीर का ख्याल आया, घर में ही कश्मीर का माहौल पाया, पत्नी के हाथों से बने चाय पकौड़े, टीवी ने ही कश्मीर से रूबरू करवाया। भाई वाह, क्या कहने हैं। और एक श्रोता है जो कहते हैं कि हम कश्मीर में 3 साल तक रहे हैं और वहाँ कुछ पढ़ाई की है, युवा उम्र की यादें, क्या बात है। एक और श्रोता है जो ये कहती हैं कि 2014 में अमरनाथ गई थी और हम वहाँ कश्मीर गए थे और बहुत ही अच्छा लगा था। एक और श्रोता है वो कहते हैं कि भाई पकोड़े नहीं तल सकते तो क्या हुआ, प्याज आलू काटने में और छीलने में मदद तो कर सकते हैं ना, ये भी कम तो नहीं। बहुत सही बात है। और इसके अलावा एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि भाई कश्मीर की कली बहुत शानदार, आज का कार्यक्रम बहुत शानदार। और इसके अलावा एक श्रोता है जो कहते हैं कि डॉक्टर ने हमें पकौड़े खाने से मना किया है और आप पकौड़े का नाम ले रहे हैं तो मुंह में पानी आ गया है। इसके अलावा एक श्रोता है जो कहते हैं कि पकौड़े वाली कढ़ी बनती है हमारे घर में और सभी सफा चट कर जाते हैं। एक और श्रोता है जो कहते हैं कि मैं रोज अपने घर में काम करता हूं और महिलाओं का सहयोग करता हूँ, खाना भी बनाता हूँ, कोई व्यंजन ऐसा नहीं है जो मैं नहीं बना सकता। पकौड़ी क्या चीज़ है, आप पधारिए, पनीर के पकौड़े बनाए जाएंगे। भाई वाह, क्या बात है। इसके अलावा एक और श्रोता है जो कह रहे हैं कि भाई आपकी बातों के बाद पकौड़े खाने का मेरा मन कर रहा है और वो भी भुट्टे के पकौड़े। भाई आज ना ये कार्यक्रम सुरीला सफर जो है वो गानों से ज्यादा तो पकौड़ों की बातों का सफर हो गया। एक और श्रोता है जो कहते हैं कि पकौड़े और पति जी नहीं, वो सिर्फ जायका लेते हैं। इसके अलावा और भी श्रोताओं ने ये सब जिक्र किया है, बहुत शुक्रिया। देखिए जरा सी बात पर कितनी लंबी दास्तान हो गई और कितने सारे श्रोताओं ने कितनी सारी अपनी बातें कहीं। यही तो है विविध भारती के सुरीला सफर कार्यक्रम का मजा कि जिसमें आप हमारे हम सफर बनते हैं और भाई तमाम बातें होती हैं और जिंदगी के अलग अलग मुद्दों पर आप अपनी बातें शेयर करते हैं। एक और श्रोता है जो कहते हैं कि आज ताकत का इंजेक्शन लिया, सुरीला सफर कार्यक्रम सुना, परेशानी दूर हो गई, बिस्किट चाय के साथ इस वक्त बिस्किट चाय कार्यक्रम का आनंद ले रहा हूं, मेरे घर में कल भाभी जी ने पकौड़े छाने थे। और इसके अलावा एक श्रोता है जो लिखते हैं कि जब आप ये कार्यक्रम करते हैं तो मैं कभी मिस नहीं करती। एक और श्रोता है जो कहते हैं कमबख्त बारिश नहीं हो रही है, पकौड़े खाक बनाए। एक और श्रोता है जो कहते हैं कि हम कश्मीर नहीं गए लेकिन तस्वीरें देखकर संतोष कर लेते हैं। भाई बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में इस तरह से साथ निभाने के लिए। आप बारिश का इंतजार करें और खूब पकौड़े बनाएं, मजे से खाएं, अपनी सेहत का ध्यान रखें। जिंदगी की इस भागदौड़ में जहां कहीं भी रहें, विविध भारती के संग बने रहें। सुरीला सफर कार्यक्रम में आपके साथ आपका ये दोस्त यूनुस खान था। इजाजत, नमस्ते।

दोस्तों, जीवन में बचपन की महत्ता सर्वोपरि होती है। हालांकि वक्त अपनी रफ्तार से कब आगे बढ़ जाता है पता ही नहीं चलता, लेकिन किसी भी उम्र में बचपन की यादें हमेशा हमें बहलाए रखती हैं।

नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। राज्यसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026

0: पर चर्चा। विधेयक का उद्देश्य पेपर लीक के दोषियों के लिए कानून को और सख्त बनाना। लोकसभा की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित। सर्वोच्च न्यायालय का केंद्र सरकार को दिल्ली में छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान रैपिड एक्शन फोर्स द्वारा उपयोग किए गए हथियारों का रिकॉर्ड सुरक्षित रखने का निर्देश।
1: गुजरात और मध्य प्रदेश में 3 निर्वाचन क्षेत्रों में विधानसभा उपचुनाव के लिए मतदान जारी। महाराष्ट्र, तेलंगाना, विदर्भ और पश्चिमी मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। और भारत विश्व स्क्वॉश जूनियर टीम चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंचा। अब समाचार विस्तार से। राज्यसभा में कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 को सदन में पेश किया। श्री सिंह इस समय सदन को संबोधित कर रहे हैं।
2: एंड फाइन अप टू 50 लाख एज फार एज द सर्विस प्रोवाइडर इज कंसर्न्ड। नाउ इफ जयराम जी हैज नॉट रेड दैट आई विल रीड आउट व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सर्विस प्रोवाइडर। क्योंकि आप ही बार बार टोक रहे हैं और कह रहे हैं आपको ज्यादा। सर्विस प्रोवाइडर मींस एनी एजेंसी, एनी ऑर्गेनाइजेशन, एनी बॉडी, एनी एसोसिएशन ऑफ पर्सन, एनी बिजनेस एंटिटी, एनी कंपनी, एनी पार्टनरशिप और सिंगल प्रोवाइडरशिप, एनी सब एसोसिएट्स, एनी सब कॉन्ट्रैक्टर्स, एनी प्रोवाइडर ऑफ सपोर्ट ऑफ एनी कंप्यूटर रिसोर्स और एनी मटीरियल बाई वट एवर नेम इट मे बी कॉल्ड विच इज एंगेज बाई द पब्लिक एग्जामिनेशन अथॉरिटी फॉर द कंडक्ट ऑफ पब्लिक एग्जामिनेशन।
1: लोकसभा ने कल लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक पारित कर दिया।
3: परीक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता और लोगों का भरोसा बनाए रखने के लिए यह विधेयक संसद में लाया गया है। इसका उद्देश्य छात्रों के भविष्य को सुरक्षित रखना और परीक्षा प्रणाली को कानूनी रूप से और अधिक सशक्त बनाना है। इस विधेयक में कई सख्त प्रावधान किए गए हैं। दोषी पाए जाने पर 10 साल तक की जेल, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और संपत्ति जब्त करने का प्रावधान है। इसके अलावा मामलों का जल्द निपटारा सुनिश्चित करने के लिए विशेष फास्ट ट्रैक अदालत स्थापित करने का प्रावधान है, जहां मामलों की रोजाना सुनवाई होगी। इसके अलावा पुलिस में मामला दर्ज होने के 2 महीने के भीतर जांच पूरी करनी होगी। वहीं आरोप पत्र दाखिल होने के बाद 3 महीने के भीतर मामले का निपटारा करने का प्रावधान है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: इससे पहले शून्यकाल के दौरान कांग्रेस के प्रमोद तिवारी ने नीट परीक्षा पेपर लीक के विरोध में प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर कथित पुलिस कार्रवाई का मुद्दा उठाया। उन्होंने गृहमंत्री अमित शाह से इस पर बयान देने की मांग की। इसके जवाब में केंद्रीय मंत्री और सदन के नेता जेपी नड्डा ने कहा कि विपक्ष का पूरा ध्यान सदन की कार्यवाही को बाधित करने पर है।
4: इस संसद के माध्यम से देश को इस बात का संदेश देना चाहता हूं कि मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार हर विषय पर चर्चा करने के लिए तैयार है। विपक्ष जो है वो गैर जिम्मेदाराना व्यवहार कर रही है, यह ध्यान में रहे।
1: लोकसभा की कार्यवाही नीट परीक्षा मुद्दे को लेकर विद्यार्थियों के प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई पर विपक्ष के हंगामे के कारण दोपहर बाद 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। आज दिन में 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होने पर विपक्षी सदस्यों ने विद्यार्थियों के प्रदर्शन के दौरान पुलिस के कथित कार्रवाई के विरोध में नारेबाजी शुरू कर दी। विपक्षी सांसद इस मुद्दे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से सदन में बयान देने की मांग कर रहे थे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि प्रश्नकाल सदस्यों का अधिकार है। उन्होंने कहा कि सदन की कार्यवाही में व्यवधान डालना संसदीय परंपराओं के अनुरूप नहीं है।
5: मैंने कई बार सदन के सभी माननीय सदस्यों से आग्रह किया है, प्रश्नकाल माननीय सदस्य का अधिकार है और प्रश्नकाल के अंदर सरकार की जवाबदेही भी तय होती है। मैंने ये आप सबसे आग्रह किया है कि सदन में प्रश्नकाल के अंदर सदन को बाधित नहीं करें। प्रश्नकाल महत्वपूर्ण समय होता है।
1: सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को नीट पेपर लीक मामले को लेकर जंतर मंतर पर विद्यार्थियों के प्रदर्शन के दौरान तैनात रैपिड एक्शन फोर्स के हथियारों के उपयोग का रिकॉर्ड सुरक्षित रखने का निर्देश दिया है। एक रिपोर्ट।
6: सर्वोच्च न्यायालय ने कानून व्यवस्था की स्थिति से निपटने के लिए पैलेट गन के इस्तेमाल पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि पुलिस को असाधारण परिस्थितियों में पैलेट गन का इस्तेमाल करने का अधिकार है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी मोहन की पीठ ने दिल्ली सरकार को प्रदर्शन के दौरान पैलेट लगने से घायल हुए लोगों को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने का निर्देश भी दिया। समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
1: पेपर लीक के खिलाफ सख्त कार्रवाई के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

0: की सोशल मीडिया पोस्ट को हटाने पर मेटा ने अफसोस जाहिर किया है। आज नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव एस कृष्णन ने कहा कि मेटा ने इस घटना पर अफसोस जताते हुए सरकार को पत्र लिखा है। श्री कृष्णन ने मेटा के वरिष्ठ प्रतिनिधियों को इस घटना की वजहें बताने को कहा है, साथ ही ऐसी गलतियों को रोकने के लिए उठाए जा रहे कदमों के बारे में भी जानकारी देने को कहा है। भारतीय जनता पार्टी ने पंजाब में कथित पेपर लीक को लेकर आज नई दिल्ली में आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन की अगुवाई दिल्ली भाजपा अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा ने की। संवाददाताओं से बातचीत में श्री मल्होत्रा ने आरोप लगाया कि पंजाब में फार्मास्यूटिकल्स परीक्षा का पेपर लीक हो गया था। उन्होंने मांग की है कि परीक्षा दोबारा कराई जाए, साथ ही पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस के इस्तीफे की भी मांग की गई है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsoneair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश में तीन निर्वाचन क्षेत्रों में विधानसभा उपचुनाव के लिए मतदान जारी है। बिहार में बांकीपुर, गुजरात में मंजलपुर और मध्य प्रदेश में दतिया निर्वाचन क्षेत्रों के लिए वोट डाले जा रहे हैं। दिन में 1 बजे तक पटना के बांकीपुर विधानसभा सीट पर लगभग 20% मतदान हो चुका था। गुजरात की मंजलपुर सीट पर 21.66% मतदान की खबर है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान के लिए निर्वाचन आयोग ने सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं।
1: वडोदरा के मांजलपुर विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव में मुख्य मुकाबला सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच है। भाजपा ने वडोदरा महानगरपालिका के पूर्व पार्षद सतीश पटेल को मैदान में उतारा है, जबकि कांग्रेस ने अपने प्रदेश उपाध्यक्ष भीखाभाई रबारी पर दाव लगाया है। इस चुनाव में 2,19,000 से अधिक मतदाता इन दोनों उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे। यह सीट भाजपा के वरिष्ठ विधायक योगेश पटेल के निधन के बाद खाली हुई थी, जिन्होंने कई बार इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया है। निर्वाचन आयोग ने भी सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं। अपर्णा खोंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।

0: उपचुनाव कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती की सदस्यता समाप्त होने के बाद हो रहा है। दतिया उपचुनाव के नतीजे 3 अगस्त को घोषित किए जाएंगे। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में IASV त्रिवेणी पर समुद्री अभियान की महिला टीम से बातचीत की और उनकी असाधारण उपलब्धि तथा दृढ़ संकल्प की सराहना की। इस अवसर पर श्री सिंह ने कहा कि उनका सफल अभियान राष्ट्र के लिए बहुत गर्व का विषय है।
2: आपने इस अभियान से, मैं कह सकता हूँ कि केवल आपने समुद्र को ही नहीं जीता है, आपने उस सारी रूढ़ियों को भी पराजित किया है जो कभी कहती थी हमारी बेटियां ऐसे कठिन सैन्य अभियानों का हिस्सा नहीं बन सकती। आपने यह सिद्ध किया है फिजिकल कैपेबिलिटी, मेंटल टफनेस और लीडरशिप क्वालिटी किसी जेंडर की मोहताज नहीं होती।
1: ओडिशा के कई हिस्सों में बाढ़ के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि कई जिलों में स्कूल बंद कर दिए गए हैं और बाढ़ की बदलती स्थिति से निपटने के लिए अधिकारी हाई अलर्ट पर हैं।
3: लगातार बारिश की सबसे ज्यादा मार 5 जिलों बालेश्वर, भद्रक, जाजपुर, मयूरभंज और केंदुझर पर पड़ी है। लगभग 5,88,000 लोग प्रभावित हुए हैं और 1,76,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। राज्य सरकार ने जिला कलेक्टरों को निर्देश दिया है कि वे प्रभावित परिवारों को जल्द मुआवजा दिलाने के लिए 3 दिनों के भीतर नुकसान का विस्तृत ब्यौरा सौंपे। इस बीच ऊपरी जलग्रहण क्षेत्र में लगातार बारिश से महानदी का जलस्तर बढ़ रहा है जिससे नदी बेसिन के निचले इलाकों में रहने वालों लोगों में चिंता बढ़ गई है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: मौसम विभाग ने मध्य महाराष्ट्र, तेलंगाना, विदर्भ और पश्चिमी मध्य प्रदेश में आज अत्यधिक तेज वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के दौरान अरुणाचल प्रदेश, केरल, माहे और राजस्थान में गरज चमक और बिजली गिरने के साथ तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। तटीय और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, कोंकण और गोवा में भी कल तक ऐसे ही हालात बने रहने की संभावना है। पूर्वोत्तर भारत में विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों तक गरज चमक, तेज हवाओं के साथ भारी बारिश का अनुमान लगाया है। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी में अगले 2 से 3 दिनों तक तेज बारिश होने की संभावना है। भानु प्रताप सिंह के साथ नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
1: श्रावण महीने की वार्षिक कांवड़ यात्रा आज से शुरू हो गई है। झारखंड के देवघर में आज से श्रावण मेला शुरू हो गया है।
5: सावन के पहले दिन ही देवघर के बाबा बैद्यनाथ धाम और दुमका के बाबा बासुकीनाथ मंदिर में लाखों शिव भक्तों का हुजूम उमड़ पड़ा है। पूरी बाबा नगरी बोलबम के अटूट विश्वास और केसरिया रंग में रंग गई। सुरक्षा के मोर्चे पर इस बार तीसरी आंख के साथ साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैमरों का पहरा है। कांवरियों के पैरों को थकान न मिले इसके लिए नए फुट ओवरब्रिज से लगातार सुगम जलार्पण कराया जा रहा है, जबकि पूरे कांवरिया पथ पर ठंडे पानी की फुहारें, भव्य टेंट सिटी और निःशुल्क चिकित्सा शिविर श्रद्धालुओं का स्वागत कर रहे हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं महविश रहमान।
1: गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देशवासियों को श्रावण का पवित्र महीना शुरू होने पर शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि प्रकृति, पर्यावरण और संपूर्ण सृष्टि के प्रति सम्मान मानव अस्तित्व का आधार है। सोशल मीडिया पोस्ट में एक संस्कृत उद्धरण साझा करते हुए श्री मोदी ने लोगों से प्रकृति के प्रति कृतज्ञता और सेवा की भावना विकसित करने तथा एक स्वस्थ, समृद्ध और मजबूत राष्ट्र के निर्माण के लिए मिलकर काम करने का आह्वान किया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ये आकाशवाणी है। अमेरिकी सेना ने कल रात भर ईरान के खिलाफ व्यापक हवाई हमले किए। एक रिपोर्ट।
6: अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने बताया कि ये हमले ईरान द्वारा जॉर्डन में स्थित अमेरिकी सैन्य ठिकानों और होर्मुज चिल्डमरू मध्य में जहाजों पर किए गए थे। इसके जवाब में इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के दर्जनों ठिकानों को निशाना बनाया गया। अमेरिकी कमांड के अनुसार इन हमलों का उद्देश्य ईरान और उसके समर्थित समूहों से अमेरिकी सैनिकों, वाणिज्यिक जहाजों तथा खाड़ी क्षेत्र के पड़ोसी देशों को होने वाले खतरों को कम करना है। इस बीच ईरान के खुजेस्तान प्रांत के 4 शहरों अहवाज और बंदर अब्बास में कई विस्फोटों की खबरें सामने आई है। अमेरिका और ईरान के बीच लगातार संघर्ष बढ़ता ही जा रहा है। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर पाकिस्तानी सशस्त्र बलों का क्रूर हमला जारी है। इसमें 40 से अधिक नागरिक मारे गए हैं और कई अन्य घायल हुए हैं। संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी के प्रदर्शनकारी वर्तमान में पाकिस्तानी सुरक्षा बलों की क्रूरता और लक्षित हत्याओं को लेकर रावलकोट के डी

0: चौक पर शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। एक मानवाधिकार संस्था ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त के कार्यालय से पाकिस्तानी बलों द्वारा घातक गोलीबारी की घटनाओं में हस्तक्षेप करने की अपील की है। भारत विश्व स्क्वाश जूनियर टीम चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंच गया है। कनाडा के ऑन्टेरियो में भारतीय पुरुष टीम ने इंग्लैंड को 2-1 से हराया। सेमीफाइनल में भारत का सामना अमेरिका से होगा। राष्ट्रमंडल खेलों में पैरा एथलेटिक्स के पुरुषों की 100 मीटर T47 स्पर्धा में के फाइनल में भारत के दिलीप महादू गावित ने स्वर्ण और मोहम्मद बासिल बोरसिंगा नाकाथ ने रजत पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। पुरुषों की लंबी कूद स्पर्धा में मुरली श्रीशंकर ने रजत पदक जीता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने पदक जीतने पर खिलाड़ियों को बधाई दी है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्यसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा। विधेयक का उद्देश्य पेपर लीक के दोषियों के लिए कानून को और सख्त बनाना। लोकसभा की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित। सर्वोच्च न्यायालय का केंद्र सरकार को दिल्ली में छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान रैपिड एक्शन फोर्स द्वारा उपयोग किए गए हथियारों का रिकॉर्ड सुरक्षित रखने का निर्देश। बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश में 3 निर्वाचन क्षेत्रों में विधानसभा उपचुनाव के लिए मतदान जारी। महाराष्ट्र, तेलंगाना, विदर्भ और पश्चिमी मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। और भारत विश्व स्क्वाश जूनियर टीम चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंचा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: हम विविध भारती से बोल रहे हैं, सदाबहार नगमे।

0: शोर।
1: पवन करे शोर।
0: अरे बाबा, शोर नहीं, शोर, शोर, शोर।

दिल्ली का दादा फिल्म का ये गाना था। मन्ना डे और आशा भोसले की आवाजें, सहर लुधियानवी के बोल, एन दत्ता की तर्ज थी। इससे पहले का गीत जागते रहो फिल्म का था, सलील चौधरी का संगीत था, शैलेंद्र के बोल थे, आशा भोसले की आवाज थी।

मजू सुल्तानपुरी के बोल थे प्रीति सागर और भूपिंदर की आवाजों में यह भूमिका फिल्म का गाना था। संगीत वनराज भाटिया का था। कार्यक्रम की आखिरी पेशकश जुर्माना फिल्म का यह गाना।

0: डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स की संयुक्त कार्यशाला के बाद उन्होंने बताया कि सरकार का मुख्य उद्देश्य रक्षा क्षेत्र को पूरी तरह स्वदेशी और आत्मनिर्भर बनाना है।
1: अब लक्ष्य एक ही है कि पूरे डिफेंस सेक्टर को स्वदेशी आत्मनिर्भर बनाना। लक्ष्य है 2047 विकसित भारत का। उस लक्ष्य की ओर पूरा डिफेंस सेक्टर बढ़ा है, हमारा प्राइवेट प्लेयर डीपीएसयू, हमारा स्टार्टअप, हमारा जो यूथ है दुनिया के किसी भी स्टार्टअप से कम नहीं है। और हमारा यूथ अभी दुनिया की नई से नई टेक्नोलॉजी उसको धरातल पर उतार रहा है। और निश्चित रूप से कह सकते हैं आने वाला जो दशक है वो भारत के युवाओं को होगा, भारत के स्टार्टअप को होगा।
0: झारखंड में SIR फॉर्म भरने की अवधि बढ़ाने पर सियासत तेज है। झामुमो और कांग्रेस ने खेती तथा श्रावणी मेले का हवाला देकर समय सीमा बढ़ाने की मांग की है। झामुमो प्रवक्ता मनोज पांडे ने कहा कि व्यस्तता के कारण कई लोग फॉर्म जमा नहीं कर पाए हैं, जिससे मतदाताओं के नाम छूटने की आशंका है। वहीं भाजपा ने इसे तर्कहीन बताया है। पार्टी प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने सत्ता पक्ष पर वोट बैंक की राजनीति का आरोप लगाया है। सरायकेला खरसावां जिले के आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र स्थित ग्लोरिया इंजीनियरिंग कंपनी में आज दोपहर एक भीषण सिलेंडर विस्फोट हुआ। इस हादसे में 2 मजदूर गंभीर रूप से झुलस गए, जबकि 6 अन्य घायल हो गए हैं। सभी घायलों को तत्काल इलाज के लिए जमशेदपुर के टाटा मुख्य अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां 2 की हालत गंभीर बनी हुई है। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने घटनास्थल का निरीक्षण कर मामले की जाँच शुरू कर दी है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। राजधानी रांची में JPSC और JSSC अभ्यर्थियों का अनिश्चित

0: कालीन धरना आज छठे दिन भी जारी है। मोरहाबादी स्थित बापू वाटिका से शुरू हुआ यह आंदोलन अब जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम पहुंच गया है, जहां सैकड़ों छात्र टेंट लगाकर डटे हुए हैं। अभ्यर्थियों का कहना है कि जब तक सरकार उनकी मांगों पर ठोस निर्णय नहीं लेती, आंदोलन जारी रहेगा।
1: पेपर लीक का मामला इतना ज्यादा यहाँ बढ़ गया है कि हम लोग आज व्यवस्था के कारण बाहर हो गए हैं। हम जेपीएससी जेएसएससी का खुद छात्र हैं, आज मेरा एज ओवर हो रहा है, तो क्या करें, हम समझ में नहीं आ रहा कि छात्र मतलब रह के कि झारखंड में क्या हो सकता है। इसलिए हम लोग दिल्ली के जंतर मंतर मैदान में जिस तरह से धरना प्रदर्शन हुआ था, उस तर्ज पर यहाँ झारखंड के राजधानी रांची में हम लोग करने जा रहे हैं। जब तक समस्या का समाधान होगा निचोड़, तब तक हम लोग कंटिन्यू जारी रखेंगे।
0: देवघर में विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले की आज से विधिवत शुरुआत हो गई है। पहले ही दिन बाबा वैद्यनाथ धाम में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। एक रिपोर्ट।
2: सावन के पहले दिन ही देवघर के बाबा बैद्यनाथ धाम और दुमका के बाबा बासुकीनाथ मंदिर में लाखों शिव भक्तों का हुजूम उमड़ पड़ा है। पूरी बाबा नगरी बोलबम के अटूट विश्वास और केसरिया रंग में रंग गई। सुरक्षा के मोर्चे पर इस बार तीसरी आंख के साथ साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैमरों का पहरा है। कांवरियों के पैरों को थकान न मिले, इसके लिए नए फुट ओवर ब्रिज से लगातार सुगम जलार्पण कराया जा रहा है, जबकि पूरे कांवरिया पथ पर ठंडे पानी की फुहारें, भव्य टेंट सिटी और निःशुल्क चिकित्सा शिविर श्रद्धालुओं का स्वागत कर रहे हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं महविश रहमान।
0: रांची में खेले गए 135वें डूरंड कप के ग्रुप सी के दूसरे मुकाबले में भारतीय वायुसेना फुटबॉल टीम ने श्रीलंका के डिफेंडर्स एफसी को 2-1 से हरा दिया। बिरसा मुंडा स्टेडियम में वायुसेना ने शुरू से दबदबा बनाए रखा। मैच के 25वें मिनट में नाओरेम सोमनंदा सिंह ने शानदार गोल कर भारत को बढ़त दिलाई। इसके बाद 68वें मिनट में विपक्षी टीम के आत्मघाती गोल से यह बढ़त 2-0 हो गई। श्रीलंका ने एक गोल कर वापसी की कोशिश की, लेकिन वायुसेना ने जीत के साथ 3 महत्वपूर्ण अंक हासिल कर लिए। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 4 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: सखी सहेली
1: सभी सखियों सहेलियों को श्रोताओं को सोनाली पाठक का सप्रेम नमस्कार। आरती आपको भी मेरा नमस्कार।
2: सोनाली जी आपको और साथ ही सभी सखियों को सभी सखाओं को आरती श्रीवास्तव का नमस्कार।
1: क्या हाल चाल है आरती?
2: बिल्कुल ठीक है।
1: और इस
2: बारिश के दिनों में
1: बारिश का आनंद ले रही है?
2: बिल्कुल, बारिश में भीगते हुए आइए भीगते हुए जाइए यही आनंद है।
1: तो बारिश जो है बहुत खूबसूरत ऋतु है, पर उसका आनंद हमें सावधानी के साथ लेना पड़ता है।
2: बिल्कुल बिल्कुल।
1: और यहाँ पे तो ऐसा होता है ना कि बारिश का मौसम आया कि पर्यटन का आनंद लेने के लिए हम सभी उमड़ पड़ते हैं।
2: ये तो है, लेकिन ये सोचते नहीं है कि कुछ हमें परेशानी भी हो सकती है या कुछ दुर्घटना भी हो सकती है। तो इसलिए क्योंकि बारिश के जो दिन होते हैं ना थोड़े से खतरनाक होते हैं, क्योंकि ऐसी जगहों पे जब हम पहाड़ों पे या ऐसी जगहों पे जाते हैं ना तो थोड़ी फिसलन पड़ा वो जगह रहता है, तो इसलिए थोड़ी सी सावधानी रखनी चाहिए। लेकिन आपके क्या अनुभव है, हमारी जो भी सखियां हैं और सखा है उनके क्या अनुभव है, वो कभी बारिश के दिनों में घूमने गए हैं तो उनकी क्या यादगार और किस्सा है जो वो बताना चाहते हैं, साझा करना चाहते हैं?
1: बिल्कुल, अपने अनुभव लिखकर भेजें तो हमें ज्यादा मजा आता है।
2: बिल्कुल।
1: कि बारिश में कौन सी सावधानियां बरतना चाहिए ये तो हम सभी जानते हैं, पर अगर आप कभी घूमने गए थे और फोटो लेने कहीं बहुत दूर चले गए, लंबे चले गए, पैर फिसल गया, या फिर बहुत सावधानी के साथ आपने फोटोज ली है, जो भी अपने अनुभव है वो हमसे
2: बिल्कुल
1: साझा।
2: आपने किस तरह से कौन कौन सी सावधानियां ली जिसके वजह से आपका सफर जो था वो बहुत सुहाना बन गया
1: जी,
2: तो आप ये सब हमें बताइए। और साथ ही हम क्या बात करने वाले?
1: मुझे कुछ कहना है इसके अंतर्गत, हम थूकने की बुरी आदत कि जब भी हम घर से बाहर जाते हैं तो इतनी गंदगी फैलाते हैं। अपने घर में हम बहुत स्वच्छता का ख्याल रखते हैं, हम अपने घर में वॉश बेसिन में जाके ही थूकते हैं, लेकिन बाहर घर से बाहर निकले कि इधर उधर थूकना शुरू हो जाता है। ये बहुत गंदी आदत है जिससे बहुत सारी बीमारियां फैलने का भी खतरा बढ़ जाता है।
2: तो फैलती ही है। साथ ही जो बाहर के पर्यटक बाहर के देशों से आते हैं या घूमने के लिए, वो जब देखते हैं कि सड़कों पे किस तरह से हम लोग इस तरह से गंदगी फैला रहे हैं, तो उससे हमारे जो देश का है ना वो प्रभाव गलत पड़ता है। इसलिए हमें ये चाहिए कि हम अपने देश का जो अपनी प्रतिष्ठा है उसको बना के रखें
1: जी। और ये बात आपने कही है ना आरती, तो जब हम ही लोग विदेशों में घूमने जाते हैं तो बहुत ध्यान रखते हैं क्योंकि वहां पर फाइन होता है।
2: तो
1: वहां हम बहुत सावधानी के साथ रहते हैं, बहुत अच्छे से बिहेव करते हैं, पर अपने देश में आके सब कुछ भूल जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, हमें अपने देश का गौरव हमें खुद बनाए रखना है। साथ ही कहानी पद्मश्री की, इसके अंतर्गत हम डॉक्टर बुधरी ताती के बारे में जानकारी देंगे और हमारे बहुत सारे साथियों ने भी इस विषय में कमेंट्स लिखना शुरू कर दिया है
2: और
1: उपयुक्त टिप्स
2: वो है जलने कटने पर, कि अगर कभी कभी ऐसा होता है ना खाना बनाते समय कभी कुकर छू गया या इस तरह का तवे से हमारे हाथ जल गया या कुछ कर रहे हैं उससे हाथ जल गया या कट गया, तो हम उस समय क्या चिकित्सा अपना सकते हैं, प्राथमिक चिकित्सा कर सकते हैं, उसके बारे में आप हमें बता सकते हैं, वो तो हम आपको बताएंगे
1: जी। और साथ ही आज एक खास दिन है, अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस है। हमारे देश में अगस्त के पहले रविवार को मनाया जाता है, पर पूरे
2: अंतर्राष्ट्रीय
1: पूरे वर्ल्ड में अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस आज मनाया जाता है। तो हम अपने सभी साथियों को मित्रता दिवस की बहुत सारी बधाइयां और शुभकामनाएं देते हैं।
2: बिल्कुल, क्योंकि आप भी हमारे मित्र ही हैं ना
1: जी,
2: सखा हैं,
1: हमारे साथी उनके नाम में ही सखा है सखी है, तो हमारे तो बहुत करीबी
2: ये हमारा दिवस है समझ
1: जी, हम सभी का दिवस है
2: जी। बिल्कुल।
1: और आप क्या करें?
2: बिल्कुल, एक गीत सुनते हैं ना।
1: सुन लेते हैं गीत।
3: यूं ही तुम

0: तो जब दोस्ती है तो वहां पर बात करना बहुत जरूरी होता है ना।
1: जब हम मिलते रहते हैं ना तो हमारी दोस्ती बनी रहती है, जब हम थोड़ा बहुत मिलना बंद भी कर देते हैं ना फिर भी हमारी दोस्ती बनी रहती है क्योंकि हम दिल से जुड़े होते हैं।
0: हाँ,
1: कुछ रिश्ते होते हैं जो हम ऊपर से अपने साथ लेकर आते हैं, किस जिस घर में हम पैदा होते हैं
0: जी
1: वो हमारे माता पिता हैं, भाई बहन हैं, रिश्तेदार हैं, लेकिन एक रिश्ता जो होता है ना वो हम खुद बनाते हैं,
0: वो है दोस्ती का रिश्ता।
1: बिल्कुल, दोस्ती का रिश्ता है।
0: और हमारे बीच में और श्रोताओं के बीच में, सखियों के बीच में ये प्यार से रिश्ते की डोर बंधी हुई है।
1: बिल्कुल।
0: तो आज अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस है। प्रतिवर्ष 30 जुलाई को यह दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2011 से की थी और इस दिवस का उद्देश्य लोगों, समाज और देश के बीच मित्रता, विश्वास और सद्भाव और शांति को बढ़ावा देना है।
1: बिल्कुल। और मित्रता केवल साथ में घूमने फिरने या हंसी मजाक तक सीमित नहीं होती है, ये एक दूसरे की भावनाओं को समझने, गलतियों पर रोक लगाने, सही मार्ग दिखाने और सफलता पर दिल से खुश होने का नाम है। सच्चा मित्र हमारी कमियों को तो छुपाता नहीं बल्कि उन्हें दूर करने का हमें साहस देता है। वो हमारे मुंह पे बताएगा कि ये कमी है। अगर कोई हमें बताएगा नहीं हमारे अंदर क्या कमी है तो हम उसे दूर कैसे करेंगे। तो वो सच्चा मित्र जो होता है ना वो ये नहीं सोचता कि ये बुरा मान जाएगा, वो सीधे बताता है कि ये तुम्हारी कमी है, इसे तुम्हें दूर करना चाहिए।
0: और जिसके लिए कमी बताई है उसे भी बुरा नहीं लगना चाहिए, नहीं तो फिर वो सच्चा मित्र नहीं होगा।
1: बिल्कुल। और क्या, क्योंकि आपकी गलतियां बताने वाला कोई मित्र आपके साथ है ये बहुत भाग्य की बात है।
0: जी, एक साथी ने लिखा है आरती कि दोस्त शब्द की उत्पत्ति मूल रूप से फारसी से हुई है जिसे हिंदी भाषा ने इतने प्यार से अपनाया है कि यह हमारी संस्कृति का हिस्सा बन गया है। हिंदी में इसे मित्रता या मैत्री भी कहा जाता है। इस शब्द में एक ठहराव है। यह रिश्ता खून के रिश्तों से अलग होता है क्योंकि इसे हम खुद चुनते हैं। स्वतंत्रता दोस्ती में उम्र, जाति, धर्म या हैसियत की कोई सीमा नहीं होती है। ये पूरी तरह स्वतंत्र और शुद्ध भावना है।
1: बिल्कुल। और एक हमारे साथी हैं जो कहती हैं कि दोस्त वही जो हर हाल में साथ निभाए, बिना कहे दिल की हर बात समझ जाए। और एक और हमारे जो साथी हैं वो लिखते हैं कि 30 जुलाई को इंटरनेशनल डे ऑफ फ्रेंडशिप मनाए जाने की शुरुआत साल 1958 में हुई थी और पैराग्वे के डॉक्टर थे रेमोन ऑर्टेमियो ब्राचो ने एक अभियान शुरू किया था जिसका उद्देश्य देशों और समाजों के बीच दोस्ती को बढ़ावा देकर शांति स्थापित करना था। बाद में इस विचार को वैश्विक स्तर पर पहचान मिली और 2011 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 30 जुलाई को आधिकारिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस घोषित कर दिया।
0: एक साथ ही लिखते हैं, सच्चा मित्र वह है जो हमारी मुस्कान के पीछे दर्द को भी पढ़ ले, बिना कुछ कहे हमारे साथ खड़ा रहे। समय बदलता है, लोग बदलते हैं, लेकिन सच्ची दोस्ती की खुशबू कभी नहीं बदलती। बचपन की शरारतें, स्कूल की यादें, साथ बिताए अनगिनत पल, दूरियां चाहे कितनी भी बढ़ जाए, यदि दिलों में अपनापन हो तो दोस्ती कभी पुरानी नहीं होती।
1: बिल्कुल। क्या बात, हमारे एक साथी कहते हैं सोनाली, जब जिंदगी में बहुत बुरा हो जाए, कुछ ना रहे, और उस समय दोस्त का हाथ गलबहिया कंधे पर टिके और दोस्त ये कहे कुछ भी नहीं हुआ, बस तू ठीक है तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, हम है ना, सच में बहुत ज्यादा इससे हमें
0: संबल मिलता है।
1: बिल्कुल। तो हमें लगता है कोई है साथ में,
0: कोई है कि अरे मैं हूं ना तो चिंता क्यों करता है, चिंता क्यों करती
1: है, शब्द होते हैं
0: जी
1: यही बहुत ज्यादा हमारे लिए मायने रखते हैं।
0: एक साथी कहते हैं, मुझे दोस्ती पर बहुत विश्वास है। दोस्ती एक ऐसा रिश्ता है जिसे इंसान खुद चुनता है। ये रिश्ता विश्वास, अपनापन, सम्मान और निस्वार्थ प्रेम के मजबूत नींव पर टिका होता है। जीवन के हर सुख दुख, सफलता असफलता और कठिन समय में सच्चा दोस्त हमेशा हमारे साथ खड़ा रहता है। विविध भारती के द्वारा हमें आप जैसी सखियों के साथ कई सारे श्रोता मित्र भी मिले हैं। आप सभी को मित्रता दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं।
1: और एक हमारे साथी हैं जो कहते हैं कि दोस्ती एक ऐसा रिश्ता है जिसे जन्म से नहीं बल्कि दिल से चुना जाता है। यही रिश्ता मुश्किल वक्त में सहारा बनता है और खुशियों को दोगुना कर देता है। दोस्तों के इसी अनमोल साथ को सम्मान देने के लिए हर साल फ्रेंडशिप डे मनाया जाता है। दोस्ती एक ऐसा रिश्ता है जिसे जन्म से नहीं बल्कि दिल से हम चुनते हैं और ये कहते हैं कि दोस्तों के इसी अनमोल साथ को सम्मान देने के लिए हम इस दिन को मनाते हैं।
0: एक साथी कहते हैं, दोस्ती जिंदगी का वो संगीत है जो पतझड़ में भी बहार का एहसास कराता है। ये कोई व्यापार नहीं बल्कि आत्मिक संबंध है। यही आपकी जिंदगी में एक भी ऐसा दोस्त है जिससे आप बिना झिझक अपने दिल की हर बात साझा कर सकते हैं तो यकीन मानिए आप दुनिया के सबसे अमीर इंसान हैं। बहुत सुंदर बात लिखी है। इसी तरह की बातें हमारे सभी साथियों ने लिखी है।
1: तो एक गीत सुने,
0: सुनते हैं।

0: तो कितना सुंदर गीत था, और
1: बहुत
0: ये
1: प्यारा
0: गाना सुन के हर किसी को अपने दोस्त की याद आई होगी।
1: बिल्कुल
0: पर जिंदगी में कुछ ऐसे लोग होते हैं, भले ही वे हमारे मित्र न हो, पर एक हमारे बहुत अच्छे मार्गदर्शक होते हैं,
1: बिल्कुल
0: जिनकी बदौलत हमारी जिंदगी संवर जाती है।
1: बिल्कुल, और ऐसे ही लोग होते हैं ना जो हमें प्रेरणा देते हैं कुछ अपने भी जीवन में कुछ अच्छा कर दिखाने की और लोगों की सेवा करने की, क्योंकि वो जो सेवा के जरिए अपनी एक पहचान बनाते हैं ना, वो सच में बहुत ज्यादा उनको महान हम कह सकते हैं, क्योंकि
0: यानी
1: वो
0: उनसे हमें प्रेरणा मिलती है बहुत
1: बिल्कुल
0: ज्यादा।
1: वो दूसरों की सहायता के लिए अपनी लाइफ को अपने पूरे जीवन को लगा देते हैं, समर्पित कर देते हैं।
0: जी, तो आज हम याद करेंगे कहानी पद्मश्री में डॉक्टर बुधरी
1: दाती।
0: दाती को। जी,
1: बिल्कुल,
0: डॉक्टर बुधरी दाती छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले के हीरानार गांव की प्रसिद्ध समाज सेविका है। बस्तर अंचल में उन्हें लोग प्रेम और सम्मान से बड़ी दीदी या बुआ के नाम से जानते हैं। बुधरी दाती का जन्म 15 सितंबर 1966 को हीरानगर गाँव में हुआ था। वे बहुत ही साधारण और आर्थिक रूप से कमजोर आदिवासी परिवार में जन्मी थी।
1: बिल्कुल, और जन्म के कुछ समय बाद उनके पिता का निधन हो गया था। उनकी मां ने कठिन परिस्थितियों में परिवार का पालन पोषण किया। बचपन से ही उनमें पढ़ने की लगन और समाज सेवा की भावना थी। सिर्फ 15 वर्ष की आयु थी उनकी जब उन्होंने अपना जीवन समाज सेवा को समर्पित करने का निर्णय ले लिया। कितनी छोटी सी उम्र होती है जब बच्चे खेलते हैं, आपस में बात करना, अपनी सखी सहेलियों में लगे होते हैं, उस समय उन्होंने समाज सेवा का निर्णय लिया।
0: हम तो सोच भी नहीं सकते कि उस उम्र में इतनी इतनी सुलझी हुई सोच होगी।
1: बिल्कुल, और वर्ष 1981 में उन्होंने आध्यात्मिक दीक्षा ली और 1984 में वनवासी समाज के बीच सेवा कार्यों से वो जुड़ गए।
0: आगे चल के नागपुर में सामाजिक कार्य का उन्होंने प्रशिक्षण भी प्राप्त किया और वर्ष 1986 में उन्होंने बस्तर के दुर्गम जिले और जंगल के में पैदल घूम घूम कर लोगों में शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वावलंबन के प्रति जागरूकता फैलाना शुरू कर दिया। उस समय अधिकांश गांवों में सड़क, स्कूल और स्वास्थ्य सुविधाएं भी नहीं थी, फिर भी उन्होंने कठिन परिस्थितियों में अपना अभियान जारी रखा।
1: और डॉक्टर बुधरी दाती ने 1990 में केवल 11 बालिकाओं के साथ में छात्रावास की शुरुआत की थी, जहां आज उनके प्रयासों से अनेक वनवासी बालिकाएं शिक्षा प्राप्त कर चुकी हैं। उन्होंने परिवारों को समझाया कि गरीबी से बाहर निकलने का सबसे प्रभावी माध्यम शिक्षा ही है। उनके छात्रावास की कई छात्राएं आज शिक्षिका, नर्स और अन्य क्षेत्रों में कार्यरत हैं।
0: और डॉक्टर बुधरी दाती ने मां शंखिनी महिला उत्थान केंद्र की स्थापना करके महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का अभियान शुरू किया, जिसमें महिलाओं को सिलाई, कढ़ाई और स्वरोजगार का प्रशिक्षण दिया जाता है। उन्होंने स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया, साथ ही महिलाओं को बचत, शिक्षा और आत्मविश्वास का महत्व भी समझाया।
1: और इसके अलावा उन्होंने गांव-गांव जाकर स्वच्छता का संदेश दिया, बहुत से नशा मुक्ति अभियान चलाए, स्वास्थ्य और पोषण के प्रति जागरूकता फैलाने का काम किया, साथ ही महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दिया। बस्तर और अबूझमाड़ जैसे कठिन इलाकों में काम करना आसान नहीं था और वहां पर उन्हें कई सारी धमकियों का और विरोध का सामना भी करना पड़ा था,
0: लेकिन उन्होंने सेवा का मार्ग कभी नहीं छोड़ा। वे लगभग 570 दूरस्थ गांवों तक पैदल पहुंची, वहां के लोगों का विश्वास जीता। डॉक्टर ताती अत्यंत सरल और सादगीपूर्ण जीवन जीती है और उन्होंने अविवाहित रहकर समाज सेवा को अपने जीवन का लक्ष्य बनाया। वो हमेशा पारंपरिक आदिवासी वेशभूषा में दिखाई देती है और अपनी संस्कृति पर गर्व करती है। और डॉक्टर बुधरी ताती का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सफलता पद, धन या प्रसिद्धि में नहीं, बल्कि समाज के लिए किए गए निस्वार्थ कामों में होती है। उन्होंने ये सिद्ध किया कि अगर संकल्प दृढ़ हो तो एक व्यक्ति भी हजारों लोगों के जीवन में आशा और परिवर्तन की नई रोशनी ला सकता है। लगभग 4 दशकों की निस्वार्थ सेवा के लिए भारत सरकार ने उन्हें वर्ष 2026 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया।
1: बिल्कुल, तो बहुत ही ज्यादा प्रेरणादायी इनका जीवन रहा है और हमेशा इन्होंने दूसरों की सेवा में अपना जीवन लगाया है।
0: अब एक संदेश सुनते हैं।
1: हाँ बिल्कुल, संगीत सुन।
2: इंजीनियरिंग और मेडिकल एंट्रेंस परीक्षा की पढ़ाई को कैसे बनाया जाए आसान, प्रभावी और तनाव मुक्त, इसके कुछ फॉर्मूले बताएंगे फिजिक्स के प्रोफेसर नयन वर्मा।
3: अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रही हैं, आप अपना स्टडी टाइम डिवाइड कर लीजिए। 6 घंटा आप जो भी कोचिंग में जाते हैं, 7-8 घंटे की नींद, 1 घंटे का आपका स्पोर्ट्स, उसके बाद में आपके पास 6-7 घंटे जो बचते हैं वो टाइम डिवीजन आपके ऊपर डिपेंड करता है, बिकॉज दैट टाइम डिवीजन डिफर्स फ्रॉम स्टूडेंट टू स्टूडेंट। लेकिन आप MCQs रोज प्रैक्टिस करें, बिकॉज आपका जो भी एडमिशन आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम के रैंक के ऊपर डिसाइड होता है।
2: काउंसलर डॉक्टर सुमति ओझा साझा करेंगी तनाव और दबाव से कैसे निपटें।
4: हम किस

0: आरती
1: रूठी नहीं है बस मैसेज निकाल रहे थे, कमेंट्स निकाल रहे थे, इसलिए बोल रहे थे
0: रूट गई
1: रूठे नहीं है, और क्योंकि बारिश के दिन है, घूमने फिरने का ऐसा मन करता है ना कि चलो इतनी जो बूंदे पड़ेंगी ना चेहरे पे, मुंह पे, हाथ पे, सब बहुत अच्छा लगेगा,
0: वो जो फुहारे आती है ना, पर उसके लिए रिमझिम रिमझिम बारिश चाहिए,
1: तेज नहीं चाहिए एकदम से भागने की वजह नहीं भैया बहुत हो गया चलो,
0: फिर फिसलने का डर भी है ना
1: बिल्कुल,
0: कि अगर तेज दौड़ पड़े बारिश में तो भाई गिर गए तो फिर तो ये बारिश जो है ना हमें बहुत दुखदायक हो जाएगी,
1: पानी भर गया अगर और अब ऐसे ही चल दिए उस पानी भरे में और कुछ पैरों के नीचे आ गया तो ये भी बहुत ज्यादा खतरनाक बात है, इसलिए बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ता है जब हम बारिश के दिनों में कहीं निकलते हैं तो,
0: और उसमें ना हमारे चप्पल या फुटवेयर जो हम पहनते हैं उसका बहुत ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हम जो बारिश वाली जो चप्पल होती है ना उससे छींटे भी नहीं उड़ते हैं और वो इतनी लाइट होती है ना कि वो धंसती भी नहीं है जैसे कीचड़ के इसमें, तो चप्पल का बहुत हमें खास ध्यान रखना चाहिए, और खासकर मुंबई की इतनी बारिश होती है यहाँ पर कि यहाँ पर हम बिना छाता लिए घर से बाहर निकल ही नहीं सकते, ऐसा लग रहा है कि खुला है एकदम मौसम अच्छा है और पता चला 5 मिनट के बाद में झमाझम बारिश शुरू हो गई
1: इसलिए बहुत ज्यादा ध्यान रखें अपना, और बारिश का केवल अगर कहा जाए तो बारिश केवल एक ऋतु नहीं है बल्कि प्रकृति का एक उत्सव है,
0: है
1: ना, एक उत्सव होता है कि जो धरती को नया जीवन देता है ना, जब बारिश होती है उसके बाद देखो क्या हरी एकदम लाइट हरे, मतलब हल्के हल्के हरे रंग के जो पत्ते होते हैं, नए नए पत्ते निकल आते हैं, मतलब जो सूखी हुई डंडियां जब सूखे हुए झाड़ जो होते हैं ना धूप की वजह से हो जाते हैं, जब बारिश का मौसम आता है तो एकदम खिल जाते हैं, जैसे
0: हरी हरी कोपले आ जाती है, और जैसे ना हम बाहर

0: घूमने जब जाते हैं ना, तब देखते हैं कि ऐसा लगता है कि धरती माता ने हरी रंग की शाल ओढ़ ली है।
1: बिल्कुल, इतना अच्छा आंखों को लगता है ऐसा, दिमाग को इतना ज्यादा शांति मिलती है, बहुत अच्छा लगता है, बहुत सुकून भरा रहता है। और जैसे ही आसमान से बूंदे बरसती है ना, तो सूखी धरती जो है वो भी मुस्कुराने लगती है कि चलो हम पे
0: बिल्कुल
1: अब।
0: हमारी तरह।
1: हाँ बिल्कुल। और पेड़ पौधे हरियाली की नई चादर ओढ़ लेते हैं, और नदियां, झरने और पहाड़ जो है वो अपनी पूरी पूरी शोभा में नजर आने लगते हैं। ऐसे मनमोहक दृश्य हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करते हैं।
0: और मानसून का मौसम पर्यटन प्रेमियों के लिए किसी सुंदर सपने से कम नहीं होता। आरती, बादलों से घिरी पहाड़ियां, धुंध में लिपटी घाटियां, वर्षा की रिमझिम फुहारे और मिट्टी की भीनी भीनी खुशबू मन को अद्भुत सुकून देती है। और बारिश के दिनों में प्रकृति अपने सबसे सुंदर रूप में दिखाई देती है। झरनों का उफान, जंगलों की हरियाली और खेतों की लहलाती फसलें यात्रियों को एक अलग ही दुनिया का अनुभव कराती
1: सच
0: है।
1: में। अब हम अगर हम अपने किसी गाड़ी से जा रहे हैं ना, तो या ट्रेन से भी जा रहे हैं, तो ये जो दृश्य होते हैं ना, ऐसे मनमोहक होते हैं कि ऐसा लगता है कि किसी ने जैसे चित्र उकेर दिए हो पूरी धरती पे ना,
0: बहुत सुंदर।
1: बहुत सुंदर लगता है। और यही कारण है कि मॉनसून जो पर्यटन है वो आज देश विदेश में तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। लोग शहरों की भागदौड़ से दूर प्रकृति की गोद में कुछ सुकून के पल बिताने निकल पड़ते हैं। लेकिन प्रकृति जितनी मोहक होती है उतनी ही संवेदनशील भी। बारिश के मौसम में पर्यटन का आनंद सभी तभी सार्थक होता है जब उसके साथ सावधानी भी जुड़ी हो।
0: और अभी वक्त हो चुका है एक ब्रेक का, तो ब्रेक
1: अंतराल
0: के बाद हम फिर हाजिर होते हैं।

0: अंतराल के बाद हम फिर हाजिर हैं, कार्यक्रम है सखी सहेली और हम बारिश की बातें कर रहे थे आरती,
1: बारिश की बातें कर रहे थे हम और साथ ही तेज, जो जब बहुत ज्यादा तेज बारिश हो रही होती है तो भूस्खलन भी हो जाता है वहाँ पे कभी कभी ऐसी जगहों पे, जब अचानक बढ़ता जलस्तर और जो फिसलन भरे रास्ते हैं और खराब जो दृश्यता होती है वो यात्रा को जोखिमपूर्ण बना सकते हैं। इसलिए यात्रा पर निकलने से पहले मौसम की जानकारी अवश्य ले लेनी चाहिए पहले से ही, और अगर किसी क्षेत्र में भारी वर्षा या बाढ़ की चेतावनी जारी की गई है तो यात्रा स्थगित कर देने में ही समझदारी है। यात्रा के दौरान रेनकोट, छाता, वाटरप्रूफ जूते, अतिरिक्त कपड़े, प्राथमिक उपचार की किट, आवश्यक दवाइयां, टॉर्च और मोबाइल के लिए वाटरप्रूफ कवर जरूर याद करके रख लें।
0: बिल्कुल रखना जरूरी है, अगर हमारा मोबाइल बंद हो गया तो हम तो फिर लोगों के संपर्क से टूट ही जाएंगे ना।
1: और जो प्राथमिक चिकित्सा किट होती ना वो तो बहुत जरूरी है।
0: और पहाड़ी क्षेत्रों में निर्धारित मार्गों पर ही चलना जरूरी है। चेतावनी बोर्डों की अनदेखी तो कभी भी नहीं करनी चाहिए। नदी, झरने, तेज बहाव वाले स्थानों के अत्यधिक निकट जाने से बचना चाहिए, क्योंकि कुछ क्षणों की लापरवाही जीवन भर का पछतावा बन सकती है। आज के सोशल मीडिया के युग में सुंदर तस्वीरें और रील बनाने का आकर्षण बहुत ज्यादा बढ़ गया है, पर सावधानी में ही बहुत ज्यादा सुरक्षा है।
1: बिल्कुल,
0: तो भले ही आज रील ना बन पाए तो उसमें दुख करने की जरूरत नहीं है,
1: बाद में बना लीजिए अगली बार,
0: क्योंकि जान है तो ये खूबसूरत जहान है।
1: बिल्कुल, और कई बार लोग रोमांच के नाम पर खतरनाक चट्टानों, झरनों और किनारों या उफनती हुई नदियों के पास जाकर सेल्फी और वीडियो बनाने लगते हैं। ऐसे जोखिम केवल कुछ लाइक्स और व्यूज के लिए अपनी और दूसरों की जान खतरे में डाल सकते हैं। हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि सबसे खूबसूरत तस्वीर वही है जिसे सुरक्षित घर लौटकर हम मुस्कुराते हुए देख सकते हैं।
0: ये बहुत सही बात आपने कही। और अगर हम सड़क मार्ग से यात्रा कर रहे हैं तो जो भी वाहन हम चला रहे हैं उसकी अच्छी तरह जाँच कर लेना चाहिए। टायर है, फिर ब्रेक है, वाइपर है, हेडलाइट पूरी तरह से ठीक होनी चाहिए। धीमी गति से वाहन चलाए, पर्याप्त दूरी बनाकर रखें और जल भराव वाले रास्तों से हमें बचना चाहिए। पहाड़ी क्षेत्रों में रात के समय अनावश्यक यात्रा न करने से बचना चाहिए और स्थानीय प्रशासन के निर्देशों का पालन करना हमें बहुत जरूरी है।
1: बिल्कुल, और इसके साथ ही स्वास्थ्य का ध्यान रखना भी जरूरी है। इसलिए केवल स्वच्छ और ताजा भोजन करें जब भी कहीं आप बाहर जा रहे हैं, और पर्याप्त पानी पिए, और भीगने के बाद जल्द से जल्द सूखे कपड़े पहने। हम लोग अभी बारिश की भीगने की बातें कर रहे थे तो सूखे कपड़े आप तुरंत पहन लें। अगर छोटे बच्चे या बुजुर्ग साथ में हो तो उनकी सुरक्षा और सुविधा का विशेष ध्यान रखना चाहिए। पर्यटन केवल प्रकृति का आनंद लेने का माध्यम नहीं है बल्कि उसके प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाने का अवसर भी है।
0: और सबसे जरूरी बात है आरती कि जब भी हम बाहर जाएं स्वच्छता का ध्यान रखें, प्लास्टिक या अन्य कचरा इधर उधर ना फैलाएं, स्थानीय संस्कृति और पर्यावरण का सम्मान करें। ध्यान रहे प्रकृति हमें जितना देती है उसे सुरक्षित रखना भी हमारा दायित्व है। और बारिश का मौसम हमें सिखाता है कि जीवन की सबसे सुंदर अनुभूतियां संतुलन में छिपी होती है। उत्साह और सावधानी, रोमांच और जिम्मेदारी, आनंद और अनुशासन के संतुलन में
1: बिल्कुल
0: होता है।
1: बहुत सही कहा आपने। और जब हम पूरे ध्यान से सावधानियों के साथ यात्रा करते हैं तो मॉनसून की हर बूंद यादों का मोती बन जाती है और हर सफर जीवन की अनमोल धरोहर बन जाता है, क्योंकि बारिश का असली आनंद तभी है जब यात्रा सुरक्षित हो, प्रकृति सुरक्षित हो और मुस्कान सुरक्षित घर तक लौटे। और सावधानी रखें कि अगर सरकार की तरफ से कोई भी जानकारी या चेतावनी अगर कहीं दी गई, जारी की गई है, तो उस जगह की यात्रा को आप कुछ समय के लिए टाल दीजिए और बाद में जब सही हो जाए तब आप जाइए।
0: और आप क्या करें,
1: एक गीत सुनते हैं
0: गीत।

0: हाँ सुनाली, बारिश के दिनों की जो हम बातें कर रहे हैं ना, तो सखियां सखा जितने भी सब लोग हैं ना, सभी लोग अपने अपने अनुभव बांट रहे हैं, अपनी बातें बता रहे हैं।
1: हमारे एक साथी ने लिखा है कि अभी कल ही मेरी दो छोटी बहनें अपनी सकुशल अमरनाथ यात्रा से आई। मैं स्वास्थ्य कारणों से जा नहीं पाई, लेकिन उनकी काफी कठिन और मुश्किल भरी यात्रा थी। बारिश के कारण कई सारी रुकावटें भी आई, लेकिन सावधानी से की गई उनकी यात्रा आनंददायक और यादगार रही। क्या बात है।
0: बिल्कुल यादगार बन जाती है यात्रा जब हम सावधानी रखते हैं, अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखते हैं, तो कोई जब परेशानी नहीं होती है तो फिर हम उसका लाभ भी उठा पाते हैं अच्छे से। हमारे एक साथी हैं जो कहते हैं कि कल्याण से पुणे जाते समय ये नजारा बहुत देखने को मिलता है कि बारिश के दिनों में सभी के हाथ में मोबाइल के कैमरे चमकने लगते हैं, क्योंकि बीच रास्ते में घुमावदार रास्ते से ट्रेन का जाना और हरे भरे पहाड़ियां, बादल और कहीं कहीं पहाड़ों से पानी गिरते हुए देखना बड़ा ही सुखद और मनोरम होता है। चलिए आप किसी चीज में जा रहे हैं, से ट्रेन में जा रहे हैं तो अच्छी बात है, चलिए आप उसमें से बना सकते हैं वीडियो, लेकिन पैदल जाते समय बहुत ध्यान रखें कि मोबाइल में ही आपका ध्यान ना रहे, सड़क पे भी ध्यान रखिए, जहां पे आप चल रहे हैं उसका भी ध्यान रखिए कि आप कोई पहाड़ी पे तो नहीं है। इस तरह से अपनी सावधानी के साथ में आप करेंगे तो कोई परेशानी नहीं आएगी।
1: एक साथ ही लिखते हैं कि मानसून के दौरान यात्रा करने के कई अनूठे फायदे और अनुभव है। प्राकृतिक सुंदरता का चरम इस मौसम में पहाड़, जंगल और घाटियां जीवंत हो उठती है। झरने अपने पूरे शबाब पर होते हैं। धुंध और बादलों का खेल दृश्यों को जादुई बना देता है। सस्ता और किफायती सफर, मानसून को पर्यटन का ऑफ सीजन माना जाता है। इस दौरान होटलों, फ्लाइट्स और स्थानीय यात्रा पैकेजों पर भी बहुत सारी छूट होती है। और ये कहते हैं कि इन दिनों मौसम बहुत सुंदर होता है।
0: ये तो है। और एक हमारे साथी जो अभी वहीं पे हैं, मतलब अभी घूमने गए हुए हैं, तो बारिश में पर्यटन का आनंद और सावधानियां के बारे में बता रहे हैं कि इस बारिश के मौसम में ही दर्शन करने के लिए हम आए हुए हैं जम्मू कश्मीर। इस समय बारिश और पहाड़ों पर लैंडस्लाइड भी हो रही है, यानी भूस्खलन भी हो रहा है, और सावधानी पूर्वक हम इसलिए होटल में रुके हुए हैं और मौसम ठीक होने पर ही हम दर्शन करने जाएंगे। ये वर्ष का बहुत ही महत्वपूर्ण दर्शन, मतलब वो दर्शन करने गए हुए हैं तो वो भी होटल में रुके हुए, तो आप तब तक सावधानी पूर्वक रुके रही जब तक मौसम अच्छी तरह से बिल्कुल ठीक नहीं हो जाता और रास्ता साफ नहीं हो जाता।
1: वैसे हमारे अन्य साथियों ने भी इसी विषय में बातें लिखी हैं। एक साथी लिखते हैं कि बारिश के मौसम में पर्यटन का आनंद प्राकृतिक हरियाली, ठंडी हवा और बहते झरनों का अनुभव कराता है, लेकिन इसके लिए वाटरप्रूफ पैकिंग, सुरक्षित जगहों का चुनाव, खान पान में सावधानी बेहद जरूरी है। बारिश में पर्यटन का आनंद मनमोहक हरियाली, पेड़ पौधे, बाग बगीचे खिल उठते हैं, जिससे चारों तरफ ताजगी रहती है, शांत वातावरण, भीड़ भाड़ कम होने से सुकून और शांति मिलती है। और ऐतिहासिक जगह जैसे मांडू है, ओरछा, उदयपुर, ऐसे ऐतिहासिक स्थान बारिश में बेहद खूबसूरत दिखते हैं। जरूरी सावधानियां, हमें छाता, रेनकोट, वाटरप्रूफ बैग हमेशा सावधानी रखनी चाहिए। साथ ही कहते हैं कि अच्छे पकड़ वाले स्किड जूते पहने, स्किड एंटी स्किड जूते पहने, और खान पान हमेशा ताजा भोजन खाएं, साफ या उबला पानी पिए। इसी तरह की बातें
0: एक हमारे साथी हैं जो लिखते हैं कि बता रही हैं कि मेरे पति की पोस्टिंग बारिश के मौसम में बांध यानी कि डैम पर होती है। करीब 3-4 साल पहले की बात है, उस समय बांध के आसपास ज्यादा बारिश नहीं हो रही थी। कुछ परिवार वहां पिकनिक मनाने आए हुए थे, मौके पर तैनात गार्ड ने उन्हें चेतावनी भी दी कि वो नदी या पानी के बीच में ना जाएं क्योंकि अचानक पानी बढ़ सकता है, लेकिन वो लोग नहीं माने और बीच में चले गए। तभी ऊपरी क्षेत्र में भारी बारिश होने के कारण बांध का पानी बहुत तेजी से बढ़ने लगा और उन्हें बाहर निकलने का मौका ही नहीं मिला। इस हादसे में 4 लोग बह गए। बहुत बड़ी ये तो दुर्घटना हो गई। इन्होंने बताया कि मतलब बार बार चेतावनी होने के बाद भी उन्होंने नहीं सुना।
1: ये बहुत लोग गलत करते हैं कि हमें अपनी जान से ज्यादा किसी चीज की चिंता नहीं करना चाहिए, उसे हमें बहुत सावधानी से उस वक्त उस सिचुएशन को बहुत सावधानी से हमें बरतना चाहिए।
0: हम क्योंकि हमारे पास हम अपनी जिम्मेदारी तो होती है, साथ में परिवार की है, जो भी लोग हमारे साथ में गए हैं, इतने सारे लोग गए हुए हैं, तो हमें इस चीज को समझना चाहिए, जिम्मेदारी को। और सरकार हमारे भले के लिए ही कहती है, वो चेतावनी जारी करती है कि हम अपनी जान को बचा सके, तो सुरक्षा की दृष्टि से ये सब कहा जाता है, तो उसका पालन जरूर करिए।
1: और सबसे जरूरी बात है कि बारिश में थूकना वगैरह ये सब गंदी आदतों को हमें भूलना चाहिए। वैसे तो कभी भी थूकना नहीं चाहिए, क्योंकि ये जो आदत है ना, ये हमें बहुत सारी बीमारियों से घेर सकती है। और अब क्या किया जाए आरती, एक गाना सुन
0: गीत सुन लेते हैं
1: सुनते हैं गीत।

0: अब हम बात करने जा रहे हैं एक बुरी आदत के बारे में, है ना
1: एक
0: सोनाली?
1: हमारी सखी ने लिखा है आरती कि जिस जगह को हम अपनी नहीं समझते उसे गंदा करना आसान लगता है, लेकिन शहर भी आखिर हमारा ही घर है
0: बिल्कुल.
1: ये विचार नहीं रखते हैं। मैं किसी रिश्तेदार के घर गई थी, एक 4-5 साल के बच्चे ने दीवार पर थूका। मैंने
0: ओ
1: पलट कर देखा तो बोला, चाचा भी तो ऐसा ही करते हैं। हमने तो कुछ कहा नहीं, पर मन में विचारा है कि हम अपने बच्चों को क्या दे रहे हैं। बच्चे जैसा देखते हैं वैसा
0: वो
1: ही
0: तो है,
1: करते हैं।
0: बच्चे वही
1: बहुत
0: सीखते हैं
1: सही बात
0: जो,
1: लिखी है
0: बिल्कुल
1: कि बच्चों के सामने हम जैसा करते हैं बच्चे वैसा ही अपनाते हैं। तो हमारी ये कोशिश हो कि थूकना तो है ही नहीं, बिल्कुल जो पीकदान बनी होती है उसी में थूकना है, और अपने घर में जो बेसिन वगैरह होते हैं उसे भी साफ रखना बहुत
0: बिल्कुल.
1: जरूरी है। थूकने के बाद में उसमें भी पानी से अच्छे से धोना बहुत जरूरी है।
0: और हमारे एक साथी हैं जो लिखते हैं कि बिल्कुल सही कहा आपने, हम विदेशों में एहतियात बरतते हैं कि हम गलती ना करें, पर अपने देश में गलती को बार बार करते हैं. मैंने किसी से सुना कि खाड़ी देशों में अगर आप सड़कों पर जहां तहां थूकते हुए पाए गए तो उनके पास स्प्रे जैसी कुछ चीज होती है जिसे वो आपके मुंह में स्प्रे कर देते हैं, जिससे आपके मुंह में सूजन हो जाती है और आपका मुंह सूज जाता है, यही सजा दी जाती है. तो ये इस तरीके की चीजें अब हमें तो नहीं पता है, खैर ये बता रही है इस तरीके की चीज. लेकिन ये जो मैसेज है कि भाई थूकना बहुत गलत है, तो
1: जी
0: वो तो आप कहीं भी मत करिए, क्योंकि जो सड़क भी है इसके भी ये भी हमारी ही है, समझ, ये
1: जी
0: सरकार की नहीं, ये जो हम टैक्स देते हैं उससे उसको ठीक किया जाता है. तो ये इस तरीके की चीजों को हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जिस तरह से हम अपने घर को साफ रखते हैं वैसे ही
1: वैसे
0: हमें
1: ही अपने घर के
0: सड़क को,
1: बाहर भी स्वच्छता का
0: बिल्कुल
1: ध्यान रखना चाहिए। एक हमारे साथी ने लिखा है कि इंदौर शहर में कोई व्यक्ति थूकते पकड़ा जाता है तो उसे 500 रुपए का जुर्माना लग जाता है।
0: अरे
1: तो ये तो बहुत सही है।
0: इस तरीके की जब जब इस तरह की जब सजा मिलती है या इस तरह की चीजें जब निर्णय दिए जाते हैं ना कि आपको ऐसे देना है, पैसे देने, जुर्माना देना है, तब हम उस चीज

0: तो थोड़ा सा सोच के करते हैं कि नहीं नहीं यहाँ पे हमें पैसे देने पड़ जाएंगे, इसलिए ना करें। तो ऐसे इस तरह से होना चाहिए जिससे कि स्वच्छता बनी रहे।
1: एक हमारे साथी ने लिखा है कि पान मसाला और गुटखा खाने की लत के कारण लोग बार बार कहीं भी थूकने पर मजबूर हो जाते हैं और मानसिकता, सफाई के प्रति लापरवाही और सामाजिक आचार संहिता का अभाव इस आदत को और भी बढ़ावा देता है।
0: एक साथी लिखते हैं कि अपने अपने थूकने वाले लोग ये नहीं देखते कि उनके पीछे और भी लोग आ रहे हैं, और ये बहुत ही गंदी आदत है, इसके लिए इस चीज को नहीं होना चाहिए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि हम ऐसे बस किसी ऑटो में बैठे हैं या बस में बैठे हैं तो हम मुंह निकाला थूक दिया, क्योंकि नीचे और जो चल रही सड़क पर चल रहे हैं लोग उन पे भी कभी कभी उनके कपड़ों पर गिर जाता है कभी कभी, इस तरह। तो ये भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमें इस तरह से नहीं करना
1: कई बार
0: चाहिए।
1: जब हम ऑटो रिक्शा में बैठते हैं तब भी ऑटो वाले जो भैया होते हैं वो हालांकि दिन भर वो काम करते रहते हैं पर जरूरी नहीं नहीं वो चलाते चलाते ऐसे थूक देते हैं, तेज हवा आई तो उसका छींटा जो है पीछे वाले लोगों पर आ सकता है। और
0: बिल्कुल
1: एक साथी ने लिखा है कि खुले में थूकने से टीबी और अन्य सांस संबंधी संक्रमण हवा और सतह के जरिए तेजी से फैलते हैं, गंदगी से गलियां, दीवारें और सार्वजनिक स्थल बदरंग और गंदे हो जाते हैं जो शहर की खूबसूरती को बिगाड़ते हैं और साथ ही खुद का स्वास्थ्य भी खराब होता है क्योंकि हवा से जो जीवाणु है, कीटाणु है, वो हमारे पेट के अंदर चले जाते हैं और हम भी बीमार पड़ सकते हैं, इसलिए हमें थूकने की आदत को तो अलविदा
0: बिल्कुल
1: कहना ही
0: बिल्कुल।
1: चाहिए।
0: और एक साथी जो लिखते हैं कि एक सभ्य इंसान की पहचान उसके कपड़ों से नहीं बल्कि उसकी आदतों से होती है। जब कोई व्यक्ति बिना सोचे समझे कहीं भी थूक देता है तो उसे देखकर मन में खिन्नता होना स्वाभाविक है। तो ऐसी आदतें न केवल वातावरण को अस्वच्छ बनाती हैं बल्कि कई बीमारियां फैलने का भी कारण बनती हैं, और इसलिए वो कहते हैं कि ये नहीं करना चाहिए हमें।
1: एक साथी ने लिखा है कि मेरी शॉप के आगे जब लोग थूकते हैं तो मैंने साफ शब्दों में मना करता हूँ, ऐसी जगह मक्खी मच्छर होते हैं जो बीमारी का कारण बनता है, सार्वजनिक स्थानों पर थूकना एक कानूनी अपराध है। और इन्होंने कहा है कि इस तरह से ये दंड जो है ये तो लोगों को डराने के लिए, एक आदत लगाने के लिए दंड है, पर हमें खुद से ही इन आदतों को अपनाना चाहिए कि इसके साथ सामने वाले के साथ साथ हमारा भी इसमें फायदा ही होता है।
0: बिल्कुल। एक हमारे साथी जो लिखते हैं कि एक गुजरात के बड़ौदा जो बस अड्डा है वहां पर पान मसाला तंबाकू पाए जाने पर जुर्माना लगता है, और मेरे सामने एक बार बस में मैं जब बस अड्डे पर खड़ा था तो एक भाई ने तंबाकू की पूड़ी निकाली, दोनों हाथों से उसको बना रहे थे, तो सिक्योरिटी वाले आए और 200 रुपए का दंड किया का जुर्माना भी लगाया, और तंबाकू जो बना रहे थे वो पूड़ी उसको भी ले गए। और स्वच्छता का अभियान और स्वस्थ रहने का अभियान चलाया जाता है, तो इस तरीके की जो चीजें हैं वो करते रहना चाहिए जिससे कि स्वच्छता बनी रहे।
1: और अब गीत सुन ले।
0: गीत सुन लेते हैं।

0: हाँ सोनाली, अब हम बात करेंगे
1: हुँ,
0: कुछ उपयोगी टिप्स के बारे में, है ना।
1: हुँ,
0: तो हमारे एक साथी हैं जो लिखते हैं कि रसोई में काम करते समय तेल की छींटे उंगलियों और हाथों में लग जाते हैं, जैसे कि अगर आपको लग जाए तो आप पहले ठंडे पानी के नीचे रखें अपने हाथ को, और वहां पर मलाई से कुछ दही लगा लीजिए, कुछ ठंडी चीज लगा लीजिए, ये जलन को भी शांत कर देता है और फफोले भी नहीं पड़ते हैं। और अधिक जल जाए तब तो फिर मरहम और डॉक्टर, पहले तो डॉक्टर से ही सलाह लेनी पड़ती है। और हल्की फुल्की जलने पर ठंडा दूध भी बहुत फायदेमंद होता है। तो कभी कभी तवे पर उंगलियां सट जाती हैं या पकौड़ियां तलते समय उंगलियां तेल में टच कर जाती हैं, तो ऐसे में आप ठंडा दूध या थोड़ी देर में पानी में रखने पर भी जलन खत्म हो जाएगी।
1: एक हमारे साथी ने लिखा है कि किचन में जो हम हाथ में अगर कट जाता है तो उसमें तुरंत ही सरसों का तेल लगा लिया जाए तो खून रुक जाता है और एंटीसेप्टिक का काम करता है, और उसी जगह पर चीनी लगा ले तो खून तुरंत रुक जाता है। ये काम मैंने बच्चों पर खूब आजमाया है, बच्चे अक्सर गिर जाते थे, होंठ कट जाता था तो चीनी लगा देती थी, जलने पर तो तुरंत उस जगह पर ठंडा पानी या बर्फ या टूथपेस्ट लगाना चाहिए, हो सके तो अगर ज्यादा चोट है तो डॉक्टर के पास
0: बिल्कुल
1: जाना जरूरी है।
0: ज्यादा चोट है तो आप अपना इलाज बिल्कुल भी ना करें,
1: बिल्कुल
0: सीधे
1: तुरंत ही
0: डॉक्टर
1: डॉक्टर
0: के
1: के
0: पास
1: पास
0: जाएं,
1: जी।
0: और छोटी मोटी चीजों में ही है आप इसको अपनाएं। और एक हमारे साथी जो लिखते हैं कि और कुछ अगर पास में नहीं है तो आप बोरो प्लस भी लगा सकते हैं, वैसे आप कोई चीज तरह की कोई चीज आप लगा सकते हैं। और साथ ही आप कोई घरेलू जैसे कि आलू वगैरह है इनको
1: जी
0: काट के लगा सकते हैं।
1: एक ने लिखा है कि अगर उंगली जल गई है तो हल्की हल्की सिकाई करके उसे ठीक कर सकते हैं, पानी में उंगली डाल दी तो फफोला पड़ना अनिवार्य है, किंतु यदि जले हुए त्वचा का क्षेत्रफल ज्यादा है तो उचित उपचार की आवश्यकता है। और इन्होंने वही कहा है कि बर्फ से सिकाई करना है, उसके बाद में बहते हुए पानी के नीचे हाथ धोना है, उसके बाद में सबसे पहले है कि उसको धोना जरूरी है कि उसमें जो कुछ कीटाणु अगर लग गए हैं तो उसे बह जाने देना है, और उसके बाद में साफ पट्टी चिपका ले। इसके बाद में इसी तरह का उन्होंने लिखा है कि बहुत सारे लोगों ने कहा है कि ठंडे पानी में हाथ डालना चाहिए अगर जल गया है तो, सीधी बर्फ ना लगाए और घाव सूजने से पहले जली हुई जगह से अंगूठी या तंग कपड़े या धीरे से हटा दे। और उन्होंने कहा कि छाले जो आ जाते हैं ना, उंगलियों में पड़ जाते हैं छाले, तो उन्हें फोड़ना नहीं है छालों को, क्योंकि उससे बैक्टीरिया का संक्रमण बढ़ जाता है।
0: बिल्कुल, सबसे अच्छा उपाय है कि आप उसको बर्फ के पानी में, ठंडे ठंडे पानी में अपने हाथ को थोड़ी देर के लिए रखिए बहते पानी में, तो उससे रहता है ना कि ठंडक पड़ती है और जलन जो है वो शांत हो जाती है। लेकिन अगर अपनी तरफ से कोई अगर बहुत ज्यादा जल गया तो अपनी तरफ से कुछ उसमें मत लगाइए, आप सीधे डॉक्टर को दिखाइए तो वो उसका बेहतर तरीके से इलाज कर सकते हैं।
1: और आप क्या करें,
0: ये गीत सुनते हैं।
1: सुनते हैं गीत।
2: झांझरे रुन चुन

0: तो आरती सखियों के हमारे श्रोताओं के कमेंट्स पढ़ के बहुत अच्छा लगा। सभी साथियों को हम शुक्रिया कहते हैं और लेते हैं इजाजत। आप सभी को सोनाली पाठक
1: और आरती श्रीवास्तव का
0: नमस्कार। सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। सहेली।

0: दोस्तों नमस्कार, विविध भारती के स्टूडियो नंबर एक से मैं हूं आपका दोस्त यूनुस खान। हेलो फरमाइश कार्यक्रम के जरिए हम अपने श्रोताओं से करते हैं बातें और उनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। ये कार्यक्रम श्रोताओं को विविध भारती से और विविध भारती को श्रोताओं से जोड़ने वाला एक अनूठा कार्यक्रम है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सिलसिला। हेलो फरमाइश।
1: नमस्कार सर।
0: नमस्कार, कौन बोल रहे हैं?
1: सर हम बोल रहे हैं अतीक खान बोल रहे हैं। सर
0: कहाँ से?
1: सर गांव का नाम है बड़ोदिया बल्लभ और जिला लगता है सागर।
0: सागर मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं?
1: जी सर।
0: तो सागर से कितनी दूर हुआ आपका गांव?
1: सर गांव है 25 किलोमीटर का, दूर दूरी पे है।
0: अच्छा, और बताइए बारिश वारिश कैसी हो रही भाई?
1: सर अभी तो सर बारिश नहीं हुई सर, एक हफ्ता हुआ जब हुई थी सर बारिश।
0: अपने गाँव में खेती कहाँ होते?
1: सर खेती अपने नहीं होती है, थोड़ा इनकी
0: नदी अद्दी कोई
1: नदी नहीं दिख रही यहाँ पे सर।
0: तलाव
1: छोटी नदी है, छोटी बहुत नदी है।
0: तलाव बहे थे कोई?
1: नहीं सर, तलाव है तो सर मैं अपने गांव में नहीं, सर दूर पे तलाव है यहाँ से।
0: हो बाकी का हालचाल?
1: सर सब बढ़िया है, आप लोग की दुआएं सर।
0: अच्छा, आज किस गाने की फरमाइश कर रहे हैं आप?
1: सर आज गाना सुनना आज की मूवी का।
0: कौन सा गाना?
1: नगर के सामने जिगर के पास।
0: क्या बात है, सुनते हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना।

0: हेलो फरमाइश।
1: जय माता दी।
0: कौन बोल रहे हैं?
1: मेरा नाम है पूरन वर्मा और मैं आपसे बातचीत कर रहा हूँ डिस्ट्रिक्ट जयपुर राजस्थान, गांव का नाम अंशमहल बुगला।
0: अच्छा जी
1: सर, आपको एक बार मैं गाना राजस्थानी सुनाया था सर, आपको याद हो तो।
0: याद तो नहीं है भैया, आज क्या गाना सुनाने वाले हैं बताइए
1: जी। मैं आज सुनाता हूँ।

0: क्या बात है भाई, ये तो बहुत ही मशहूर भजन है।
1: जी जी ये मैं भजन सुनता रहता हूँ और बहुत अच्छा लगता है, और मेरे को बहुत खुशी हो रही है सर, विविध भारती पर मेरा फोन लग गया सर।
0: जी मुझे भी बहुत खुशी हो रही है कि मेरी आपसे बात हो रही है। और मुझे ये बताइए कि आप विविध भारती के कौन कौन से कार्यक्रम बहुत ज्यादा सुनते हैं और उसमें से कौन से कार्यक्रम बहुत पसंद है?
1: जी सर, मैं विविध भारती के सभी कार्यक्रम सुनता हूँ, क्योंकि हम दिव्यांग आदमी है, तो क्योंकि रेडियो से अलावा तो हमारे वो कुछ सहारा नहीं है, तो इसलिए हम बहुत सारे कार्यक्रम आपके सुनते रहते हैं। आज के पनकार हो गए, कुछ बातें कुछ गीत हो गए, अभी आपने बदलाव कर दिया गीत माला, तो ये आप सभी सुनते हैं। और जो SMS वाला कार्यक्रम पहले आता था वो भी सुनते थे, हवा मेलो नाटक तरंग जो 3:30 बजे शनिवार को आता है वो भी मैं सुनता हूँ।
0: बहुत ही बढ़िया, आप तो सभी कार्यक्रम सुनते हैं।
1: मेरे को ये खुशी होती है कि जिसका भी विविध भारती बम्बई में फोन लग जाता है ना सर, कि देश के कोने कोने में उनकी आवाज पहुंचती है। देश का ऐसा कोई भी कोना नहीं है जहाँ विविध भारती में बम्बई में अगर जिसका फोन लगेगा तो वहाँ आवाज नहीं पहुंचेगी सर।
0: सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं। बताइए कि आज किस गाने की फरमाइश करना चाहते हैं?
1: जी सर, आज फिल्म का नाम रहेगा कुसूर और उसमें गाने के बोल है कल रात हो गई थी।
0: बहुत बहुत शुक्रिया, आपने विविध भारती में फोन किया और अपनी ये पसंद हमें बताई। आपको सुनवा रहे हैं आपकी पसंद का ये गाना।

0: हेलो फरमाइश।
1: हाँ सर जी, मेरा प्यार भरा सब प्रेम नमस्कार।
0: नमस्कार जी, कहाँ से बोल रहे हैं?
1: मैं नवागढ़ कटाई जिला बेमेतरा छत्तीसगढ़ से नारायण प्रसाद वर्मा बोल रहा हूँ सर जी।
0: अरे भाई, ये तो दतरेंगी से नारायण प्रसाद वर्मा, ये वही हैं जिनकी फरमाइश आती
1: है? सर जी नहीं सर जी, वो अलग है सर जी, मेरा जिला बेमेतरा है सर जी।
0: लेकिन नाम एक ही है?
1: नहीं नहीं सर, उस नाम से दतरेंगी में नहीं है सर जी।
0: अच्छा, तो बताइए क्या हाल चाल है छत्तीसगढ़ के?
1: हाँ सर जी, हम लोग अब सभी अच्छे हैं और हमारे यहाँ तो बारिश अच्छी हुई है सर जी, और मैं किसान आदमी हूँ।
0: अच्छा, तो अभी क्या गतिविधियाँ?
1: हाँ, अभी धान का रुपाई का काम जारी है।
0: धान का कटोरा है छत्तीसगढ़
1: जी सर, धान का कटोरा है हमारे छत्तीसगढ़।
0: किस किस तरह के चावल उगाते हैं आप?
1: हमारे यहाँ मोटा चावल भी लेते हैं सर जी, और पतला चावल, दोनों प्रकार का चावल लेते हैं सर जी, और कुछ अपना सुगंधित चावल भी लेते हैं सर जी। हमारे यहाँ
0: बासमती की बहुत सारी किस्में होती हैं।
1: हाँ सर जी।
0: क्या बात है, आज बताइए कौन से गाने की फरमाइश करना चाहते हैं?
1: फिल्म रंग का गाना सुना दीजिए सर जी।

0: ना देखूं तो चैन मुझे आता नहीं है, इसलिए बोल रहा हूं सर जी कि हम लोग विविध भारती जब तक नहीं सुनते हमको चैन आता ही नहीं है, इसलिए बोल रहा हूं सर जी।
1: तो चलिए भाई, आपको चैन आए इसलिए रंग फिल्म का गीत आप तक पहुंच रहा है।

0: हेलो फरमाइश
1: सर। नमस्कार
0: नमस्कार, कौन कहाँ से बोल रहे हैं जी?
1: जी मैं सिमीपाल गोयल बहादुरगढ़ हरियाणा से बात कर रहा हूँ सर।
0: बताइए जी, क्या हालचाल है
1: सर? ठीक है सर, आप बताइए कैसे हो सर?
0: एकदम अच्छे हैं जी, और आप सभी श्रोताओं से बात करके बहुत अच्छा लग रहा है। और इन दिनों में क्या चल रहा है आपके जीवन में?
1: सर बस अभी काम पे हैं, ड्यूटी पे कॉल। अच्छा। कर रहे थे, कॉल भी लग गई और काफी टाइम के बाद कॉल लगी है हमारी। आज तो आपके शो सुनते हैं सभी
0: जी,
1: जो संडे को आते हो आप शाम को हवा महल में, तो वो सुनते हैं ज्यादातर।
0: जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप सारे कार्यक्रम सुनते हैं। और देखिए कितने सारे श्रोता फोन करते हैं, लेकिन सभी का फोन नहीं लगता, क्योंकि बहुत सारे देश के अलग अलग श्रोता जब एक साथ ट्राई करते हैं तो कुछ लोग हैं जिनकी कॉल लग जाते हैं, और आप उन खुश नसीबों में से एक हैं। आज किस गाने की फरमाइश करना चाहते हैं आप?
1: का नाम डाकू और गाना है कभी गम से दिल लगाया।
0: क्या बात है, चलिए पूरी करते हैं अपनी बातचीत और सुनवाते हैं डाकू फिल्म का ये गाना।

0: हेलो फरमाइश।
1: नमस्ते सर।
0: नमस्ते जी, आप कौन बोल रहे हैं?
1: मैं गंगाधर सावनकर कुंडलवाड़ी नांदेड़ से बात कर रहा हूँ सर आपसे।
0: जी बताइए, नांदेड़ के क्या हालचाल है भाई?
1: नांदेड़ में तो सर अभी बारिश चल रहा है।
0: अच्छा, बारिश अच्छी चल रही है।
1: हाँ जी।
0: और आपका कामकाज कैसा चल रहा है?
1: कामकाज तो सर अभी मैं रिटायरमेंट हूँ।
0: अच्छा, तो रिटायर जिंदगी के मजे ले रहे हैं।
1: हाँ सर, एक प्राइवेट कंपनी में काम कर रहा हूँ फिर भी।
0: क्या बात है, यानी रुक जाना नहीं तू कहीं हार के।
1: बिल्कुल सही सर।
0: बताइए कि रिटायरमेंट के बाद की जिंदगी में अपने आप को फिट रखने के लिए क्या क्या करते हैं आप?
1: रिटायरमेंट के बाद बोर हो जाता कि समझ में नहीं आता कि क्या करना है अपने सेहत के वास्ते, फिर अपने को दूसरी नौकरी ढूंढ ली सर मैं।
0: बहुत ही बढ़िया है। तो कितने घंटे काम करते हैं दिन में?
1: अब दिन में 8 घंटे करते हैं सर।
0: बढ़िया। और छुट्टी के दिन क्या दिनचर्या होती है?
1: छुट्टी दिन के सर अपना रेडियो साथ रहता है, गार्डन वगैरह घूम के आते हैं सर।
0: बहुत ही बढ़िया। आज किस गाने की फरमाइश करना चाहते हैं?
1: आज बगावत फिल्म का है सर, नागन सा रूप है तेरा।
0: वाह, चलिए पूरी करते हैं आपकी फरमाइश। सुनिए अपनी पसंद का ये गाना।

0: डोर समझ रहा है? नादा, मौत आई है तेरी।
1: मौत? इतनी हसीन, अरे ये नागन डसले तो क्या कहना है।

0: हेलो फरमाइश।
1: हेलो नमस्कार सर।
0: नमस्कार, बताइए कौन कहाँ से बोल रहे हैं?
1: मैं कश्मीर सोना मरग से अपनी मिशोता लतीफ अहमद रैना।
0: लतीफ भाई कैसे हैं आप?
1: बहुत अच्छा है।
0: सोनमर्ग में मौसम कैसा है इस वक्त?
1: आज यहाँ पे लगभग धूप है, बहुत 6 दिन से बहुत बारिश आया था यहाँ पे, बहुत नुकसान भी हुआ।
0: अच्छा, और अब बारिश नहीं है, अब लगातार धूप खिली है?
1: हाँ आज धूप भी है।
0: कश्मीर में बारिश का मौसम किन महीनों में होता है?
1: लगभग ये हर महीने होता है।
0: हाँ, हर महीने होता है,
1: बीच में होते हैं।
0: सोनमर्ग तो बहुत ही खूबसूरत जगह है भाई।
1: गुलमर्ग, सोनमर्ग और पहलगाम वगैरह सभी ये पर्यटक के लिए बहुत अच्छा रहता है।
0: और सोनमर्ग से ऊपर की तरफ सड़क कहाँ की तरफ जाती है?
1: वो जाती है लेह लद्दाख की।
0: जी जी, आप गए हैं उस तरफ?
1: हाँ मैं उस तरफ गया हूँ, लेह लद्दाख, कारगिल, द्रास।
0: अच्छा, लेह लद्दाख जाने के लिए कौन कौन सी सावधानियाँ रखने की जरूरत है? फिटनेस किस तरह की होनी चाहिए?
1: वहाँ पे ये तो ट्रक वगैरह में जाते हैं, वो छोटे गाड़ी में भी जाते हैं, लगभग 1 दिन और 1 रात लग जाता है लेह में जाने में।
0: जी, और ऊंचाई बढ़ती है तो सांस की तकलीफ होती है?
1: हाँ हाँ, लगभग हार्ट में दर्द होता है, ऐसा लगता है।
0: जी, लेकिन वहाँ घूमने लायक इलाके हैं।
1: हाँ सर
0: जी। आज किस गाने की फरमाइश करने वाले हैं आप लतीफ जी?
1: और हमें सुने कुदरत फिल्म का, तूने और रंगी इलाके सा जादू किया, पिया पिया बोलो मत वाला जी।
0: बहुत बहुत शुक्रिया। सुनिए अपनी पसंद का ये गाना।

0: हेलो फरमाइश।
1: नमस्कार, कैसे हैं यूनुस भाई? मैं जिला भागलपुर बिहार कहलगांव से सुजीत राय, और मैं बताऊं सर, मैं बचपन से दिव्यांग हूं और मुझे आंखों से दिखाई नहीं देता है।
0: ओ ओ, और आपने अपनी पढ़ाई लिखाई कहाँ से की है भाई?
1: सर, मुझे सबसे ज्यादा म्यूजिक में रुचि है सर, तो मैं सबसे ज्यादा म्यूजिक में ही लगाव रखता हूँ।
0: आपने कहाँ से सीखा?
1: सर, मैं कहलगांव में ही, एक मार्सी में ही संगीत विद्यालय है, मैं वहाँ से ही सीखा था।
0: अच्छा, तो कोई डिग्रियां या कोई सर्टिफिकेट कोर्स किए हैं आपने?
1: जी सर, मैं सेकेंड ईयर का विद्यार्थी हूँ संगीत में।
0: और ये जो संगीत की शिक्षा हो रही है, ये गायन की हो रही है या वादन की हो रही है?
1: सर जी, मैं गायन सीखता हूँ।
0: अरे वाह वाह, क्या बात है। तो बताइए हमारे लिए क्या सुनवाने वाले हैं आज अब?
1: सर, मैं तो दस्तक फिल्म का एक गीत सुना हूँ, और आवाज लता दीदी की है, और गाने के बोल हैं भैया ना धरो बलमा।
0: क्या बात है, इससे मिलती जुलती कोई शास्त्रीय बंदिश याद है आपको?
1: जी सर, एक वो गाना है ना, राग देश मुझे याद है, अगर कहेंगे तो सर मैं थोड़ा सा गुनगुना सकता हूँ
0: जरूर।
1: ये राग।

0: बिजली चमक जिया डरात बादल रे, ये सब सीखा है।
1: वाह वाह, शानदार। तो सुनते हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना।

0: हेलो फरमाइश
1: जी सर।
0: कौन कहाँ से बोल रहे हैं?
1: सर हम बांधवगढ़ डिस्ट्रिक्ट उमरिया मध्य प्रदेश से।
0: जी बोलिए।
1: पृथ्वीराज यादव।
0: पृथ्वीराज यादव जी, मुझे ये बताइए, बांधवगढ़ नेशनल पार्क से बोल रहे हैं आप?
1: जी जी, इसका एक एरिया है सर, अपना गांव न्यूसी लगता है।
0: अच्छा, ये बांधवगढ़ नेशनल पार्क के दायरे में कितने गांव आते हैं?
1: सर गांव तो बहुत सारे आते हैं, 105 के करीब।
0: अरे बाप रे। और ये बारिश के दिनों में तो बांधवगढ़ में पर्यटकों का प्रवेश बंद हो जाता है ना?
1: जी, 1 जुलाई से 1 अक्टूबर के लिए बंद होता है सर।
0: अच्छा, इस बीच में आप लोग तो चूंकि गांव में ही हैं और उस दायरे के अंदर हैं, तो क्या आपको साइटिंग्स होती हैं? आपको दिखते हैं टाइगर्स?
1: जी, टाइगर तो हमेशा 12 महीने दिखते हैं सर, क्योंकि अपना गांव एकदम कोर से सटा हुआ है जंगल से, तो उनके दर्शन तो हमें सुबह शाम ही हो जाते हैं।
0: आप लोग किस तरह की सावधानियां रखते हैं ताकि कोई घटना ना हो?
1: सर देर रात जैसे टाइम से हम जब लोग जाते हैं तो दिन में जाते हैं, शाम के या सुबह टाइम ज्यादा जंगल में नहीं जाते सर।
0: मान लीजिए कि हमें बांधवगढ़ नेशनल पार्क जाना हो, हमें या हमारे किसी साथी को, तो आप

0: तो उस इलाके के हैं तो हमें ये बताइए कि कौन सा समय सबसे अच्छा होता है जब साइटिंग के चांसेस ज्यादा होते हैं?
1: सर नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी।
0: नवंबर से फरवरी, और दिन का कौन सा वक्त?
1: दिन का वक्त वही सर 9 से 12।
0: अच्छा, 9 से 12 में साइटिंग ज्यादा क्यों होती है भाई?
1: सर उस समय सब अपने विचरण के लिए निकलते हैं ना सर।
0: अच्छा, आपको सबसे अच्छा जो दृश्य देखने को मिला वो क्या मिला था?
1: सर यहाँ तो सबसे अच्छा 10 बांधवगढ़ का एरिया है सर। उसके अलावा एक झरना प्रपात है हमारे गांव के बाजू में, वो भी बहुत अच्छा है सर। और हमारे यहाँ के मोर बहुत अच्छे हैं सर।
0: मोर? अरे वाह, बहुत ही बढ़िया। यानी आप बिल्कुल प्रकृति की गोद में रह रहे हैं?
1: जी, प्रकृति का संदार है सर यहाँ।
0: और आपका काम क्या है भाई?
1: सर हमारा ऑनलाइन डिलीवरी वाला काम करते हैं सर।
0: उस इलाके में?
1: जी जी।
0: तो मोटर बाइक से घूमते हैं?
1: जी जी जी।
0: अच्छा, विविध भारती की आपके जीवन में क्या जगह है?
1: विविध भारती हमारे जीवन में बहुत अच्छा है सर। हमें सूचना, ज्ञान, मनोरंजन जो कुछ भी मिला बचपन से लेके अभी तक, हमारे यहाँ आकाशवाणी केंद्र शहडोल है सर, वहाँ से सुनाई देता है आपका आकाशवाणी। तो यहीं से हम पले बढ़े हैं और सबसे अच्छा रेडियो ही है। रेडियो से अच्छा आज तक हमारे यहाँ कोई प्रसारण का केंद्र नहीं है।
0: बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत प्यारी बात आपने बोली। आज किस गाने की फरमाइश करना चाहते हैं भाई आप?
1: सर हम आज गाना सुनना चाहते हैं, आ अब लौट चले। ओ यारो माफ करना, कुछ कहने आया हूँ।
0: चलिए पूरी करते हैं आपकी फरमाइश, सुनिए अपनी पसंद का ये गाना।

0: हेलो फरमाइश।
1: अस्सलाम वालेकुम अनुज भाई
0: जी। वालेकुम सलाम। कौन बोल रहे हैं?
1: हिलाल अहमद श्रीनगर से बोल रहा हूँ।
0: कैसे हैं भाई आप?
1: बस ठीक है, आप कैसे हो सर?
0: जी हम अच्छे हैं। मुझे ये बताएं आप क्या काम करते हैं जनाब?
1: हम यही शाल काम करते हैं।
0: ओके, तो मुझे फिर ये बताइए कि एक अच्छे पश्मीने की पहचान कैसे की जा सकती है?
1: अच्छी पश्मीने की पहचान, इसकी क्वालिटी तो अच्छी होने चाहिए, तो उसमें तो बहुत दाम मिलता है। बाहर कंट्री में भी वो जाते हैं, हम बहुत मेहनत करते हैं इस पे, तो अच्छी तरीके से बनाते फिर हमें बहुत कीमत मिलता है।
0: बहुत शुक्रिया। मुझे एक और बात बताइए कि ये जो पश्मीना है, कुछ बहुत भारी पश्मीने होते हैं और कुछ कम सर्दियों के लिए होते हैं, तो जो टूरिस्ट वहाँ आते हैं वो किस तरह से पहचाने कि उनकी जरूरत का पश्मीना कौन सा है?
1: टूरिस्ट यहाँ आते सर, वो भी इससे खरीदे, यहाँ उनको भी वो बहुत पसंद है, लेकिन इसमें तो ईमानदारी की बात है। दरअसल जो भी ये बेचेगा तो वो सही होना चाहिए।
0: जी, और एक अच्छा पश्मीना शॉल बनाने में आपको कितना वक्त लगता है?
1: सर इसमें तो बहुत डिजाइन है आते हैं, इसमें मतलब जो इस पर वो नक्शा होता है ना, वो बहुत किस्म के होते हैं, उसमें मुख्तलिफ बड़े वाला छोटे वाले पुरमतन के आते हैं, उसमें तो बहुत टाइम लगता है। जो पुरमतन होता है ना, उसमें तकरीबन 4 महीने, 3 महीने, 5 महीने भी लगते हैं, तो जो उसके छोटे साइज वाले हैं उसमें 1 महीना भी लगता है, तो इसी तरीके से हम बनाते हैं।
0: जी शुक्रिया, इतनी अच्छी बातें आपने हम बताई। और अब बताइए आज किस गाने की फरमाइश करना चाहते हैं?
1: कुमार सानू की आवाज में, फिल्म का नाम है साथी, जिंदगी की तलाश में है, मौत के कितने पास आ गए।
0: वाह क्या बात है, सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गाना।

0: हेलो फरमाइश
1: सर जी। नमस्कार।
0: नमस्कार, कौन बोल रहे हैं
1: जी? उदयलाल टेलर बोल रहा हूँ।
0: कहाँ से?
1: जिलों की नगरी उदयपुर, राजस्थान से।
0: क्या बात है, क्या मौसम है वहाँ?
1: मौसम सुहाना है सर।
0: बारिश बारिश
1: है? बारिश हल्की हल्की हो रही है, तेज भी नहीं है, ज्यादा भी नहीं है, कम भी नहीं है, औसत मिनिमम बारिश हो रही है।
0: क्या बात है, और बारिश के मौसम के मजे क्या हैं?
1: सर बहुत ही आनंद आता है बारिश का मौसम, सर से मुझे तो प्यारा लगता है।
0: तो झीलों की नगरी के लोग बारिश के मौसम में कहाँ जाते हैं पिकनिक मनाने के लिए?
1: उदयपुर में तो बहुत सी जगह है पिकनिक मनाने के लिए। संडे रात तो बहुत भीड़ थी सभी जगह पर, आज पूरा न्यूज़पेपर उसी से भरा हुआ है। इतनी भीड़ हुई थी सभी जगह पर पिकनिक मनाने लोग गए थे।
0: अच्छा, बहुत ही खुशी की बात है। आज किस गाने की फरमाइश करना चाहते हैं आप?
1: जी सर, पुरानी फिल्म में राज कपूर और नरगिस दत्त की श्री 420 गीत है। प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल, कहता है दिल रास्ता मुश्किल,
0: क्या
1: मालूम नहीं कहाँ है मंजिल।
0: ये बिल्कुल बारिश का आपने गाना चुन लिया है।
1: छतरी के नीचे दोनों भीगते हुए गाना गाते हैं।
0: तो बातों का सिलसिला रोकते हैं और आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गाना।

0: दोस्तों ये था आज का हेलो फरमाइश कार्यक्रम। इस कार्यक्रम के लिए हम आपके टेलीफोन कॉल्स रिकॉर्ड करते हैं सोमवार को दिन में 11 बजे से, और हमारे दो टेलीफोन नंबर हैं, एक है 0222867 0288 यानी 02268 0288, दूसरा टेलीफोन नंबर 0224002462 यानी 02240024662। आपको बता दें कि आज जिन श्रोताओं के टेलीफोन कॉल्स लगे हैं वो अगले दो महीने तक हमें फोन न करें ताकि दूसरे श्रोताओं को मौका मिल सके। तो अब चलने से पहले हम आपको बता दें कि इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग इंजीनियर थीं किरण बंग, संपादन सहयोग सुशीला वेंगुरलीकर का था। इस कार्यक्रम को प्रस्तुत किया राघवेंद्र सिंह नेगी ने। और अब अपने दोस्त यूनुस खान को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
1: हेलो फरमाइश।

करोड़ रुपए से अधिक की राशि प्राप्त हुई है। जेएसएससी में कथित अनियमितताओं और छात्रवृत्ति की मांग को लेकर आजसू छात्र संघ ने आज रांची में लोकभवन का घेराव किया। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को लोकभवन से पहले ही बैरिकेडिंग लगाकर रोक दिया, जहां छात्रों ने सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। सरायकेला पुलिस की एसआईटी ने अंतर जिला बाइक चोर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 3 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक मनोज स्वर्गियारी ने आज प्रेस वार्ता में बताया कि आरोपियों की निशानदेही पर चोरी की 5 मोटरसाइकिलें बरामद की गई हैं। खूंटी जिले के जरियागढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत कट शिमला गाँव में एक डोभा में डूबने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। परिजनों के अनुसार वे शाम को शौच के लिए निकले थे। सूचना मिलने पर जरियागढ़ थाना पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है। राज्य में बारिश की कमी का विचलन घटकर 25% पर आ गया है, जिससे राज्य धीरे धीरे सामान्य मॉनसून की ओर बढ़ रहा है। मौसम विभाग के अनुसार 1 जून से 30 जुलाई तक राज्य में 372.6 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 6 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

आप सुन रहे थे मुख्य समाचार। ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। शाम के 5:02 हो चुके हैं। ये समय है युवा श्रोताओं को संबोधित कार्यक्रम युववाणी का। हम आपको बता दें, आज की युववाणी आपके लिए प्रस्तुत कर रहे हैं ओमकार नाथ सिंह और प्रज्ञा क्रांति। प्रस्तुति है गौरव पांडे की।

बहुत लोग साथ रहते हैं फिर भी एक दूसरे को कभी महसूस नहीं कर पाते। उनके बीच हजारों मील की दूरी होती है। स्त्री और पुरुष का रिश्ता सिर्फ एक छत के नीचे साथ रहने का नाम तो नहीं है ना। किसी भी रिश्ते को बाहर से देखने पर वो अक्सर दो लोगों की कहानी दिखाई देता है, लेकिन भीतर उतरकर देखिए तो सही, वहां दो लोग रहते हुए भी नहीं रहते। हाँ, वहां दो लोग रहते हुए भी नहीं रहते।

कभी एक दिन में नहीं दरकते, उनके भीतर दरारें बहुत पहले पड़ जाती हैं। किसी को इसका आभास नहीं होता, लेकिन जब वे टूटते हैं तो सबको लगता है कि ये अचानक हुआ। ठीक ऐसे ही हर रिश्ता शब्दों से नहीं टूटता, कई बार वो उन बातों से टूटता है जो कहीं ही नहीं गई होती। जी हाँ, जो कहीं ही नहीं गई होती।

अंतराल के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत। दो चेतनाएं धीरे धीरे ये तय करने लगती हैं कि वे एक दूसरे को ऊपर उठाएंगी या भीतर से खोखला कर देंगी। अगर दो दिलों का तालमेल सही है तो वहां प्यार, इज्जत, एक दूसरे को समझने की गुंजाइश होगी और इन सब के बीच जो धागा इस रिश्ते को हर दिन नया रखेगा वो है रोमांस। हाँ, रोमांस, वरना तो अंतरिक्ष और जमीन के बीच जितनी गहरी खाई ही होगी।

कभी कभी लगता है एक खामोश सा दर्द है जो चीखता नहीं, सीने में भारी होकर बैठ जाता है बस।

हाँ, हर वक्त खामोशी अच्छी नहीं होती। रिश्तों में संवाद की एक छोटी सी खिड़की खोलकर हमेशा रखनी चाहिए। खुली खिड़की मन रूपी आंगन में रोशनी लेकर आती है, लेकिन हम अपनी धारणाओं की दीवारें बहुत ऊंची करते चले जाते हैं और इन दीवारों को फिर गिराया नहीं जा सकता।

जीवन में प्रेम का आना एक अद्भुत और अप्रतिम अनुभव होता है, लेकिन दुर्भाग्य से कभी कभी हम एक ऐसे रिश्ते में उलझ जाते हैं जहां आनंद केवल क्षणिक होता है और दर्द नियति बन जाती है। वो प्रेम नहीं होता, एक भावनात्मक तूफान होता है और हम उसमें घिरते चले जाते हैं। तब भीतर से एक सवाल उठता है, पहले जो था वो क्या था, वो अब कहां गया।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे विविध भारती के कार्यक्रम FM 103 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये डाल्टनगंज केंद्र है। सायंकालीन सभा में आप सबका स्वागत है, मैं हूँ संजय सिन्हा। जानकारी देते हैं इस सभा में प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की।

आपसे कुछ ही देर में यानी 5:35 पर आप सुनिएगा ये बात साथियों को संबोधित हमारा कार्यक्रम युवाणी। इस प्रोग्राम में हम आपको सुनवाएंगे जागृति, उत्तम की वार्ता। विषय होगा अल्पसंख्यक मेधावी छात्रों के लिए केंद्र सरकार की योजनाएं। और गीत संगीत तो होते ही इस प्रोग्राम में। शाम 6 बजे हम शामिल होते हैं अपने आकाशवाणी के रांची केंद्र के प्रसारण सेवा में, जहां से आप सुनते हैं प्रादेशिक मुख्य समाचार। ग्रामीणों को संबोधित कार्यक्रम आप सुनिएगा खेतीबाड़ी शाम 6:02 से। कृषकों के लिए कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा किसान वाणी 6:30 पर। चर्चा होगी अरहर एवं तिल के रोग प्रबंधन पर। इसी प्रोग्राम में आप सुनिएगा एक भेंट वार्ता करेंगे डॉक्टर प्रमोद कुमार, इनसे बातचीत करेंगे संतोष कुमार। शाम 6:55 पर हम शामिल होंगे अपने आकाशवाणी के रांची केंद्र के प्रसारण सेवा में, जहां से ठीक 7 बजे आप सुनिएगा प्रादेशिक समाचार और जिले में आजकल 7:10 से। फिल्मी गीतों का प्रोग्राम एक रंग हम लेकर आएंगे 7:15 पर। उजाले की ओर ये प्रोग्राम आप सुनिएगा 7:45 से। इस प्रोग्राम में हम आपको सुनाएंगे एक वार्ता। विषय होगा संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना का उद्देश्य। वार्ताकार होंगे आनंद कुमार। रात्रि 8 बजे आप सुनिएगा संसद समीक्षा। फिल्मी गीतों का प्रोग्राम हम लेकर आएंगे चित्रपट से 8:15 पर। आठ बजकर 30 मिनट पर हम आपको सुनाएंगे क्षेत्रीय फिल्म संगीत का कार्यक्रम सरहदें। समाचार संध्या 8:45 पर। News@9 रात्रि 9 बजे और उर्दू में खबरें आप सुनते हैं 9:15 से। News@9:30 पर हम आपको लिए चलेंगे अपने आकाशवाणी के मुंबई केंद्र के प्रसारण सेवा में, जहां से आप सुनिएगा विविध भारती के कार्यक्रम। संसद में हुई कार्रवाई की प्रश्नकालीन रिकॉर्डिंग हम आपको सुनाएंगे रात्रि 10 बजे, जिसे हम रिले करते हैं अपने आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। रात्रि 11 बजे आप सुनिएगा हिंदी में समाचार और अंग्रेजी में समाचार 11:05 पर। आप सुन रहे थे कार्यक्रम विवरण।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं युवा साथियों को संबोधित हमारा कार्यक्रम युवाणी। अब चर्चा करना चाहेंगे, मानव तस्करी एक जघन्य अपराध है और आज जो दिन है मानव तस्करी के विरुद्ध, ये दिवस हम सभी मना रहे हैं, पूरा दिवस, पूरा विश्व इस दिवस को मना रहा है। तो एक संक्षिप्त में चर्चा करना चाहेंगे, मानव तस्करी यानी ह्यूमन ट्रैफिकिंग एक अत्यंत गंभीर और दंडनीय अंतर्राष्ट्रीय अपराध है जो मानवाधिकारों का घोर उल्लंघन करता है। इसे आधुनिक युग की गुलामी भी कहा जाता है, जिसमें किसी व्यक्ति को डराकर बलपूर्वक या धोखे से उसके घर या देश से दूर ले जाकर उसका शोषण किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार मानव तस्करी अंतर्राष्ट्रीय कानून में एक अपराध है जिसका उद्देश्य किसी व्यक्ति की मर्जी के बिना उसका शोषण करना होता है। मानव तस्करी के विभिन्न रूप हैं। अपराधी अक्सर मासूम लोगों, महिलाओं और बच्चों को अपना शिकार बनाते हैं। इसके मुख्य रूपों में शामिल है यौन शोषण, महिलाएं और बच्चियों को जबरन वेश्यावृत्ति के दलदल में धकेलना, बंधुआ मजदूरी, बिना वेतन या न्यूनतम मजदूरी पर जीवन भर जबरन काम कराना, अंगों की तस्करी, अवैध रूप से इंसानी अंगों को निकाल कर बेचना, बाल श्रम और भीख मंगवाना, बच्चे को स्कूल से दूर कर भीख मांगने या कारखानों में काम करने के लिए मजबूर करना, जबरन विवाह, लड़कियों को उनकी इच्छा के विरुद्ध शादी के लिए बेचना। तस्करी के मुख्य कारण क्या है, इस पर हम नज़र डालना चाहेंगे। तस्कर अक्सर समाज के सबसे कमजोर और गरीब वर्ग को अपने निशाना बनाते हैं। इसके मुख्य कारण निम्नलिखित हैं, गरीबी और बेरोजगारी। लोग बेहतर जीवन और अच्छी नौकरी के झांसे में आ जाते हैं। शिक्षा की कमी, जागरूकता न होने के कारण लोग तस्करों के बुने जाल में फंसते चले जाते हैं। डिजिटल प्लेटफार्म का दुरुपयोग, आधुनिक समय में अपराधी सोशल मीडिया और फर्जी जॉब पोर्टल के जरिए युवाओं को फंसा रहे हैं। इसके लिए कानूनी प्रावधान है। भारतीय संविधान और कानून में मानव तस्करी के खिलाफ सख्त कदम उठाए गए हैं। अनुच्छेद 23 भारतीय संविधान का अनुच्छेद 23 मानव तस्करी और जबरन श्रम बेगारी पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाता है। भारतीय न्याय संहिता BNS देश के कानून के तहत मानव तस्करी में शामिल अपराधियों के लिए कठोर कारावास और जुर्माने का प्रावधान है। अंतर्राष्ट्रीय कानून क्या कहता है, अंतर्राष्ट्रीय जो संयुक्त राष्ट्र का वैश्विक स्तर पर इसे रोकने के लिए विभिन्न देशों के साथ मिलकर काम करता है। रोकथाम के लिए इस अपराध को केवल सख्त कानून से नहीं बल्कि सामाजिक जागरूकता से ही रोका जा सकता है। किसी भी अनजान व्यक्ति के बड़े वादों या संदिग्ध नौकरियों के झांसे में न आए। यदि आपको अपने आसपास कोई ऐसी संदिग्ध गतिविधि दिखती है तो तुरंत चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 या स्थानीय पुलिस को इसकी सूचना दे सकते हैं। हेल्पलाइन का नंबर एक बार पुनः सुन लें, 1098 या स्थानीय पुलिस को इसकी सूचना दे सकते हैं। अगर आपके पास ऐसी गतिविधि, संदिग्ध गतिविधियां अगर नज़र आ रही है तो तुरंत आप इसकी सूचना स्थानीय पुलिस को दे सकते हैं या इस नंबर पर दे सकते हैं। नंबर एक बार पुनः 1098। तो इस चर्चा के बाद प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं एक प्यारा सा फिल्म।

0: श्रोताओं, इस गीत के बाद हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए सुनते हैं आकृति उत्तम की वार्ता। विषय है अल्पसंख्यक मेधावी छात्र छात्राओं के लिए केंद्र सरकार के कार्यक्रम।
1: नमस्कार, मैं आकृति उत्तम आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं। आज हम चर्चा कर रहे हैं अल्पसंख्यक मेधावी छात्रों के लिए केंद्र सरकार के कार्यक्रम। भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में शिक्षा हर क्षेत्र की समान अवसर प्रदान करती है। इसी उद्देश्य से केंद्र सरकार अल्पसंख्यक समुदाय यानी मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध और पारसी के मेधावी और आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों के लिए कई योजनाएं चला रही है। सबसे पहले हम प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना की बात करते हैं। यह योजना कक्षा 1 से 10 तक के छात्रों के लिए है। इसका मुख्य उद्देश्य कुल स्तर पर पढ़ाई छोड़ने की समस्या को रोकना है। इस योजना के तहत छात्रों को वजीफा, किताबों और अन्य शैक्षणिक खर्चों के लिए मदद दी जाती है। इसके बाद पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना आती है, जो कक्षा 11 से लेकर शोध स्तर तक के छात्रों के लिए है। इसमें ट्यूशन फी, परीक्षा शुल्क और अन्य खर्चों के लिए सहायता दी जाती है, ताकि छात्र बिना आर्थिक दबाव के अपनी पढ़ाई जारी रख सके। अब हम मेरिट कम मींस छात्रवृत्ति योजना का पर गौर करेंगे, जो खासकर मेधावी छात्रों के लिए बनाई गई है। इस योजना के तहत पेशेवर और तकनीकी कोर्स करने वाले छात्रों को आर्थिक मदद की जाती है। इसमें कोर्स फी के साथ साथ रहने के लिए भत्ता भी मिलता है, जिससे छात्र अपनी पढ़ाई और खर्च आसानी से चला सकें। इन सभी छात्रवृत्तियों में कम से कम 30% सीटें हमारी बेटियों के लिए आरक्षित है, ताकि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संकल्प हर समाज तक पहुँचे। सरकार हर साल लाखों छात्रों को इन योजनाओं के तहत लाभ पहुँचाती है।

0: प्री मैट्रिक में लगभग 30 लाख, पोस्ट मैट्रिक में 5 लाख और मेरिट कम मीन्स में हजारों छात्रों को छात्रवृत्ति दी जाती है। अल्पसंख्यक छात्राओं के लिए विशेष रूप से बेगम हजरत महल राष्ट्रीय छात्रवृत्ति चलाई जाती है। इसका उद्देश्य लड़कियों को शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। विशेष मार्गदर्शन और कोचिंग के लिए नया सवेरा योजना चलाई जाती है। इसका उद्देश्य यूपीएससी, एसएससी, नीट या जेई जैसी कठिन प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए योग्य अल्पसंख्यक छात्रों को मुफ्त कोचिंग और वित्तीय सहायता प्रदान करना है। विदेश में उच्च शिक्षा पाने के इच्छुक अल्पसंख्यक छात्रों के लिए पढ़ो परदेश योजना भी एक महत्वपूर्ण पहल है। इसमें शिक्षा ऋण पर ब्याज में सब्सिडी सरकार द्वारा दी जाती है। इसके साथ ही सरकार ने रोजगार को ध्यान में रखते हुए कई मंजिल, नई मंजिल तथा सीखो और कमाओ जैसी योजनाएं शुरू की हैं। इन योजनाओं के माध्यम से युवाओं को कौशल प्रशिक्षण दिया जाता है ताकि वे रोजगार के योग्य बन सकें। यूपीएससी, एसएससी, बैंकिंग जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की प्रारंभिक परीक्षा पास कर लेने पर अल्पसंख्यक छात्रों के लिए केंद्र सरकार ने नई उड़ान योजना बनाई है। इस योजना का उद्देश्य अल्पसंख्यक छात्रों को मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू की तैयारी के लिए आर्थिक सहायता देना है। इसके बाद आती है नई रोशनी योजना। इस योजना में मुख्य रूप से अल्पसंख्यक समुदायों की महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए चलाई जाती है। इस योजना के तहत नेतृत्व क्षमता, शिक्षा और जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है जिससे वे अपने परिवार और समाज में बेहतर भूमिका निभा सके। अब बात करते हैं उत्साद योजना यानी अपग्रेडिंग द स्किल्स एंड अप ट्रेनिंग इन ट्रेडिशनल आर्ट्स एंड क्राफ्ट फॉर डेवलपमेंट की। यह योजना पारंपरिक कला और शिल्प से जुड़े लोगों के कौशल को बढ़ाने के लिए है जिससे उनकी आय और रोजगार के अवसर बढ़ सके। इसके अलावा हमारी धरोहर योजना भी महत्वपूर्ण है। इसका उद्देश्य अल्पसंख्यक समुदाय की संस्कृति, परंपरा और विरासत को संरक्षित करना है। यह योजना अप्रत्यक्ष रूप से छात्रों में सांस्कृतिक जागरूकता और पहचान को मजबूत करती है। इसी क्रम में मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय फेलोशिप को भी उल्लेख किया जा सकता है। यह योजना उच्च शिक्षा और शोध कार्य के लिए अल्पसंख्यक छात्रों के लिए थी जिसमें उन्हें फेलोशिप दी जाती थी। इन्हीं सब योजनाओं का उद्देश्य केवल शिक्षा तक सीमित नहीं है बल्कि छात्रों को आत्मनिर्भर, कुशल और जागरूक नागरिक बनाना भी है। श्रोताओं, इन सभी योजनाओं की एक खास बात यह है कि इनका आवेदन नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल NSP के माध्यम से किया जाता है तथा सहायता राशि सीधे छात्रों के बैंक खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र DBT के जरिए भेजी जाती है ताकि छात्रों को दफ्तर का चक्कर न लगाना पड़े। इन योजनाओं का लाभ मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन और फारसी जैसे अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र उठा सकते हैं बशर्ते वे निर्धारित शैक्षणिक योग्यता और आय सीमा को पूरा करें। अंत में मैं यही कहना चाहूँगी कि जब प्रतिभा को अवसर मिलता है तब भी समाज और राष्ट्र प्रगति करता है। केंद्र सरकार की ये सभी योजनाएं उसी दिशा में एक मजबूत कदम है। इसी संदेश के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद।
1: दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे आकृति उत्तम की वार्ता। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए सुनते हैं एक प्यारा सा फिल्मी गीत।

0: और ये मंत्री जी ने कलाई के प्रयोग से धन को मोड़ दिया है। बाउंड्री लाइन की तरफ यहाँ कोई फील्डर नहीं और जनता के देखते ही देखते स्विस बैंक में एक और खाता खुला।
1: पर हमरे घोटाले से तोहरा घोटाला बड़ा कैसा रे?
2: जी हाँ, सुपर घोटाले की चमकार ज्यादा सफेद।

गाड़ी चले, लो बत्ती वाली बड़ी निराली गाड़ी चले, लो बत्ती वाली बड़ी निराली मंत्री वाली गाड़ी चले, इधर से उधर, उधर से इधर, लो ट्रैफिक रुका, जनता वाला भोला भाला ट्रैफिक रुका, लो जनता वाला भोला भाला आम आदमी का ट्रैफिक रुका, स्कूटर रुका, बाइक रुके, ऑटो टैक्सी बस में रुके, जिधर से भीतर पिता से तितर, अरे बत्ती वालों की यही है शान, मेरा भारत परेशान।

नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं कामिनी। संसद ने राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है, जिसका उद्देश्य वंदे मातरम को राष्ट्रगान जनगणमन के समान वैधानिक संरक्षण देना निश्चित है। इसके तहत वंदे मातरम का अपमान करने पर 3 वर्ष तक की कैद या जुर्माने का प्रावधान किया गया है। नगर विकास मंत्री सुदिव्य कुमार

0: और गिरिडीह उपायुक्त रामनिवास यादव ने आज नगर भवन में दिव्यांगों के बीच 150 आधुनिक ट्राईसाइकिल का वितरण किया। लाभुकों को संबोधित करते हुए मंत्री ने कहा कि दिव्यांगों की सेवा ही नारायण सेवा है और सरकार का लक्ष्य अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुँचाना है। कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने राज्य में कृषि विभाग की समीक्षा करते हुए मक्का की 65% से अधिक बुआई पर संतोष व्यक्त किया और बीज उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने रांची, जमशेदपुर और देवघर में आधुनिक मिलेट कैफे स्थापित करने के भी निर्देश दिए। खूंटी में भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एसीबी की टीम ने महिला थाना प्रभारी सपना सुलेखा को 50,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। एसीबी रांची के अनुसार थाना प्रभारी ने एक मामले में राहत दिलाने के एवज में शिकायतकर्ता से 4.5 लाख रुपए की मांग की थी, जिसकी पहली किस्त लेते हुए आज उन्हें दबोचा गया। पाकुड़ के मुफ्ती थाना क्षेत्र अंतर्गत तिलभिट्टा बाजार के पास पुलिस ने छापेमारी कर 313 ग्राम अवैध गांजे के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी कुमार गौरव ने बताया कि छापेमारी के दौरान दूसरा आरोपी फरार हो गया। देवघर में राजकीय श्रावणी मेले के पहले दिन अब तक करीब 80,000 कांवरियों ने बाबा वैद्यनाथ का पावन जलाभिषेक किया। भीड़ प्रबंधन और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर उपायुक्त सौरभ कुमार भुवानिया और एसपी प्रवीण पुष्कर रूट लाइनिंग का जायजा लेते रहे। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन शाम 7 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: किसान भाई, बीज उपचार, खरपतवार नियंत्रण, रोग एवं कीट सुरक्षा सबसे जरूरी कदम है जी। और बीज उपचार की जहां तक बात आती है, तो बुवाई से पहले उड़द की बीजों को राइजोबियम कल्चर से उपचारित आप कर लीजिए, ताकि जड़ें उसकी मजबूत हों और नाइट्रोजन ठीक से उन्हें प्राप्त हो सके। खाद की बात जहां तक आती है, तो खेत तैयार करते समय सड़ी हुई गोबर की खाद हम लोग मिलाते हैं, कंपोस्ट भी उसमें मिलाते हैं, तथा मिट्टी की जांच के अनुसार हम उर्वरक का उपयोग करते हैं। नाइट्रोजन और फास्फोरस की जो मात्रा देनी चाहिए हमें अपने खेतों में, उसका उपयोग हम करते हैं। सिंचाई और खरपतवार नियंत्रण की अगर बात करें, तो किसान बंधु, फूल आने और फली बनते समय खेत में नमी बहुत जरूरी है। इस दौरान पानी की कमी कभी नहीं होने दीजिएगा आप। और निराई गुड़ाई तक की जहाँ तक बात है, तो बुवाई के 20 दिन बाद और दूसरा जो आप करेंगे वो 40 दिन बाद आप निराई गुड़ाई कर सकते हैं, हाथों से भी कर सकते हैं। खेत को साफ रखें। पीला मोजेक रोग, इसे पीला चित्तेदारी भी कहते हैं, बिजाई के 20 से 25 दिन बाद आप स्प्रे जरूर करिए। रोगोर या टेफगोर दवा का उपयोग सफ़ेद मक्खी को रोकने के लिए किया जाता है, जो इस वायरस को फैलाती है। पत्तियों पे धब्बे भी बनते आप देखे होंगे किसान बंधु। फंगस से बचाव के लिए मैंकोजेब इंडोफिल M45 की अनुशंसित मात्रा को पानी में मिलाकर आप छिड़काव करिए। नए बागानों का अब हम बात कर लें। ये तो उड़द की बात हमने आपसे कर ली कि उड़द में किस प्रकार हम प्रबंधन करें, और वैज्ञानिक तकनीकियाँ आवश्यक है किसान भाई, तभी आप अपनी जो पूंजी लगाए हैं उसका कई गुना लाभ प्राप्त कर सकेंगे। अब बात उठती है नए बागान की। हमारे बहुत से किसान भाई बहन हैं जो नए बागान भी स्थापित किए हैं, तो नए बागान की सही देखभाल के लिए किसान भाई बहन, नियमित सिंचाई, समय पर खाद देना और खर पतवार यानी घास फूस की सफाई करना अत्यंत आवश्यक है। छोटे पौधों को स्वस्थ रखने के लिए कुछ बातों पर आप ध्यान जरूर दीजिए। सिंचाई और पानी, नियमित नमी हमें चाहिए। मिट्टी को ज़्यादा सूखा कभी नहीं रखिए। सुबह या शाम के समय पौधों में पानी अवश्य दीजिए आप। और बचाव की बात जहाँ तक आती है, तो ज़्यादा पानी देने से हमारी जो जड़ें हैं, मतलब पौधों की जो जड़ें हैं, वो सड़ सकती हैं, गल सकती हैं। इसलिए केवल उतनी ही नमी रखें जितनी की आवश्यकता उस पौधे को हो। खाद और मिट्टी की देखभाल भी आपको करनी है किसान बंधु। मिट्टी की गुड़ाई की बात हम कर लें आपसे। पौधों के आसपास की मिट्टी को समय समय पर हल्का ढीला करते रहिए, ताकि हवा जड़ों में मिलती रहे। पौधों की अच्छी बढ़त के लिए महीने में एक बार गोबर की खाद या कंपोस्ट का इस्तेमाल आप करिए। बात उठती है सुरक्षा सफाई की किसान बंधु, ये बहुत आवश्यक है।

किसान भाई बहन, तो अवांछित घास फूस को तुरंत उखाड़ दीजिए, आप उसे फेंक दीजिए, ताकि वे पौधों का पोषण कभी नहीं छीन सकें। क्योंकि आप ये बात को जानते हैं किसान भाई बहन, खर पतवार जो हैं वो जो आपकी जो फसल है उससे प्रतिस्पर्धा करते हैं, और उसमें जो पोषक तत्व मिलने चाहिए, जो भी प्राप्त होना चाहिए, हमारी जो फसल जो लगाई गई है, पौधों को जो मिलने चाहिए पोषक तत्व, वो खर पतवार ले लेते हैं। इसलिए खर पतवार नियंत्रण समय समय पर बहुत जरूरी हो जाता है किसान भाई बहन। अब बात उठती है कीट नियंत्रण की, तो पत्तों पर कीड़े दिखने पर नीम के तेल का छिड़काव आप जरूर करिए। जी हाँ, प्राकृतिक चीज है, इसका छिड़काव आप करिए। तो इस प्रकार से हमारे ग्रामीण भाई बहन जो नए बागान का स्थापना किए हैं, उसमें काफ़ी बेहतर रूप से देख रेख कर सकते हैं इन सारी बातों को अपनाकर, और बागान से अच्छा खासा लाभ आप प्राप्त कर सकते हैं। जी हाँ किसान बंधु, कार्यक्रम में ये हुई बातें बागान से संबंधित, और अब आइए हम सुनते हैं शारदा सिन्हा के गाए लोक।

0: किसान भाई बहन आप सुन रहे थे शारदा सिन्हा के गाय लोकगीत। और अब हम बातें करेंगे आपसे पशुधन किसान क्रेडिट कार्ड की। जी हाँ किसान भाई बहन, और इस पर विस्तृत जानकारी साझा करने के लिए आज हमारे साथ हैं आदर्श ग्राम पदाधिकारी पलामू डॉक्टर प्रबोध कुमार।
1: पशुधन किसान क्रेडिट कार्ड उन पशु पालकों के लिए है जो पशुपालक अपनी आर्थिक कमजोरी के कारण अपने पशुओं को ठीक से भोजन नहीं करा पाते हैं या बीमा नहीं करा पाते हैं या अपना घर सही से नहीं बना पा रहे हैं, तो उनके लिए भारत सरकार की एक योजना आई है कि वो जो है इसको 7% इंटरेस्ट है, जिसमें 3% इंटरेस्ट का भारत सरकार के द्वारा दिया जाएगा और 3% झारखंड सरकार वहन करेगी। अंतिम में 1% मात्र ही इंटरेस्ट जो है वो पशुपालक देंगे। इससे किसान पशुपालकों को ये फायदा होगा कि अगर वो गाय रखे हुए हैं तो उन्हें 20,000 रुपये प्रति गाय कर करके ये ऋण मुहैया कराई जाएगी। वो 3 महीने तक गाय को खाना खिलाने के बाद उससे दूध उत्पादन बढ़ेगी और उससे आमदनी करके इसको 10 महीने के अंदर अगर वो चुका देते हैं तो उन्हें मात्र 1% इंटरेस्ट देना पड़ेगा और 3% झारखंड सरकार देगी, 3% भारत सरकार देगी। इस तरह से हर एक जिले में गढ़वा पलामू लातेहार तीनों जिलों में योजना चलाई जा रही है पशुपालकों के लिए। इस तरह से पशुपालक चाहें तो जो मुर्गी रखे हुए हैं वो भी, खास करके मांस वाली मुर्गी रखे हुए हैं, तो एक लॉट निकालने में करीब करीब 500 मुर्गियों को निकालने का खर्च 60,000 रुपये होता है, तो उन्हें 60,000 रुपये प्रदान किया जाएगा। इसी तरह से कोई पशुपालक अगर 400 अंडे देने वाली मुर्गियां रखी हैं तो उनके लिए खर्च करीब 1.5 लाख रुपये आते हैं, तो उन्हें 1.5 लाख रुपये की सहायता ऋण राशि इससे मुहैया करा जा सकती है। इसी तरह से 4 बकरी 1 बकरा रखे हुए हैं तो उन्हें 25,000 और अगर 10 बकरी 1 बकरा रखे हुए हैं तो उन्हें 50,000 रुपये और शुक्र अगर रखे हुए हैं 4 मादा शुक्र 1 नर शुक्र तो उन्हें 50,000 रुपया, 1 गाय या भैंस पर 20,000 रुपये, 5 गाय पर करीब आपको 1 लाख रुपये और 10 गाय या भैंस है तो आपको 2 लाख रुपये तक की ऋण राशि मुहैया कराई जा सकती है।
0: और इसका भुगतान का प्रक्रिया कैसे?
1: इसकी भुगतान की प्रक्रिया है कि आप 10 महीने के अंदर अगर इस लोन को और उसका इंटरेस्ट जमा कर देते हैं तो जो आपका किसान क्रेडिट का लिमिट है जो भी 25,000 किसी के लिए है या 50,000 रुपये है
0: तो उन्होंने निर्धारित किया है
1: तो अगर सही उनका साख बना रहेगा तो अगली बार जो है उससे ज्यादा रकम वो निकालेंगे और उससे अपना व्यवसाय को आगे बढ़ा सकते हैं।
0: और इसमें किसान जो है या फिर जो पशुपालक भाई जो हमारे हैं उनका क्या कवरेज किया जाता है?
1: किसान को अपना 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स लगाना पड़ेगा और जिस बैंक में उनका खाता है, खास करके जिस जिले में आप हैं उस जिले के अपना खाता रखें और उसका बचत खाता का फोटोकॉपी और जो आपका शेड है, गाय शेड हो सकता है, बकरी शेड हो सकता है या सुकर शेड हो, मांस वाली मुर्गी के लिए मुर्गी शेड हो, उसके साथ अपना एक फोटोग्राफ्स कि आप वो व्यवसाय कर रहे हैं, गौशाला जिस पर बनाया हुआ है उस जमीन का रसीद अगर लगा कर करके किसान भाई वोटर कार्ड और आधार कार्ड अगर लगा देते हैं तो उन्हें वो बैंक के द्वारा एक आवेदन लगभग सभी जिलों के जिला पशुपालन पदाधिकारी और प्रखंड पशुपालन पदाधिकारी के पास एक 9 पेज का आवेदन उपलब्ध है। उस आवेदन पत्र में भर करके इतने कागजात लगा करके वो अपने प्रखंड पशुपालन पदाधिकारी को देंगे। प्रखंड पशुपालन पदाधिकारी द्वारा ये संकलित आवेदनों को जिला के जो LDM लीड डेवलपमेंट मैनेजर जो होते हैं उनके पास ये प्रत्येक शुक्रवार को ये आवेदन दिया जाता है और 15 दिनों के अंदर बैंकों की जवाबदेही तय की गई है कि वो किन कारणों से किसी आवेदन को अस्वीकृत कर रहे हैं, उसे लिखित रूप में वो LDM को सूचना देंगे और वो LDM के द्वारा वो सूचना जिला पशुपालन पदाधिकारी को उपलब्ध कराई जाएगी और जिला पशुपालन पदाधिकारी अपने प्रखंड पशुपालन पदाधिकारी को बताएंगे कि आपके इतने आवेदन पर जो है आपको आवेदन की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है, उन्हें आवेदन स्वीकृत कर दिया गया है। इस तरह से उनके खाते में ये पैसा चला जाएगा। इस पैसे को खर्च करने के लिए उन्हें किसी तरह की परेशानी नहीं है, वो अपने ढंग अपने हिसाब से खर्च करेंगे और जब उससे लाभ होगा तो 10 महीने के अंदर उस पैसे को जो सूद निर्धारित है उसके साथ जमा कर देंगे, तो उससे उनकी साख बनी रहेगी और किसान भाइयों को आगे भी इस योजना का लाभ

0: मिलता
1: मिलता रहेगा
0: रहेगा
1: जी।
0: जी।
1: और किसानों का क्या कवरेज दिया जाता है, जैसे उनके एक्सीडेंटल केस वगैरह?
0: एक्सीडेंटल केस के लिए नहीं है ये जो योजना हम उपलब्ध करा रहे हैं, इसका उपयोग पशुपालक अपने पशुओं को भोजन कराने के साथ, पशुओं की चिकित्सा कराने के लिए, अपने पशुओं को बीमा कराने के लिए ये पैसा दी जाती है। इससे फायदा ये होगा कि अगर बीमा कराए हुए हैं अपने पशुओं का और उनकी मृत्यु होती है तो संबंधित बीमा कंपनी उन्हें इस पैसे का भुगतान करेगी। जैसे
1: जी
0: सपोज करिए कि कोई गाय 50,000 रुपये की इंश्योरेंस है और वो गाय बीमार है, उन्होंने पशु चिकित्सक से इलाज करवाया फिर भी गाय मर गई, तो उन्हें चाहिए कि तुरंत अपने बीमा कंपनी को सूचना दें और उस डॉक्टर को सूचना दें और पोस्टमार्टम रिपोर्ट उस कंपनी को जमा कर दें, वो कंपनी जो है इन्हें जो बीमा की रकम है उनके खाते में हस्तांतरित कर देगी।
1: अब हम आते हैं पशुओं के टीकाकरण से संबंधित बातों पर। और बहुत सी कुछ खास बीमारियां भी हैं जो हमारे जो पशुधन हैं उनको प्रभावित करती हैं बीमारियां।
0: बिल्कुल सही है आपने कहा कि पशुपालक भाइयों को जो बड़े पशु रखे हुए हैं गाय या भैंस, उनमें तीन बीमारियां प्रमुख रूप से है। एक जो हमारे किसान भाई जानते हैं गलगटिया, दूसरा टंगर फुलवा और तीसरा डकहा कहते हैं।
1: अच्छा
0: और जब भी आप टीका लगवाएंगे तो 14 दिन के बाद जो पशु इम्यूनाइज हो जाएंगे, जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाएगी, उन्हें कोई परेशानी नहीं होगी। बकरी पालक भाइयों के लिए है PPR नाम की बीमारी, जिसमें कि बकरियों में सर्दी हो जाती है, जबड़े में घाव हो जाएगा और आँख से आंसू आएगा, फिर पतला दस्त होता है, बकरियाँ मरने लगती हैं, इन्हें PPR कहते हैं। इस PPR बीमारी का जो है टीका साल में एक बार कराना चाहिए। और इसके साथ एक दूसरी बीमारी है, इसका नाम इंट्रोटॉक्सिमिया है। इसमें बकरियाँ कुछ मौका नहीं देती है, पता भी नहीं चलता है, ऑल ऑफ सडन बकरियाँ मरने लगती हैं। तो
1: अच्छा
0: इसमें इंट्रोटॉक्सिमिया का वैक्सीन लगभग सभी जिलों में झारखंड सरकार के द्वारा उपलब्ध कराया गया है। किसान भाई अपने जिला पशुपालन पदाधिकारी और नजदीकी प्रखंड पशुपालन पदाधिकारी, साथ में जो पशु चिकित्सालय हैं वहाँ पर जो पदाधिकारी उपस्थित हैं उनसे संपर्क करके वो इंट्रोटॉक्सिमिया का वैक्सीन दिलवा सकते हैं। और PPR वैक्सीन बाजार में उपलब्ध हैं। 100 डोज 100 बकरियों की वैक्सीन का कीमत बाजार में लगभग 450 रुपये है। पशुपालक भाई उसे खरीद करके अपने पशुओं को दिला सकते हैं। इसके साथ ही वैसे पशुपालक जो शुकर पालन किए हुए हैं उन्हें भी चाहिए कि अपने शुकरों के लिए, उनमें शुकर ज्वर नाम का एक बीमारी होती है, उस बीमारी में शुकर जो है तेज बुखार होगा, खाने में अरुचि होगी, गंदा दस्त होगा, सांस लेने में कठिनाई होगी, चलने में डगमगाहट रहती है, शरीर पर लाल पीले रंग के धब्बे निकल आते हैं और ये शुकर जो है 2 से 3 दिनों के अंदर उनकी मृत्यु हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में पशुपालक भाइयों से अनुरोध है कि अपने पशुओं को बचाने के लिए, शुकर ज्वर का अंग्रेजी में स्वाइन फीवर कहते हैं, आप झारखंड सरकार के द्वारा भी कुछ प्रखंडों में स्वाइन फीवर टीका उपलब्ध कराया गया है, वहाँ से वो टीका प्राप्त कर लगवाएं या बाजार में जो है ये टीका उपलब्ध है। आप अपने नज़दीकी जो भी दवा दुकान है वहाँ पर आप बोलें कि स्वाइन फीवर या शुकर ज्वर के हमको टीका चाहिए, तो 10 पशुओं का एक साथ टीका आता है जिसका कीमत थोड़ा ज़्यादा है, 700 रुपये। तो आपके पास अगर 10 पशु हैं या नहीं है तो आप आपस में मिल करके 10 पशु के लिए टीका एक साथ लें और 10 पशु में टीका लगा दें, तो आपको ये शुकर जो बहुत जल्दी मर जाते हैं उन्हें ये बीमारी नहीं लगेगी और वो एक साल तक आपको कोई समस्या नहीं होगी। और दूसरी शुकर में खुरहा चपका का वैक्सीन भी साल में 2 बार लगवाना चाहिए। अगर ये 2 टीके हमारे शुक्र पशुपालक लगाते हैं तो उनके शुक्र स्वस्थ रहेंगे और इससे उनको मुनाफा हो।
1: और कोई ऐसी बातें जो छूट रही हो?
0: इसी तरह से मुर्गी पालकों से अनुरोध है कि जो मुर्गी पालक भाई देसी मुर्गियों का पालन कर रहे हैं और आगे बढ़ा रहे हैं अपने व्यवसाय को, तो उन्हें चाहिए कि जब भी देसी मुर्गी रखें तो कम से कम रानीखेत का जो 3 टीका है वो जरूर दिलवाएं। जो टुनकी से आप लोग परिचित हैं उसमें भी अकस्मात मुर्गियां मरने लगती हैं, उसमें आप चाहिए कि रानीखेत का पहला टीका का नाम F1 स्ट्रेन है, जो कि हम लोग 4 से 10 दिनों के अंदर आँख में या नाक में एक एक बूंद देते हैं। दूसरी जो है दवा वो 21 दिन पर है R2B वैक्सीन, उसे पानी में घोल देते हैं, सुबह तक पानी नहीं पिलाते हैं, दोपहर में पानी पर छोड़ते हैं दवा मिली हुई पानी में, तो मुर्गियाँ पानी पी लेती हैं, उस तरह से दूसरा खुराक उनका हो जाता है। और
1: अच्छा
0: तीसरी जो सुई है वो लसोटा, लसोटा जो है उनको सभी को हम 1-1 ml की सुई आती है जो प्रत्येक मुर्गी को देना होता है। दूसरा उन्हें फाउल पॉक्स की वैक्सीन 2 महीने पर एक बार दी जानी है। अगर इतना पशुपालक भाई अपने मुर्गी पालकों के लिए इतनी वैक्सीन का इंजाम कर लेते हैं तो उन्हें कोई परेशानी नहीं होगी और उन्हें अपने व्यवसाय

0: सिर्फ लाभ ही लाभ होगा। अगर ऐसा नहीं कर पाते हैं तो थोड़े पैसे, क्योंकि वैक्सीन का दाम जो है बहुत कम होता है, आप देखेंगे तो मुर्गियों में ये 20 से 25 पैसे हैं, गायों में जो है वो 10 रुपये 15 रुपये आ रहा है। खुरहा चपका का वैक्सीन थोड़ा महंगा है, 30-35 रुपये। शुगर का वैक्सीन जो है एक का बाज़ार से खरीदेंगे तो 70 रुपये, लेकिन सरकार के यहाँ से वैक्सीन आप प्राप्त करेंगे तो आपको निःशुल्क ही ये सारे वैक्सीन उपलब्ध हो जाएंगे।
1: आपसे लातेहार जिला के बरवाड़ी प्रखंड के प्रखंड पशुपालन पदाधिकारी डॉक्टर प्रमोद कुमार जी, आप पशुधन किसान क्रेडिट कार्ड से संबंधित जानकारियां साझा की, पशुओं की बीमारियां से बचाव की जानकारियां साझा की, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
0: नमस्कार।
1: जी हाँ, किसान भाई बहन, और पशुधन किसान क्रेडिट के बाद अब बातें अरहर की। हमारे बहुत से ग्रामीण बंधु हैं जो अरहर की खेती कर रहे हैं, और अरहर की खेती में हम विशेषकर निराई गुड़ाई पर ज़्यादा हम ध्यान दें तो बेहतर होगा। फसल की शुरुआती 40 से 60 दिनों तक खेत को तो खरपतवार मुक्त रखना जरूरी है, इसके लिए 1 से 2 बार निराई गुड़ाई आवश्यक है। बुआई के 48 घंटे के बाद भीतर पेंडी मेथालिन दवा का छिड़काव जमीन पर अवश्य करें ताकि घास और चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार ना उग सके। कीट की जहां तक बात आती है किसान बंधु, तो इसमें उकठा रोग देखा गया है और यह फफूंद से होता है। इससे बचाव के लिए लगातार एक ही खेत में बार बार अरहर कभी नहीं लगाएं, और रोग रोधी किस्में जैसे बहार, नरेंद्र, अरहर एक, इसका चुनाव आप करें। फली छेदक कीट की बात अगर हम आपसे करें तो फलियों को नुकसान पहुंचाने वाले कीटों की रोकथाम के लिए खेत में फेरोमोन ट्रैप यानी गंध पास जरूर लगाएं, या जरूरत पड़ने पर नीम के जो तेल हैं 2% उचित कीटनाशी है ये, आप इसका छिड़काव कर सकते हैं और काफ़ी लाभ होगा आपको। तिल में जहाँ तक हम बातें कर लें किसान बंधु, तिल की फसल के लिए तो इसके लिए खरपतवार जो है नियंत्रण आप समय समय पर करते रहिए, निराई गुड़ाई बुआई के 20 से 35 दिन बाद तो आप जरूर कर लीजिए। खाद एवं उर्वरक की बात जहां तक आती है तो खेत तैयार करते समय 10 से 15 टन सड़ी हुई गोबर की खाद हम लोग मिलाते हैं खेतों में, और बुआई के समय नाइट्रोजन की आधी मात्रा तथा फास्फोरस एवं पोटाश की पूरी मात्रा जो है हम उपयोग करते हैं, और शेष जो नाइट्रोजन बचती है उसे हम फसल के रूप में 30 से 35 दिन बाद इस्तेमाल करते हैं। किसान भाई बहन, रोग एवं कीट का प्रश्न जहां तक उठता है तो मुख्य रोग एवं कीट इसके हैं पत्ती मोड़क, फाइटोप्थेरा, झुलसा रोग जो तिल को काफ़ी नुकसान पहुंचाते हैं, ये सब। रोकथाम के लिए फंगस से बचाव के लिए कार्बेंडाजिम साथ में मैंकोजेब मिला करके आप इसका छिड़काव करें और उसे आप सुरक्षित रख सकते हैं। विशेषकर आप अगर ये देख ले किसान भाई कि कौन सी फसल में, जैसे आप तिल की फसल जो आप देख रहे हैं उसमें देख लें आपकी कौन पौधा आपका बर्बाद हो रहा है और उस पर रोग का प्रकोप हो चुका है, वो रोग ग्रसित है, तो आप उसे तुरंत उखाड़ कर फेंक दीजिए। ये पहला उपचार है किसान भाई बहन। तो आपको खेत को बार बार निगरानी करते रहने की आवश्यकता है, चाहे वो कोई भी फसल हो किसान भाई, आप निगरानी अवश्य करिए। और इस प्रकार आप अरहर में, तिल में आप अगर प्रबंधन करेंगे तो निश्चित रूप से जो आप पूंजी लगाते हैं उसे आप सुरक्षित रख सकेंगे, उसका कई गुना लाभ आप प्राप्त करेंगे। तो अब आइए सुनते हैं हम शारदा सिन्हा के गाए लोकगीत।

हमारे किसान भाई बहन सुन रहे थे शारदा सिन्हा के गाए लोकगीत। और अब हमारा समय आपसे विदा लेने का हो चला है किसान बंधु, लेकिन विदा लेने से पहले हम एक बात आपसे साझा करके चलें। आप जल का जितना हो सके उतना संचय कर लीजिए किसान भाई, डोभा का निर्माण करिए, जल का संचय करिए और आपके जो खेत हैं उन्हें हमेशा हरा भरा रखिए। इसी के साथ अब अपने भाई संतोष कुमार को कार्यक्रम खेती बाड़ी से आज्ञा दीजिए। नमस्कार।

हमारे श्रोता सुन रहे थे ग्रामीण भाइयों को संबोधित हमारा दैनिक कार्यक्रम खेतीबारी। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं एफएम 103 मेगाहर्ट्ज़ पर। आपसे थोड़ी देर में आप सुनेंगे किसान भाइयों को संबोधित हमारा प्रायोजित कार्यक्रम किसान।

संतोष कुमार का प्यार भरा नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम किसान वाणी में। ग्रामीण भाइयों, कार्यक्रम के आरंभ में बातें ग्रामीण कृषि मौसम सेवा, भारत मौसम विज्ञान विभाग, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, कांके रांची झारखंड से प्राप्त मौसम आधारित कृषि परामर्श सेवाएं की। जी हाँ किसान भाई बहन, मौसम नम एवं अपेक्षाकृत ठंड बना रहेगा। लगातार वर्षा के कारण तापमान में कोई खास बदलाव होने की संभावना बिल्कुल नहीं है। गरज चमक और तेज हवाओं के साथ वर्षा की संभावना बनी रहेगी। किसान बंधु, भारी बारिश, आंधी तूफान और बिजली कड़कना, तेज हवा के झोंके वगैरह आप देख सकते हैं और जमीन के पास भी तेज हवाएं चलेंगी। तेज हवाओं से फसलों और खेती के सामान को नुकसान पहुंच सकता है, जबकि भारी बारिश से जल जमाव भी हो सकता है किसान बंधु, और उसमें भरे मौसम में कीट और बीमारियों के पनपने की संभावना भी ज़्यादा हो जा रही है, इसलिए आप सुरक्षा का ख्याल रखें। जी हाँ किसान भाई बहन, अब हम आपको फसलों से संबंधित ये बातें साझा कर लें कि आने वाले दिनों में बादल छाए रहने और बारिश होने की संभावना को देखते हुए हमारे किसान भाई मध्यम खेत में आगामी दिनों में होने वाले वर्षा के साथ साथ ऊपरी खेतों से पानी का बहाव रोपा वाले खेतों में करके पानी जमा आप अवश्य कर लें। जी हाँ, रोपा का जो खेत है उसके इर्द गिर्द पानी भरपूर मात्रा में आप रखिए किसान भाई, और जिन किसान भाई के पास ऊपरी खेत अभी भी परती रह गया है वे किसान भाई कुल्थी, उड़द, मूंग या अनेक सब्जियों की खेती के लिए तैयारी जरूर कर लें। किसान भाई, आगामी 5 दिनों में सिंचाई, अंतर कृषि संचालन और खड़ी फसलों में मध्य संरक्षण उपायों और उर्वरकों के प्रयोग को स्थगित कर दीजिए। बिल्कुल किसान भाई, ये वैज्ञानिकों द्वारा आपको सलाह दी गई है, और कटी गई उपज को यानी फसल जो आप काट चुके हैं सुरक्षित स्थान पर रखिए। भारी बारिश से बचाने के लिए सब्जियों के पौधों को पॉलीथीन से ढक कर रखिए। पॉलीथीन से आप ढक सकते हैं, उससे सुरक्षित रख सकते हैं। बारिश और बादल की स्थिति में खड़ी फसलों में रोग का प्रकोप बढ़ सकता है किसान भाई, इसलिए किसान भाइयों को इसकी निरंतर निगरानी रखने की आवश्यकता है। किसान भाई बहन, आपको यह भी सलाह दी जाती है कि टमाटर फल छेदक कीट के प्रबंधन के लिए जाल फसल के रूप में गेंदा यानी अफ्रीकी गेंदा का उपयोग आपके लिए बहुत आवश्यक है। जी हाँ किसान बंधु, अगर हम रागी की बात करें, मड़ुआ की बात आपसे करें, तो मड़ुआ की फसल जो 20 से 35 दिन पुरानी है उसमें निराई गुड़ाई आप जरूर कर लीजिए, और इसके पश्चात 22 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से यूरिया का भुरकाव आप कर दीजिए। हमारे बहुत से ग्रामीण बंधु मक्का की खेती कर चुके हैं और बहुत से लोग अभी भी मक्का लगा रहे हैं, तो हम उन्हें यह बताते चलें कि जो बिरसा कृषि विश्वविद्यालय द्वारा जो परामर्श प्राप्त हुए हैं वो इस प्रकार से हैं। जल्दी बोई गई मक्के की फसल 4 सप्ताह की अवस्था में है किसान भाई, तो आप फसल में निराई गुड़ाई करें तथा 26 किलोग्राम यूरिया प्रति एकड़ की दर से आप खेतों में डालें और मिट्टी अवश्य चढ़ा दें। लंबे समय तक बादल छाए रहने तथा वर्षा के कारण मक्के में जीवाणु, डंठल सड़न रोग के संक्रमण की संभावना बन चुकी है किसान भाई, इसलिए आप अंकुरण जो प्रभावित हों अवस्था जो इसकी वानस्पतिक अवस्था है उसमें इसको सुरक्षित रखने के लिए, डंठल की सड़न को नियंत्रित करने के लिए सूखे दिनों में आप कॉपर ऑक्सीक्लोराइड आधारित रसायनों का प्रयोग करिए, और इसके अलावा 30 किलोग्राम MOP प्रति एकड़ आप 2 बार खेतों में डालें, रोग की गंभीरता कम हो सकती है। जी हाँ किसान बंधु, वर्षा की कमी को देखते हुए हमारे किसान भाई धान की फसल में छटाई जरूर करें ताकि पानी और पोषक तत्वों के लिए उनके बीच प्रतिस्पर्धा को कम की जा सके, और छटाई की गई पौधों को पशुओं को खिला दीजिए किसान बंधु, इससे पशु भी हरे चारे का प्रयोग कर पाएंगे, और उसमें भी धान की बात हो रही है। और सीधे बोए गए धान की फसल अभी 3-4 हफ्ते की अवस्था में है किसान भाई, तो आने वाले दिनों में हल्की सी बारिश, मध्यम बारिश का अनुमान है, इसलिए हमारे किसान भाई
ब्यू

0: प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम किसानवाणी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
1: अपने खेतों से घर वापस आए गांव घर के कार्य में लगे सभी किसान भाई बहन को

0: मॉर्निंग, ये दवा का नाम है, आप इसके लिए जरूर जाएं। और 35 किलोग्राम यूरिया प्रति एकड़ आप खेतों में प्रयोग करें, और इसके बाद खरपतवार निकालना और खाली जगहों पर पौधे लगाना, यानी गैप फिलिंग की जो बात आती है वो काम आप जरूर कर लीजिए। और खाद डालते समय अतिरिक्त पानी को आप निकाल दीजिए और एक दिन बाद खेत में पानी फिर भर दीजिए किसान भाई। तो समय पर बोई गई फसल जो वानस्पतिक अवस्था में है, यानी ढलान की तरफ विपरीत जो आप नालियां बनाकर अतिरिक्त पानी निकालने का इंतजाम आप कर लीजिए। जो किसान भाई अभी भी बुआई का इंतजार कर रहे हैं, उन्हें ज्वार, मक्का, मूंगफली, सोयाबीन, मूंग और भिंडी के साथ अंतर फसल हम अपना सकते हैं। ये अपनाने का जो सुझाव है वो आपको बिरसा कृषि विश्वविद्यालय द्वारा, वैज्ञानिकों द्वारा दी जाती है। अंतर फसल के मामले में अरहर के साथ ज्वार, पंक्ति का जो हम आंकड़ा रखेंगे वो इस प्रकार से 1:1 रखेंगे। अरहर के साथ मक्का, पंक्ति का अनुपात 1:1। मूंगफली के साथ भी अरहर आप लगा सकते हैं, पंक्ति 1:3। अरहर के साथ सोयाबीन, पंक्ति जो आप रखेंगे अनुपात 1:2। अरहर के साथ उड़द अगर आप लगाते हैं या मूंग लगाते हैं तो 1:2। अरहर के साथ अगर आप भिंडी की सब्जी की खेती कर रहे हैं तो इसकी अनुपात 1:1 आप बनाए रखें, और उसी के तदनुसार आप उर्वरक का प्रयोग करते रहें किसान भाई। और अब बातें सब्जी की, करेला की बात हम आपसे कर लें। करेला आप जब भी उपजा कर बाजार में जाते हैं किसान भाई तो आपको मुँह मांगा दाम प्राप्त हो जाता है। तो हमारे बहुत से ग्रामीण बंधु करेले की खेती करते हैं और बहुत ज़्यादा आमदनी प्राप्त करते हैं। तो करेले की फसल में फल मक्खी के प्रकोप देखे जा रहे हैं अभी फिलहाल, तो जिससे करेले के फल जो है वो पीले दिखने लगते हैं तथा फल जल्दी नरम हो जाता है किसान भाई, उसे कड़ा होना चाहिए। तो इससे बचाव के लिए हमारे किसान भाई अपने खेतों में 20-25 फेरोमोन ट्रैप प्रति एकड़ की दर से आप लगा दीजिए, आप रोग से सुरक्षित हो जाएंगे। जी हाँ किसान भाई बहन, ये हुई बातें बिरसा कृषि विश्वविद्यालय ग्रामीण कृषि मौसम सेवा, भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा प्राप्त मौसम आधारित कृषि परामर्श सेवाएं की। और अब कार्यक्रम में लेते हैं हम एक छोटा सा अंतराल, और अंतराल के उस पार हम अभी हाजिर हुए।
1: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना मिलेगा।

0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर।
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनित।
3: अरे अरे अरे, क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का।
4: पुतला बोल रहे
3: हैं? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं?
4: मतलब?
3: देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे पहली वाली बात कहाँ,
4: पर हम तो सभी डाले हैं।
3: सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं।
4: सच है?
3: रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं।
4: ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा।
5: माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती।
6: अंतराल के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप तमाम किसान भाइयों का कार्यक्रम किसानवाणी में। और ग्रामीण बंधु,

0: अब बातें योजना से संबंधित। जी हाँ किसान भाई बहन, हम आज आपसे बातें साझा करेंगे गोवर्धन योजना की, और इससे संबंधित जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ हैं पलामू जिला के आदर्श ग्राम पदाधिकारी डॉक्टर प्रमोद कुमार। इसे क्यों धरातल पर इस योजना की शुरुआत की गई है, इस संबंधित विस्तृत जानकारी आज हम साझा करेंगे लातेहार जिला के बरवाडी प्रखंड के प्रखंड पशुपालन पदाधिकारी डॉक्टर प्रमोद कुमार जी से। स्वागत है आपका कार्यक्रम में, नमस्कार।
1: नमस्कार।
0: सर्वप्रथम तो हमारे किसान भाइयों को ये बताया जाए कि यह गोवर्धन योजना है क्या।
1: मैं किसान भाइयों को इस योजना के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी देना चाहता हूँ। ये गोवर्धन योजना संक्षिप्त नाम है, इसे अगर पूरे नाम के साथ हम देखें तो इसका पूरा ये गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्स धन कहते हैं। यह योजना भारत सरकार के द्वारा 2018 में शुरू की गई है। ये पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय के द्वारा प्रारंभ किया गया है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों की आय दुगनी करना, गाँव में स्वच्छता को बढ़ावा देना है। तो ये काम मैं कैसे कर सकता हूँ, ये सरकार कैसे कर सकती है, इस बारे में किसान भाई जानना चाहेंगे।
0: जी
1: तो किसान भाइयों, आपके गांव में आप पशु रखे हुए हैं, भारत गांवों का देश है और भारत में पशुओं की संख्या लगभग 3,000,000 है और उससे 30,00,000 टन गोबर प्राप्त होता है। ये गोबर जो है गाँव में मच्छर मक्खियों से उत्पन्न होने वाले रोगों को बढ़ावा देते हैं, साथ में गाँव में पत्तियाँ पुआल भी अपशिष्ट के रूप में जला दिए जाते हैं, उससे वायु में प्रदूषण बढ़ता है। भारत सरकार ये चाहती है कि किसानों की आय 2025 तक दुगनी हो। इस दिशा के लिए इन गोबर, पशुओं के गोबर मूत्र एवं जो अपशिष्ट पदार्थ हैं, पत्तियाँ पुआल मकई के डंठल आदि जो कुछ भी जो आग लगाए जाते हैं उन सभी को मिला करके हम सरकार चाहते हैं कि बायोगैस प्लांट बैठाया जाए गाँव में और उनसे जो गैस बनती है उसे घर में खाना बनाया जाए, उससे प्रकाश लिया जाए और ज़्यादा गैसें बनती हैं तो उनसे बिजली उत्पादन किया जाए। ये बिजली उत्पादन जो है हमारे पेट्रोलियम की उपयोग निर्भरता को कम करेगी। इस तरह से हमें पेट्रोलियम कम आयात करना पड़ेगा और हमें विदेशी मुद्रा की बचत होगी। गांव में ये कंपोस्ट खाद इस्तेमाल करने पर ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा मिलेगा, जैविक खेती को बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि जैविक खेती जो है किसी भी मनुष्य के लिए बहुत जरूरी है, उनकी उम्र को लंबी करने के लिए भी, क्योंकि हम जितना कम निर्भर होंगे जैविक केमिकल फर्टिलाइजर्स पर, लाइक जैसे आपका यूरिया है, पोटास है, सिंगल सुपर फॉस्फेट्स है, डायमोनियम फॉस्फेट्स है, इसका इस्तेमाल जितना हम कम करेंगे हमारे उत्पाद जो हैं कृषि उत्पाद गुणवत्तापूर्ण होंगे और उनसे रोग कम होने की संभावना होगी। इस तरह से किसान को आय बढ़ेगी, क्योंकि खेती से हमारा उपज बढ़ेगा तो किसानों को आय होगी, लाभुक जो उपभोक्ता हैं उनको गुणवत्तापूर्ण खाद्य पदार्थ मिलेंगे और इन जनरल सरकार को देखिए तो इन पेट्रोलियम पदार्थों की आयात कम होने से, फर्टिलाइजर का आयात कम होने से विदेशी मुद्रा की बचत होगी तो सरकार को काफ़ी फायदा होगी। इसके लिए भारत सरकार जो है चार स्तर पर काम करना चाहती है। ये पहला है कि अगर जिनके पास 5 से कम पशु हैं व्यक्तिगत बायोगैस प्लांट बैठाया जाएगा, लेकिन जिनके पास 5 से भी कम पशु हैं तो वो पूरे गांव में सामुदायिक रूप से बायोगैस प्लांट बैठा सकते हैं और उससे बड़े स्तर पर जो है क्लस्टर बना के किया जा सकता है। और तीसरा स्तर है जिससे कि व्यवसायिक स्तर पर कि हम उसका उत्पादन करें और उसको बाजार में बेचें।
0: जी
1: इसके लिए किसान भाइयों को गोवर्धन स्कीम के पोर्टल पर जाकर के ऑनलाइन आवेदन करना होगा। भारत के वे सभी किसान जो गाँव में रहते हैं और पशुओं को रखे हुए हैं वो सभी इसके लाभुक हैं। इसके लिए उन्हें आधार कार्ड और पैन कार्ड जमा करना होगा और उनकी अद्यतन स्थिति वहीं से देखनी पड़ेगी कि क्या हो रहा है। भारत सरकार के द्वारा झारखंड के 5 प्रमंडल में, प्रमंडल के जो मुख्यालय हैं, पलामू जिले का मुख्यालय पलामू जिला में है तो पलामू जिले को इसमें पायलट प्रोजेक्ट में लिया गया है। दुमका कमिश्नर में दुमका को लिया गया है, इसे हजारीबाग कमिश्नरी में हजारीबाग को लिया गया है। तो किसान भाई इस तरह से अपने आवेदन को ऑनलाइन कर सकते हैं और इसका लाभ उठा सकते हैं।
0: जी अगर देखा जाए तो ये आय दुगनी करने का भी एक सशक्त माध्यम बनता है।
1: बिल्कुल सही आपने कहा कि इस तरह से खेत में और जो कृषि उत्पाद हैं उनकी गुणवत्ता को बढ़ाते हुए हम जैविक खाद का उपयोग जो है वो करते हुए, रासायनिक खादों का कम प्रयोग करते हुए हम जो है सो विदेशी मुद्रा ही बचा रहे हैं और देश को भी मुनाफा हो रहा है, किसानों को भी मुनाफा हो रहा है। इस तरह से किसानों की आय करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है।
0: बिल्कुल, सबसे बड़ी बात है कि वो गैस प्लांट तैयार कर रहे हैं।
1: जी।

0: और हमारी भूमि की जो उर्वरा शक्ति जो समाप्त हो चली थी उसे बचाया भी जा सकता है।
1: जी बिल्कुल सही कहा आप संतोष जी कि किसान भाई इससे जो है अपने खेत को अच्छी स्थिति में रख सकते हैं और उत्पाद भी अच्छा ले सकते हैं।
0: अच्छा, धन की उपलब्धता की अगर हम बात करें तो क्या कहें?
1: धन के संबंध में भारत सरकार का स्पष्ट ये है कि जो भी राज्य सरकारें खर्च करेगी उस 40% के ये अनुपात में और सरकार भारत सरकार 60-40 के अनुपात में ये धन खर्च होगा। इसके धन की कोई कमी नहीं है, 10,000 करोड़ रुपये का इसका प्रावधान किया गया है और आगे इस पर भी धन की उपलब्धता कराई जाएगी।
0: जी, और अगर स्वच्छता की दृष्टि से हम देखते हैं तो निश्चित रूप से ये जो गोबर से हमारे किसान भाई लोग जो उसे छोड़ देते हैं गांव में, कई जगह इसे बिखरे पड़े रहते हैं, तो उसका नतीजा होता है कि कई तरह के जैसे मच्छर वगैरह हो गए तो उससे भी स्वास्थ्य हानि होती है।
1: बिल्कुल सही आपने कहा कि गाँव में गोबर का सही ढंग से डिस्पोजल नहीं करने के कारण, निस्तारण उसका नहीं होता है, तो मक्खियों की संख्या और मच्छरों की संख्या बढ़ने लगती है। इससे गाँव में जो है मक्खी और मच्छर से जनित मलेरिया है, डायरिया है, ये इसका प्रकोप बढ़ा रहता है, तो ये कमी आएगी। और शहरों में भी इस प्रोग्राम को लॉन्च करने के बाद जो तरल का कार्बनिक अपशिष्ट हैं उन्हें भी इस दिशा में कन्वर्ट करके उनको बायोगैस प्लांट कमर्शलाइज करके यहाँ भी गैस उत्पादन किया जा सकता है और उस गैस का इस्तेमाल खाना बनाने के लिए और या बायोगैस का इस्तेमाल बल्ब जलाने के लिए हम उसे प्रकाश भी ले सकते हैं और दूसरा कि टरबाइन में इस करने पर हम उसे बिजली उत्पादन कर सकते हैं, जिससे कि एक जगह से दूसरी जगह ऊर्जा का स्थानांतरण बहुत आसानी से किया जा सकता है।
0: जी हाँ, और इस योजना से संबंधित, गोवर्धन योजना से संबंधित और कुछ वैसी बातें जो छूट रही हूँ?
1: किसान भाई से जितना जल्दी जुड़े और इसकी संबंध में विशेष जानकारी जो है वो कृषि विभाग है वहाँ से प्राप्त की जा सकती है, पशुपालन विभाग से भी प्राप्त की जा सकती है और पेयजल स्वच्छता विभाग जो है इसका चूंकि नोडल अफसर है इसलिए फंड की उपलब्धता उन्हें होगी। आप पेयजल स्वच्छता से इस पर बात कर सकते हैं।
0: जी, पूरा पूरा मतलब उन पे सौंप दिया गया है।
1: जी,
0: पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, वहां से हमारे किसान भाई जो हैं संपर्क कर सकते हैं और फिर संपर्क करने के लिए उनके पोर्टल पे जाना पड़ता है,
1: पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना पड़ेगा, तभी इनका इसका लाभ उन्हें मिल सकता है।
0: और उसके लिए उन्हें आवश्यकता पड़ जाएगी आधार कार्ड की दस्तावेज के रूप में और
1: पैन कार्ड की
0: आवश्यकता,
1: और साथ में उनके पास पशु होने चाहिए,
0: देशी या फिर कोई और पशु,
1: वो भी पशु उनके पास रहेंगे तो उससे 5 से ज्यादा होगा तो व्यक्तिगत लाभ लेंगे, 5 से कम होने पर वो समुदाय के रूप में भी इसको स्थापित कर सकते हैं। पूरे गांव में
0: किसान
1: मिलकर के भी कर सकते हैं।
0: तो मतलब कि हमारे जो किसान भाई देशी गाय भी पाल रखे हैं वो भी इसका लाभ ले सकते हैं और जो संकर नस्ल की गाय जो पाल रखे हैं वो भी लाभ ले सकते हैं।
1: बिल्कुल
0: निश्चित रूप से ये एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है जिसका लाभ लेकर के हमारे किसान भाई हमारे देश को समृद्ध कर सकते हैं कृषि के मामले में। इस प्रकार हम मूलतः एक बार आप हमारे किसान भाइयों को बता दें कि इससे क्या महत्वपूर्ण लाभ वो प्राप्त करने जा रहे हैं।
1: पशुओं के अपशिष्ट जैसे गोबर हो गए, खेतों से निकलने वाले कचरे हो गए, पत्तियां हो गई, उन सभी को हम कंपोस्ट करेंगे, उसे हमारा गैस और CNG परिवर्तित किया जाएगा। इस बायोगैस का इस्तेमाल हम बिजली उत्पादन भी कर सकते हैं, खाना बनाने में कर सकते हैं, प्रकाश के लिए इस्तेमाल करते हैं और इससे जो कंपोस्ट होता है वो जैविक खाद कहलाता है। अगर इसका इस्तेमाल हम खेतों में करते हैं तो हमारे खेत की गुणवत्ता बढ़ती है, उत्पाद अच्छे होते हैं, उसकी बाजार में पैसा भी अच्छा मिलता है। गोवर्धन योजना से पर्यावरण पर भी अंकुश लगेगा क्योंकि जब हम पत्तियों को या पुआल को जब हम जलाते हैं तो उससे वायु प्रदूषण में बहुत कमी आती है।
0: ये सबसे बड़ी बात है
1: और ये इसके साथ ना 15 लाख से भी ज्यादा लोगों को इससे रोजगार मिलेगा, पशुपालन के कारोबार में वृद्धि होगी, किसानों की आय में भी वृद्धि होगी। इस योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में व्यक्तिगत बायोगैस प्लांट, सामुदायिक बायोगैस प्लांट, व्यक्तिगत घरेलू इकाइयां, सामुदायिक इकाइयां, क्लस्टर इकाइयां, वाणिज्यिक इकाइयां लगाई जा सकती है। इस तरह से कुल मिलाकर के आप चाहें तो इसका लाभ ले सकते हैं। इसके लिए हमने पहले भी कहा कि आधार कार्ड, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र और आप के पास पशु हों, इस संबंध में अगर आपके पास प्रमाण है तो आप इसको ऑनलाइन आप कर सकते हैं।
0: ये बातें हुई किसान भाइयों गोवर्धन योजना की और हमारे साथ जानकारी साझा कर रहे थे लातेहार जिला के बरवाडी प्रखंड के प्रखंड पशुपालन पदाधिकारी डॉक्टर प्रमोद कुमार जी। सर, आप स्टूडियो में आए और इस गोवर्धन योजना से संबंधित जानकारियां हमारे किसान भाइयों के साथ साझा की, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
1: नमस्कार
0: जी। हाँ किसान भाई बहन, और अब आइए सुनते हैं भरत सिंह भर्ती के गाए।

0: किसान भाई बहन भरत सिंह भारती के गाए इसी लोकगीत के साथ अब अपने भाई संतोष कुमार को कार्यक्रम किसानवाणी से आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
1: आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम किसानवाणी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

हमारे श्रोता सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम किसानवाणी। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं FM 103 MHz पर। अब से थोड़ी देर में आप सुनेंगे क्रमशः प्रादेशिक समाचार एवं जिले में आजकल हमारे रांची केंद्र से। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा कीजिए।

0: जन जन तक पहुँचे पैगाम, डेंगू में रखें इन बातों का ध्यान।
1: यदि किसी को तेज बुखार, सिर दर्द, आंखों के पिछले हिस्से में दर्द, नाक बहना, उल्टी होना, भूख न लगना जैसे लक्षण दिखें, तो तुरंत अपने चिकित्सक से संपर्क करें। साथ ही प्रत्येक रविवार दिन में 10 बजे 20 मिनट अपने घर के आसपास मच्छरों के प्रजनन को रोकने के लिए आवश्यक उपाय करें। मच्छरों से बचें, घर के आसपास सफाई रखें, पानी की टंकी, गमले, कूलर इत्यादि को साफ रखें, हमेशा मच्छरदानी लगाकर सोएं।
2: तो सुन लो भाई, सुन लो बहना, डेंगू से तुम बच के रहना।
1: वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: घर घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन, आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल। देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।
1: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
2: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
1: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखा पत्र, झारखंड के लिए केंद्रीय छात्रवृत्ति राशि बढ़ाने का किया आग्रह। राज्य में SIR के तहत अनमैप्ड मतदाताओं की संख्या घटकर हुई 14,02,262। आगामी 5 अगस्त को प्रकाशित होगी प्रारूप सूची। JPSC परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के खिलाफ रांची में छात्रों का प्रदर्शन, CBI जांच की मांग को लेकर लोकभवन का किया घेराव। कृषि मंत्री शिल्पीनेहा तिर्की ने राज्य में मक्का की 65% बुआई पर जताया संतोष। मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए रांची, जमशेदपुर और देवघर में खुलेंगे मिलेट कैफे। और देवघर श्रावणी मेले के पहले दिन 80,000 कांवरियों ने किया जलाभिषेक। अब से थोड़ी देर बाद भव्य ड्रोन शो और मातृत्व विश्राम गृह का होगा शुभारंभ। और अब समाचार विस्तार से। संसद ने राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है, जिसका उद्देश्य वंदे मातरम को राष्ट्रगान जनगण मन के समान वैधानिक संरक्षण देना है। इसके तहत वंदे मातरम का अपमान करने पर 3 वर्ष तक की कैद या जुर्माने का प्रावधान है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि यह विधेयक देश की सांस्कृतिक विरासत और स्वतंत्रता संग्राम के आदर्शों को मजबूती देगा।
1: यह विधेयक राष्ट्र गौरव का विधेयक है। यह किसी राज्य के खिलाफ नहीं है, किसी व्यक्ति या किसी विचारधारा के खिलाफ नहीं है। और जब राष्ट्रगान हो तो उसके साथ साथ राष्ट्रगीत का भी गायन हो। अब एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए संपूर्ण वंदे मातरम चाहिए।
0: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर केंद्रीय छात्रवृत्ति राशि बढ़ाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति की 370 करोड़ की मांग के मुकाबले केंद्र ने महज 58 करोड़ रुपए जारी किए हैं। श्री सोरेन ने बताया कि ST वर्ग को इस वर्ष कोई राशि नहीं मिली और अल्पसंख्यकों का फंड 2021-22 से रुका है। उन्होंने शिक्षा बाधित होने से बचाने के लिए केंद्रीय अंशदान बढ़ाने का आग्रह किया है। नगर विकास मंत्री सुदिव्य कुमार और गिरिडीह उपायुक्त रामनिवास यादव ने आज नगर भवन में दिव्यांगों के बीच 150 आधुनिक ट्राईसाइकिल का वितरण किया। लाभुकों को संबोधित करते हुए दिव्यांगों की सेवा ही नारायण सेवा है और सरकार का लक्ष्य अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंचाना है।
2: नर्मल अगर दिव्यांग की सेवा हो सके, इससे बड़ी नारायण की सेवा नहीं हो सकती है। कि जो लोग अपने से चलने फिरने के लिए मोहताज थे, आज उनके पास एक चलने फिरने का साधन है। और मैं उम्मीद करता हूँ जिला प्रशासन की इस पहल से हमारे दिव्यांग भाइयों का जीवन थोड़ा आसान होगा। और उनसे भी आग्रह रहेगा कि आपकी चीज है, आप अच्छे से रखेंगे तो ज्यादा दिन तक आपको सेवा मिलेगी।
0: राज्य में 5 अगस्त को SIR के तहत प्रारूप मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी, जिसके बाद छूटे हुए पात्र नागरिक नाम जुड़वाने के लिए फॉर्म 6 भर सकेंगे। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि अब केवल 5.3% यानी 14,02,262 मतदाता ही अनमैप्ड श्रेणी में बचे हैं। JPSC और JSSC में कथित अनियमितताओं और छात्रवृत्ति की मांग को लेकर आजसू छात्र संघ ने आज रांची में लोकभवन का घेराव किया। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को लोकभवन से पहले ही बैरिकेडिंग लगाकर रोक दिया, जहां छात्रों ने सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। आजसू विधायक लंबोदर महतो ने परीक्षाओं की CBI जाँच कराने की मांग की है।
3: JPSC जैसे प्रकरण में जो अनियमितता बरती गई है, सरकार इसकी CBI जांच करावे और जो करोड़ों रुपए का लेन देन के मामला है, निश्चित रूप से ED से भी उसको जांच कराने का काम करे। आगे का रुख हम लोगों का सड़क पर उतर चुके हैं, सड़क पर उतर के आंदोलन हम लोग प्रारंभ कर चुके हैं। आगामी 10 अगस्त को हम लोग विधानसभा घेराव का भी काम करेंगे और निश्चित रूप से सरकार को बाध्य करेंगे कि आप CBI जांच करने का काम करो।
0: PMO के संयुक्त सचिव प्रदीप कुमार श्रीवास्तव ने आज खूंटी में पद्मभूषण कड़िया मुंडा से मुलाकात कर PM केयर्स फंड के कार्यों पर चर्चा की। उन्होंने बताया कि फंड में अब तक 19,013 करोड़ रुपए से अधिक की राशि प्राप्त हुई है, जिससे अनाथ बच्चों और कैंसर पीड़ितों को आर्थिक व स्वास्थ्य सुरक्षा दी जा रही है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताज़ा समाचार एक्स हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं।

0: हैं। शेष समाचार इस विराम के बाद।
1: जहाँ जुनून मिलेगा इतिहास से, वहाँ लिखा जाएगा एक नया अध्याय। बिरसा मुंडा की धरती पर अब रचा जाएगा इतिहास।
2: माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में पहली बार झारखंड की राजधानी रांची बनने जा रही है एशिया के सबसे पुराने फुटबॉल टूर्नामेंट डुरंड कप 2026 टीम में इस बार।
1: 26 जुलाई से 16 अगस्त तक मोराबादी स्थित बिरसा मुंडा स्टेडियम बनेगा फुटबॉल का नया रण क्षेत्र। जमशेदपुर एफसी सहित देश की दिग्गज क्लब टीमें और विदेशी टीमें मैदान में उतरेंगी। लीग मुकाबलों के साथ होगा एक रोमांचक क्वार्टर फाइनल भी।
2: गोल, गौरव और झारखंड की मेजबानी।
1: तो अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर आइए और बनिए हिस्सा इस ऐतिहासिक सफर का।
2: मैच का आनंद लेने के लिए 22 जुलाई से 16 अगस्त के बीच टिकट काउंटर से अपना फ्री टिकट लेना ना भूले। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
0: प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने राज्य में कृषि विभाग की समीक्षा करते हुए मक्का की 65% से अधिक बुआई पर संतोष व्यक्त किया और बीज उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने झारखंड मिलेट मिशन के तहत 22,700 से अधिक किसानों के पंजीकरण की समीक्षा की और रांची, जमशेदपुर एवं देवघर में आधुनिक मिलेट कैफे स्थापित करने के निर्देश दिए। खूंटी में भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एसीबी की टीम ने महिला थाना प्रभारी सपना सुलेखा को 50,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। एसीबी रांची के अनुसार थाना प्रभारी ने एक मामले में राहत दिलाने के एवज में शिकायतकर्ता से 4.5 लाख रुपए की मांग की थी, जिसकी पहली किस्त लेते हुए आज उन्हें दबोचा गया। सरायकेला पुलिस की एसआईटी ने अंतर जिला बाइक चोर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 3 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक मनोज स्वर्गियारी ने आज प्रेस वार्ता में बताया कि आरोपियों की निशानदेही पर चोरी की 5 मोटरसाइकिलें बरामद की गई हैं।
3: एक एसआईटी का गठन किया गया, त्वरित कार्रवाई करते हुए मोटरसाइकिल को बरामद करते हुए 3 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। उनके निशानदेही पे और 4 मोटरसाइकिल बरामद हुआ है, डिटेल देंगे ताकि उसका जो ओनर है वो लोग संपर्क करे। फिलहाल अनुसंधान हम लोग का जारी है।
0: देवघर श्रावणी मेले के पहले दिन आस्था का जनसैलाब उमड़ पड़ा है, जहां अब तक करीब 80,000 कांवरियों ने बाबा वैद्यनाथ पर जलाभिषेक किया। हमारे संवाददाता ने बताया कि पूरी बाबा नगरी बोलबम के जयकारों से गूंज उठी है।
4: देवघर में आज श्रावणी मेले के पहले दिन ही बाबा वैद्यनाथ धाम की आस्था का जन सैलाब उमड़ पड़ा है। जिला प्रशासन के अनुसार अब तक करीब 80,000 कांवरियों ने बाबा वैद्यनाथ का पावन जलाभिषेक किया। भीड़ प्रबंधन सुरक्षा को लेकर उपायुक्त और एसपी खुद मोर्चा पर डटे रहे। आधुनिक एवं सुविधाओं के 3 बड़े कार्यक्रम होने जा रहे हैं। आरएल सराफा मुख्य उच्च विद्यालय में हाई स्कूल परिसर में हाईटेक मीडिया सेंटर का उद्घाटन किया जा रहा है। ठीक इसके बाद शिवलोक परिसर में ड्रोन से का शुभारंभ किया जाएगा, जो कांवड़ियों के लिए आकर्षण का केंद्र होगा। आशीष कुमार, कम्बस्ट, आकाशवाणी समाचार, देवघर।
0: और अब मौसम का हाल। राज्य में बारिश की कमी का विचलन घटकर 25% पर आ गया है, जिससे राज्य धीरे धीरे सामान्य मॉनसून की ओर बढ़ रहा है। मौसम विभाग के अनुसार 1 जून से 30 जुलाई तक राज्य में 372.6 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेल 2026 में भारत के स्टार जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने 5वें स्थान पर रहकर पुरुषों के भाला फेंक स्पर्धा के फाइनल में प्रवेश कर लिया है। नीरज के अलावा भारत के 2 अन्य एथलीटों यशवीर सिंह और रोहित यादव ने भी शानदार प्रदर्शन करते हुए मेडल राउंड के लिए क्वालिफाई कर लिया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखा पत्र, झारखंड के लिए केंद्रीय छात्रवृत्ति राशि बढ़ाने का किया आग्रह। राज्य में एसआईआर के तहत अनमैप्ड मतदाताओं की संख्या घटकर हुई 14,02,262। आगामी 5 अगस्त को प्रकाशित होगी प्रारूप सूची। जेपीएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के खिलाफ रांची में छात्रों का प्रदर्शन। सीबीआई जांच की मांग को लेकर लोकभवन का किया घेराव। कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने राज्य में मक्का की 65% बुआई पर जताया संतोष। मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए रांची, जमशेदपुर और देवघर में खुलेंगे मिलेट कैफे। और देवघर श्रावणी मेले

0: के पहले दिन 80,000 कांवरियों ने किया जलाभिषेक। अब से थोड़ी देर बाद भव्य ड्रोन शो और मातृत्व विश्राम गृह का होगा शुभारंभ। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सुबह 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: प्रस्तुत है जिले में आजकल।

0: अंक में आप सुनेंगे सिमडेगा जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। रिपोर्ट के साथ हमारे सिमडेगा संवाददाता।
1: सिमडेगा के व्यवहार न्यायालय में जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से विशेष जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में मोटर दुर्घटना से संबंधित दावा याचिका, निःशुल्क कानूनी सहायता, साइबर अपराध, बाल विवाह, आशा एवं जागृति योजना आदि की जानकारी दी गई। कार्यक्रम में वाहनों का बीमा कराने पर विशेष जोर दिया गया। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजीव कुमार सिन्हा ने कहा कि
2: बिना इंश्योरेंस के कोई गाड़ी नहीं चले, इसके लिए मैंने डीटीओ साहब को भी निर्देशित किया है कि आप इस बात को सुनिश्चित करें कि पूरे जिले में एक भी गाड़ी ऐसी न हो जो कि इंश्योरेंस के बिना चले। इससे जो परेशानी होती है वाहन मालिक को बहुत ही ज्यादा है। अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो उनको इतना मुआवजा देना पड़ जा सकता है, उनके सामर्थ्य से बाहर है। गाड़ी खरीदना अलग बात है, लेकिन मुआवजा देने की कैपेसिटी एक मोटरसाइकिल वाले के पास, एक छोटा सा ऑटो चलाने के पास नहीं रहती।
1: सिमडेगा जिले में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों के लिए काफी फायदेमंद साबित हो रही है। सिमडेगा के सदर अस्पताल में आने वाले 70% से अधिक मरीज आयुष्मान कार्ड के माध्यम से इलाज करा रहे हैं। योजना के सिमडेगा समन्वयक दीपक कुमार ने बताया कि
3: सिमडेगा में बहुत सारे गरीब लोग हैं जिनका इलाज सदर अस्पताल में होता है, और जिला में एकमात्र ऐसा अस्पताल है जहां पर सभी बीमारियों का इलाज होता है। लोग ऐसा भी सक्षम नहीं है कि बाहर जाकर इलाज करा पाए। सरकार द्वारा कल्याणकारी योजनाएं हैं, आयुष्मान कार्ड, अबुआ कार्ड, दोनों कार्ड से लाभ लोगों को मिल रहा है। दूर दराज से लोग आते हैं, बहुत सारे गंभीर बीमारियों से ग्रसित होकर आते हैं जो बाहर जाकर इलाज नहीं करा पाएंगे पैसा के अभाव के कारण। सदर अस्पताल में वो फैसिलिटी अभी है हमारे पास में, अभी पेशेंट एडमिट होते हैं 70-80% लोग हमारे आयुष्मान से इलाज कराते हैं। आयुष्मान कार्ड आने के बाद में लोगों का इलाज होने लगा, आयुष्मान कार्ड से ऑपरेशन सारे होने लगे हमारे अस्पताल में, सब सारी बीमारियों का लगभग इलाज होने लगा, के कारण से लोगों का पैसा बच रहा है। जिले में इस तरह से कार्य अच्छा हो रहा है, हम लोग को भी अच्छा लगता है कि लोग स्वस्थ हैं।
1: 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस के अवसर पर सिमडेगा वासियों ने इस युद्ध के वीर सैनिकों को नमन किया। इस युद्ध में अदम्य साहस और वीरता का परिचय देने वाले सिमडेगा निवासी नायब सूबेदार राम रतन महतो ने बताया कि
4: मेरा नाम राम रतन महतो है। 18 वर्ष में फर्स्ट पोस्टिंग हुआ, उसके बाद फर्स्ट लड़ाई लड़े सियाचिन ग्लेशियर में और सेकंड लड़ाई लड़े कारगिल में। हिम्मत के साथ युद्ध हुआ, आमने सामने लड़ाई हुआ। मैं 29 आदमी को मारा 18 जून को, उसमें हमको सेना मेडल मिला है।
1: भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर सिमडेगा जिले में विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के तहत मतदाता गणना प्रपत्रों के डिजिटाइजेशन का कार्य 100% पूरा कर लिया गया है। तय तिथि से पहले ही यह कार्य पूर्ण हो जाने पर जिला प्रशासन ने इस कार्य में शामिल सभी कर्मियों को इस उपलब्धि की बधाई दी है। मनोज कुमार सिन्हा, मनु, आकाशवाणी समाचार, सिमडेगा।
0: अभी आप सुन रहे थे सिमडेगा जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट पर आधारित कार्यक्रम जिले में आजकल।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे हमारे आकाशवाणी के रांची केंद्र का प्रसारण। FM 103 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये डाल्टनगंज केंद्र है। प्रस्तुत है फिल्मी गीतों का प्रोग्राम एक रंग। कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार।

आज का ये प्रोग्राम हम केंद्रित कर रहे हैं पार्श्व गायक सोनू निगम को, और सोनू निगम का जन्मदिन है। ये विशेष प्रोग्राम सोनू निगम भारत के बेहद लोकप्रिय और बहुमुखी पार्श्व गायक हैं। इनका जन्म आज ही के दिन यानी 30 जुलाई 1973 को हुआ था। इनका जन्म फरीदाबाद हरियाणा में हुआ था। पिता का नाम अगम कुमार। सोनू ने मात्र 3 साल की उम्र में अपने पिता के साथ मंच पर गाना शुरू कर दिया था। वह शादियों और पार्टियों में मोहम्मद रफ़ी के गाने गाया करते थे। 19 वर्ष की उम्र में वह संगीत में अपना करियर बनाने के लिए मुंबई आ गए। उन्होंने दूरदर्शन के धारावाहिक तलाश जो 1992 में आई थी, फिल्म आजा मेरी जान 1993 में अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत की थी। सारे गामा में होस्ट किया था इन्होंने। साल 1995 में टीवी शो सारे गामा को होस्ट करके उन्हें घर घर में पहचान मिली, और पहला ब्रेक 1997 में आई फिल्म बॉर्डर का गाना संदेश आते हैं से उन्हें मिला, और बॉर्डर में अन्य भी गाने गाए हैं। पहचान फिल्म परदेश का गाना ये दिल दीवाना है, और उनके पॉप एल्बम दीवाना ने उन्हें सबसे चहेता सिंगर बना दिया है। तो प्रोग्राम का जो है शुरुआत हम कर रहे हैं बॉर्डर फिल्म के गाने से, और बातें करेंगे इनसे संबंधित। तो आइए सुनते हैं ये बॉर्डर फिल्म का ये खूबसूरत सा गीत।

आप सुन रहे थे फिल्मी गीतों का प्रोग्राम एक रंग, और एक रंग कार्यक्रम केंद्रित है पार्श्व गायक किशोर निगम पर। आज इनका जन्मदिन है, आकाशवाणी की ओर से उन्हें ढेर सारी शुभकामनाएं। अब आइए सुनते हैं कार्यक्रम उजाले की ओर, और इस प्रोग्राम में हम आपको सुना रहे हैं आनंद कुमार की वार्ता। विषय है संपूर्ण

0: ग्रामीण रोजगार योजना का उद्देश्य
1: ग्रामीण रोजगार योजना का उद्देश्य भारत सरकार ने ग्रामीण गरीबों को लाभकारी रोजगार और भोजन प्रदान करने के लिए संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना की शुरुआत की है। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, जिसको हम SGRY के नाम से भी जानते हैं, भारत के ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के विकास की योजना है। पहले भारत में ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत ग्रामीण क्षेत्र में मजदूरी रोजगार सृजन से संबंधित दो अलग अलग योजनाएं थी। ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए मजदूरी रोजगार सृजन के लिए इम्प्लॉयमेंट एश्योरेंस स्कीम EAS और जवाहर ग्रामीण ग्राम समृद्धि योजना JGSY योजनाएं थी। दोनों कार्यक्रमों EAS और JGSY ने ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। योजनाओं के बेहतर कामकाज को सुनिश्चित करने के लिए वर्ष 2001 में दोनों को एक साथ जोड़ दिया गया था और इसका परिणाम ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत नए बेहतर वेतन रोजगार कार्यक्रम के रूप में संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना का उदय हुआ। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना का अनुमानित वार्षिक व्यय 10,000 करोड़ है। इसके तहत हर साल राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के अधिकारियों को लगभग 70,00,000 टन अनाज की पूर्ति की जाती है, जिसकी कीमत 7,000 करोड़ रुपए है। बची हुई धनराशि का उपयोग सैलरी पेमेंट और अन्य नगद आवश्यकताओं के उद्देश्य के लिए किया जाता है। इस योजना का प्राथमिक उद्देश्य ग्रामीण श्रमिकों को पूरक मजदूरी रोजगार देना, जिसमें खाद्य सुरक्षा प्रदान करना और ग्रामीण क्षेत्रों में पोषण स्तर में सुधार करना है। योजना का द्वितीय उद्देश्य टिकाऊ सामुदायिक संपत्ति का निर्माण और ग्रामीण बुनियादी ढांचे का विकास है। डिस्ट्रिक्ट पंचायत, पंचायत यूनियन और विलेज पंचायत के बीच 20:30:50 के अनुपात में बांटा गया है। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना SGRY के उद्देश्यों को हम प्रकार से वर्णित कर सकते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में अतिरिक्त एवं अनुपूरक मजदूरी रोजगार उपलब्ध कराना, हमारे देश के सभी ग्रामीण क्षेत्रों में खाद्य सुरक्षा प्रदान करना और पोषण स्तर में सुधार करना है। ग्रामीण क्षेत्रों में टिकाऊ समुदाय सामाजिक और आर्थिक संपत्ति का निर्माण और इंफ्रास्ट्रक्चर विकास SGRY का एक माध्यमिक उद्देश्य है। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार की विशेषताएं हैं। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना कार्यक्रम पंचायत राज्य संस्था PRI के माध्यम से क्रियान्वित किया जाता है। योजना के तहत धन और खाद्यान्न पंचायत राज संस्थानों PRI के सभी 3 स्तरों के लिए उपलब्ध होता है, जिसमें जिला पंचायत, मध्यवर्ती पंचायत, ग्राम पंचायत। एक जिले में जिला पंचायत, मध्यवर्ती पंचायत और ग्राम पंचायत के बीच संसाधनों का वितरण 20:30:50 के अनुपात में किया जाता है। प्राकृतिक आपदाओं से उत्पन्न गंभीर संकटों के समय या बाढ़ प्रभावित या लंबे समय से सूखे ग्रामीण क्षेत्रों में निवारक उपाय करने के लिए उपयोग करने के लिए खाद्यान्न और SGRY संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के तहत 5% धनराशि मंत्रालय में रखी जाती है। SGRY के लाभार्थी। SGRY उन सभी ग्रामीण गरीबों के लिए उपलब्ध है जिन्हें मजदूरी रोजगार की आवश्यकता है। यह कार्यक्रम उन लोगों की मदद करता है जो अपने गांव के आसपास शारीरिक और अकुशल काम करना चाहते हैं। कार्यक्रम प्रकृति से स्वलक्षित मजदूरी रोजगार प्रदान करते समय व्यक्तियों को वरीयता दी जाती। कृषि मजदूरी अर्जक एग्रीकल्चर वेजेस अर्नर, गैर कृषि अकुशल मजदूरी अर्जक नॉन एग्रीकल्चर अनस्किल्ड वेज अर्नर्स, सीमांत किसान, मार्जिनल फार्मर, आपदाओं के कारण प्रभावित व्यक्ति, महिलाएं, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य, बाल श्रम के माता पिता खतरनाक व्यवसाय से हट गए, विकलांग बच्चों के माता पिता, विकलांग माता पिता के वयस्क बच्चे जो मजदूरी रोजगार के लिए और काम करने के लिए इच्छुक। ये जितने भी हमने टॉपिक बताया ये हमारे SGRY के लाभार्थी। SGRY योजना के तहत धान और गेहूं का वितरण। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना एक केंद्र प्रायोजित मजदूरी रोजगार योजना है। इस योजना के लिए 75% नगद घटक केंद्रीय हिस्से के रूप में और 25% राज्य के हिस्से के रूप में मिलती है। खाद्यान्न सहायता केंद्र सरकार द्वारा प्रदान की जाती है। खाद्यान्न का भुगतान ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा FCI को किया जाता है। परिवहन और हैंडलिंग शुल्क का भुगतान राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। रोजगार और मजदूरी। इस योजना के तहत मजदूरी के हिस्से के रूप में प्रति श्रमिक न्यूनतम 5 किलो खाद्यान्न प्रदान किया जाता है। मजदूरी का शेष भुगतान

नकद में किया जाता है। न्यूनतम 25% मजदूरी का भुगतान नकद में किया जाता है। राज्य सरकार द्वारा खाद्यान्न की लागत BPL दरों या APL दरों या दोनों के बीच कहीं भी निकाली जाती है। उपलब्ध धनराशि में क्षेत्र की आवश्यकता के रूप में कार्य किया जाता है। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के तहत सूचीबद्ध कार्य। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना कार्यक्रम के तहत ड्यूरेबल प्रोडक्टिविटी कम्युनिटी एसेट के निर्माण के लिए सभी कार्य किए जा सकते हैं। निम्नलिखित कार्यों को प्राथमिकता दी जाती है। स्वर्ण जयंती ग्रामीण ग्राम स्वरोजगार योजना के लिए आधारभूत संरचना सहायता सपोर्ट। ग्राम पंचायत क्षेत्र में कृषि गतिविधियों को समर्थन देने के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचा। शिक्षा के लिए सामुदायिक आधारभूत संरचना जिसमें किचन सेड स्वास्थ्य और आंतरिक और साथ ही लिंक सड़कें सामाजिक आर्थिक सामुदायिक संपत्ति। गाद निकालना पारंपरिक गांव के तालाब या तालाबों का जीर्णोद्धार करना। BPL श्रेणी के अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए कार्य भी हम GRY संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के तहत किया जाता है। जैसा लेख किया गया है जिला पंचायत और इंटरमीडिएट पंचायत को जारी किए गए संसाधनों का 22.5% BPL श्रेणी के अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए व्यक्तिगत या समूह कार्यों के लिए उपयोग किया जाता है। ऐसे कार्यों की सूची कुछ इस प्रकार है। अधिशेष भूमि भूदान भूमि सरकारी भूमि का विकास सामाजिक वाणिज्यिक कार्य जैसे कि अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति समुदाय में संबंधित निजी भूमि पर ईंधन की लकड़ी और चारा वृक्षारोप कृषि बागवानी बागवानी फूलों की खेती गरीबी रेखा से नीचे BPL के अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति से संबंधित निजी भूमि पर वृक्षारोपण। किसी भी स्वरोजगार कार्यक्रम के लिए वर्कशेड या आधारभूत संरचना। सिंचाई के लिए खुले सिंचाई के कुएं या बोरवेल से संबंधित कार्य तालाब की खुदाई या पुनः उत्खनन कार्य अन्य स्थायी आय उत्पन्न करने वाली संपत्तियां। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना SGRY से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें। फरवरी 2006 के बाद केवल सबसे महत्वपूर्ण बिंदु संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना SGRY 25 सितंबर 2001 को EAS और JGSY जवाहर ग्रामीण समृद्धि योजना की चल रही योजनाओं को मिलाकर शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में टिकाऊ सामुदायिक संपत्ति के निर्माण के साथ साथ अतिरिक्त मजदूरी रोजगार और खाद्य सुरक्षा प्रदान करना था। वार्षिक परिव्यय 10,000 करोड़ रुपए था जिसमें खाद्यान्न पर 50 लाख टन शामिल था। केंद्र और राज्यों के बीच 25-75:25 के अनुपात में नगद घटक साझा किया गया। राज्य संघ राज्य क्षेत्रों को खाद्यान्न निशुल्क प्रदान किया गया। कम से कम 5 किलो अनाज और कम से कम 25% मजदूरी के मिश्रण के माध्यम से श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी का भुगतान नगद में किया जाता है। पंचायती राज संस्थाओं के 3 स्तरों द्वारा कार्यान्वित होता है। पंचायत का प्रत्येक स्तर कार्रवाई के निरूपण के लिए एक स्वतंत्र इकाई होती है। जिला पंचायतों मध्यवर्ती पंचायतों और ग्राम पंचायतों के बीच 20:30:50 के अनुपात में संसाधनों का वितरण किया जाता है। किसी भी कार्य के निष्पादन के लिए ठेकेदारों को नियुक्त करने की अनुमति नहीं है और योजनाओं के तहत कार्यों के निष्पादन के लिए भी किसी भी बिचौलिए मध्यवर्ती एजेंसियों को नहीं लगाया जा सकता है। अगर हम संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना की बात करें और अगर हम उसके कंक्लूजन की बात करें तो अप्रैल 1989 को भारत सरकार द्वारा रोजगार आश्वासन योजना एवं जवाहर ग्रामीण समृद्धि योजना को मिलाकर संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना का शुभारंभ किया गया था। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के माध्यम से देश के गरीब नागरिकों को भोजन एवं रोजगार प्रदान किया जाता है। इसके अलावा नागरिकों को खाद्य पदार्थ भी इस योजना के अंतर्गत मुहैया कराए जाते हैं। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना का उद्देश्य संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना को भारत सरकार द्वारा वर्ष 1989 में आरंभ किया गया था। इस योजना को रोजगार आश्वासन योजना एवं जवाहर ग्रामीण समृद्धि योजना को मिलाकर बनाया गया था। सरकार द्वारा इस योजना के अंतर्गत ग्रामीण

0: गरीबों को भोजन एवं रोजगार प्रदान किया जाता है। इसके अलावा गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे नागरिकों को मजदूरी एवं खाद्य धन प्रदान किया जाता है। वर्ष 2016 में संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना को महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के अंतर्गत मिला दिया गया था। इस योजना का संचालन पहले जिला पंचायत एवं ग्राम पंचायत के माध्यम से किया जाता था। इस योजना के माध्यम से लाभार्थियों को 100 दिन का गारंटीकृत रोजगार प्रदान किया जाता है। राज्य सरकार द्वारा इस योजना के संचालन में 20% राशि खर्च की जाती है एवं केंद्र सरकार द्वारा इस योजना के संचालन में 80% राशि खर्च की जाती है। अगर हम इसके उद्देश्य की बात करें तो जैसा मैंने पहले भी बताया और मैं इसको कंक्लूड करते हुए इस पे एक बार फिर से प्रकाश डालूंगा, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना का उद्देश्य ग्रामीणों को नागरिकों को रोजगार प्रदान करना है। इसके माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में खाद्य सुरक्षा और पोषण में भी सुधार किया जाता है। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में टिकाऊ समुदाय सामाजिक आर्थिक संपत्ति और ढांचागत विकास का निर्माण करना भी है। यह योजना देश के नागरिकों के जीवन के स्तर को सुधारने में कारगर साबित होगी। इसके अलावा यह योजना प्रदेश के नागरिकों को सशक्त एवं आत्मनिर्भर भी बनाएगी। सरकार द्वारा अब इस योजना को महात्मा गांधी नरेगा योजना से जोड़ दिया गया है। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के अंतर्गत प्रदान किए जाने वाले कार्य, जैसा मैंने पहले भी बताया, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के अंतर्गत किए जाने वाले कार्य हैं, जिसको हम एक बार फिर से कंक्लूड करते हैं। स्वर्ण जयंती ग्रामीण रोजगार योजना के लिए आधारभूत संरचना सहायता, ग्राम पंचायत क्षेत्र में कृषि गतिविधियों को समर्थन देने के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचा, स्वास्थ्य शिक्षा के लिए सामुदायिक बुनियादी ढांचा जिसमें किचन सेट और अतिरिक्त आंतरिक लिंक सड़कें शामिल हैं, यानी गाँव को मुख्य सड़क से जोड़ने वाली सड़कें भले ही मुख्य सड़क पंचायत क्षेत्र के बाहर ही क्यों न हो। सामाजिक आर्थिक सामुदायिक संपत्ति, पारंपरिक गाँव के तालाब या तालाबों का जीर्ण उद्धार और गाद निकालना। अंत में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी SGRY योजना के अंतर्गत है, जिसको मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के अंतर्गत मजदूरी का भुगतान लाभार्थियों को आंतरिक रूप से नगद, आंशिक रूप से खाद्य धन में किया जाता है। इस योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को प्रदान की जाने वाली मजदूरी अधिकारियों द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी से कम नहीं होगी। मजदूरी के हिस्से के रूप में श्रमिकों के लिए निम्नलिखित न्यूनतम 5 किलो खाद्य धन प्रदान किया जाएगा।
1: उजाला की ओर कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे आनंद कुमार की वार्ता। विषय था संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना का उद्देश्य। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से, शामिल होते हैं अपने आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र के प्रसारण सेवा में, जहां से आप सुनिएगा संसद में हुई कार्रवाई की समीक्षा।

पहली लोकसभा, लेखक हैं पीटीआई भाषा के दीपक रंजन। लोकसभा ने आज राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक पारित कर दिया। इसके प्रावधानों के अंतर्गत राष्ट्रगीत वंदे मातरम के गायन के दौरान किसी भी तरह का व्यवधान या उसका अपमान अपराध माना जाएगा और इसके लिए 3 वर्ष तक की सजा हो सकती है। राष्ट्रगान जन गण मन के साथ ही उसी सम्मान के साथ राष्ट्रगीत वंदे मातरम के गायन को अनिवार्य बनाने वाले राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 को डीएमके समेत विपक्षी दलों के सदस्यों के हंगामे के बीच संक्षिप्त चर्चा के बाद ध्वनिमत से मंजूरी प्रदान कर दी गई। इससे पहले उच्च सदन ने कल विधेयक को मंजूरी प्रदान की थी। प्रदर्शनकारी छात्रों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई और राम मंदिर में चढ़ावा चोरी जैसे मुद्दों को लेकर विपक्ष के हंगामे के बीच विधेयक पर सदन में हुई संक्षिप्त चर्चा का जवाब देते हुए गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि इस विधेयक के पारित होने के बाद राष्ट्रगीत को वही सम्मान मिलेगा जो राष्ट्रगान को मिलता है। उन्होंने कहा कि वंदे मातरम एक भारत श्रेष्ठ भारत और विकसित भारत के संकल्प का प्रतीक है। उन्होंने डीएमके सांसदों की चिंताओं को खारिज करते हुए कहा कि यह विधेयक राष्ट्र गौरव का विधेयक है जो किसी राज्य किसी व्यक्ति और किसी विचारधारा के विरुद्ध नहीं है। इससे पहले डीएमके सांसदों ने सदन में विधेयक पारित किए जाने का विरोध किया। विधेयक पर निचले सदन में हुई संक्षिप्त चर्चा में भाग लेते हुए डीएमके सांसद के कणिमोई ने कड़ा विरोध दर्ज कराया और आरोप लगाया कि सरकार इसके साथ हिंदुत्व के एजेंडे को राष्ट्रीयता के रूप में पेश कर रही है। उन्होंने कहा कि देश के नागरिकों के विरुद्ध है, इस तरह राष्ट्रवाद नहीं थोपा जा सकता। कणिमोई ने विधेयक को संघीय ढांचे के विरुद्ध बताते हुए ये भी कहा कि विभिन्न मुद्दों पर सदन में हंगामे के बीच विधेयक को पारित नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने इसे राज्यों के हितों की और धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ बताया। डीएमके सदस्य ने कहा कि तमिलनाडु और अन्य राज्यों में इसका विरोध हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी के संबित पात्रा ने कहा कि साधारण विधेयक नहीं है। उन्होंने विपक्ष को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि जो राष्ट्र को नहीं समझते वे यहाँ शोर मचा रहे हैं। श्री पात्रा ने कहा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 1950 में संविधान सभा में यह आश्वासन दिया था कि जन गण मन और वंदे मातरम दोनों एक ही रूप से गाए जाएंगे और दोनों के एक ही सम्मान मिलेगा। उन्होंने आरोप लगाया कि 76 वर्ष में कांग्रेस की सरकारों ने एक परिवार को ऊपर रखा, राष्ट्रगीत वंदे मातरम को नहीं। डीएमके के ए राजा ने विधेयक पर अपना संशोधन प्रस्तुत करते हुए कहा कि आज देश और संसद के लिए बहुत खतरनाक दिन है। ये विधेयक मजाक की तरह है। सदन ने उनके संशोधन को खारिज कर दिया और डीएमके समेत विपक्षी सदस्यों के हंगामे के बीच ध्वनिमत से विधेयक को मंजूरी प्रदान कर दी। इसके बाद सदन की बैठक दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। इस विधेयक के अंतर्गत 1971 के मूल अधिनियम में संशोधन का प्रावधान किया गया है। विधेयक के उद्देश्यों और कारणों में कहा गया है कि राष्ट्रगान की तरह राष्ट्रगीत को गाने से जानबूझकर रोकने या किसी सभा में इसके गायन में व्यवधान पैदा करने को एक दंडनीय अपराध बनाने का प्रावधान किया जाता है। इसमें बताया गया है कि 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा था कि वंदे मातरम को जन गण मन के समान ही सम्मान और बराबर का दर्जा दिया जाएगा। विधेयक में राष्ट्रगीत के अपमान के लिए 3 वर्ष तक की सजा या जुर्माना या दोनों सजा के प्रावधान हैं। लोकसभा में विभिन्न मुद्दों पर कांग्रेस समेत विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही बार बार स्थगित की गई। सवेरे 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होने के बाद विभिन्न मुद्दों पर कांग्रेस समेत विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण प्रश्नकाल लगातार 8वें दिन नहीं चल सका और कार्यवाही शुरू होने के कुछ मिनट के भीतर दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। बैठक शुरू होने पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 23वें राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय खिलाड़ियों की उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए उन्हें बधाई दी। इसके बाद अध्यक्ष ने प्रश्नकाल शुरू कराना चाहा, लेकिन विपक्षी सदस्य अपनी मांगें उठाने लगे। कांग्रेस सदस्यों को कल सदन में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के भाषण के दौरान पैदा हुई गतिरोध की स्थिति का मुद्दा उठाते देखा गया। वो दिल्ली में पिछले सप्ताह प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों पर पुलिस कार्रवाई को लेकर गृहमंत्री अमित शाह के बयान की भी मांग दोहराते सुने गए। श्री बिरला ने विपक्षी सदस्यों से प्रश्नकाल बाधित नहीं करने का अपना आग्रह दोहराया। हंगामा नहीं थमने पर उन्होंने कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी। सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे फिर शुरू होने पर पीठासीन सभापति संध्या राय ने आवश्यक दस्तावेज सदन के पटल पर रखवाए। इस बीच विपक्षी सदस्य आसन के बीच करीब आ गए। उनके हाथ में तख्तियां थीं और वे अमित शाह जवाब के नारे लगा रहे थे।
पीठासीन सभापति ने नारेबाजी कर रहे सदस्यों से अपने अपने स्थान पर लौटने का अनुरोध किया, लेकिन हंगामा नहीं थमने पर उन्होंने सदन की कार्यवाही अपराह्न 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। संसद के मानसून सत्र की शुरुआत

0: लेखिका हैं पीटीआई भाषा की मनीषा श्रीवास्तव। राज्यसभा में आज शून्यकाल के दौरान विपक्षी सदस्यों ने नीट परीक्षा प्रश्न पत्र लीक के विरोध में प्रदर्शन कर रहे विद्यार्थियों पर पुलिस के बल प्रयोग के आरोपों को लेकर सदन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान की अपनी मांग सभापति द्वारा अस्वीकार किए जाने पर विरोध जताते हुए बहिर्गमन किया। सदन में आवश्यक दस्तावेज पटल पर रखे जाने के तुरंत बाद विपक्षी सदस्यों ने 20 जुलाई को छात्रों पर हुई पुलिस कार्रवाई के संबंध में गृह मंत्री से सदन में आकर स्पष्टीकरण देने की मांग करते हुए नारेबाजी शुरू कर दी। कांग्रेस के प्रमोद तिवारी ने व्यवस्था का प्रश्न उठाते हुए कहा कि संविधान मंत्रिपरिषद को संसद के प्रति जवाबदेह बनाता है। उन्होंने कहा कि जब छात्रों पर लाठीचार्ज की गई और गोली चलाई गई, तब ये स्वाभाविक मांग है कि गृह मंत्री सदन में आएं और इस पर बयान दें। सभापति सीपी राधाकृष्णन ने व्यवस्था का प्रश्न खारिज कर दिया और शून्यकाल के अंतर्गत लोक महत्व से जुड़े मुद्दे उठाने के लिए सदस्यों से कहा। विपक्षी सदस्यों ने अपनी मांग नहीं माने जाने पर सदन से बहिर्गमन किया। विपक्ष के बहिर्गमन के बाद सदन के नेता और केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि 20 जुलाई से शुरू हुए संसद के मानसून सत्र के दौरान विपक्ष का रवैया नकारात्मक रहा है। उन्होंने विपक्ष के आचरण को गैर जिम्मेदाराना बताते हुए उसकी निंदा की। विपक्ष के बहिर्गमन के बाद सदन में नियत कामकाज जारी रहा और सदस्यों ने शून्यकाल के अंतर्गत लोक महत्व से जुड़े अपने मुद्दे उठाए। भारतीय जनता पार्टी के सुरेंद्र नागर ने वन नेशन वन डिजिटल मेट्रो कार्ड की मांग दोहराते हुए कहा कि इससे यात्रियों को कई तरह की सुविधाएं मिल सकेंगी। उन्होंने कहा कि मेट्रो यात्रियों के लिए हर शहर अपने यहाँ नया मेट्रो कार्ड जारी करता है। ये प्लास्टिक के कार्ड होते हैं और एक शहर का कार्ड दूसरे शहर में नहीं चलता। नागर ने कहा कि इससे पर्यावरण को भी फायदा होगा क्योंकि मेट्रो कार्ड में चिप और एंटीना लगा होने की वजह से इसकी रिसाइकलिंग नहीं हो पाती और इससे कार्बन भी उत्पन्न होता है। डिजिटल मेट्रो कार्ड जारी होने पर यह समस्या नहीं होगी। उन्होंने कहा कि डिजिटल मेट्रो कार्ड मोबाइल फोन से संबद्ध होगा, अतः इसके गुम होने से पूरी बैलेंस राशि का नुकसान नहीं होगा। अभी मेट्रो कार्ड गुम होने से उसकी पूरी बैलेंस राशि भी चली जाती है। कार्ड ब्लॉक भी नहीं किया जा सकता क्योंकि इसकी सुविधा नहीं है। डिजिटल कार्ड होने पर यह समस्या नहीं होगी। आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ने उत्तर प्रदेश के देवरिया में बैतालपुर चीनी मिल का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि मिल करीब 20 साल से बंद पड़ी है, जिससे वहां के लोगों को रोजगार की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों का 1,200 करोड़ रुपए बकाया है और वो इस राशि का इंतजार कर रहे हैं। शून्यकाल में ही घनश्याम तिवाड़ी, प्रकाश चिक बराइक, कणाद पुरकायस्थ, गोविंद भाई लालजी भाई ढोलकिया, रेखा शर्मा, दोरजी छिरिंग लेपचा, बाबूराव निषाद, संजय भाटिया, डॉक्टर के लक्ष्मण, जोगेन मोहन, संगीता यादव, डीएमके के सदस्य एल के सुधीश, बीआरएस के रविचंद्र वद्दी राजू, यूपीपीएल के प्रमोद बोरो, बीजू जनता दल के सुभाषीष खुंटिया ने भी आसन की अनुमति से लोक महत्व से जुड़े अपने अपने मुद्दे उठाए। इसके बाद सदन में प्रश्नकाल भी सामान्य रूप से चला। भोजन अवकाश के बाद उच्च सदन में प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 को चर्चा और पारित करवाने के लिए रखा। उन्होंने कहा कि प्रश्न पत्र लीक रोधी कानून में प्रस्तावित संशोधन इस बात का प्रमाण है कि सरकार परीक्षा प्रश्न पत्र लीक के प्रति कतई बर्दाश्त नहीं करने की नीति पर चल रही है और किसी को भी देश के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। श्री सिंह ने कहा कि सरकार पूरी गंभीरता के साथ ये संशोधन लेकर आई है और सभी पक्षों से मिलने वाले रचनात्मक सुझावों का स्वागत करती है। नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रश्न पत्र लीक मामलों को रोकने के लिए सरकार के विधेयक के भविष्य में कारगर होने पर आशंका जताते हुए एक समयबद्ध वार्षिक परीक्षा कैलेंडर बनाए जाने का सुझाव दिया तथा हाल में हुए छात्र आंदोलन में प्रदर्शनकारियों के खिलाफ ज्यादतियों की न्यायिक जांच कराने की मांग की। उन्होंने कहा कि सरकार ने इस विधेयक में कड़े प्रावधान किए हैं किंतु उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उन्होंने कहा कि फर्क इससे पड़ेगा कि आप परीक्षाएं कैसे कराते हैं और प्रश्न पत्र लीक होने से कैसे रोक पाते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष ने सरकार से सवाल किया कि वो इस समय जो काम कर रही है उसने 2 साल पहले मूल कानून बनाते समय इस काम को क्यों नहीं किया। विधेयक के समर्थन में भारतीय जनता पार्टी के ब्रजलाल ने कहा कि विधेयक ये प्रावधान करता है कि केंद्र एक विशेष एसआईटी का गठन कर सकता है और जांच एजेंसी को केवल 2 माह के अंदर पूरी प्रक्रिया समाप्त करनी है तथा त्वरित आंदोलन अदालत को 3 महीने के भीतर अपना फैसला देना है। उन्होंने उल्लेख किया कि विशेष सरकारी वकील नियुक्त किए जाएंगे जो केवल इस प्रकार के मुकदमे की पैरवी करेंगे और अपील सीधे उच्च न्यायालय की खंडपीठ में की जाएगी तथा उस अपील पर 3 महीने के अंदर फैसला सुनाया जाएगा। जनता दल यूनाइटेड के संजय झा ने कहा कि किसी भी देश के विकास में वहां की शिक्षा व्यवस्था का प्रमुख योगदान होता है। उन्होंने कहा कि विकास के पथ पर भारत आज जिस तरह बढ़ रहा है उसका एक मुख्य कारण यह है कि बीते करीब 12 साल में शिक्षा के क्षेत्र में आमूलचूल बदलाव हुआ है और शिक्षण संस्थानों की संख्या बढ़ी है तथा शिक्षा की गुणवत्ता में भी उल्लेखनीय सुधार हुआ है। उन्होंने कहा कि प्रश्न पत्र लीक होने की समस्या कहीं ना कहीं छात्रों को परेशान करती रही है। समाजवादी पार्टी के रामगोपाल यादव ने कहा कि नए विधेयक में दंड को कठोर किया गया है और सुनवाई के लिए विशेष त्वरित अदालतों के गठन का प्रावधान है। उन्होंने कहा कि दंड बढ़ाने से अपराध कम नहीं होता। पहले परीक्षाओं की जिम्मेदारी राज्य सरकारों के पास हुआ करती थी और तब इस तरह के प्रश्न पत्र लीक के मामले नहीं होते थे। आज पेपर ही 13 भाषा में होते हैं। उन्होंने सलाह दी कि पहले की तरह ही नीट को खत्म कर मेडिकल परीक्षा की जिम्मेदारी राज्यों को सौंप दी जानी चाहिए, जब 15% सीट केंद्र के अधिकार में होती थी। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रफुल्ल पटेल ने कहा कि पिछले कुछ दिन में प्रश्न पत्र लीक मामले और उसके बाद हुए घटनाक्रम से केवल छात्र ही परेशान नहीं हुए बल्कि सरकार को भी पीड़ा हुई है और लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 इसी पीड़ा का परिणाम है। उन्होंने कहा कि सरकार पर संवेदनहीनता का आरोप लगाना ठीक नहीं है। आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ने कहा कि सरकार ने कहा था कि नीट का पेपर लीक होने से 22,80,000 बच्चे प्रभावित हुए हैं, लेकिन जब दोबारा नीट का पेपर हुआ तो 20 लाख बच्चे इसमें बैठे, 2,80,000 बच्चों ने ये परीक्षा नहीं दी, इसके लिए कौन जिम्मेदार है। उन्होंने कहा कि फास्ट ट्रैक अदालतों में बेहिसाब मामले लंबित हैं, ये अदालतें कैसे जल्दी सुनवाई कर पाएंगी। उन्होंने कहा कि कई स्कूलों में लड़कियों के लिए शौचालय नहीं है, कई स्कूलों में शिक्षक नहीं है, कई की इमारत खस्ता हाल है और कई स्कूल बंद हो चुके हैं। शिक्षा पर आखिर सरकार कितना खर्च करती है। उन्होंने प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों पर पुलिस कार्रवाई का जिक्र करते हुए कहा कि इसका आदेश किसने और क्यों दिया। उन्होंने किसी का नाम लिए बगैर कहा कि भाजपा की एक सांसद ने जैन जी के लिए जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया है उन्हें गटर कहा है, उन पर सत्ता पक्ष रोक लगाए अन्यथा यही जैन जी आपको सबक सिखाएगी। चर्चा में राष्ट्रीय जनता दल के मनोज कुमार झा, बीआरएस के रविचंद्र वद्दी राजू, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के जान ब्रिटास, झारखंड मुक्ति मोर्चा की महुआ मांझी और शिवसेना के मिलिंद देवड़ा ने भी हिस्सा लिया। समीक्षा लिखे जाने तक चर्चा जारी थी। अभी आप संसद में आज हुई कार्रवाई की समीक्षा सुन रहे थे।
1: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे हमारे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से संसद में हुई कार्रवाई की समीक्षा। एफएम 103 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये डाल्टनगंज केंद्र है। आइए सुनते हैं फिल्मी गीतों का प्रोग्राम चित्रपट से।

ये कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को संजय सिन्हा का नमस्कार। कार्यक्रम की शुरुआत हम कर रहे हैं विशाल डडलानी और रूप कुमार राठौर की आवाज़ों से। फिल्म का नाम है लंदन ड्रीम।

लंदन ड्रीम फिल्म का गीत भी आप सुन रहे थे विशाल डडलानी और रूप कुमार राठौर की आवाज़ों में। आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए, सुनते हैं सोमिया राव का गाया हुआ गीत, बोल है अब्बास टैरवाला का और संगीतकार है संदीप चौटा। फिल्म का नाम है कृष्णा कॉटेज।

सोमियाराम और सातिम की आवाज़ों में आप सुन रहे थे कृष्णा कार्टेज फिल्म का गीत। लीजिए सुनिए अब मोहित चौहान की आवाज़ के साथ अलीशा चनाई की आवाज़ है, फिल्म है कृष्ण।

गाइड फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में। गीतकार थे शैलेंद्र और संगीतकार सचिन देव बर्मन। अब आइए सुनते हैं आन मिलो सजना फिल्म का गीत लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में। आनंद बख्शी के बोल हैं, संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारे।

नमस्कार, मैं हूं संजय सिन्हा और आप सुन रहे हैं फिल्मी गीतों का प्रोग्राम चित्रपट से। लीजिए सुनिए कार्यक्रम के आखिर में आनंद बख्शी का लिखा हुआ गीत। संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, आवाजें हैं लता मंगेशकर और मुकेश की। फिल्म का नाम है फर्ज।

0: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। संसद ने वंदे मातरम को राष्ट्रगान के समान वैधानिक संरक्षण प्रदान करने वाला विधेयक पारित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया की स्थिति की समीक्षा के लिए मंत्रिमंडल की सुरक्षा समिति की बैठक की अध्यक्षता की। नाविकों सहित लोगों के हितों की रक्षा के लिए एकीकृत व्यवस्था पर बल दिया। दिल्ली सरकार नीट परीक्षा में कथित अनियमितताओं के विरोध प्रदर्शन में शामिल विद्यार्थियों के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करेगी। अमेरिका और ईरान के बीच मिसाइल हमले तेज, पश्चिम एशिया संघर्ष की तत्काल समाधान की उम्मीदें कम हुई। गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में कल मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी। उड़ीसा में बाढ़ की स्थिति गंभीर। राष्ट्रमंडल खेलों में भाला फेंक में नीरज चोपड़ा, रोहित यादव और यशवीर सिंह ने तथा ट्रिपल जंप में प्रवीण चित्रवेल और शिल्वा प्रभु ने फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। संसद ने राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक का उद्देश्य वंदे मातरम को राष्ट्रगान के समान वैधानिक संरक्षण प्रदान करना है। वंदे मातरम के अपमान पर 3 वर्ष तक की कैद, जुर्माना या दोनों सजा हो सकती हैं। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि ये विधेयक देश की सांस्कृतिक विरासत, राष्ट्रीय पहचान और स्वतंत्रता संग्राम के आदर्शों का प्रतिनिधित्व करता है। श्री राय ने कहा कि वंदे मातरम केवल एक गीत नहीं बल्कि ये राष्ट्र की आत्मा की आवाज है।
2: यह विधेयक राष्ट्र गौरव का विधेयक है। यह किसी राज्य के खिलाफ नहीं है, किसी व्यक्ति या किसी विचारधारा के खिलाफ नहीं है। और जब राष्ट्रगान हो तो उसके साथ साथ राष्ट्र गीत का भी गायन हो। अब एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए संपूर्ण वंदे मातरम चाहिए।
1: राज्यसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पर इस समय चर्चा चल रही है। लोकसभा ने विधेयक कल पारित कर दिया था। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने विधेयक पेश किया। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि विधेयक के अंतर्गत जांच 2 महीने के भीतर और आरोप पत्र दाखिल होने के बाद 3 महीने के भीतर मुकदमा पूरा किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि विधेयक देश के विद्यार्थियों और युवाओं के कल्याण की रक्षा के लिए सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है।
3: प्राइम मिनिस्टर मोदी जी लॉस्ट नो टाइम।
4: प्रधानमंत्री मोदी ने बिना समय गवाए घोषणा की है कि छात्रों के भविष्य को खतरे में डालने की अनुमति नहीं दी जाएगी, इसलिए वर्ष 2024 के अधिनियम में संशोधन करने वाला ये विधेयक लाया जा रहा है ताकि इसे अधिक कठोर और प्रभावी बनाया जा सके। यदि इसमें सुधार के लिए कोई सुझाव होंगे तो मैं उनका स्वागत करता हूं और उन पर विचार करूंगा।
3: आई विल बी टेकिंग नोट ऑफ इट।
1: विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि सरकार ने नए विधेयक में केवल दिखावटी बदलाव किए हैं।
5: ज्यादा जुर्माना, कड़ी सजा, स्पेशल टास्क फोर्स, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स जैसे प्रावधान आपने इसमें रखा है, इससे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं। लेकिन ये जो मजबूत कानून लाने के लिए हमने 2024 में ही इसकी मांग रखी थी, लेकिन तब आपने हमारी इस बात को नहीं माना।
1: हमारे संवाददाता ने बताया है कि संसद के दोनों सदनों में आज विधायी कामकाज हुए।
6: आज संसद के दोनों सदनों में विधायी कामकाज हुआ। लोकसभा ने आज राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 को मंजूरी दी। राज्यसभा ने यह विधेयक कल पारित किया था। इस विधेयक को मंजूरी देने के बाद निचले सदन की कार्यवाही कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा में अभी लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा हो रही है, जिसे लोकसभा ने कल मंजूरी दी थी। नीट मुद्दे पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस के कथित कार्रवाई को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण लोकसभा की कार्रवाई एक बार स्थगित करनी पड़ी। इस व्यवधान के कारण निचले सदन में प्रश्नकाल और शून्यकाल नहीं हो पाया। राज्यसभा में प्रश्नकाल और शून्यकाल सुचारू रूप से चले। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया की स्थिति की समीक्षा के लिए आज मंत्रिमंडल की सुरक्षा समिति की बैठक की अध्यक्षता की। श्री मोदी ने नाविकों सहित लोगों के हितों की रक्षा के लिए सभी घटनाक्रमों की नियमित निगरानी के लिए एकीकृत और समन्वित व्यवस्था बनाने को कहा। उन्होंने नाविकों और उनके परिवारों को समय पर सूचना, आपातकालीन सहायता और परामर्श के लिए एक व्यवस्था स्थापित करने का भी निर्देश दिया। बैठक में रबी फसलों के लिए उर्वरकों के वैकल्पिक स्रोतों के उपयोग पर भी चर्चा की गई। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली सरकार नीट परीक्षा में कथित अनियमितताओं के विरोध प्रदर्शनों में शामिल विद्यार्थियों के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करेगी। ये फैसला आपराधिक रिकॉर्ड वाले प्रदर्शनकारियों पर लागू नहीं होगा। ये निर्णय उच्चतम न्यायालय के 28 जुलाई के आदेश के अनुरूप लिया गया है। दिल्ली के गृह मंत्री आशीष सूद ने कहा कि प्रदर्शन की आड़ में हिंसा, तोड़फोड़ या अन्य आपराधिक गतिविधियों में शामिल लोगों के खिलाफ कानून के अनुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
7: भारत सरकार ने पहले ही कहा था कि जो प्रदर्शनकारी छात्र हैं, जो अपना विरोध प्रकट करने आए थे, उनके संदर्भ में कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। मगर ये उन पर जिनके ऊपर पहले से आपराधिक मुकदमे हैं, जिन्होंने हिंसा की है, तोड़फोड़ की है, उन पर लागू नहीं होगा।
1: रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कहा है कि लगभग 17,000 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम अब रक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। श्री सेठ ने बताया कि सरकार का एकमात्र उद्देश्य रक्षा क्षेत्र को स्वदेशी और आत्मनिर्भर बनाना है।
8: संकल्प एयरफोर्स और SIDM के द्वारा, जो आज जितने कहते हैं इंडस्ट्री के लोग, स्टार्टअप के लोग, एक जिद है कि भारत को 2047 विकसित भारत बनाना है। और अभी आपने देखा होगा कैसे 74,000 स्पेयर्स एयरफोर्स के जो इंडिजिनस हो गए।
1: इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय सचिव एस कृष्णन ने कहा है कि सरकार ने देश में सेमीकंडक्टर विनिर्माण मजबूत करने और आत्मनिर्भर सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम बनाने के लिए 1,27,500 करोड़ रुपए के बजट के साथ इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के दूसरे चरण को स्वीकृति दी है। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि इस वर्ष 3 सेमीकंडक्टर इकाइयां पहले से ही वाणिज्यिक उत्पादन शुरू कर चुकी हैं। पर्यटन मंत्रालय और इंडिगो ने अतुल्य भारत पहल को बढ़ावा देने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि भारत के पास एक असाधारण पर्यटन गाथा है, जिसे सरकार और इंडिगो मिलकर दुनिया के सामने पेश कर रहे हैं। बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश की 3 विधानसभा सीटों के लिए आज हुए उपचुनाव शांतिपूर्वक सम्पन्न हो गए। बिहार की बांकीपुर, गुजरात की मंजलपुर और मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीटों पर मतदान हुआ। बांकीपुर में मतदान प्रतिशत 34% से अधिक रहा, जबकि मंजलपुर में 37% और दतिया में 71% से अधिक वोट डाले गए। छत्तीसगढ़ के बस्तर पंडुम 2026 के विजेता परगना मांझी और पद्म पुरस्कार विजेताओं के एक प्रतिनिधि मंडल ने आज राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भेंट की। राष्ट्रपति ने कहा कि बस्तर पंडुम जैसे आयोजनों ने युवाओं को उनकी परंपराओं, रीति रिवाजों और सांस्कृतिक विरासत से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने बताया कि ऐसे आयोजन पर्यटन को बढ़ावा देते हैं और रोजगार के अवसर सृजित करते हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने चेन्नई, कोयम्बटूर, हैदराबाद और मुंबई में वर्ष 2022 में कोयम्बटूर बम धमाकों से जुड़े अवैध धन शोधन मामले में 16 स्थानों में तलाशी अभियान चलाया। फिदायीन आतंकी जमीशा मुबीन और इस्लामिक स्टेट से जुड़े कई आतंकियों की इन हमलों में संलिप्तता पाई गई है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। अमरीका और ईरान ने एक दूसरे पर नए मिसाइल हमलों से व्यापक क्षेत्रीय संघर्ष की आशंका बढ़ गई है और युद्ध विराम की उम्मीदें कम हो गई हैं। अन्य देश भी संघर्ष में शामिल होने की आशंकाएं बढ़ गई हैं। जॉर्डन में एक अमरीकी सैन्य हवाई अड्डे पर ईरान के मिसाइल हमले के बाद ईरान के खिलाफ अमरीका के जवाबी हमलों से क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है। ईरान ने कहा है कि केशम द्वीप पर हुए हमले में 3 लोग मारे गए और 2 अन्य घायल हो गए। पाकिस्तानी सेना की घातक कार्रवाई के बीच पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में विरोध प्रदर्शन जारी है। इस सप्ताह की शुरुआत में शांतिपूर्ण प्रदर्शनों के दौरान पाकिस्तानी सेना की क्रूर कार्रवाई में 40 से अधिक लोगों की मौत हो गई थी। शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच झड़पें तेज हो गई हैं। भारत ने चुनावों को पाकिस्तान द्वारा अपने अवैध कब्जे और क्षेत्र में गंभीर मानवाधिकार उल्लंघनों को छिपाने का प्रयास बताया है। उड़ीसा की महानदी में बाढ़ का पानी लगातार बढ़ रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रभावित जिलों में बचाव राहत कार्य तेज कर दिए गए हैं।
9: उड़ीसा में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है, हालांकि इसके मध्यम स्तर की बाढ़ बने रहने की उम्मीद है। भारी बारिश के कारण महानदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। राजस्व और आपदा प्रबंधन मंत्री सुरेश पुजारी ने आज जाजपुर, भद्रक, बालेश्वर और केंदुझर जिलों में बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया, ताकि बचाव और राहत कार्यों की समीक्षा की जा सके। उन्होंने बताया है कि अब तक 20 जिलों के 7 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। मौसम विभाग ने बरगढ़ जिले के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जबकि झारसुगुड़ा, संबलपुर, सोनपुर, बलांगीर, कलाहंडी, नवापड़ा और नवरंगपुर के लिए येलो चेतावनी लागू है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: मौसम विभाग ने गुजरात में अहमदाबाद, आणंद, सूरत और नवसारी समेत 13 जिलों के लिए मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है।
10: राज्य में भारी बारिश की चेतावनी को देखते हुए गांधीनगर स्थित राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र में अपर मुख्य सचिव डॉक्टर जयंती रवि की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में हाई अलर्ट वाले जिलों की प्रशासनिक तैयारियों का जायजा लिया गया, जबकि आपातकालीन राहत और बचाव कार्यों के लिए भारतीय सशस्त्र बलों की तीनों सेनाओं को भी अलर्ट पर रखा गया है। राज्य सरकार ने संभावित बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के लिए जिला प्रशासन को स्पष्ट निर्देश दिए हैं। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: मौसम विभाग ने कल गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में अत्यधिक मूसलाधार वर्षा के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। अगले दो दिन में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तराखंड, बिहार, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में भी तेज वर्षा की संभावना है। इसी तरह का मौसम पूर्वोत्तर भारत, पंजाब, कोंकण, गोवा, ओडिशा, तेलंगाना, मध्य प्रदेश और राजस्थान के कुछ भागों में अगले 2 से 3 दिन तक रहने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज संसद भवन में अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड के सांसदों से भेंट की। इस दौरान दोनों राज्यों में आई बाढ़ की स्थिति पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार बाढ़ की स्थिति से निपटने में राज्यों की सहायता करना जारी रखेगी। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं मनोज पाठक।
11: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 274 अंक बढ़कर 77,928 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 67 अंक बढ़कर 24,317 दर्ज हुआ। और अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में एक डॉलर की तुलना में रुपया 3 पैसे कमजोर होकर 95.68 रुपए पर बंद हुआ।
1: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री सुरेश गोपी ने कहा है कि पहली जुलाई तक देश में 33 करोड़ 13 लाख घरेलू एलपीजी उपभोक्ता थे। इनमें से 10 करोड़ 58 लाख प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना कनेक्शन शामिल हैं। श्री गोपी ने कहा कि सरकार घरों में किफायती कीमतों पर घरेलू एलपीजी की उपलब्धता सुनिश्चित कर रही है। भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र INSpace ने कहा है कि निजी अंतरिक्ष कंपनियों को किसी भी नियोजित अंतरिक्ष वस्तु की पुनः वापसी के दौरान दुर्घटना जोखिम को न्यूनतम करना होगा। INSpace अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी कंपनियों की सभी गतिविधियों पर नजर रखने वाली एजेंसी है। 2 बार के ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा आज राष्ट्रमंडल खेलों में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा के फाइनल में पहुंच गए। रोहित यादव और यशवीर सिंह ने भी फाइनल में जगह बनाई है। प्रवीण चित्रावेल और सेल्वा प्रभु ने पुरुषों की ट्रिपल जंप स्पर्धा के फाइनल में प्रवेश किया। ताइपे ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स में आज उन्नति हुडा, तन्वी शर्मा और देविका सिहाग ने क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। वहीं अनमोल खरब, तान्या हेमंत और को राउंड ऑफ 16 मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद ने वंदे मातरम को राष्ट्रगान के समान वैधानिक संरक्षण प्रदान करने वाला विधेयक पारित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया की स्थिति की समीक्षा के लिए मंत्रिमंडल की सुरक्षा समिति की बैठक की अध्यक्षता की। नाविकों सहित लोगों के हितों की रक्षा के लिए एकीकृत व्यवस्था पर बल दिया। दिल्ली सरकार ने कहा, नीट परीक्षा विरोध प्रदर्शनों में शामिल लोगों के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। आपराधिक पृष्ठभूमि वाले लोगों को कोई छूट नहीं दी जाएगी। अमेरिका और ईरान के बीच मिसाइल हमले तेज, पश्चिम एशिया संघर्ष की तत्काल समाधान की उम्मीद कम हुई। गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में कल मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी। ओडिशा में बाढ़ की स्थिति गंभीर। और राष्ट्रमंडल खेलों में भाला फेंक में नीरज चोपड़ा, रोहित यादव और यशवीर सिंह ने तथा ट्रिपल जंप में प्रवीण चित्रवेल और शिल्वा प्रभु ने फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
12: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय विद द न्यूज एट 9।

0: सेकंड में अपना गेम पूरा करके दूसरे मकाम पर पहुंचे। इंग्लैंड के केविन ने 10.85 सेकंड में अपना खेल मुकम्मल करके कांसे का तमगा जीता। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने ग्लासगो में जारी दौलत मुश्तरका खेलों में मर्दों के पैरा 100 मीटर T47 मुकाबले में सोने का तमगा जीतने के लिए दिलीप महादो गाविट को मुबारकबाद दी है। इसी के अब आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। पार्लियामेंट ने एक बिल को मंजूरी दी है जिसकी रूह से वंदे मातरम को वही कानूनी तहफ्फुज़ हासिल होगा जो कौमी तराने को हासिल है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मगरबी एशिया की सूरत हाल का जायजा लेने के लिए सलामती से मुतालिक काबीना कमेटी की मीटिंग की सदारत की। उन्होंने मल्लाहों समेत शहरियों के मफादात के तहफ्फुज़ के लिए एक मुत्तहिदा निज़ाम कायम किए जाने पर जोर दिया। दिल्ली सरकार ने कहा है कि वो उन अफराद के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करेगी जिन्होंने नीट एहतजाज में हिस्सा लिया था। अलबत्त मुजरिमाना पस मंजर रखने वालों को कोई तहफ्फुज़ हासिल नहीं होगा। अमरीका और ईरान ने एक बार फिर एक दूसरे पर हमले किए हैं जिससे मगरबी एशिया के तनाज़े के फौरी हल की उम्मीदें मांद पड़ गई हैं। इसी के साथ खबरों का बुलेटिन खत्म हुआ।
1: आज के फनकार ये कार्यक्रम आप सुनेंगे बस थोड़ी ही देर में।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: चंदा मामा दूर के हुए पकाए भूर के।
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: एक जमाना था 1951 या 50 में, बाबूलाल चतुर्वेदी यहाँ प्रोग्राम इंचार्ज दिल्ली से आए।
0: संगीतकार रवि,
2: उन्होंने एक दिन फोन किया, कहने लगे यहाँ हम लोरियां रिकॉर्ड करना चाहते हैं, बना रिकॉर्ड कर दो। तो मेरी माँ अक्सर गाना गा के नहीं, एक लाइन सुना करती, दो लाइन, चंदा मामा दूर के पुए पकाए दूर के। मैंने उसकी ट्यून बना ली, चंदा मामा दूर के पुए पकाए दूर के।
1: आप खाए थाली में, सुनने को थे प्याली में।
0: ऐसी अद्भुत यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

0: नमस्ते दोस्तों, आ गई हूँ मैं आपके रेडियो सखी ममता सिंह लेकर आज के फनकार। आज के फनकार कार्यक्रम में आज बातें उस गायक की जो कभी अपनी नर्मो नाजुक आवाज से आपको लुभाते हैं।
1: तुझे तक तक तक तक रहना, तेरी बक बक बक सुनते रहना।

तो आज है सुरीले गायक सोनू निगम का जन्मदिन। आइए आज के फनकार कार्यक्रम में बातें करें जाने माने गायक सोनू निगम की।

से हीरो तक सफर तय करने वाले सोनू निगम का जन्म 30 जुलाई 1973 को हरियाणा के फरीदाबाद में हुआ था। उनके पिता अगम कुमार दिल्ली के मशहूर स्टेज गायक थे। अपने पिता की उंगली थाम सोनू ने 3 साल की नन्ही अवस्था से ही गायन का सफर शुरू कर दिया। अपने पिता के मार्गदर्शन में ही सोनू निगम ने अपने करियर के आकाश में रंग भरने शुरू किए। दिल्ली की बर्थडे पार्टियों और विवाह समारोहों में गाना गाने से लेकर हिंदी फिल्मों में सफल पार्श्व गायन तक सफर तय करना सोनू निगम के लिए काफी जटिल और संघर्षमय रहा, लेकिन उनके आत्मविश्वास, लगन और उनकी प्रतिभा ने कामयाबी का बुलंद सितारा बनाया।

सोनू निगम के बचपन के दिन काफी संघर्ष में रहे। उन्होंने 12वीं क्लास तक दिल्ली में पढ़ाई की, उसके बाद पत्राचार माध्यम से पढ़ा और शास्त्रीय गायक उस्ताद गुलाम मुस्तफा खान से संगीत की तालीम ली। दिल्ली के बाद सोनू निगम मुंबई आए और शुरू हुई उनकी जद्दोजहद। शुरुआत में उन्हें कई इम्तिहान से गुजरना पड़ा। उन्होंने कई म्यूजिकल शो में हिस्सा लेकर अपनी गायकी का लोहा मनवाया। बाल कलाकार के रूप में जब उन्होंने सिंगिंग कॉम्पिटिशन में हिस्सा लिया तो उनके पास पुरस्कारों की झड़ी लग गई।

अपने करियर की शुरुआत में सोनू निगम मोहम्मद रफी की आवाज में गाने गाया करते थे। धीरे धीरे वे मोहम्मद रफी की आवाज बन गए थे। टी सीरीज की रफी की यादें नामक एल्बम के लिए सोनू निगम ने मोहम्मद रफी के गीत गाना शुरू किया। टी सीरीज के मालिक गुलशन कुमार ने उन्हें ज्यादा लोगों तक पहुंचाने का अवसर दिया। बतौर पार्श्व गायक सोनू ने अपना पहला गीत गाया फिल्म आजा मेरी जान के लिए। उन्हीं दिनों वे रेडियो के लिए विज्ञापन बनाने लगे। साथ ही 1995 में एक टेलीविजन चैनल के लिए मशहूर कार्यक्रम सारे गामा का संचालन भी शुरू कर दिया। पलक झपकते ही ये कार्यक्रम कामयाबी के परचम लहराने लगा। इसके बाद सोनू निगम को फिल्म बेवफा सनम के लिए गाने का मौका मिला। गाना था

सोनू निगम की सफलता का सितारा जिस फिल्म से चमका वो फिल्म थी बॉर्डर। अन्नू मलिक के संगीत से सजी इस फिल्म का सोनू निगम का गाया गीत हिट हुआ और लोगों के होठों पर सज गया।

1999 में सोनू निगम का नॉन फिल्मी गीतों का एल्बम दीवाना रिलीज हुआ, जिसमें उन्होंने प्रेम गीतों में अपना जलवा दिखाया। मोहब्बत करने वाले जोड़े अपनी मोहब्बत का इजहार दीवाना एल्बम के गीतों से आज भी करते हैं।

नदीम श्रवण के संगीत से सजी फिल्म परदेश का सोनू निगम का ये गाना खूब मकबूल हुआ। ये दिल दीवाना गाने ने लोगों को दीवाना बना दिया।

बाद मोहम्मद रफी की परछाई कहलाने का फैसला सोनू निगम ने बदल दिया और अपनी एक अलग खास पहचान बनाने की कोशिश शुरू कर दी। उनकी हर कोशिश कामयाब रही। उनके गायन का उच्च शिखर आने वाली पीढ़ियों के लिए मिसाल बन गया।

सोनू निगम ने कई भाषाओं में गाने गाए, मसलन कन्नड़, असमिया, बंगाली, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, अंग्रेजी, भोजपुरी, उर्दू, नेपाली, छत्तीसगढ़ी, मलयालम वगैरह वगैरह। कई भाषाओं के साथ ही साथ हर तरह के गाने उन्होंने गाए। हर मिजाज का गाना दिल की धड़कनों तक उतरा। चाहे खुशी भरा पार्टी गीत हो, प्रणय निवेदन करता प्रेम गीत हो, उदास गीत हो या दर्द से रुला देने वाला गीत हो, हर गीत में उनकी आवाज बेमिसाल होती है। दिल को चीर देने वाला गम के सागर में डूबा, फिल्म के दृश्य को आंखों के सामने ला, आंसुओं से सराबोर करता ये गीत सुनिए।

मजबूरियों से हारो मत, उनका डटकर मुकाबला करो। इस फलसफे के साथ सोनू निगम ने करियर के कई आयाम तय किए। शास्त्रीय संगीत का खूब रियाज किया उन्होंने। ये रियाज उनके गायन में खूब झलकता है। अभिनय में भी उन्होंने अपना करियर आजमाया। फिल्म बेताब में वे बाल कलाकार के रूप में पर्दे पर नजर आए थे। बाद में जानी दुश्मन, एक अनोखी कहानी, काश आप हमारे होते और लव इन नेपाल जैसी फिल्मों में नजर आए। फिलहाल सुना जाए ये गाना।

0: जैसे खोया हूँ।
1: सोनू निगम ने कई म्यूजिकल शो में जज बनकर और होस्ट बनकर छोटे पर्दे पर भी अपनी उपस्थिति दर्ज की। उनके स्टेज शोज खूब हिट होते हैं और उन्होंने कुछ फिल्मों में संगीत भी दिया। सोनू निगम को अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। आइए एक नजर डालें। फिल्म कल हो ना हो इस गाने के लिए सोनू निगम को मिला सर्वश्रेष्ठ गायक का राष्ट्रीय और फिल्म फेयर पुरस्कार।

इसके अलावा सोनू निगम को देश विदेश के अनगिनत पुरस्कार मिलते रहते हैं। लंबी फेहरिस्त है उन्हें मिले पुरस्कारों की। आइए सोनू निगम के कुछ मशहूर गीतों पर नजर डालें। ये फिल्म है।

के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था जाने माने पार्श्व गायक सोनू निगम पर। शोध, आलेख और स्वर आपकी रेडियो सखी ममता सिंह का, प्रस्तुति सहयोग आकांक्षा सिंह का, इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता शकील बख्शी। तो अब हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।

0: ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। कुछ ही पलों में होगा कार्यक्रम छाया गीत।
1: दिस इज द दिल्ली स्टेशन ऑफ आकाशवाणी, प्लीज स्टैंड बाय फॉर आवर नेक्स्ट ब्रॉडकास्ट। You will now listen to the proceedings during the question hour in Rajya Sabha today.
2: Now question number 121, Sriman Constantine Ravindran ji.
3: Question number 21.
4: प्रश्न संख्या 121। क्या पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री ये बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने हाल ही के उन अंतर्राष्ट्रीय आकलनों की जांच की है जो ये दर्शाते हैं कि कुनमिंग मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता ढांचे के अंतर्गत पारिस्थितिक तंत्रों के संरक्षण और सतत प्रबंधन में जनजातीय एवं स्थानीय समुदायों के महत्वपूर्ण योगदान को मान्यता देते हुए जैव विविधता संबंधी वित्त पोषण का एक बड़ा हिस्सा प्रत्यक्ष रूप से इन समुदायों को प्रदान किया जा रहा है। ख, जैव विविधता से संबंधित वित्तीय सहायता को पात्र वनवासी एवं जनजातीय समुदायों तक पारदर्शी, जवाबदेह और न्याय संगत रीति से पहुंचाया जाना सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं। ग, ऐसी निधि के उपयोग के संबंध में निर्णय लेने में सामुदायिक भागीदारी हेतु स्थापित संस्थागत तंत्र क्या है। और घ, परिणामों की निगरानी करने तथा प्रभावी संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए क्या रक्षोपाय स्थापित किए गए हैं।
2: ऑनरेबल मिनिस्टर
4: श्री भूपेंद्र यादव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री।
5: माननीय सभापति महोदय, उत्तर सदन के पटल पर रखा
2: है। फर्स्ट सप्लीमेंट्री श्रीमान Constantine Ravindran ji.
3: Thank you, sir. Will the Minister of Environment, Forest and Climate Change be pleased to state whether digital platforms will be introduced for transparent monitoring of biodiversity projects and its implementation? Any institutional mechanism proposed for ensuring greater participation of Gram Sabhas, women and the tribal communities in planning and implementation? Any frequency prescribed for publishing the state-wise and district-wise performance reports? Whether government proposes to establish an integrated coordination mechanism among the ministers dealing with environment, tribal affairs, agriculture, rural development and finance for biodiversity conservation? The expected...
2: Constantine ji, be specific about your question. So okay. Long question, then come to the specific question, please.
5: Okay.
2: Carry on.
3: The monitoring mechanism proposed to prevent duplication of expenditure and improve accountability. Thank you, sir.
6: Sir, the member raised a concern about whether there is any mechanism to giving a profit to a tribal community and other community as per the biodiversity fund is concerned. Sir, I want to submit that India has a well-established domestic access and benefit-sharing mechanism which is under the Biological Diversity Act of 2002 as amended in 2023, supported by the Biological Diversity Rules 2024 and Access Benefit-Sharing Regulation 2025. The present ABS framework provides for fair and equitable sharing of benefit arising from the utilization of biological resources and associated traditional knowledge. It operates through a

0: three-tier institutional structure comprising the National Biodiversity Authority at the national level, State Biodiversity Authority and Biodiversity Council and management committees at local level. Sir, the ABS mechanism has mobilized more than 266 crore, including 21 crore during financial year 25-26, and approximately 153 crore has been disbursed to benefit claimers, including 78.8 crore rupees during financial year 25-26.
1: Second supplementary, Sriman Ashok Rao Sankar Rao Chavanji.
2: Sir, I would like to know from the Honorable Minister whether the Ministry will ensure that biodiversity finance mechanisms under the Kunming Montreal Global Biodiversity Framework specifically reached, particularly vulnerable tribal groups such as the Kolam community, a forest dwelling PVTG found in the Kinwat and Maur forest ranges of Maharashtra, and whether a transport Gram Sabha based participation mechanism in line with the Forest Rights Act 2006 is being institutionalized so that such communities themselves decide how these funds are utilized in their own habitats.
1: Honorable Minister.
0: Sir, the Kunming Montreal Global Biodiversity Framework provides the global roadmap to halt and reserve biodiversity loss by 2030. In alignment with the framework, India submitted its updated National Biodiversity Strategy and Action Plan 24 to 23 to the CBD Secretariat on 31st October plan. It comprised 23 national biodiversity target and supported by 142 national indicators. Sir, India has also established safeguard for transparency and accountability, including statutory oversight by NBA and state biodiversity boards, biodiversity council, maintenance of records of BMC provide biodiversity registers, monitoring of ABS agreements, financial management and audit of biodiversity fund and field level monitoring and conservation activities. Sir, as per the Maharashtra is concerned, 11 crore rupees, the ABS amount sanctioned, including the administrative charges also, and definitely it's providing the benefit the concerned community, which is the question is raised by the particular group. Yes.
1: Also. Third supplementary, Sriman Dr. Ashok Kumar Mittal ji.
3: Environment तथा biodiversity के management में महिलाओं की भागीदारी विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र और आदिवासी क्षेत्रों में अत्यंत महत्वपूर्ण है. Women self help group स्थानीय स्तर पर वन उत्पादों के collection और protection में भी सक्रिय भूमिका निभाते हैं. तो माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि बायोडाइवर्सिटी से जुड़े फाइनेंशियल ग्रांट्स में वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए क्या विशेष प्रावधान किए गए हैं. इसके साथ साथ बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी में महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन बढ़ाने और फॉरेस्ट प्रोटेक्शन से जुड़े निर्णय लेने की प्रक्रिया में उनकी सक्रिय भूमिका सुरक्षित करने के लिए मंत्रालय द्वारा क्या ठोस कदम उठाए गए. धन्यवाद.
1: ऑनरेबल मिनिस्टर.
0: माननीय सभापति महोदय, मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारा जो बायोडाइवर्सिटी का विषय है वह हमारी विकास की प्राथमिकताओं में है. बायोडाइवर्सिटी को सिक्योर करने का अर्थ है फूड सिक्योरिटी को, आजीविका को, इकोलॉजिकल बैलेंस को, हमारे जंगल, हमारे वेटलैंड, हमारे समुद्री तट, रेगिस्तान, घास के मैदान और मैरीन इकोसिस्टम की सुरक्षा करने का विषय है. और निश्चित रूप से जो ग्राम सभाओं का हम गठन करते हैं उसमें महिलाओं के सशक्तिकरण पर हम पूरा ध्यान देते हैं, लेकिन पूरी कम्युनिटी को जब हम जोड़ते हैं तो उसमें महिला सशक्तिकरण में जो उनकी भागीदारी है उसको सुनिश्चित करने का प्रयास करते हैं. और ये निश्चित रूप से देश की बायोडाइवर्सिटी संरक्षण में उनकी बड़ी भूमिका है. इसका कोई वैधानिक प्रावधान तो नहीं है, लेकिन हम उनको पूरा प्रोत्साहन, उनको पूरी नॉलेज शेयरिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए कार्य करते हैं.
1: फोर्थ सप्लीमेंट्री, डॉक्टर श्रीमती मेहता विश्रम कुलकर्णी जी.
4: धन्यवाद सभापति महोदय. बायोडाइवर्सिटी के बारे में ये जो प्रश्न है, पुणे में 25 साल पहले से 900 हेक्टेयर से भी ज्यादा जमीन पर बायोडाइवर्सिटी का रिजर्वेशन किया गया था, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाया. तो मेरा प्रश्न है, और दूसरा भी इससे जुड़ा है, कि मियावाकी फॉरेस्ट के जरिए अर्बन एरियाज में छोटे छोटे प्लॉट्स पर भी बायोडाइवर्सिटी हम कर सकते हैं. तो मेरा प्रश्न ये है कि क्या मिनिस्ट्री अर्बन लोकल बॉडीज को ये आदेश देगी कि वो बायोडाइवर्सिटी पार्क का रिजर्वेशन का इम्प्लीमेंट करे, और मियावाकी गार्डन के लिए भी अगर मिनिस्ट्री बजट की सहायता कर सकती है क्या, ये मेरा प्रश्न है.
1: ऑनरेबल मिनिस्टर.
0: माननीय सभापति महोदय, मंत्रालय के द्वारा नगर वन और नमो वन की

0: योजना चलाई जाती है वो बायोडायवर्सिटी से अलग है, अपने स्थानीय प्रशासन के माध्यम से अगर सदस्य महोदय प्रस्ताव भेजेगी तो हम सहानुभूतिपूर्वक विचार करेंगे।
1: नाउ क्वेश्चन नंबर 122 श्रीमान ए रहीम जी।
2: प्रश्न संख्या 122, क्या श्रम और रोजगार मंत्री ये बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने श्रम संहिताओं के लागू होने के पश्चात रोजगार सुरक्षा, संविदात्मक रोजगार, छंटनी और कामबंदी यानी ले ऑफ पर पड़ने वाले प्रभाव का आकलन किया है, और यदि हाँ तो उसके निष्कर्ष क्या हैं? ख, श्रम संहिताओं के अंतर्गत श्रमिकों की छंटनी करने वाले कर्मचारियों की कामबंदी अथवा अपना परिचालन बंद करने वाली स्थापनाओं की राज्यवार और क्षेत्रवार संख्या कितनी कितनी है? ग, क्या श्रम संहिताओं को लागू करने से पूर्व और पश्चात छंटनी, कामबंदी, औद्योगिक विवादों तथा औपचारिक रोजगार के संबंध में कोई तुलनात्मक अध्ययन किया गया है? और घ, क्या सरकार श्रम संहिताओं के कार्यान्वयन तथा श्रमिकों के अधिकारों एवं उनकी रोजगार संबंधी सुरक्षा पर इसके प्रभाव की स्वतंत्र समीक्षा करवाने का विचार रखती है?
1: सेकंड सप्लीमेंट्री थ्रू पी विल्सन जी।
3: थ्रू दिस हाउस आई वुड लाइक टू आस्क द ऑनरेबल मिनिस्टर द रीजंस फॉर द गवर्नमेंट डिसीजन टू अब्स्टेन from the International Labour Organization Convention on the Decent Work in the Platform Economy, which seeks to set minimum standards for the gig and platform workers and was supported by the both Indian employers and workers, especially when such abstention risk denying lakhs of young Indians engaged in app-based work basic protections on working conditions, social security and fair treatment that the global community has recognized as essential. Thank you, Chairman.
1: Honorable Minister.
2: Dr. Mansukh Mandavia, श्रम एवं रोजगार मंत्री।
4: माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने आईएलओ के गिग वर्कर्स के विषय के संदर्भ में जब क्वेश्चन पूछा है, मैं बताना चाहूंगा कि गिग वर्कर्स हमारे देश में एक नई व्यवस्था खड़ी हो रही है और गिग वर्कर्स का हितों की रक्षा हो, गिग वर्कर्स को अपना एक एम्प्लॉइज के रूप में अधिकार मिले, उसके लिए पहली बार लेबर कोड में, नहीं केवल भारत में लेकिन दुनिया में पहली बार हमने गिग वर्कर्स को रिकॉग्नाइज करा है और उसको कानूनी दर्जा दिया। कानूनी दर्जा देने वाला दुनिया का पहला देश है वो भारत है, और भारत में गिग वर्कर्स को रजिस्टर करने के लिए ई श्रम पोर्टल पर प्रावधान रखा गया है। और आज जो नीति आयोग के एक रिपोर्ट के मुताबिक 80 लाख गिग वर्कर्स है और उसमें से 10 लाख गिग वर्कर्स ऑलरेडी ई श्रम पोर्टल पर रजिस्टर हुए हैं। अभी विषय है उसके हितों की रक्षा के लिए या तो उसको सोशल सिक्योरिटी देने के लिए। तो माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा सदन को और देश को बताना चाहूंगा कि हमारे गिग वर्कर्स को सोशल सिक्योरिटी मिले, उसको सोशल सिक्योरिटी का कानूनी प्रावधान मिले, उसके लिए ही हमने लेबर कोड में प्रावधान करा है। अभी आईएलओ ने जो अपना कन्वेंशन कर रहे थे, यूरोप और उनका एक मॉडल होता है, भारत का गिग वर्कर्स का एक अलग मॉडल है, हमारे यहाँ वो एक इमर्जिंग व्यवस्था है, उसके लिए कई प्रावधान हमने अभी करके रखा है। कई प्रावधान भविष्य में भी करने की आवश्यकता हो तो हम उसके में भी प्रावधान करेंगे, इसलिए हमें फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए थी, ना कि उसके सोशल सिक्योरिटी के हितों के लिए कोई कॉम्प्रोमाइज करना। इसलिए फ्लोर के द्वारा, पार्लियामेंट के सदन के द्वारा मैं एश्योर करना चाहता हूं कि गिग वर्कर्स के हितों की रक्षा के लिए हमने लेबर कोड में जो प्रावधान करा है उसका इंप्लीमेंटेशन करके उसको सोशल सिक्योरिटी सुनिश्चित करी जाएगी।
1: थर्ड सप्लीमेंट्री श्रीमान प्रमोद बोरा जी।
5: ऑनरेबल चेयरमैन सर, विद रेफरेंस टू द इम्पैक्ट ऑन एम्प्लॉयमेंट सिक्योरिटी, विल द ऑनरेबल मिनिस्टर स्टेट इफ एनी असेसमेंट हैज बीन मेड ऑन हाउ द न्यू 50% बेसिक वेज रूल अंडर द कोड ऑन वेजेस विल इम्पैक्ट वर्कर्स एलिजिबिलिटी अंडर द 21,000 ESIC सीलिंग, एंड व्हाट स्पेसिफिक इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म और programs are being implemented under the new codes to currently clear pending provident funds of displaced workers and provide them financial literacy training to protect their social security resources. Thank you.
1: Honorable Minister.
4: माननीय अध्यक्ष महोदय, जब लेबर कोड लागू होने से सोशल सिक्योरिटी को हम बढ़ावा दे रहे हैं। ये देश है जिसमें 2014 के पहले केवल देश में 29% लोगों को, 19 करोड़ लोगों को सोशल सिक्योरिटी का बेनिफिट मिलता था,
6: पिछले 12 साल में मोदी गवर्नमेंट में हो एक्सेस बढ़ा के आज देश में 68% यानी कि 101 करोड़ लोगों को सोशल सिक्योरिटी देने वाला ये देश बना। सोशल सिक्योरिटी सुनिश्चित हो और इसके लिए एसिक में हमारे न्यू लेबर कोड हमें प्रावधान करता है कि एसिक में पहले कई स्टेट बाहर थे, कई स्टेट ESIC के लाभार्थी नहीं थे, EPFO में उसको लाभ नहीं मिल रहा था, लेकिन अभी लेबर कोड ये सुनिश्चित करता है कि सारे देश के सभी डिस्ट्रिक्ट को नोटिफाई करा जाएगा और सभी डिस्ट्रिक्ट में ESIC के तहत जो हमारे प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले वर्कर्स है, ESIC के लाभार्थी है, उसको उसका लाभ दिया जाएगा, सोशल सिक्योरिटी दी जाएगी, हेल्थ सिक्योरिटी दी जाएगी, ताकि ऐसे वर्कर्स उसके लिए काम करते करते कोई भी दिक्कत आई हो, उसका काम छूट गया, उसके मैटरनिटी बेनिफिट की आवश्यकता हुई, तो ऐसी स्थिति में भी उसको लाभ मिले, वो भी हमने सुनिश्चित करा है। और माननीय सदस्य ने अपने प्रश्न के प्रारंभ में कहा कि उससे क्या कोई असेसमेंट करा गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, जब हमने लेबर कोड लागू करा, और लेबर कोड तो 2019 और 20 में बना था, लेकिन कई कारणों से वो लागू नहीं हो पाया था, लेकिन हमने 2025 नवंबर में देश में लेबर कोड लागू करा और मई 2026 में हमने उसका रूल्स का इम्प्लीमेंटेशन करा। सभी स्टेट अपने रूल्स को उसके साथ अलाइन कर रहे हैं और स्टेट स्टेप बाय स्टेप इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में हमने प्राइमरी सर्वे करा था और हमारी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ने VVGNLI करके हमारी एक लेबर इंस्टीट्यूट है, उन्होंने एक व्यापक सर्वे करा। उस सर्वे में वर्कर्स की ओर से जो फीडबैक आया, ये मैं आपके द्वारा सदन को और देश को बताना चाहूंगा, 60% वर्कर्स का मानना है कि लेबर कोड के पूर्ण इंप्लीमेंटेशन से वर्किंग कंडीशन बेहतर बनेगी। 63% वर्कर्स का विश्वास है कि सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स अधिक पोर्टेबल बनेंगे। 60% कॉन्ट्रैक्ट माइग्रेंट और गिग वर्कर्स का मानना है कि उन्हें सोशल सिक्योरिटी का बेहतर कवरेज मिलेगा। 66% वर्कर्स का मानना है कि एम्प्लॉयमेंट टर्म्स एंड कंडीशन अधिक स्पष्ट होगी। 66% वर्कर्स का मानना है कि महिला वर्कर्स की सेफ्टी और प्रोटेक्शन में सुधार आएगा। और 63% वर्कर्स का विश्वास है कि वर्क प्लेस पर सेफ्टी इक्विपमेंट और प्रोटेक्टिव मेजरमेंट बेहतर होगा। ये कुल मिला के हमारा सर्वे से निकला है, वो बताता है कि देश के श्रमिक के लिए ये लेबर कोड हितकारी।
7: फोर्थ सप्लीमेंट्री, श्रीमान मयंक कुमार नायक जी।
8: थैंक यू सर। माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में श्रम और रोजगार मंत्रालय के द्वारा खूब काम किया जा रहा है। नई नई टेक्नोलॉजी और नए नए औद्योगिक डेवलपमेंट भी हो रहे हैं। सर, मेरा माननीय मंत्री जी आदरणीय मनसुख भाई जी से प्रश्न है कि सर, जो नए नए बिजनेस आ रहे हैं, नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, तो क्या श्रम मंत्रालय के द्वारा उस इंडस्ट्रीज को जिस प्रकार से कामदार चाहिए, लेबर चाहिए, उसकी ट्रेनिंग का कोई प्रावधान है क्या? और यदि हाँ, तो उनके लिए सरकार के द्वारा और राज्य सरकारों द्वारा समन्वय करके इस तरह से देश के युवाओं को रोजगारी मिल जाए, जो आने वाले भारत में आत्मनिर्भर भारत का माननीय प्रधानमंत्री ने स्वप्न देखा है, उसको पूरे करने में सरकार का जो दायित्व है वो सरकार कैसे निभा रही है, वो मैं आपके माननीय मंत्री से जानना चाहता हूँ। थैंक यू सर।
3: ऑनरेबल मिनिस्टर।
6: माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है। बदलते समय में टेक्नोलॉजी का भी बदलाव हो रहा है, बदलते समय में वर्किंग कंडीशन भी बदल रही है। एक समय था जब श्रमिक खेत में काम करने के लिए जाते थे तो हाथों से काम करते थे, आज समय बदला है और टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हैं, फार्म इक्विपमेंट का यूज करते हैं, और जब स्प्रे करते थे पहले तो हैंड से उसको पेस्टिसाइड का स्प्रे करना था तो हैंड से करते थे, आज समय बदला और ड्रोन से करते हैं। तो ड्रोन टेक्नोलॉजी का समझदारी आए, ड्रोन टेक्नोलॉजी के लिए ट्रेनिंग मिले, तब जाके हमारे ड्रोन दीदी आज देश में हजारों की संख्या में ऐसी महिला को ऐसे ड्रोन चलाने का तकनीकी का ज्ञान दिया गया है, ताकि वो ड्रोन को अपने अर्थोपार्जन के लिए उपयोग करते हैं और किसान के खेत में जाके ड्रोन से वो छिड़काव करवाते हैं। वैसे कई सेक्टर में, हर सेक्टर में टेक्नोलॉजी आई है, वो टेक्नोलॉजी के अनुरूप हमारे वर्कर्स में टेक्नोलॉजी का ज्ञान आए, इसके लिए स्किल इंडिया मूवमेंट के द्वारा उसको स्किलिंग करा जाता है। हर इंडस्ट्रीज को ये व्यवस्था और हर इंडस्ट्रीज को ये कहा गया है कि
9: बदलते

0: टेक्नोलॉजी के साथ उसको रिस्किलिंग करा जाए। तो आज जिस टेक्नोलॉजी का उपयोग आज आपकी इंडस्ट्रीज में करते हैं और उसका नया वर्जन आया और नया मशीन आया, तो नया मशीन का उपयोग करने के लिए उसको रिस्किलिंग करने की भी व्यवस्था करी गई है। स्किल इंडिया के तहत अभी लास्ट 2025 के बजट में अनाउंसमेंट करा गया था सरकार के द्वारा, जिसमें हर सेक्टर में भी टेक्नोलॉजी बदल रही है और इंडस्ट्रीज क्लस्टर के आधार पर जिस टाइप का इंडस्ट्रीज क्लस्टर है, एक क्लस्टर के अनुरूप उसको स्किलिंग हो, इसलिए हब एंड स्पोक के द्वारा आईटीआई की व्यवस्था करी गई है। एक डिस्ट्रिक्ट में एक लेवल की इंडस्ट्रीज है तो डिस्ट्रिक्ट के हब के रूप में एक आईटीआई काम करेगी और स्पोक के रूप में ये इंडस्ट्रीज के क्लस्टर में उसको ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि उसकी स्किलिंग का भी इन्हेंसमेंट हो और इस स्किलिंग के इन्हेंसमेंट का उपयोग हमारे टेक्नोलॉजी का उपयोग करके उपार्जन बढ़े। दूसरा, माननीय अध्यक्ष महोदय, टेक्नोलॉजी कैसे रोजगार एम्प्लॉयमेंट देने के लिए उपयोगी हो सकती है? भारत सरकार ने नेशनल कैरियर सर्विस पोर्टल बनाया है, तो नेशनल कैरियर सर्विस पोर्टल पर आज देश में 53 लाख से अधिक स्टेट गवर्नमेंट, देश की कंपनी, दुनिया की कंपनी उसके पर जुड़ी हुई है। उनको की कोई भी टाइप का स्किल मैन पावर की रिक्वायरमेंट हो तो स्किल मैन पावर उसको क्या चाहिए उसके पर वो नोट करते हैं। आज सुबह से मैंने देखा 12 लाख से अधिक नौकरियां वहां उपलब्ध है, कोई ना कोई टाइप के उसको स्किल मैन पावर चाहिए ताकि जिसको जॉब चाहिए और जिस टाइप की स्किल की रिक्वायरमेंट है ऐसा स्किल वर्कर्स उसमें अप्लाई कर सकते हैं। उन्होंने अप्लाई करा और फिर उसको स्किलिंग की आवश्यकता रही, विशेष स्किलिंग की आवश्यकता हुई तो भारत सरकार की ओर से उसको 15 दिन का, 1 महीने का, 3 महीने का स्किलिंग करा के जिस इंडस्ट्रीज को जिस टाइप का स्किल मैन पावर चाहिए ऐसा स्किल मैन पावर उपलब्ध कराने के लिए भी भारत सरकार ने व्यवस्था करी है। इसलिए देश में एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ रही है, देश के युवाओं में एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ने से उसका रोजगार प्राप्त हो रहा है और रोजगार निर्माण से देश में हमारे इंडस्ट्रीज का की जो स्किल मैन पावर की रिक्वायरमेंट है वो भी पूरी हो रही है। इसलिए समय बदलते समय के साथ स्किलिंग, रिस्किलिंग और रिस्किलिंग के बाद जॉब और जॉब के बाद अर्थोपार्जन की एक श्रृंखला मोदी गवर्नमेंट में हमने सुनिश्चित करी है।
1: नाउ क्वेश्चन नंबर 123, श्रीमान संतोष कुमार पी।
2: प्रश्न संख्या 123, क्या श्रम और रोजगार मंत्री ये बताने की कृपा करेंगे कि आज की स्थिति के अनुसार अकुशल, अर्धकुशल, कुशल तथा अति कुशल श्रमिकों सहित विभिन्न श्रेणियों के कामगारों के लिए अधिसूचित न्यूनतम मजदूरी का राज्य, संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा क्या है? क्या सरकार ने मुद्रास्फीति तथा जीवन यापन की बढ़ती लागत के दृष्टिगत विद्यमान न्यूनतम मजदूरी की पर्याप्तता की कोई समीक्षा की है और यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है? क्या सरकार मजदूरी संहिता 2019 के अंतर्गत न्यूनतम मजदूरी लागू करने सहित न्यूनतम मजदूरी को संशोधित करने अथवा बढ़ाने का विचार रखती है और यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा तथा संभावित समय सीमा क्या है? और देश भर में न्यूनतम मजदूरी संबंधी उपबंधों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?
1: सेकंड सप्लीमेंट्री, श्रीमान सतपाल शर्मा जी।
3: धन्यवाद माननीय चेयरमैन महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी के ध्यान में ये विषय लाना चाहता हूँ कि जो रेट्स ऑफ वेजेस है इंक्लूडिंग VDA पर डे वो एग्रीकल्चर के केस में बहुत कम है, जबकि हम सब जानते हैं कि जीवन व्यतीत करने के लिए एग्रीकल्चर का एक विशेष महत्व होता है। और जब मैं इसको कंपैरिजन करता हूँ स्वीपिंग से, वॉच एंड वार्ड, लोडिंग अनलोडिंग, इन सब के संदर्भ में ये जो वेजेस हैं बहुत कम है, तो क्या सरकार इस विषय को गंभीरता से लेगी और किसानों के रेट्स को भी बढ़ाने का प्रयत्न करेगी? एक थोड़ा सा एक विषय क्लासिफिकेशन को लेकर भी है, 3 क्लासिफिकेशन दी है, A, B and C। आज के संदर्भ में जब हम पूरे भारतवर्ष की बात करते हैं, ठीक है बड़े जगह हैं जैसे दिल्ली है, मुंबई है, मद्रास है, लेकिन इन जगहों को छोड़कर मुझे लगता है कि भारतवर्ष की सभी जगहों को मात्र बी में ही कन्वर्ट किया जाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।
1: ऑनरेबल मिनिस्टर
2: डॉक्टर मनसुख मांडविय, श्रम एवं रोजगार मंत्री।
0: माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने किसान के हित की रक्षा की बात करी है, बहुत अच्छी बात है क्योंकि सभी लोग

0: लोगों को जीवन व्यापन करने के लिए मिनिमम जरूरत है वो तो उपलब्ध होना ही होना चाहिए, और मिनिमम जरूरत उपलब्ध हो इसलिए ही प्रधानमंत्री जी ने आज देश में इस टाइप की सोशल सिक्योरिटी की व्यवस्था करी है, ताकि देश में सभी नागरिक को अपना घर मिले, पूर्ता खाना मिले, और घर में उसको गैस का सिलेंडर मिले। ये सारी व्यवस्था सोशल सिक्योरिटी का एक पार्ट ही है और वेजेस का भी एक पार्ट है। और जब वेजेस तय करी जाती है तब व्यक्ति को कितना न्यूट्रिएंट फूड चाहिए, कितनी कैलोरी चाहिए, उसको विज्ञापन के उसको जीवन निर्वाह के लिए कपड़ा चाहिए, उसको घर चाहिए, उसको फैन, घर में फैन चाहिए। तो पहले फैन नहीं था तो बिजली बिल नहीं आता था, आज अभी मोबाइल तो हम काउंट ना करें वो एडिशनल व्यवस्था है, लेकिन उसके जीवन में मिनिमम जीवन जरूरी चीजों को खरीदने के लिए उसको मिनिमम जो खर्च लगता है उसको मिनिमम वेज के रूप में माना जाता है। और मिनिमम वेज आज तक माननीय अध्यक्ष महोदय सरकार तय करती थी, लेकिन भारत सरकार तय करती थी, लेकिन वो एडवाइजरी के रूप में था, स्टेट उसको माने नहीं माने उसके लिए कोई कंपलसरी नहीं था। लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय प्रधानमंत्री जी ने लेबर कोड लागू करा, लेबर कोड में फ्लोर वेज की का प्रावधान करा गया है, तो भारत सरकार अभी नए लेबर कोड के मुताबिक फ्लोर वेज तय करेगी। फ्लोर वेज मतलब कोई भी राज्य उससे कम मिनिमम वेज नहीं देंगे, उसका तो इतना देना ही देना, उससे ऊपर राज्य जितना रख सकते हैं उसमें से सभी राज्य अपने। उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि देश में बहुत डाइवर्सिटी है, हमारे देश में मैदानी प्रदेश भी है, हिमालयन रेंज भी है, नॉर्थ ईस्ट जैसे पहाड़ी प्रदेश भी है, विकसित प्रदेश भी है, अल्प विकसित प्रदेश भी है। तो ऐसी स्थिति में उसकी रिक्वायरमेंट और उसका जीवन निर्वाह का ABC यानी कि एक मेट्रोपॉलिटन सिटी, उसके अगल बगल में रहने वाले लोगों का खर्च, एक छोटे शहर में रहने वाले और उसके अगल बगल में रहने वाले लोगों का जीवन खर्च, और एक का दूर सुदूर गांव में रहने वाले और किसान का जीवन निर्वाह का खर्च अलग अलग होता है, उसको ध्यान में रख के फ्लोर वेज तय करा जाएगा। और फ्लोर वेज के ऊपर सब लोग वेज तय करे, उसमें सारा पैरामीटर को सुनिश्चित करके तय करा जाएगा। वर्तमान समय में जो वेजेस उपलब्ध है वो हर साल में दो बार वेरिएबल वेयरनेस अलाउंस होता है, उसके अनुसार ऐड होता है, और ये आज भारत सरकार सभी को बाधित करती है।
1: थर्ड सप्लीमेंट्री थ्रू आर गिरिराजन जी।
2: सर, नाउ द मिनिस्ट्री इज अनाउंसिंग मिनिमम वेजेस 5 year once और 3 year once और 2 year once रेगुलरली। द मिनिस्ट्री शुड अनाउंस द मिनिमम वेजेस एवरी फाइनेंशियल ईयर विदाउट फेल। सर, द मिनिमम वेजेस नॉट अनाउंस्ड ईयरली बाय द मिनिस्ट्री। द मिनिस्ट्री हैज एनी प्रपोजल टू अनाउंस मिनिमम वेजेस एवरी फाइनेंशियल ईयर, दैट विल हेल्प द लेबर्स अक्रॉस द कंट्री। थैंक यू।
1: ऑनरेबल मिनिस्टर।
0: माननीय अध्यक्ष महोदय, हर राज्य अपने अपने हिसाब से मिनिमम वेज में बढ़ोतरी करता है, लेकिन भारत सरकार तो जो महंगाई को ध्यान में रखते हुए हर साल में दो बार VDS के द्वारा बढ़ोतरी करता है कि इस बार जो इन्फ्लेशन बढ़ा हो, अभी महंगाई बढ़ी हो, उसके आधार पर उसका खर्च बढ़ता है तो उसके आधार पर सरकार बढ़ोतरी करती है, और उसको देखते हुए राज्य सरकार उसको प्लस माइनस प्लस कर सकती है, माइनस तो नहीं, और उसका लाभ अपने देश के अपने राज्य के वर्कर्स को दे सकते हैं।
1: फोर्थ सप्लीमेंट्री श्रीमती सुलादा देव।
3: थैंक यू सो मच ऑनरेबल चेयरमैन सर। जय श्री जगन्नाथ। सर, माननीय मंत्री अभी बोल रहे थे कि इन्फ्लेशन के बारे में किस तरह से हर चीज में प्राइस राइज हो रहे हैं। एक मिडिल क्लास फैमिली भी अपनी घर चलाने के लिए मुश्किल हो रहा है, तो हम लोग जो एकदम लोअर क्लास बिलोंग्स करते हैं, जो अनस्किल्ड लेबर और स्किल्ड लेबर है, उन लोगों के लिए मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जिस तरह से प्राइस हाइक हो रहा है, उस माननीय मंत्री जी ये बोलेंगे कि उन लोगों की जो वेजेस है, डेली वेजेस है, वो बढ़ना जरूरी है, वो बढ़ाने के कोई प्रपोजल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है क्या? अगर है तो स्टेट को भी कम्युनिकेट करें। और दूसरी बात मैं मतलब ये जानना चाहती हूँ कि कुछ ऐसे स्वास्थ्य मित्र है जो हमारे ओडिशा में काम करते थे हेल्थ में, आयुष्मान योजना में, उन लोगों को भी जो कंटैक्ट केयर में काम करते थे उन लोगों को भी निकाला जा रहा है, वो कौन से कैटेगरी में आते हैं, उन लोगों की फिर रिहैबिलिटेशन किस तरह से हो, और किस तरह से, क्योंकि हेल्थ एक ऐसा सब्जेक्ट है, अगर हेल्थ अगर किसी का खराब होता है तो अगर वहां पर कोई असिस्टेंट ना हो तो फिर प्रॉब्लम हो जाते हैं, उन लोगों के लिए कुछ सोचे हैं क्या, और ये वो कौन से कैटेगरी में आते हैं, और बढ़ाने कि अगर कोई योजना है तो सर बताए। थैंक यू सो मच सर।
1: ऑनरेबल मिनिस्टर।
0: माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की बात में ऐसा इस दृष्टि से ऐसा समझा।

कि उनके यहाँ हेल्थ वर्कर है उसकी सैलरी बढ़नी चाहिए, और उसने ये भी अपेक्षा रखी है कि जो अपने मिनिमम वेज है वो आपको रेगुलर बढ़ाता जाना चाहिए, समय समय पर बढ़ाते जाना चाहिए। मैं उसको माननीय सदस्य को रिप्लाई देना चाहूंगा।

0: देश में डिमांड बढ़ती है और डिमांड बढ़ती है तो मैन्युफैक्चरिंग बढ़ता है और मैन्युफैक्चरिंग बढ़ता है तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है तो रोजगारी बढ़ती है स्वाभाविक तौर पर। यहां जो बात रखी गई है कि अपने वर्कर्स है उसको हेल्थ वर्कर्स को अपने सैलरी बढ़नी चाहिए सभी राज्य को, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि आप 2 साल में बढ़ाओ, 3 साल में बढ़ाओ, 5 साल में बढ़ाओ। भारत सरकार तो हर 6 महीने में बढ़ाती है, उसको देखते हुए हर राज्य सरकार, क्योंकि लेबर वेलफेयर वो कंकरेंट लिस्ट में है तो ये राज्य सरकार का अधिकार है कि जब चाहे तब अपने राज्य में वो मिनिमम वेज बढ़ा सकते हैं। किसी का भी वेज में बढ़ोतरी करनी है तो राज्य सरकार उसमें पर बढ़ोतरी करके अपने एम्प्लॉइज को उसका लाभ दे सकते हैं।
1: नाउ क्वेश्चन नंबर 124 श्रीमती सुमित्रा पाल्मिक जी।
2: 124 प्रश्न संख्या 124, क्या युवा मामले एवं खेल मंत्री ये बताने की कृपा करेंगे कि क दिव्यांग जनों तथा महिलाओं के मध्य खेल सुविधाओं को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है। ख ऐसे वर्ग के युवाओं को सहायता प्रदान करने हेतु विभिन्न योजनाओं तथा वित्तीय प्रावधानों का ब्यौरा क्या है। और ग ऐसे वर्ग के युवाओं में नशीली दवाओं के विरुद्ध जागरूकता बढ़ाने तथा उनके करियर मार्गदर्शन हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं।
1: ऑनरेबल मिनिस्टर
2: रक्षा निखिल खडसे, युवा मामले एवं खेल राज्य मंत्री।
3: टेल पे रखा है।
1: नाउ फर्स्ट सप्लीमेंट्री श्रीमती सुमित्रा पाल्मिक जी।
4: माननीय सभापति महोदय जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री महोदय से ये जानना चाहती हूँ कि जो पैरा एथलीट्स हैं, इन खिलाड़ियों के लिए आपने कितने सेंटर बनाए हैं और उसमें इन्हें प्रशिक्षित करने का क्या क्या माध्यम है और इसमें महिलाओं युवाओं की संख्या कितनी है।
3: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य जी को बताना चाहूंगी कि पैरा फ्रेंडली फैसिलिटी सेंटर्स हमारे पूरे टोटल साई में 13 सेंटर है, जिसमें से गांधीनगर का जो सेंटर है वो डेडिकेटेड सेंटर है फॉर पैरा, और उसके अलावा 12 सेंटर है हमारा त्रिवेंद्रम में है, अर्नाकुलम में है, संभाजीनगर, बैंगलोर, भोपाल, कलकत्ता, लखनऊ, पटियाला, सोनीपत, आईजी स्टेडियम और केएसएसआर में। इन सभी जगह पे हमारे पैरा एथलीट्स को ट्रेनिंग दी जाती है और लगभग 172 एथलीट्स यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, और जिसमें से 62 जो हमारे एथलीट्स है वो टॉप स्कीम में भी है जो एलए के लिए आने वाले ओलंपिक के लिए तैयारी कर रहे हैं। और मैं आपके माध्यम से ये भी बताना चाहूंगी कि 2014 से पहले जो हमारा पैरा ओलंपिक में रैंक था पूरे वर्ल्ड में 67 था और मेडल सिर्फ एक ही था। पैरा एशियन गेम्स में हमारा रैंक 15 था और मेडल सिर्फ 14 थे, लेकिन 2014 के बाद आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने स्पोर्ट्स को लेकर काफी अग्रसर भूमिका रखी और उसके बाद हम देख सकते हैं कि 2024 में हमारा रैंक 18 था, 29 मेडल्स हमने प्राप्त किए और पैरा एशियन गेम में हमारा रैंक अभी 5th है जहाँ पे हमने 108 मेडल प्राप्त किए। तो सभी पैरा एथलीट्स के लिए हमारे सभी साई के सेंटर में सभी सुविधाएं दी जा रही है जहाँ पे हमारे महिला एथलीट्स भी काफी बड़ी संख्या में आज प्रैक्टिस कर रही है। धन्यवाद।
1: सेकंड सप्लीमेंट्री श्रीमान गुलाम अली जी।
5: शुक्रिया चेयरमैन सर, मैं जम्मू कश्मीर से आता हूँ और हमारा जो पड़ोसी मुल्क है वो हमेशा कहीं षड्यंत्र से हमें हमारे युवाओं को खासकर नशा की लपेट में नस्ल कशी करना चाहता है। हमारे वहाँ हमारी जो यूथ मिनिस्ट्री है उसने बहुत सारे प्रोग्राम वहाँ शुरू करे हैं और बच्चे जो हैं हमारे जो स्टोनिंग और उसमें मुलव्वस थे आज वो स्कूलों में और खेलकूद के जरिए बड़े बड़े अवार्ड लेके आ रहे हैं। मैं मिनिस्टर साहिबा को मुबारकबाद भी दूंगा और उनकी बहुत पार्टिसिपेशन रहती है और उनमें उत्साह रहता है खेलने का। मेरा मिनिस्टर साहिबा से क्वेश्चन है कि फिट इंडिया फ्लैगशिप प्रोग्राम है मिनिस्ट्री ऑफ यूथ सर्विसेज का, नशा मुक्त के प्लेजेस भी हम लेते हैं, ड्रग फ्री इंडिया, बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं, क्या नौजवान जो बच्चे बच्चियां हैं जम्मू कश्मीर के, क्या उनकी जो एक्सट्रीम लेवल पर चले गए हैं क्या उनके लिए कोई इंफ्रास्ट्रक्चर रिहैबिलिटेशन का जहाँ उनको मेन स्ट्रीम में फिर लाने का कोई प्रोग्राम, उस पर कुछ काम हुआ है? मैं उसकी जानकारी चाहूंगा। शुक्रिया।
1: ऑनरेबल मिनिस्टर।
0: माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है कि देश के युवा धन आज नशा की ओर आगे बढ़ रहे हैं, उसको

0: बचाना उस समय की मांग है और न केवल सरकार लेकिन सामूहिक प्रयास की आवश्यकता है। वर्तमान समय में जिस तरह से एडिक्शन बढ़ रहा है, एडिक्शन के सामने मूवमेंट चलाने के लिए आज से एक साल पहले हमने सोचा कि देश के स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन जिसका बहुत बड़ा अनुयायी वर्ग होता है उसको भी उसमें शामिल करना चाहिए, स्कूल कॉलेजों को भी उसमें शामिल करना चाहिए। इसलिए हमने वाराणसी में एक समिट करी थी, दो दिन की चिंतन बैठक करी थी और उसमें हमने तय करा कि आने वाले दिनों में हम नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत का कैंपेन को कैसे चलाएं। माननीय अध्यक्ष महोदय, कोई भी देश को समृद्ध राष्ट्र बनना है, डेवलप्ड कंट्री बनना है, तो आवश्यक है कि उसके देश के नागरिक फिट रहे, उसके देश के नागरिक स्वस्थ रहे। जब नागरिक स्वस्थ होगा तब सोसाइटी स्वस्थ होगी और स्वस्थ समाज ही समृद्ध राष्ट्र का निर्माण कर सकता है। और इसलिए समृद्ध राष्ट्र बनाने के लिए, डेवलप्ड कंट्री बनाने के लिए हमारे देश के युवा नशा से मुक्त हो उसके लिए कई कार्यक्रम की श्रृंखला चलती है सरकार की ओर से। राज्य सरकार और केंद्र सरकार अपने अपने हिसाब से रिहैबिलिटेशन सेंटर ये सब तो करते हैं, अवेयरनेस कैंपेन भी चलाते हैं, लेकिन हमने तय करा है 2 अगस्त को सारे देश में 100 वीक 2 साल के लिए एक बहुत बड़ा नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत कैंपेन ऑनरेबल प्रधानमंत्री जी प्रारंभ करवा रहे हैं। एक ही साथ में देश के सभी स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन एक मंच पर आ रहे हैं, देश के सब कॉलेज मंच पर आ रही है, यूनिवर्सिटी मंच एक मंच पर आ रही है और माय भारत के युवा उसको लीड कर रहे हैं। युवाओं ने अपने स्वयं को चिंता करी कि हम हमारे साथी को एडिक्शन से बचाए, नशा से बचाए। इसलिए 2 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी 10:30 बजे समग्र देश को संबोधित करेंगे और 1 करोड़ से अधिक युवा एक साथ में शपथ ग्रहण करेंगे कि हम तो नशा से मुक्त होंगे लेकिन हम हर व्यक्ति, एक एक व्यक्ति को नशा मुक्त करेंगे। एक कैंपेन हर वीक चलेगा, उसमें नुक्कड़ नाटक हो, उसमें क्विज कंपटीशन हो, उसमें पेंटिंग कंपटीशन हो, उसमें अलग अलग अलग संडे ऑन साइकिलिंग के साथ उसको जोड़ा जाए, स्पोर्ट्स के साथ उसको जोड़ा जाए। हमें हमारे युवाओं को खेल के मैदान में लाना होगा, हमें हमारे युवाओं को में व्यापक अवेयरनेस लानी होगी और ये केवल सरकार नहीं कर पाएगी, उसमें सारी सोसाइटी, सारे देश की जिम्मेवारी है। वो हमारा युवा है, देश का युवा है, देश का भविष्य है और यही हमारे देश के विकसित भारत के राहबर है। और इसलिए देश के युवाओं को उसके साथ जोड़ के इस अभियान का प्रारंभ हो रहा है। सभी सम्मानित सदस्यों को मेरी प्रार्थना है, आप सब लोगों को भी लोकल लेवल पर इन्विटेशन दिया जाएगा, जहां से भी आपको इन्विटेशन मिले वहां आप उपस्थित रहे, युवाओं को प्रोत्साहित करें, हर वीक में कोई एक एक और एक कोई न कोई एक ऐसी एक्टिविटी करे जिसमें युवाओं के साथ नशा मुक्ति के लिए मेरे देश के जनप्रतिनिधि का भी संवाद हो ताकि देश के युवा व्यसन मुक्त बने और विकसित भारत के राह पर आगे बढ़े। इस अभियान के साथ सभी को जुड़ने के लिए मेरी प्रार्थना है।
1: थर्ड सप्लीमेंट्री डॉक्टर कविता पटेलदार।
2: सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से ये पूछना चाहती हूँ कि ग्रामीण महिलाओं को स्पोर्ट्स में आगे बढ़ाने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है।
1: ऑनरेबल मिनिस्टर।
3: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य जी को बताना चाहूंगी कि खास करके ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं का स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेशन बढ़ाने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2021 में अस्मिता लीग्स की शुरुआत की थी कि जिसके माध्यम से आज पूरे देश में हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तहसील लेवल पे हम अस्मिता लीग्स का आयोजन कर रहे हैं और जिसके माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र की लड़कियां या महिलाएं, उनका पार्टिसिपेशन आज स्पोर्ट्स में बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। और मैं आज इस हाउस को भी बताना चाहूंगी कि लगभग 3,500 से भी ज्यादा लीग्स आज तक हम करवा चुके हैं। 38 डिसिप्लिन में आज ये लीग्स हो रही है पूरे देश में और लगभग 6 लाख से भी ज्यादा महिलाओं ने इस लीग्स के माध्यम से पार्टिसिपेशन किया है और इन्हीं लीग्स के माध्यम से आज साई के सेंटर या स्टेट एक्सेलेंस जो सेंटर है हमारे स्पोर्ट्स के, उनमें इनका सिलेक्शन किया जाता है और जिससे ज्यादा से ज्यादा महिलाएं स्पोर्ट्स में आज आगे आते हुए दिखाई दे रही है, मेडल तक पहुंच रही है। और उसके साथ ही हमारे जितने भी साई के सेंटर है, स्टेट के साथ भी हम बात कर रहे हैं कि कोचेस, जो महिलाओं की संख्या है कोचेस में, उनका भी प्रावधान ज्यादा से ज्यादा बढ़े कि जिसके माध्यम से एक अच्छा माहौल हम सभी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट में महिलाओं खिलाड़ी के लिए दे पाए। धन्यवाद।
1: फोर्थ सप्लीमेंट्री श्रीमान उपेंद्र कुशवाहा जी।
4: हाल के वर्षों में हम अपने राज्य बिहार में देखते हैं कि सूखा नशा की प्रवृत्ति युवाओं में ज्यादा बढ़ी है, क्या सरकार इस बात से सहमत है? सरकार ने कोई स्टडी वहाँ इस विषय को ध्यान में रखकर कराया है। अगर नहीं कराया है तो सरकार

0: कराएगी। एक दूसरा कि लोगों के बीच इसके कारण को ढूंढते हुए विमर्श के रूप में बिहार में जो शराबबंदी कानून लागू है उससे भी कुछ लोग संबंध इसका जोड़कर देखते हैं कि क्योंकि शराबबंदी कानून लागू है इसलिए ड्रग लेने की प्रवृत्ति नशा के रूप में वहां के युवाओं में ज्यादा बढ़ी है। तो क्या शराब कानून लागू होने से भी कोई इसका संबंध है? इस दृष्टि से भी कोई स्टडी कराना चाहेंगे?
1: ऑनरेबल मिनिस्टर।
2: माननीय अध्यक्ष महोदय, ये बात सार्वजनिक स्वीकार करने योग्य है कि नशा तो युवाओं में बढ़ रहा है और उसका समाधान करने के लिए हमें सामूहिक अभियान चलाना है, जिस उल्लेख में लास्ट क्वेश्चंस के रिप्लाई में कर चुका हूँ। लेकिन जो पहले नशा था और बदलते समय में हेरोइन, सरस, उसके अलावा सिंथेटिक ड्रग्स, ये बहुत खतरनाक है, उसका उपयोग भी न्यू जनरेशन में बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। एक नहीं, ऐसे कई टाइप की स्टडी ने ही ये बताया है और हम सार्वजनिक जीवन में देख भी रहे हैं कि उसको न्यू जनरेशन में स्कूल कॉलेज में भी उसका प्रवेश हो चुका है। चौराहे पर पान मसाला बेचने वाले शॉप पर भी ये चीजें जब हम खड़ा रहते हैं तब हमें पता चलता है। उसका समाधान कैसे करा जाए, उनके लिए दो ही रास्ता है। एक, कानूनी प्रावधान तो बहुत कुछ है और बदलते समय के साथ पब्लिक अवेयरनेस और काउंसलिंग कई समस्या है। उसके लिए हम कोई एक कारण को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते हैं। माननीय सदस्य ने कहा कि क्या कारण है कि नशा बढ़ता जा रहा है, कई कारण है। आज बच्चे, उसकी स्थिति, उसका ट्रेस, उसकी जीवन शैली, ये सब एनवायरनमेंट जो आज वर्तमान सोशल मीडिया में दुनिया के साथ संपर्क में रहना और वहां जो कुछ हो रहा है उसकी इफेक्ट उसके मन मस्तिष्क में भी हो रही है। इसलिए ये सब स्थिति का एनालिसिस करके हमें आगे बढ़ना होगा। लेकिन एक खतरा हमारे सामने है, उसका समाधान जितना हो सके इतना करने की कोशिश करी है और आने वाले दिनों में सामूहिक चिंतन के आधार पर, सामूहिक रिसर्च के आधार पर, सतत उसके पर अध्ययन के आधार पर रास्ता तय करना होगा।
3: नाउ क्वेश्चन नंबर 125, डॉक्टर ज्योति नागनाथ वाकमारे।
4: क्वेश्चन नंबर 125,
5: ऑनरेबल चेयरमैन सर। प्रश्न संख्या 125, क्या श्रम और रोजगार मंत्री ये बताने की कृपा करेंगे कि क, ई श्रम पोर्टल पर पंजीकृत 31.5 करोड़ से अधिक असंगठित श्रमिकों में महिलाओं की संख्या रिकॉर्ड 54% से अधिक हो जाने के उपरांत उन्हें वन टॉप सॉल्यूशन के माध्यम से केंद्रित सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु सरकार की क्या योजना है? ख, क्या सरकार महाराष्ट्र सहित देश भर की कृषि, घरेलू कार्य तथा निर्माण क्षेत्रों में कार्यरत असंगठित महिला श्रमिकों को पालना योजना तथा प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना जैसी पेंशन योजना से जोड़कर प्रत्यक्ष लाभ अंतरण DBT सुनिश्चित कर रही है? और ग, मंत्रालय द्वारा ऐसी महिला श्रमिकों के लिए कौशल विकास, स्वच्छता और संरचना सुनिश्चित करने हेतु क्या विशेष बजटीय प्रावधान किए गए हैं?
3: फर्स्ट सप्लीमेंट्री, यू कैन गो स्ट्रेट अवे।
4: आदरणीय सभापति महोदय, देश के निर्माण और अर्थव्यवस्था की रीढ़ हमारी असंगठित क्षेत्र की महिला श्रमिक हैं, जो कठिन परिस्थितियों में भी राष्ट्र के विकास में अपना अभूतपूर्व योगदान देती है। मैं आपके माध्यम से आदरणीय मंत्री महोदय से ये पूछना चाहूंगी कि असंगठित क्षेत्रों में काम करने वाले महिला श्रमिकों का शोषण न हो, उन्हें सुनिश्चित वेतन मिले, काम की जगह पर उन्हें सुरक्षा मिले, उनकी मैटरनल और मेंस्ट्रुअल हेल्थ की केयर हो, उनका ख्याल रखा जाए और महिला कामगारों के बच्चों के लिए पालना योजना अनिवार्य की जाए और सरकार के सभी योजनाओं का लाभ अंतिम पायदान पर खड़ी महिला श्रमिकों को तक पहुंचाने के लिए सरकार क्या कदम उठाने जा रही है?
3: ऑनरेबल मिनिस्टर।
5: शोभा करंदलाजे, श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री।
6: माननीय चेयरमैन सर, पहली बार देश में 29 एक्ट को हम बदल के 4 कोड में लाए हैं, महिला का सुरक्षा इसी में है। ये 4 कोड में महिला के लिए हम एम्प्लॉयर्स कैनॉट डिस्क्रिमिनेट, वो डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते सर। महिला एंड पुरुष को एक साथ लेके जाना, यानी एक ही पगार देना, जेंडर डिस्क्रिमिनेट को इसी में हम नकारे हैं। ऐसे ही महिला वो बच्चे का बात किया, वर्किंग जगह में क्रेश रखने के लिए ऐसे ही हम मैटरनिटी लीव पहले 8 महीने था, अभी 26 वीक तक हम बढ़ाए हैं। एंड कोई पोस्ट

0: फ्रेटर्निटी में घर से काम करना चाहते हैं वो घर से भी काम कर सकते हैं। एंड दो वीक का बीच में वो मेटर्निटी मेडिकल ब्रेक भी ले सकती है। ऐसे भी हम 3,500 मेटर्नल बेनिफिट भी उसको दे रहे हैं सर। एंड अभी फैमिली बोले तो केवल महिला नहीं है, कौन बच्चा पैदा करते हैं वो फैमिली को हम एक्सटेंशन किया है वुमेन एम्प्लॉय के साथ, इसका इन लॉज भी वो फैमिली में अभी आ रहे हैं। महिला को महिला का एम्प्लॉयमेंट कितना है देश में, हर साल महिला का अनएम्प्लॉयमेंट कम हो रहा है सर। अभी बार बार बोलते हैं अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहे हैं, मगर देश का सामने में एक आंकड़ रखना चाहती हूँ। ऑल इंडिया लेवल में अनएम्प्लॉयमेंट रेट इट इज डिक्रीज फ्रॉम 3.6% टू 3.1% इन इंडिया हमारे प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व में। ऐसे ही यूथ का एम्प्लॉयमेंट भी अभी बढ़ रहे हैं, महिला का एम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है एंड वर्कफोर्स पॉपुलेशन भी बढ़ रहे हैं। एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज फ्रॉम 54% इन 2022, इसका पहले का आंकड़ा ही नहीं है सर। हमारे देश में कोई आंकड़ा ही नहीं रखा है कितना एम्प्लॉयमेंट हमारे देश में हम दे रहे हैं। पहली बार हम आंकड़ा लेने को शुरू किया, अभी वो बढ़कर 57.4% हमारे देश में एम्प्लॉयमेंट बढ़ा है सर। एंड एम्प्लॉयमेंट फॉर्मलाइजेशन कैसे होता है उसका आंकड़ा किधर मिलता है? हमारा फॉर्मलाइजेशन करने के लिए भारत सरकार अभी तैयार किया, इसके कारण ईपीएफओ में 2007 to 2025 में ये केवल 8 साल का अंदर 8.23 करोड़ लोग सब्सक्राइब नया सब्सक्राइबर ईपीएफओ में बढ़ा है, नया सब्सक्राइबर। पिछले साल लास्ट ईयर में वो नंबर था 1.69, लाइक इतना बड़ा रेट में हमारा एम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है। इसके कारण है अलग अलग सर, हमें एमएसएमई को मदद दे रहे हैं। अभी एमएसएमई में उद्यम पोर्टल खोला हम, 9 करोड़ उद्यम पोर्टल में एंटरप्राइज जुड़े हैं, वो लोग बताया हम 39 करोड़ लोगों के लिए काम दिया है, एम्प्लॉयमेंट दिया है। इसी में 40% महिला है सर, हमको बोलने के लिए कुछ मत है, 40% इसी में महिला है। अभी एंटरप्रेन्योर्स ज्यादा हो रहे हैं, महिला का ज्यादा हो रहे हैं। ऐसे ही स्टार्टअप्स केवल हम गिनती करते थे हाथ में, मगर अभी प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2 लाख स्टार्टअप्स के लिए भारत सरकार मदद दिया। इसके कारण नए बच्चे नए नौजवान युवती ये स्टार्टअप खोलने के लिए कर रहे हैं सर। मुद्रा में हम प्रधानमंत्री जी एक योजना शुरू किया, प्रधानमंत्री जी मुद्रा योजना, इसी में 3.8 करोड़ लोगों को हम जॉब दिया है एंड एंटरप्रेन्योर्स बनाया है। पीएमईजीपी में सर 97 लाख लोगों को पीएमईजीपी में हम एम्प्लॉयमेंट दिया है सर। इतना बड़ा नंबर में भारत सरकार एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने के लिए अभी अभी एक योजना शुरू किया। अभी लास्ट महीने में प्रधानमंत्री जी पहले क्रंच का पैसा लोग एंटरप्रेन्योर्स एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉयज को दिया, वो योजना है प्रधानमंत्री जी विकसित भारत रोजगार योजना। इसी में हम 1 लाख करोड़ लगा रहे हैं एंड किसके लिए, एम्प्लॉयर्स को भी मदद देना एंड नया एम्प्लॉय जुड़ा तो उसको भी मदद देने के लिए। इसीलिए मैंने बताना चाहती हूँ पूरे देश में महिला को एंटरप्रेन्योर्स बनाने के लिए, जॉब दिलाने के लिए एंड सरकार में जॉब दिलाने के लिए 19 क्रेंचर्स सरकार का जॉब दिलाने का रोजगार महिला हम बनाए। इसमें 11 लाख लोगों को सरकारी नौकरी भारत सरकार ने दिया है।
1: सेकेंड सप्लीमेंट्री श्रीमती सीमा द्विवेदी जी।
2: माननीय सभापति महोदय, सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 अधिनियमित किया गया है जो 21 नवंबर 2025 से प्रवृत्त हुई है। महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूँ कि जो इस अधिनियम में इसको प्रवृत्त किया गया है, इसमें महिलाओं को क्या क्या सुविधा दी जा रही है, इसके बारे में माननीय मंत्री जानना चाहती हूँ।
0: माननीय चेयरमैन सर, मैं अभी बताइए 29 कानूनों को हम निकाल के, ब्रिटिश का समय का कानून था, हमारा देश वाले नहीं बनाए।

0: वो कानून हम ऐसे रखे थे उसको हम पूरे निकाल के अभी 4 कोड में लाया है। इसी में बहुत बड़ा एंड अच्छा कोड है सोशल सिक्योरिटी कोड। सोशल सिक्योरिटी कोड में महिलाओं के लिए हम पहले क्वेश्चन का आंसर में भी बताया सर, वो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हम नहीं कर सकते नया कोड में। एंड एक काम के लिए इक्वल वर्क फॉर इक्वल वेजेस, एंड इक्वल वेजेस देना इक्वल वर्क के लिए, ऐसा हम किया है सर। ऐसे कोई भी बोर्ड हो, सरकार कुछ भी बोर्ड गठित करे और यानी इंडस्ट्री कुछ भी बोर्ड गठित करे, इसी में 1/3 उसी में बोर्ड में मेंबर्स महिला होना चाहिए। महिला का समस्या महिला ही जानती है, इसलिए महिला होना चाहिए, ऐसे ही प्रोविजन इसी में रखा है सर। मैटरनिटी लीव 26 वीक तक हम बढ़ाए हैं सर। वर्क फ्रॉम होम का प्रोविजन हम रखे हैं सर। ऐसे ही महिला को कहीं इंडस्ट्री में काम करने के लिए प्रोविजन नहीं था, पहली बार महिला किसी भी इंडस्ट्री में काम कर सकती है, नाइट ड्यूटी भी कर सकती है, मगर उसका सुरक्षित का कायम रखना एंड उसका सुरक्षित के लिए ध्यान रखना, ऐसा भी प्रोविजन हम रखे हैं सर। मेडिकल बोनस हम 3500 दे रहे हैं, नर्सिंग ब्रेक्स हम दे रहे हैं। ऐसे महिला का बच्चे के लिए क्रेश फैसिलिटी भी इंडस्ट्री के तहत और वर्किंग प्लेस में हम दे रही है। ऐसे ही सर हम ये स्टैंडिंग ऑर्डर्स ऑफ होम अरेंजमेंट्स फॉर फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ वुमेन वर्कर्स सेक्टर में स्टैंडिंग कमिटी बनाने के लिए हम इसी में रखा है सर। एंड ग्रीवेंस रिड्रेसल सेल, महिला के लिए अलग से ग्रीवेंस रिड्रेसल सेल रखना चाहिए, ऐसे हम नया कोड में सोशल सिक्योरिटी कोड में महिला के लिए हम लाए हैं सर।
1: थर्ड सप्लीमेंट्री डॉक्टर धर्मशील गुप्ता जी।
2: माननीय सभापति महोदय आपका धन्यवाद। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहती हूँ कि बिहार की बहुत बड़ी आबादी महिलाएं काम करती हैं, रोजगार करती हैं, तो क्या बिहार में कितनी महिलाएं रोजगार कर रही हैं, या माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कितने रोजगार को बढ़ाया गया है, यह मैं जानना चाहती हूँ आदरणीय मंत्री जी से।
0: चेयरमैन सर, बिहार में ई श्रम पोर्टल में 3.2 करोड़ लोग जुड़े हैं। इसी में अलग अलग तरीके का लोग हैं। ई श्रम पोर्टल में जुड़ने वाले एग्रीकल्चर लेबरर्स है सर, विश्वकर्मी से, गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स है। ऐसे ही सर्विस सेक्टर में कौन कौन काम करते वो है, ऑटोमोबाइल एंड ट्रांसपोर्टेशन इसी में काम करने वाले है, डोमेस्टिक वर्कर्स है। ऐसे अलग अलग तरीके का लोग बिहार में 3.23 करोड़ लोग जुड़े हैं।
1: फोर्थ सप्लीमेंट्री डॉक्टर कविता पटीदार जी।
3: धन्यवाद माननीय सभापति महोदय। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से ये जानना चाहूंगी कि लेबर कोड में महिलाओं के लिए क्या प्रोविजन रखा है।
1: ऑनरेबल मिनिस्टर
0: कर दिया है, पहली बार महिला कोड में हम महिला के लिए प्रोविजन रखा है। महिला कोड देश का इतिहास में वो पहले बहुत साल से मांग था, लेबर कोड आना चाहिए। 2020 से प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में प्रयत्न किया मगर नहीं हो पाया। पहली बार हमारा सरकार पिछले साल नवंबर 21 को पूरा देश में लेबर कोड को लागू किया। ये लेबर कोड में 4 कोड में महिला का विशेष प्रावधान हम रखा है सर, एंड महिला का सिक्योरिटी करने के लिए एंड इक्वल काम के लिए इक्वल वेजेस देने के लिए इसी में सब प्रोविजन है। मैंने पिछले आंसर में इसका सदन के नजर में लाया सर। थैंक यू।
1: नाउ क्वेश्चन नंबर 126 श्रीमान उज्जवल देवराव निकाम जी।
4: क्वेश्चन नंबर 126 सर।
5: प्रश्न संख्या 126, क्या विधि और न्याय मंत्री ये बताने की कृपा करेंगे कि क गत 3 वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के दौरान विधिक सेवा प्राधिकरणों के माध्यम से विधिक सहायता तथा विधिक परामर्श प्राप्त करने वाले व्यक्तियों की राज्यवार संख्या कितनी कितनी है। ख आज की स्थिति के अनुसार देश के जिलों में स्थापित तथा कार्यरत विधिक सहायता बचाव परामर्श कार्यालयों की राज्यवार संख्या कितनी कितनी है। ग उक्त अवधि के दौरान राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण को निर्गत निधि तथा तत्संबंधी उपयोग का ब्यौरा क्या है, और घ उक्त अवधि के दौरान विधिक सेवा प्राधिकरणों के माध्यम से संवितरित मुआवजे सहित अपराध के पीड़ितों के लिए विधिक सेवाओं को सुदृढ़ करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं।
1: ऑनरेबल मिनिस्टर
5: श्री अर्जुन राम मेघवाल।

0: विधि एवं न्याय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार।
1: चेयरमैन सर, उत्तर सभा पटल पर रख दी है, थैंक यू।
2: द फर्स्ट सप्लीमेंट्री श्रीमान उज्जवल देवराव निकाम जी।
3: थैंक यू सर। ऑनरेबल मिनिस्टर, while reply indicates that the number of beneficiaries, it does not indicate the quality of the legal assistance provided. So my pinpoint question to you, has the government undertaken any independent evaluation of the effectiveness of legal aid, including success rate, client satisfaction or quality of representation provided to the beneficiaries?
4: Honorable Minister.
1: Dhanyawad Sabhapati ji. Mananiya Sadasya ne jo prashn kiya hai, National Legal Service Authority se sambandhit hai aur isme kitna kharcha hua, kitne लोग लाभार्थी हुए, ये जवाब इनको दे दिया गया है। मैं इस स्कीम के बारे में थोड़ा बताना चाहता हूँ कि समाज के गरीब और वंचित वर्गों को निःशुल्क और सक्षम विधिक सेवाएं प्रदान करने के लिए सरकार ने विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम के तहत एक नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी का गठन कर रखा है। ये जिलों में भी काम करते हैं, स्टेट में भी करते हैं। जब नेशनल लेवल पे करते हैं तो नालसा कहलाते हैं, जब राज्य स्तर पे करते हैं तो वो स्टेट का नाम से साथ उसको लीगल सर्विस अथॉरिटी से जोड़ देते हैं, डिस्ट्रिक्ट में वो डालसा कहलाते हैं, तालुका में भी काम करते हैं। जो संख्या ये पूछना चाह रहे हैं विगत तीन सालों में, तो 2023 और इसमें हमने 15.5 लाख इसमें लाभार्थी रहे, 24-25 में 16.5 लाख लाभार्थी रहे और 25-26 में 20 लाख लाभार्थी रहे, ये इंक्रीजिंग ट्रेंड है। ये जो पूछना चाह रहे हैं कि क्या कोई इंडिपेंडेंट एजेंसी से भी कोई आपने इवोल्यूशन करवाया है क्या, मैं ये इनको कहना चाहता हूं कि हर जगह सीएससी है, कॉमन सर्विस सेंटर, वहां पे न्याय बंधु प्रो बोनो जो गरीब हैं, दूर स्थानों पे रहते हैं, वकील कर नहीं सकते, उनको सरकार निःशुल्क ये विधिक सहायता देती है और उसमें एक कंसेप्ट है, हक हमारा भी है, उसके तहत हम काम करते हैं और इसका इवोल्यूशन भी हम कराते हैं। इतने लाभार्थी इसमें लाभान्वित हुए हैं और ये बहुत अच्छी योजना है गरीबों को न्याय के द्वार तक पहुंचाने के लिए। धन्यवाद।
2: सेकंड सप्लीमेंट्री श्रीमान सुभाषिस कुंदिया जी।
5: थैंक यू चेयरमैन सर। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ, उड़ीसा के ट्राइबल क्षेत्रों के में स्थानीय भाषा में लीगल एड और लीगल अवेयरनेस सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए हैं?
2: ऑनरेबल मिनिस्टर।
1: सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किया है वो जो रीजनल लैंग्वेजेज हैं, अभी भाषिणी टूल हमारे बहुत अच्छी तरह से काम कर रहा है। जितने भी हमारी भाषाएं हैं, जैसे 22 भाषाएं संविधान में मान्यता प्राप्त है, तो संविधान भी हमने सभी भाषाओं में अनुवाद किया है और रीजनल जो भाषाएं हैं उनका भी भाषिणी टूल के माध्यम से आप भाषाओं का अनुवाद जान सकते हैं। लोकसभा में भी, राज्यसभा में भी आपने देखा होगा कि अनुवाद जो है ज्यादा भाषाओं में हो रहा है। ये जो विषय आपने रखा है, ये विषय जस्टिस से संबंधित ही है कि जो भाषा नहीं जानता है, जैसे अंग्रेजी में अधिकतर हाईकोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में लोग बहस करते हैं, जो भाषा नहीं जानते हैं उनके लिए क्या भाषिणी टूल उसका एक सबसे महत्वपूर्ण उपाय है और इस दिशा में नरेंद्र मोदी जी की गवर्नमेंट आने के बाद तेजी से काम हुआ है। भाषा हमारी संस्कृति का हिस्सा है, इसलिए हम संस्कृति का विकास भी करेंगे, विरासत को भी बचाएंगे। धन्यवाद।
2: The House stands adjourned to meet at 2 PM।
0: अभी आप आज राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान हुई कार्रवाई की रिकॉर्डिंग सुन रहे थे। यू वर लिसनिंग टू द प्रोसीडिंग्स ड्यूरिंग द क्वेश्चन आवर इन राज्यसभा टुडे। दिस ब्रॉडकास्ट केम टू यू फ्रॉम द दिल्ली स्टेशन ऑफ आकाशवाणी।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। संसद ने लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने आज इस विधेयक को मंजूरी दे दी। लोकसभा ने इसे कल ही पारित कर दिया था। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि ये देश के हर नागरिक और विशेष रूप से युवाओं के भविष्य से जुड़ा विषय है। उन्होंने कहा कि सरकार ने पेपर लीक रोकने और शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए कई कदम उठाए हैं। उन्होंने बताया कि देश में एम्स की संख्या 7 से बढ़कर 22 हो गई है और मेडिकल सीटों में भी वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से शिक्षा व्यवस्था में बड़ा बदलाव आया है। इससे पहले डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि सरकार लोक परीक्षाओं में पेपर लीक और अन्य अनियमितताओं के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि नए कानून के तहत दोषी को 10 साल तक की कैद, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और संपत्ति जब्त करने का प्रावधान है। साथ ही मामलों की जाँच 2 महीने और मुकदमे का निपटारा 3 महीने के भीतर करना होगा। चर्चा की शुरुआत करते हुए विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि कांग्रेस विधेयक का समर्थन करती है, लेकिन इसमें पेपर लीक रोकने के लिए और अधिक प्रभावी प्रावधान होने चाहिए थे। भाजपा के ब्रजलाल ने कहा कि इस विधेयक में फास्ट ट्रैक अदालतों और विशेष कार्यबल का प्रावधान है। डीएमके के तिरुचि शिवा और समाजवादी पार्टी के राम गोपाल यादव ने नीट परीक्षा समाप्त करने की मांग की। चर्चा के बाद राज्यसभा ने विधेयक ध्वनिमत से पारित कर दिया। इसके बाद सदन की कार्यवाही कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। संसद ने राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक का उद्देश्य वंदे मातरम को राष्ट्रगान के समान वैधानिक संरक्षण प्रदान करना है। वंदे मातरम के अपमान पर 3 वर्ष तक की कैद, जुर्माना या दोनों सजा हो सकती है।

0: कहा कि वंदे मातरम केवल एक गीत नहीं है बल्कि ये राष्ट्र की आत्मा की आवाज है।
1: यह विधेयक राष्ट्र गौरव का विधेयक है। यह किसी राज्य के खिलाफ नहीं है, किसी व्यक्ति या किसी विचारधारा के खिलाफ नहीं है। और जब राष्ट्रगान हो तो उसके साथ साथ राष्ट्र गीत का भी गायन हो। अब एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए संपूर्ण वंदे मातरम चाहिए।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया की स्थिति की समीक्षा के लिए आज मंत्रिमंडल की सुरक्षा समिति की बैठक की अध्यक्षता की। श्री मोदी ने नाविकों सहित लोगों के हितों की रक्षा के लिए सभी घटनाक्रमों की नियमित निगरानी के लिए एकीकृत और समन्वित व्यवस्था बनाने को कहा। उन्होंने नाविकों और उनके परिवारों को समय पर सूचना, आपातकालीन सहायता और परामर्श के लिए एक तंत्र स्थापित करने का भी निर्देश दिया। दिल्ली सरकार नीट परीक्षा में कथित अनियमितताओं के विरोध प्रदर्शनों में शामिल विद्यार्थियों के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करेगी। ये फैसला आपराधिक रिकॉर्ड वाले प्रदर्शनकारियों पर लागू होगा। ये निर्णय उच्चतम न्यायालय के 28 जुलाई के आदेश के अनुरूप लिया गया है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय सचिव एस कृष्णन ने कहा कि सरकार ने देश में सेमीकंडक्टर विनिर्माण मजबूत करने और आत्मनिर्भर सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम बनाने के लिए 1,27,500 करोड़ रुपए के बजट के साथ इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के दूसरे चरण को मंजूरी दे दी है। विधेयक पारित होने पर प्रधानमंत्री मोदी ने थोड़ी देर पहले इंस्टाग्राम पर एक वीडियो संदेश जारी किया। अपने संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि संसद ने एक ऐसा बिल पास किया है जिससे परीक्षा प्रणाली मजबूत होगी। दो बार के ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा आज राष्ट्रमंडल खेलों में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा के फाइनल में पहुंच गए हैं। रोहित यादव और यशवीर सिंह ने भी फाइनल में जगह बना ली है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।